0: समीन उर्दू की कहावत है, भाई से बढ़कर दोस्त कोई नहीं और भाई से बढ़कर दुश्मन भी कोई नहीं। इसी को अरबी ज़बान में इस तरह कहा गया है, अकारिबक अकारिबक, यानी अकारिब के साथ ताल्लुकात में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार आपको मुश्किलात या तकलीफ दे सकते हैं, जैसा कि अकरब या बिच्छू का जहर। अकारिबक अकारिबक, जिस तरह भाइयों से रिश्तेदारों से मोहब्बत करना जरूरी है, इसी तरह इन नाजुक ताल्लुकात के बकाओ दवाम के लिए मोहतात रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी छोटी बातों के नतीजे ही में रिश्तेदार आपस में बिच्छू जैसे जहर मारने लगते हैं। अकारिबक अकारिबक।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी।
4: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम आपकी सेहत, आपके बच्चों के मुस्तकबिल और एक सेहतमंद कतर के विजन के लिए है, जो कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 का अहम हिस्सा है, जहां बीमारी से पहले बचाव पर जोर दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज पर जो तकरीबन हर घर में मौजूद है, बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, और वो है फिजी ड्रिंक्स। सच बताइएगा कि जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं या फौरन किसी ठंडी बॉटल जो है उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं या उसे लेना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बिल्कुल भी आपको डराएंगे नहीं, बल्कि सच, तहकीक और हल की बात करेंगे।
4: हेल्थ फॉर ऑल कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात

0: होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ। हेल्थ अप टू डेट।
1: आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक फिजी ड्रिंक को शुगर स्वीटेंड बेवरेज कहा जाता है। ये एक आम केन में होता है, 7 से 10 चम्मच चीनी उसमें मौजूद होती है, जो कि एक तो हमें नज़र नहीं आ रही होती और दूसरा ये है कि हम शायद उसे समझना भी नहीं चाहते कि इतनी शुगर उसमें मौजूद है और जो गजाइत है, जो न्यूट्रिशन है, बिल्कुल नहीं है। इस तरह एसिड की जो मिकदार है वो भी बहुत ज़्यादा है। WHO वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी लिक्विड शक्ल में एक चीनी है, ठोस चीनी से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये क्यों है? क्योंकि जिस्म इसे खाना नहीं समझता, उसे पेट बिल्कुल भरता नहीं है। ये जो स्वीट है या ये शुगर है फौरन ब्लड में चली जाती है। जैसे ही आप लेते हैं कोई भी इस तरह की जो शुगरी ड्रिंक है, तो फिर ये होता है कि शुगर उससे बढ़ती है, इंसुलिन तेज़ काम करती है, यानी हमारी जो शुगर लेवल है वो एकदम से ज़्यादा हो जाता है, उससे थकन चिड़चिड़ापन होता है और दोबारा प्यास लगना शुरू हो जाती है। और फिर ये कि जब फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं तो बच्चे ख़ास तौर पर उन्हें भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, जो नौजवान हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, सुस्ती में बहुत सारे काम उनके रह जाते हैं, काम नहीं करते, वज़न जो है वो खामोशी से बढ़ता चला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर के मुताबिक जो नौजवानों में जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है, एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फिजी ड्रिंक्स हैं। और जो कम उम्र हैं बच्चे हैं उनमें डायबिटीज़ सामने आ रही है। गर्मी यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, तो उसके पास जो मीठे मशरूबात हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और इसी तरह जो नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी है 2030 कतर में वाज़े तौर पर कहा गया है कि अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसे बदलना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, चीनी को कम करना है बिल्कुल, और इसी तरह से जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करते चला जाना है, क्योंकि इसी तरह से हम अपनी सेहत को बेहतर और बरकरार भी रख सकेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ास तौर पर जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, उनको मना किया है कि किसी तरह से रिड्यूस कर सकें, ताकि जो मोटापा है जो कि बचपन में शुरू हो रहा है, जो ओबेसिटी है, उसको कम किया जा सके। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जो बच्चों में ओबेसिटी को, मोटापे को ज़्यादा कर रहे हैं, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनता जा रहा है। और उसमें ये कंफर्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल बच्चे जो हैं वो करते हैं, उससे वेट गेन हो जाता है बच्चों में भी बड़ों में भी। और इस तरह से जो शुगरी जो स्वीटेंड बेवरेज हैं, मशरूबात हैं, वो अगर आप कम करेंगे तो उससे जो वेट है वो भी सही बैलेंस में रहेगा। और इसी तरह से जो शुगर है वो बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे जो खाने हैं उनमें भी पाए जाते हैं नेचुरली, तो हमें ये चाहिए कि हम उस पर फोकस करें। और ये कि जैसे कि 330 ml पोर्शन है जो कि स्वीटेंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें तकरीबन 35 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है, और इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 140 कैलोरीज जो हैं वो उसमें पाई जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उसकी मिकदार है, ये उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। मगर ये कि हम उसे 2 या 3 मिनट में 140 कैलोरीज जो हैं वो हम ले लेते हैं। इसी तरह से एक और एविडेंस है कि आप जो जब बिल्कुल ये फिजी ड्रिंक्स लेते हैं तो अपने आप को एकदम से आप फुल महसूस करते हैं और फुलनेस का एहसास होता है। और एक्सेसिव जो कैलोरीज हैं वो तो हम ले ही रहे होते हैं फिजी ड्रिंक के रूप में, मगर ये कि जो बिल्कुल ज़्यादा हम जब लेते हैं तो उससे बहुत सारे जो मसाइल हैं वो सामने आते चले जाते हैं। NHS के मुताबिक जो सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन है एक बहुत बड़ा इशू है पब्लिक हेल्थ का, और पब्लिक जो पॉलिसी है वो इशू है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो ये हम महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक वजह है ओबेसिटी की, और इसी तरह जो बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं।

0: कार्बनिक, फास्फोरिक एंड सिट्रिक और वो सोडास में पाया जाता है, तो उससे ये हमारा जो टूथ एनेमल है उसको डिसॉल्व करता है और फिर वो कैविटीज बनाना शुरू कर देता है। ब्रेन हमारा और जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं जैसे कि सोडा में शामिल हैं या फिजी ड्रिंक्स में, तो अगर आप हर रोज़ लेते हैं तो उसमें जो हमारा दिमाग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उसका ही जो एक लिंक है वो जो रिस्क है हाई वो डिप्रेशन की सूरत में होता है या फिर डेमेंशिया की सूरत में भी सामने आता है। डाइट या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो ड्रिंक्स हैं उसमें वो भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, जबकि ऐसे सोडाज जो कि लेस शुगर जिनमें होती है या फ्यू कैलोरीज होती हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हैं। बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं उनमें देखा गया कि जो पोटेंशियल मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, उसमें भी जो हाई रिस्क हैं डायबिटीज़ के, उसमें टाइप 2 शामिल है, हार्ट डिजीज शामिल हैं और जो है स्ट्रोक भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि जो हम लेते हैं डाइट, कोई भी जो ड्रिंक्स हैं वो भी सेफ नहीं हैं। आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस हैं वो और भी ज़्यादा जो गट माइक्रोब्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, और इसी तरह से जो एसिडिक डैमेज भी होता है, जो डाइट सोडाज हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं और इस तरह से वो जो डेंटल एरोजन भी काज करते हैं।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ। सिंपल बट इम्पोर्टेंट टिप्स।
0: सबसे अहम बात यह है कि अपनी जो आप कोई भी आप ड्रिंक ले रही हैं उसमें आप शुगर की मिकदार को ज़रूर चेक कीजिए। कतर में खसूसी तौर पर बच्चों की तरफ ये ख़ास तवज्जो दी गई है और ये भी कहा गया है कि रोज़ाना कैलोरीज का 10% से कम जो इजाफी शुगर है उसका इस्तेमाल करें, मिसाली तौर पर इससे भी कम होना चाहिए। आप जो फिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप पानी से उसको बदल लीजिए, यानी मीठे जो मशरूबात हैं या जो आप मिल्क ले रहे हैं उसमें शुगर जो है वो कम से कम इस्तेमाल कीजिए। कतर में होने वाली तहकीक में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके इस्तेमाल को हड्डियों के जो उनकी जो डेंसिटी है और इसी तरह से अस्थमा के बढ़ते हुए खतरात से भी जोड़ दिया गया है। वालिदैन की एक इंफरादी जो जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तरफ खसूसी तवज्जो दें। सेहतमंद आदत की बुनियाद जिम्मेदारी जो है वो अक्सर वालिदैन और उन अफराद पर आती है जो कि बच्चों के साथ लिंक हैं। इसमें जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है ताकि जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो उन्हें तरजीह दी जाए, यानी सेहतमंद आदत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो अक्सर वालिदैन पर आती है या उन अफराद पर जो बच्चों के साथ लिंक हैं। इसमें अवेयरनेस और बहुत सारी जो मुहिम हैं, कंपेन्स हैं, वो चलाई जा रही हैं और जिसमें पानी को फिजी ड्रिंक्स पर तो जो है वो अहमियत दी जा रही है कि उनका इंतखाब किया जाए। WHO के मुताबिक बचपन में ज़्यादा वजन और मोटापे के ख़तरे को कम करने के लिए चीनी वाले मशरूबात का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर के कई ममालिक में बचपन में मोटापे की बढ़ती हुई शरह के लिए चीनी से मीठे मशरूबात का इस्तेमाल एक अहम अंसर के तौर पर तजवीज़ किया गया है, जबकि शक्कर जो है कुदरती तौर पर फलों और दूध समेत बहुत से खानों में पाई जाती है, लेकिन खाने की मसनूआत में शक्कर की इजाफी मसनूआत की तवानाई के मजमूई मवाद में इजाफा करता है और चीनी से मीठे मशरूबात में शक्कर होती है। कई बुनियादी खदशात पर डिबेट्स भी हैं, वो भी हुई हैं कि आया ये मशरूबात तवानाई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल का बायस बनते हैं और चाहे वो दीगर खाने पीने की अशिया और मशरूबात, और इस वजह से ग़िज़ाई अज़ा को बदल दें और इसी तरह से बदलते हैं कि वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं या फिर डायबिटीज़ की तरफ। जो हेल्थी रिकमेंडेशन है कि जो पानी है वो बेस्ट चॉइस होना चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। इसी तरह से आप इन्फ्यूज्ड वाटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। उसमें आप पानी के अंदर आप कुकम्बर, मिंट या बेरीज या सिट्रस आप उसमें शामिल कर दीजिए तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। इसी तरह से जो अनस्वीटेंड जो टी है या जो आइस टी है वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। फ्रेश जूस आप ले सकते हैं और उन्हें आप खुद बनाइए और इसमें आप स्पार्कलिंग वाटर जो है वो ऐड कर सकते हैं उसकी फिजीनेस के लिए। इसी तरह से स्मूदीज आप बना सकते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिल्क के साथ या फिर पानी के साथ। लिसनर्स, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी मेजर्स हैं, उन्हें हम अप्लाई करके हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। और ये बहुत ही नेचुरल ऑप्शंस हैं, इसलिए अपनी जो हेल्थ है एंड पब्लिक हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: बिजनेस, आज हम बात कर रहे हैं फिजी ड्रिंक के बारे में और ये कि हमने बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें देखी कि किस तरह से फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो हम उनसे दूर भी रह सकते हैं। मगर एक और इस पर बात करना बहुत ही अहम है, वो पॉइंट ये है कि फिजी ड्रिंक्स एक आलमी चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है और इस बात का भी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फिजी ड्रिंक्स में शामिल होते हैं, अपनी ज़्यादा चीनी की मकदार और वसी तर इस्तेमाल की वजह से ही एक आलमी सेहत का मसला बन चुके हैं। फिजी ड्रिंक्स जो पहले ज़्यादातर मगरबी ममालिक तक महदूद थे, अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। बड़ी जो बैन अल-क़ौमी मशरूबात की कंपनीज हैं, ख़ास तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक में अपनी मार्केट तेज़ी से बढ़ा रही हैं। इसी तरह से जो मीठे मशरूबात हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल, जैसे कि हमने पहले भी जो है जिक्र किया कि सेहत के मसाइल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, दांतों का ख़राब होना है और बहुत सारी जो दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियाँ हैं। और ये मसाइल अमीर और गरीब, बल्कि ये कहना चाहिए डेवलप्ड और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों तरह के ममालिक में तेज़ी से बढ़ रही हैं। जो बड़ी मशरूबात की कंपनीज हैं उनका किरदार भी बहुत अहम है, जो कि बड़े ही वसी पैमाने पर मार्केटिंग करती हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों को हदफ बनाती हैं, खेलों और मुख्तलिफ तकरीबात की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं और इन इलाकों में ज़्यादा फैलती हैं जहाँ जो कवानीन हैं कुछ कम हैं या जो लॉज हैं वो रिलैक्स हैं। और इन बड़ी कंपनीज का मौक़िफ ये है कि अपनी खुराक के इंतखाब की जिम्मेदारी खुद सार्फीन या कस्टमर्स पर होती है। हुकूमत भी बहुत सारे कुछ हुकूमतें जो हैं वो भी कम इस्तेमाल करने के लिए जो फिजी ड्रिंक्स हैं बहुत सारे इकदाम कर रही हैं, जैसे कि जो मीठे मशरूबात हैं उन पर टैक्स लगाना और जो एडवर्टाइजमेंट है कंपनीज की तरफ से या इश्तहारात पर पाबंदियां ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, और इसी तरह सेहत पर मुतबादल को फ़रोग भी दे रही हैं। ताहम इन इकदाम पर अक्सर बहस होती है और सनत की जानब से मुखालफत भी की जाती है। मगर इसमें सवाल ये है कि ग़िज़ा के बारे में जो मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफे का जिम्मेदार कौन है? जो डॉक्टर्स हैं या माहरीन सेहत हैं उनका कहना यह है कि मशरूबात और कंपनियों की जो हिकमत अमली है वही उसके ज़िम्मेदार हैं, जबकि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो ज़ाती जिम्मेदारी पर जोर देती हैं, यानी वो कहती हैं कि ये तो अफराद पर मुनहसर है कि वो किस तरह से जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो सेहत और मईशत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मुश्किलात का सामना कर रही है। फिजी ड्रिंक्स सिर्फ एक ज़ाती इंतखाब नहीं बल्कि एक आलमी निज़ाम का हिस्सा हैं जिसमें सेहत, कारोबार और हुकूमती पॉलिसी शामिल हैं, इसलिए ये मसला पेचीदा और हल करना मुश्किल हो रहा है। तरह की पूरी दुनिया में या एक ग्लोबल

0: चैलेंज है, इसी तरह कतर में भी फिजी ड्रिंक्स एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। कतर में भी वही बीमारियां जो कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, दिल के मसाइल हैं और उनकी शरह काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी जो बड़ी वजह है वो यही मीठे और कार्बोनेटेड मशरूबात बताए जा रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में, नौजवानों में उनका इस्तेमाल बहुत आम हो रहा है और है भी। यहाँ गर्मी का मौसम है और गर्म मौसम की वजह से लोग ज़्यादा मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर पानी की बजाय मीठे ड्रिंक्स का इंतखाब करते हैं। इसी तरह जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी सेडेंट्री है, यानी बैठे रहने वाला तर्ज ज़िंदगी है, और कम जिस्मानी सरगर्मी सेहत के मसाइल को ज़्यादा बढ़ा देती है। फिजी ड्रिंक्स रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और फास्ट फूड मुकामात पर आसानी से दस्तियाब हैं। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं ख़ास तौर पर नौजवानों को हदफ बनाकर अपनी मसनूआत की तशहीर करती हैं। गवर्नमेंट ने इस मसले से निपटने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन इकदाम किए हैं, जैसे कि मीठे और कार्बोनेटेड मशरूबात पर टैक्स लगाना, और इसी तरह अवाम में सेहत के बारे में जो कंपेन्स हैं वो भी चलाई जा रही हैं। कतर में फिजी ड्रिंक सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक अहम अवामी सेहत का मसला है, जो हमारी खुराक, तर्ज ज़िंदगी और मुआशी तरक्की से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हल करना एक बहुत ही पेचीदा चैलेंज है। फिजी ड्रिंक्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट जैसे ममालिक में एक संजीदा अवामी सेहत का मसला बन चुका है। ये सिर्फ ज़ाती इंतखाब का मामला नहीं है बल्कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग, लाइफस्टाइल यानी हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, और हुकूमती पॉलिसीज का भी अहम किरदार है, और इसके नतीजे में फिर सेहत के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। इस मसले से निपटने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हम सबको चाहिए कि सेहतमंद इंतखाब करें, मीठे मशरूबात या फिजी ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें, हुकूमत को मौसर पॉलिसीज बनानी चाहिए और कंपनीज को ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए, और सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए छोटे लेकिन दुरुस्त फैसले बहुत अहम होते हैं, और फिजी ड्रिंक का कम इस्तेमाल एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम है। फिजी ड्रिंक आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए, नींबू पुदीना मिला पानी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए दूध या लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, घर में सॉफ्ट ड्रिंक ना रखिए, और सबसे अहम बात यह है कि वालिदैन खुद मिसाल बने। हम दवा से पहले अपनी आदत जो है वो दुरुस्त कर लें तो फिर हम सेहतमंद रह सकते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि बच्चा पानी नहीं पीता, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कमी का मशवरा भी देते हैं कि आप एकदम से अगर वो फिजी ड्रिंक ले रहा है तो उसे कम ना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उसे कम कीजिए, घर में फिजी ड्रिंक रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा प्यास लग सकती है, और इसी तरह जो मुतबादल चीज़ें हैं अब वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी है। लिस्टनर्स, सेहत हॉस्पिटल में नहीं बनती बल्कि रोज़मर्रा के फैसलों से बनती है। आप आज क्या लेते हैं वही आपके कल की सेहत को लिखता है और एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देता है। अगले प्रोग्राम तक समझदारी से आप जो है पानी इस्तेमाल कीजिए और विजिटिंग को ज़रा दूर से देखिए और सेहतमंद रहिए। नेक्स्ट एपिसोड तक फौजिया शफीक और हमारे साउंड डिज़ाइनर मिस्टर शहबाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फिजी ड्रिंक से दूर रहिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: हेल्थ फॉर ऑल, डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, मौली एक बहुत ही खुश मिजाज और खुश दिल लड़की थी। उसका काम था दूध बेचना। वो हर रोज सुबह सवेरे उठकर अपने गांव के मवेशियों के खुले मैदान में जाती, जहां उसके पास कुछ दूध देने वाली गायें थीं। उसका यही काम था कि वो गायें से दूध निकालती और फिर दूध को गांव के बाजार में जाकर बेच आती थी। उससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन जब मौली दूध निकालकर बाजार की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उसने एक मुर्गी को देखा। मुर्गी को देखकर तो जैसे मौली की आंखों में चमक दौड़ गई। मौली ने मुर्गी को देखकर ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर मैं ये मुर्गी खरीद लूं, तो इससे तो अंडे मिलेंगे और अंडे बेचकर मैं मजीद पैसे कमा सकूंगी। हाय हाय, क्या तो अच्छे ख्याल थे मौली के। इस ख्याल ने मौली को बहुत खुश कर दिया और रास्ते में चलते चलते मौली अपनी ख्याली पुलाव पकाते पकाते गाने गाने लगी। दोस्तों, हुआ ये कि मौली के जहन में एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त बनने लगी, जिसमें वो ये सोचने लगी कि वो उन पैसों का क्या करेगी जो उसे अंडे बेचकर मिलेंगे। हाय, मैं क्या कुछ खरीदूंगी उन पैसों से। सबसे पहले तो ना मैं एक खूबसूरत जोड़ा खरीदूंगी, वो भी पिंक कलर का। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। फिर मैं एक और काम करूंगी, मैं एक नई टोकरी भी लूंगी, ताकि ये जो दूध भरने वाला पतीला है ये जरा बेहतर हो सके और मैं बाजार जाकर अच्छे से दूध बेच सकूं। और फिर मैं इस पैसे से अपनी दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे तोहफे भी तो खरीदूंगी। हाँ, मेरी दोस्त मरियम के लिए वो प्यारे से जूते खरीदूंगी जो उस दिन मैंने देखे थे, और दोस्तों के साथ बाहर मजे मजे के खाने भी तो खाने जाऊंगी। मौली का दिल खुशी से भर गया था और वो अपने जहन में ही न जाने क्या क्या ख्याली पुलाव बनाए चले जा रही थी। और इस सब की खुशी में मौली गुनगुनाती रही और खुशी से छलांगे लगाने लगी। और खुशी से अटकेलियां करती हुई मौली को पाँव में ठोकर लगी और उसके दूध की बोतलें सड़क पर गिर गईं। वो ये सब देखकर बहुत अफसरदा हो गई। उसकी खुशी एकदम गम में बदल गई। ओ नो, अब मैं क्या करूंगी, मौली ने दिल में कहा। और अपनी आंखों के सामने उसने पूरी दूध की बोतलें सड़क पे गिरी हुई देखी। अरे भाई, ये तो सारा का सारा दूध जाया हो गया। या अल्लाह, मैं किस देहान में क्या सोच रही थी। मौली बहुत मायूस हुई। वो मायूस होकर वापस घर की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ, जो कि घर के कामकाज में मसरूफ थी, उन्होंने मौली को देखा तो मौली के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। मौली को देखकर उन्होंने पूछा, खैर तो है मौली, बेटा क्या हुआ है? तुम तो सुबह बड़ी खुशी खुशी निकली थी, लेकिन अब क्या हुआ? ऐसी हालत में क्यों वापस आई हो? मौली ने अपनी दूध की बोतलों की खाली टोकरी अम्मी के आगे रखी और कहा, अम्मी, मैंने दूध बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने की सोच रखी थी, फिर ना एकदम मेरे आगे एक मुर्गी आ गई। मैं ये ख्याल करने लगी कि मुर्गी को खरीद कर मैं उसके अंडे बेचूंगी और मजीद पैसे कमाऊंगी, और इसी खुशी में मैं गुनगुनाने लगी और अटकेलियां करने लगी, और कूदते कूदते मेरी टोकरी से सारी दूध की बोतलें गिर गईं। अम्मी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मौली की अम्मी मुस्कुराकर मौली के पास आई और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छा सोच रही थी, लेकिन याद रखो, हमें कभी भी अपने पैसों के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो पैसे या हमारा ख्याल पूरा ना हो जाए। तुमने मुर्गी खरीदने का सोचा तो सही, जो कि ठीक बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो मुर्गी तुम्हें अंडे भी दे या तुम्हारे दिमाग में जो पैसे

हासिल करने की प्लानिंग बन रही थी। क्या पता वो पैसे तुम्हें हासिल ना हो, तो फिर तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव बना के कैसे खुश हो रही थी। बेटा तभी कहते हैं कि किसी भी बात को लेकर ना ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना ही ख्याली पुलाव पकाने चाहिए। किसी भी बात के बारे में इतना ओवर खुश नहीं होना चाहिए जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। मौली ने अपनी अम्मी की बातों पर गौर किया और कहा, अम्मी मैं समझ गई हूँ, आइंदा मैं किसी चीज को इतना ओवर एग्जैजरेट करके खुश नहीं होंगी, और उस वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि वो यकीनी तौर पे मुकम्मल ना हो जाए। उस दिन के बाद मौली ने अपनी माँ की नसीहत याद रखी। उसने दूध बेचना जारी रखा और फिर उसने कभी भी किसी बात के बारे में भी ख्याली पुलाव नहीं बनाए जब तक कि वो फैक्चुअल होके यकीनी ना हो जाए। वो जानती थी कि जब तक वो अपनी मेहनत से कमाना नहीं शुरू करती तब तक किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना और खुश होना सही बात नहीं। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी चीज पे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी भी चीज के बारे में ख्याली पलाव नहीं बनाने चाहिए जब तक कि वो यकीन में ना बदल जाए। सिर्फ मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करना चाहिए दोस्तों, और अपनी मेहनत के नतीजे में मिलने वाली कामयाबी पर हमेशा खुश होना चाहिए।

0: है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकॉनमिक कॉन्सेप्ट के सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद, तलाशरफ़ ज़मान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम तहियात। हमें आज के सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे इकॉनमिक ग्रोथ या माशी तरक्की कैसी होती है, किसे कहते हैं इकॉनमिक ग्रोथ या इसकी अहमियत क्या है, इसी तरह माशी तरक्की की पैमाइश कैसे की जाती है। उमूमी तौर पर आसान अल्फाज में इक्तिसादी तरक्की से मुराद मजमूई पैदावार में इजाफा है जो आमतौर पर कौमी आमदनी में इजाफे से जाहिर होता है। गुज़श्ता मुद्दत के मुकाबले में रवा मुद्दत में मसनूआत और खिदमात की पैदावार में इजाफे को माशी तरक्की या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। रिवायती तौर पर मजमूई इक्तिसादी तरक्की को मजमूई कौमी पैदावार GNP या मजमूई घरेलू पैदावार GDP के लिहाज से मापा जाता है। माशियात या इकॉनमी में तरक्की को आमतौर पर फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लेबर फोर्स और टेक्नोलॉजी के काम के तौर पर वज़ा किया जाता है। काम करने वाली अफरादी कुव्वत की मकदार या मेयार में इजाफा वो तरकीबें हैं जो मेहनत, सरमाए और खाम माल को यकजा करने के लिए दस्तियाब हैं और ये इक्तसादी पैदावार में इजाफे का बायस बनेंगी। वैसे माशी तरक्की की पैमाइश के हवाले से अगर बात की जाए तो माशी तरक्की का सबसे आम पैमाना हकीकत में GDP ही है। ये मईशत में पैदा होने वाली हर चीज़ और खिदमात की कुल कीमत है। हकीकी GDP को देखने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सालाना शरह पर 3 महीने से 3 महीने तक की GDP में तब्दीली को देखा जाता है, यानी पहले 3 महीने के मुकाबले में दूसरे 3 महीने की GDP में किस तरह की तब्दीली आई है। दूसरा तरीका यह कि साल ब साल तरक्की की शरह, यानी एक सहमाही या 3 महीने की GDP का मुवाजना दूसरे साल की सहमाही से बतौर फीसद की जाती है और ये आदाद व शुमार अक्सर कारोबार के ज़रिए मौसमी तगैयरात के असरात को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक तीसरा तरीका है सालाना औसत तरक्की की शरह, यानी 4 सहमाहियों में से हर एक में तब्दीलियों की औसत क्या है। समीन जी हाँ, ये वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए माशी तरक्की या शरह नमू की पैमाइश की जाती है। अब सवाल ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ या माशी तरक्की कैसे होती है। तो माशी तरक्की या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि मईशत में फिज़िकल कैपिटल गुड्स की मकदार में इजाफा किया जाए ताकि लेबर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो। इसी तरह टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेबर फोर्स में इजाफा भी ज़रूरी है क्योंकि काम करने वालों की ज़्यादा तादाद ज़्यादा मसनूआत और खिदमात पैदा करती है। इसी तरह माशी तरक्की के लिए ह्यूमन कैपिटल को भी बढ़ाना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि माशी तरक्की क्यों अहम है। माशी तरक्की का मतलब यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दस्तियाब हो। अक़वामे मुत्तहिदा की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च के ज़रिए की गई 10 साल तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर ममालिक जिन्होंने गुरबत को कम करने और अवामी अशिया तक रसाई बढ़ाने में कामयाबी का मुजाहरा किया है, इस पेशरफ्त की बुनियाद मजबूत माशी तरक्की पर है। और इसी के साथ आज के सेगमेंट से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ़ ज़मान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आइंदा सेगमेंट में। माशा सलाम।
0: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकॉनमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकॉनमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت

कि जून और जुलाई की विमेंस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ फतेह दिलाने के बाद 34 साल हीली को बाजब्ता तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो देखा होगा सेलेक्टर्स ने। देयर इज समथिंग, सम स्ट्राइकिंग यू नो एलिमेंट्स ऑफ टैलेंट, एंड दैट्स अ रीजन कि कोई सेकेंड कैंडिडेट उनके सामने किसी को नहीं दिखा। ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स थॉट चलो इन्हीं को दे देते हैं जिम्मेदारी, और वो बाखूबी आज भी ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड कर रही है। वाज़ह रहे कि लैनिंग 2014 में कप्तान बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 5 मरतबा वर्ल्ड कप जितवाने में मदद की। दाएं हाथ की बल्लेबाज और विकेट कीपर एलिसा की खानदान में, जैसे मैंने पहले बताया, हर कोई क्रिकेट खेला है, चाहे उनके वालिद ग्रेग हो या उनके चचा यान हिली, जिन्होंने बतौर विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम की मारूफ खिलाड़ी रह चुके। रुके रुके, सिर्फ यही नहीं, उनके शौहर यानी उनके हस्बैंड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को हर कोई क्रिकेट फैन जानता होगा। इज अ स्टार बॉलर इन द करंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम में। अब बात करते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। तो काफी यंग एज में दे न्यू ईच अदर बिकॉज दे वर ट्रेनीज इन सर्टेन अकेडमीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दे न्यू टू यू नो एक बातचीत और बातचीत के बाद एक यू नो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप डेवलप हुआ। उसके बाद आई मीन दे मैरिड ईच अदर। 2015 में एलिसा हिली ने स्टार्क के साथ मंगनी की और उनकी शादी अप्रैल 2000 में हुई। हिली और स्टार्क 1950 से 1960 की दहाई में इंग्लिश कपल रॉजर एंड रूथ प्रेडिक्स, और 1980 और 1990 की दहाइयों में श्रीलंका के गाय और रसांजली दी अल्विस के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तीसरे शादीशुदा जोड़ी हैं। 8 मार्च 2020 को अलीसा ने तमाम फॉर्मेट्स में आईसीसी इवेंट के फाइनल की तारीख में 30 गेंदों पर तेज तरीन 50 रन स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैं यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि अलीसा हिली ना सिर्फ एक क्रिकेटर है बल्कि रिकॉर्ड की भी काफ़ी यू नो ओनर ऑफ सो मैनी रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और अपने 255 गेम्स के करियर में एक ज़बरदस्त मैच विनर है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, वेलकम है आपका FM 107 पर, जहां हम आपके दिन को बनाते हैं फुल ऑन प्रैक्टिकल और मजेदार। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और कुछ कमाल के लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि आपकी लाइफ को बना देंगे कम्प्लीटली ऑसम। तो सबसे पहला लाइफ हैक है हर्ब आइस क्यूब्स। यस, तो जनाब अक्सर हमारे पास ये जो देसी हर्ब्स होते हैं ना, जैसे कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये हमारे घर में मिल ही जाते हैं, लेकिन कई बार इनका इस्तेमाल नहीं होता तो ये सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हमको फेंकना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, यानी कि इन हर्ब्स को वेस्ट होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, ये उपाय मैंने शुरू किया है, आप भी जरूर ट्राई करें। इनके छोटे छोटे आप टुकड़े करें, इन्हें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डिप करें और उसके बाद जो हमारा फ्रीजर होता है उसकी जो वो बर्फ वाली ट्रे होती है उसमें आप इन्हें जमा दें। ये क्यूब्स बन जाएंगे जिसमें आपके पुदीना भी हो सकता है, धनिया भी हो सकती है, करी पत्ता भी हो सकता है। और फिर जब आपको इंस्टेंट कुछ बनाना हो बिना झंझट के, तो एक क्यूब निकाला, खाने में डाल दिया। एग्जैक्टली, वो इंस्टेंट शेफ वाली फीलिंग आ जाएगी और खाने का फ्लेवर भी पूरा बदल जाएगा। तो यस, इस यमी टिप को आप जरूर जरूर ट्राई करें। अब दूसरा जो लाइफ हैक है वो आपके खूबसूरत गार्डन के लिए है। हाँ जी, अक्सर हम अंडा खाते हैं और छिलका जो है वो फेंक देते हैं, तो मैं कहूंगी कि छिलका इस बार आपको फेंकना नहीं है। यस, क्योंकि इससे आपके गार्डन के प्लांट्स बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत फायदा मिल सकता है। तो जब भी आप अंडा खाएं, खाली छिलकों को फेंके नहीं, अच्छे से धोकर उन्हें सुखा लें, फिर किसी चीज से या हाथ से उसे तोड़कर अच्छे से क्रश करके जो गमले हैं ना उसकी मिट्टी में डाल दें। ऐसा करने से प्लांट्स को एकदम नेचुरल कैल्शियम बूस्ट मिलता है और वो भी काफी तगड़े और हेल्दी ग्रो करते हैं। सही में ये वेस्ट नहीं, बेस्ट वाली बात है, तो बिल्कुल इसे बेकार ना समझें, इस चीज का फायदा उठाएं। मेरे यहाँ तो जो प्लांट्स हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपके प्लांट्स खुश नजर आ रहे हैं क्या? ट्राई दिस आउट। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
0: One hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Assalamu alaikum listeners, आप सुन रहे हैं Green Path, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम इको फ्रेंडली टिप्स के बारे में बात करेंगे, ताकि जब हम सफर करें हम अपनी जर्नी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, यह आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल का फायदा देता है और पोल्यूशन को भी कम करता है। जब आप ज्यादा सामान कैरी करते हैं तो ट्रांसपोर्ट को ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, इसलिए पैकिंग को लाइट रखें। आजकल कई होटल्स अपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, ग्रीन होटल्स चूज करें जो एनर्जी एफिशिएंट और वाटर सेविंग मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन ट्रेन से एक्सेसिबल है तो ट्रेन ट्रैवल ज्यादा सस्टेनेबल और रिलैक्सिंग होता है। आपके ट्रैवल हैबिट्स को इको फ्रेंडली बनाने से एनवायरनमेंट को फायदा होता है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मिंबर पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया में रहे या अपने रब के पास चला जाए, तो उस बंदे ने अपने रब के पास जाने को पसंद किया है। खलीफतुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर रो पड़े, क्योंकि वो समझ गए कि ये इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत की तरफ है। फिर वो दिन भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अमीर मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो कहते थे कि जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसे सजा दूंगा। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया, मन कान यअबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही अर-रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। सामने किराम, ये वाक़िया हमें एक अजीम हकीकत सिखाता है कि दुनिया में कोई बाकी नहीं, ताकि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी दुनिया से रुखसत हुए, बाकी सिर्फ अल्लाह है, अलबका लिल्लाह। सामने किराम, एक बहुत ही गहरी हकीकत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया को अपना मकसद नहीं बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर माल आता तो उसे अल्लाह के रास्ते में तकसीम फरमा देते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कभी ऐसा भी होता कि कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था और ग़िज़ा खजूर और पानी होती थी, लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन, सबसे ज़्यादा बावक़ार, सबसे ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़्र को ज़िल्लत नहीं समझते थे और ग़िना को, मालदारी को अज़मत नहीं समझते थे। असल अज़मत तो अल्लाह की बंदगी में है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ये अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख, मिस्कीनी की हालत में मौत दे और मिस्कीनों के साथ मेरा हशर फरमा। यहाँ मिस्कीनी का मतलब ज़िल्लत नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने इफ्तिकार, आजिज़ी और न्याजमंदी है। असल फ़क़्र यह है कि बंदा अपने रब का मोहताज बन जाए, और असल हलाकत यह है कि बंदा अपने आप को अल्लाह से बेनियाज समझने लगे। सामने के नाम, क़ुरान फरमाता है, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना। हरगिज़ नहीं, होशियार इंसान सरकशी का रास्ता इख्तियार करता है कि जब वो खुद को बेनियाज समझने लगे। सामने किराम, इसलिए गिना बेनियाजी बुरा नहीं अगर उसके साथ शुक्र हो, फ़क्र भी बुरा नहीं अगर उसके साथ सब्र हो। असल ख़तरा तो गफलत का है, असल ख़तरा तकब्बुर में, असल ख़तरा नाशुक्री है। मोमिन को माल मिले तो वो कहता है मेरे रब की अमानत है, माल कम हो जाए तो कहता है मेरा रब मुझे देख रहा है। तो यही खुलासा है आज की गुफ्तगू का। सामने किराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम जो भी कुछ कहने वाले हैं उसका खुलासा अभी इसी मरहले में पेश करते हैं, ताकि एक रिमाइंडर के तौर पर आप लोगों के जहन में रहे कि भाई आज के इस हलके में किन मौजूआत पर गुफ्तगू होने वाली है। बात वही है कि दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, फ़क्र और गिना दोनों आरजी हैं, वक्ती हैं, कब्ज़ और बसत दोनों अल्लाह के हाथ में हैं। मोमिन का काम है शुक्र, सब्र, तवक्कुल और हुस्न ज़न। अगर अल्लाह ता करे तो उसे अल्लाह के राह में इस्तेमाल करो, अगर अल्लाह रोक ले तो उसे उम्मीद न तोड़ो, अगर दुनिया तंग हो जाए तो याद रखो इन्ना मअल उस्रि युस्रा, और अगर दुनिया वसी हो जाए तो याद रखो ये भी इम्तहान है। अल्लाह ताला हमें नेमत में शुक्र, तंगी में सब्र, माल में सखावत, फ़क्र में वक़ार और हर हाल में अपनी तरफ मोहताजी का शऊर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम मज़मून को आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद की एक और आयत की तरफ आगे बढ़ेंगे। इरशाद होता है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया। हमने उनके दरमियान दुनिया की ज़िंदगी में उनकी मईशत तकसीम कर दी, यानी रिज़्क, माल, मवाक़े, सलाहियतें, दर्जात, जिम्मेदारियाँ, ये सब अल्लाह की तकसीम है। कोई ज़्यादा माल के साथ आजमाया जा रहा है, कोई कम माल के साथ, कोई ताकत के साथ, कोई कमज़ोरी के साथ, कोई इज़्ज़त के साथ, कोई गुमनामी के साथ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद कुरान हमारी निगाह को दुनिया से उठाकर आखिरत की तरफ ले जाता है। वरहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमाउन, और आपके रब की रहमत

सबसे बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। समरिकराम, इस आयत में एक अजीब हकीकत है कि इंसान जिंदगी भर जमा करता रहता है, माल, घर, कारोबार, शोहरत, ताल्लुकात, हैसियत, मनसब, लेकिन कुरान कहता है कि तुम जो कुछ जमा कर रहे हो अल्लाह की रहमत उस सबसे बेहतर है। मुफस्सिर के हाँ यहाँ रहमत से मुराद जन्नत भी ली गई है, यानी दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की आसाइश, दुनिया भर की शोहरत अगर एक तरफ रख दी जाए और अल्लाह की रहमत और जन्नत दूसरी तरफ, तो अल्लाह की रहमत ही बेहतर है। इसीलिए सालहीन कहा करते थे, दुनिया की कोई नेमत माना नहीं रखती अगर उसके बाद जहन्नम हो, और दुनिया की कोई तकलीफ नुकसान नहीं देती अगर उसके बाद जन्नत हो। तो बात वही है कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, उसकी लज्जतें वक्ती हैं, उसकी खुशियाँ बदलती रहती हैं। आज सेहत है, कल बीमारी आ सकती है, लाकद्दर अल्लाह, खुदा न खास्ता। आज जवानी है, कल बुढ़ापा है, आज इज्जत है, कल लोग भूल सकते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, अद्दुनिया साआ फजअलहा ताआ, दुनिया एक घड़ी है, उसे इताअत बना दो। यानी ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे गुनाह, गफलत, जुल्म, लालच और तकब्बुर में ज़ाया न करो, उसे अल्लाह की बंदगी में लगा दो। एक शायर ने ज़िंदगी की हकीकत को बहुत गहरे अंदाज में बयान किया है। वो कहता है, अगर कोई नौजवान 1000 साल जिंदा रहे, उसके बाद बादशाहत हो, इज्जत हो, माल हो, ताकत हो, कभी बीमारी ना आए, कभी गम ना आए, कभी परेशानी ना आए, फिर भी ये सब कुछ कब्र की पहली रात के मुकाबले में कुछ नहीं। ये मजमून मैंने उसी अरबी शेर का खुलासा के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ज़रा सोचिए इस शेर के मजमून पर, 1000 साल के ऐश इशरत भी अगर आखिरत की तैयारी के बगैर हो तो कब्र की पहली रात के सामने बेकीमत हो जाती है। इसीलिए असल सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना माल है, असल सवाल ये है कि हमारे पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए क्या है। समरी कराम फ़कर की एक और हकीकत भी आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं कि हर फ़कर बुरा नहीं और हर मालदारी अच्छा नहीं। कभी फ़कर इंसान को अल्लाह के करीब करता है, कभी गिना इंसान को शुक्रगुजार बनाता है, कभी फ़कर इंसान को बेसब्री, बदगुमानी और गुनाह की तरफ ले जाता है, और कभी गिना बेनियाजी इंसान को तकब्बुर, गफलत और तुग़यान में मुब्तला कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में भी ये मज़मून आता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़क़्रिन युंसीनी व गिनन युतग़ीनी। ए अल्लाह, मैं उस फ़क़्र से तेरी पनाह मांगता हूँ जो मुझे भुला दे, और उस गिना से भी, बेनियाजी से भी, जो मुझे सरकश बना दे। मसला सिर्फ माल की कमी या ज़्यादती नहीं, मसला ये है कि दिल का क्या हाल है। फ़क़्र ऐसा ना हो कि इंसान अल्लाह को भूल जाए, गिना बेनियाजी ऐसा ना हो कि इंसान खुद अल्लाह से बेनियाज समझने लगे अपने आप को। सामिन किराम, अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, हरगिज़ नहीं इंसान सरकशी करता है जब वो ख़ुद को बेनियाज समझता है। तो असल बीमारी माल की नहीं, असल बीमारी बेनियाजी का एहसास है। जब बंदा ये समझने लगे कि मैं खुद काफ़ी हूँ, मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं, मेरे पास माल है, ताकत है, ताल्लुकात है, मनसब है, तो यही तुग़यान की इब्तिदा है। और उसके मुकाबले में असल बंदगी ये है कि इंसान हर हाल में कहे, अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ, माल हो तब भी मोहताज, सेहत हो तब भी मोहताज, बंदा हर हाल में बंदा है और रब हर हाल में रब है। समझ कर हम फ़कर की एक किस्म फ़कर माल है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक फ़कर है फ़कर नफ्स, यानी दिल का फ़कीर होना। एक शख्स के पास लाखों करोड़ों हों मगर दिल में हिर्स ख़त्म ना हो, कनात ना हो, शुक्र ना हो, हर वक्त कमी का एहसास हो, तो हकीकत में फ़कीर है। और एक शख्स के पास माल कम हो मगर दिल मुतमईन हो, अल्लाह पर एतमाद हो, कनात हो, शुक्र हो, तो वह हकीकत में गनी है, मालदार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गिना माल की कसरत का नाम नहीं, असल गिना तो दिल का गिना है, वलाकिन अल गिना गिना नफ्स। सामने कराम, आज दुनिया में बहुत से लोग मालदार हैं लेकिन बेचैन हैं, घर बड़े हैं मगर दिल तंग है, आमदनी ज़्यादा है मगर सुकून नहीं, आसाइशें हैं इत्मीनान नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दुनिया कम है मगर दिल अल्लाह से भरे हुए हैं, वो कम में भी खुश हैं, तंगी में भी साबिर हैं, नेमत में भी शाकिर हैं, यही दिल की बेनियाजी है। फ़कर की एक और ख़तरनाक किस्म है हसनात का फ़कर, यानी इंसान दुनिया में मालदार हो सकता है लेकिन आखिरत में खाली हाथ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाया,

0: कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उसकी नेकियां एक एक करके मजलूमों को दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उसके पास कुछ बाकी न रहेगा, फिर दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सामने करम, यही असल फ़क्र है, इफ़लास है। दुनिया का फ़क्र कभी ख़त्म हो सकता है, आज फ़कीर कल गनी हो सकता है, लेकिन क़यामत के दिन हसनात का फ़क्र ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हमें सिर्फ माल जमा करने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि नेकियां बचाने की भी फ़िक्र करनी चाहिए। नमाज पढ़ें, ज़कात दें, सदका करें, हज करें, लेकिन साथ ही ज़बान की हिफाजत करें, लोगों के हुकूक अदा करें, गीबत से बचें, जुल्म से बचें, किसी का माल न खाएं, किसी की इज्जत न उछालें, क्योंकि नेकी करना एक चीज़ है, नेकी को क़यामत तक महफूज रखना दूसरी चीज़ है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह कुछ लोग दुनिया में ज़िंदगी गुजार देते हैं मगर आखिरत के लिए कुछ जमा नहीं करते। नमाज का मौका मिला ज़ाय कर दिया, सदका का मौका मिला रोक लिया, इल्म का मौका मिला गफलत की, खिदमत का मौका मिला टाल दिया, तौबा का दरवाज़ा खुला था लेकिन देर करते रहे। फिर क़यामत के दिन जब अमाल का मीज़ान सामने आएगा तो मालूम होगा कि हाथ खाली हैं। ये भी फ़क्र है, बल्कि सबसे बड़ा फ़क्र है। इसलिए आज की गुफ्तगू का पैगाम यही है सामने किराम, कि माल की कमी से ज़्यादा दिल की कमी से डरना चाहिए, फ़क्र माल से ज़्यादा फ़क्र ईमान से डरना चाहिए, दुनिया के खसारे से ज़्यादा आखिरत के खसारे से डरना चाहिए। अगर माल कम है मगर ईमान है, सब्र है, शुक्र है, हलाल है, इज़्ज़त नफ्स है, तो इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर माल बहुत है मगर दिल खाली, आखिरत की तैयारी नहीं, नेकियां ज़ाय हो रही हैं, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो ये गिना नहीं, ये खसारा है। आइए अपने दिल से पूछें, क्या हम रिज़्क को अल्लाह की अमानत समझते हैं या अपनी मिल्कियत? क्या हम दुनिया के फ़ख्र से ज़्यादा आखिरत के फ़ख्र से डरते हैं या नहीं? हम अक्सर बड़े अमाल की तरफ देखते हैं और छोटे अमाल को मामूली समझ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि खैर के रास्ते बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउ व सबउन शुबा, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें सबसे आला ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे निचली शाख रास्ते से तकलीफ दह चीज़ हटा देना है। तो सोचिए, रास्ते से एक पत्थर हटा देना, एक कांटा दूर कर देना, एक रुकावट ख़त्म कर देना भी अल्लाह के नज़दीक अजर का सबब बन सकता है। मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुक फी वजहि अखीक सदका, अपने भाई के चेहरे पर मुस्करा देना भी सदका है। तो इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़ुन नार वलो बिशक्क़ तमरा, जहन्नम से बचो अगर खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही क्यों ना हो। इन्हीं अल्लाह ताला के हाँ छोटा अमल भी ज़ाय नहीं होता। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा लफ्ज़ है वो भी सदका है, एक अच्छी सच्ची नसीहत है वो भी सदका है, अगर तुम किसी के लिए दुआ करते हो ये भी खैर है, अगर तुम किसी को रास्ता बता देते हो तो इसमें भी सवाब है। ओवरऑल ज़िंदगी की हकीकत यही है कि एक दिन जवानी ढल जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, उस दिन इंसान को अपने जिस्म की ताकत पर नहीं अपने अमाल की ताकत पर फ़ख्र होगा जब वो अपने रब के सामने हाजिर होगा। उस दिन माल साथ नहीं जाएगा लेकिन सच्चा कलमा साथ जाएगा, वो मुस्कराहट भी साथ जाएगी जो अल्लाह की रज़ा के लिए थी। इसलिए अक्लमंदी यही है कि हम अपनी सेहत, अपनी कुव्वत, अपनी जवानी, अपनी समाअत और अपनी बसारत को अल्लाह की अमानत समझें और उसे उसके दीन की खिदमत में सर्व करें। अल्लाह सुबहान तआला हमें अपनी समाअत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाएं, अपनी बसारत को हक देखने वाला बनाए, अपनी कुव्वत को नेकी के कामों में इस्तेमाल करने की तौफीक दे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ईमान, सेहत और आफियत के साथ उसकी इबादत करने की तौफीक और नसीब अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ प्रोग्राम की तकनीकी मुआवन शकीब अहमद और मेज़बान तलहा अशरफ उस्मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

के बाद बताऊंगी, उस पर आप हमें कॉल कर सकेंगे, मैसेजेस कर सकेंगे. कॉल करने के लिए नंबर भी मैं साथ साथ बता दूंगी, 443-443-77 पे आप मुझे करेंगे कॉल. और इसके साथ ही आप मुझे 666-221-107 पे भेज सकते हैं अपना लिख के मैसेज व्हाट्सएप पे, बिल्कुल फ्री. तो दोनों मैसेज जिसमें आपको आसानी हो आप मुझे कॉल कीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, लेकिन शो में शरीक ज़रूर होइएगा. के साथ ही मतलब टॉपिक होगा, टॉपिक पे बातचीत होगी, बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. और हम बहुत कुछ करेंगे मतलब इन 3 घंटे में, कहने का मतलब ये है. अच्छा सा म्यूजिक भी आपके लिए प्ले करेंगे. आज 22 जून, और 22 जून अब आ गया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब खैर अभी तो पीक चल रहा है गर्मियों का, कल 47 से ऊपर तक पहुंची है, मतलब 47 तक गया है टेम्परेचर. लेकिन जो वो जो महसूस हो रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ. और जो लोग बाहर ख़ास तौर पे थे, जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत इस वक्त दोपहर के वक्त में मुश्किल काम है. मतलब वो लोग, वो नहीं जो एक बहुत सारे लोगों पे तो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और भी कई जगहों पर ये जो है ना एक तरह की पाबंदी लगा दी जाती है, या फिर बाइक पे आप फूड डिलीवरी नहीं कर सकते, वो भी सब कुछ जो है ना यहाँ पे वैसे ही चल रहा है. लेकिन उससे हटकर लोगों के अपने भी तो काम होते हैं ना, लोग अपने कामों के सिलसिले में जाते हैं, कोई बैंक गया हुआ है, कोई कहीं और गया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे. तो वो थोड़ी सी देर का, अगर आपने गाड़ी कहीं दूर पार्क की है और आपको थोड़ी सी देर भी ना मतलब चल के जाना पड़ रहा है कुछ, तो कल लग पता गया था ये वाला सीन चल रहा था. अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक किस्म की कल गर्मी थी बहुत ज़्यादा. तो उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आराम से, मतलब जो ना कोई मसला नहीं हुआ होगा. आजकल लोगों की तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं, इसलिए हम बार बार आपको बार बार ताकीद करते रहते हैं कि गर्मी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ख्याल रखना है अपना. और वैसे मैं खैर ख़ुद भी सोच रही हूँ कि एक अम्ब्रेला आपके पास होनी चाहिए कहीं पे भी. अब इतनी गर्मी में जैसे मैंने कहा ना, ये थोड़े बहुत छोटे मोटे काम आपके हो सकते हैं, आपने बच्चों के स्कूल जाना है, कोई मीटिंग है, या फिर कोई और इस तरह का काम है, तो वो जाना ही पड़ता है. उसमें कोई मतलब उस तरह की चीज़ नहीं होती कि नहीं छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, अभी गर्मी है, सर्दियों में चले जाएंगे, इस तरह नहीं होता. तो होनी चाहिए आपके पास एक अम्ब्रेला होनी चाहिए, और आप लेके जाएँ ताकि अपने आप को बचा सकें बहुत ज़्यादा. मतलब ये जो एकदम से आपको डायरेक्टली सन एक्सपोजर होता है ना, वो सीरियसली बहुत ख़तरनाक होता है, तबीयतें लोगों की ख़राब हो जाती हैं. तो ख्याल कीजिए, अगर हो सके एक अम्ब्रेला लेके रख लीजिए और अपनी केयर कीजिए. इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे ना कोई आपका मजाक बनाएगा या कुछ और. तो इसलिए सबसे पहले आपकी सेहत इम्पॉर्टेंट है. जी और चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूंगी, वेदर अपडेट भी बताऊंगी, क्या मौसम के हाल चाल हैं क्या है. लेकिन मैं फिर भी मतलब वो है ना, वो एक तरीका होता है आपका कि आप आधा ग्लास भरा हुआ देख रहे हैं या खाली देख रहे हैं. तो मेरा सीन ये है कि मैं मतलब पॉजिटिविटी के ऊपर जाती हूँ. तो मुझे मतलब ये हो रहा है कि अब चलो मतलब हो गया ना, सबसे साल का जो बड़ा वाला दिन था वो आ गया, तो अब इसका मतलब है कि अब ड्यूरेशन जो है ना घटना शुरू हो जाएगी. इट्स मीन कि सूरज की वो जो ताप है, वो शिद्दत है ना, वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन कम होना शुरू हो जाएगी. तो मतलब अच्छा सोचना चाहिए. खैर जी आ जाते हैं अपनी आज की जो तहरीर है उसकी तरफ. और आज मैं आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और वो है ये कि हम अक्सर अपनी जो है ना एक वैल्यू की तलाश में रहते हैं. हर बंदा यहाँ पे देखें दुनिया में एक अपनी शनाख्त, अपनी शनाख्त से बढ़कर आप ये कह सकते हैं कि अपनी वैल्यू की तलाश में होता है. किस तरह इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी कदर उन पैमानों से नापने लगता है जो दुनिया उसके हाथ में थमा देती है. कभी वो अपनी कीमत अपने मकाम से लगाता है, कभी अपनी सलाहियतों से, कभी अपनी आज़ादी से, और कभी लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत से, और कभी अपनी इनफरादियत यानी यूनिकनेस से. हालांकि हकीकत यह है कि इंसान की असल कीमत ना दुनिया तय करती है, ना हालात, ना लोग, ना तारीफ़ें और ना कामयाबियाँ. इंसान की असल कीमत सिर्फ उस नस्बत से है जो उसे अपने रब के साथ हासिल है. जब तक इंसान ये नहीं समझ लेता कि वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए बनाया गया है, तब तक वो ना ख़ुद को सही मायनों में पहचान सकता है और ना ही अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर सकता है. सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात पर अब ये यकीन होना चाहिए कि मेरा वजूद अपने रब के बग़ैर कुछ भी नहीं है. मेरी हकीकत, मेरी पहचान, मेरी इज़्ज़त, मेरी बका, मेरी रोशनी, सब कुछ अल्लाह से वाबस्ता है. अगर इस ताल्लुक को निकाल दिया जाए तो इंसान के पास कुछ बाकी नहीं रहता सिवाय खाली वजूद के. कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और मैंने तुझे अपने ख़ास काम के लिए चुन लिया. यह आयत सिर्फ एक आयत नहीं, मतलब एक जुमला नहीं है, बल्कि इंसान की असल कदर का ऐलान है.
जब अल्लाह ताला किसी

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

राजे राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आर्जिम हवस. शॉर्ट 6:23 हो चुके हैं. साथ मेरा और अपने आपका रहना है 9 बजे तक. और ये कि अब मैं आपसे शेयर करती हूँ वेदर अपडेट. इस वक्त देखते हैं कि क्या मौसम के हाल चाल हैं. वैसे तो खैर मतलब संगीन ही चल रहे हैं इस वक्त. तो अच्छा खासा टेम्परेचर हो चुका है. तो अभी फ़िलहाल इस वक्त देखा जाए तो कतर का टेम्परेचर, दोहा का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अच्छा खासा है, ठीक ठाक है. और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा का जो प्रडिक्शन है वो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा. तो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, 42 तक तो नहीं जाएगा, 44-45 तक जा सकता है डेफिनेटली आज. और दोपहर में आज भी बहुत ज़्यादा हीट जो है इंटेंस रहने वाली है, और सूरज निकला रहेगा और बादल का कोई इम्कान नहीं है. एयर क्वालिटी भी मतलब थोड़ी सी वीक है इस वक्त, तो आप इसलिए ज़रा धूप से बचने की कोशिश करें, अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और बच्चों को और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग अफराद को हीट से बचाएं. तो ये ज़रूरी है, ये कीजिए. और इसके साथ ही हम थोड़ा सा वेदर अपडेट का भी जायज़ा ले लेते हैं क्या चल रहा है. और अगर कोई मतलब हमारे कोई भाई भाई इस वक्त सड़क पे मौजूद हैं किसी जगह पे और उनको थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है, तो वो भी हमें अपडेट कर सकते हैं. और अपडेट करने के लिए नंबर जो है वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देती हूँ, 4434377 पे आप हमें कॉल करके ये भी बता सकते हैं. टॉपिक पे बात करने के अलावा टॉपिक पे अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर कि क्या हालात हैं. अगर आप इस वक्त रोड पर हैं तो ट्रैफिक स्मूथ है, कहीं पे ज़्यादा आपको ट्रैफिक तो नहीं मिली? मैं अपना बताऊं तो मुझे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिली, मुझे नहीं इतना लग रहा कि ज़्यादा ट्रैफिक है, थोड़ा सा कम ही हो गया. बहुत से जो स्कूल्स हैं उनकी तो छुट्टियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, कुछ स्कूल्स की अभी होने वाली हैं, मतलब इस वीक में हो जाएंगी, तो फिर थोड़ा हमें और ट्रैफिक कम मिलेगा. लोग वेकेशंस पे भी चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक इस वक्त निस्बतन जो है वो काफ़ी मुनासिब ही है. लेकिन अगर देखें तो अशगाल ने कुछ टेम्पररी रोड क्लोजर्स वगैरह बताएं, टनल ब्रिज क्लोजर्स हैं, तो वो कॉर्निश साइड पर हैं कि इंटरचेंजेस जो हैं वहाँ पे टनल्स या फिर सिटी कॉरिडोर्स की तरफ जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक दफ़ा रूट आपको चेक कर लेना बेटर होगा. इसके अलावा दोहा में जो एक मॉर्निंग रश और इवनिंग टाइम का जो रश होता है वही आपको मिलेगा. इसके अलावा इतना ज़्यादा इस वक्त नहीं है, ठीक है ट्रैफिक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. लेकिन फिर भी दोहा से लुसेल, अलवकरा से वेस्ट पे, कॉर्निश, एयरपोर्ट रोड, दुहान रोड और 22 फरवरी स्ट्रीट जो है, अलशमाल रोड, मॉल ऑफ कतर साइड, तो थोड़ा बहुत आपको ज़रा ज़्यादा मिलेगा इन जगहों पे ट्रैफिक हो सकता है, तो देख लीजिएगा. निस्बतन ज़्यादा, वैसे इस वक्त काफ़ी हद तक स्मूथ ही है. खैर जी, ये थे मतलब जो कुछ ट्रैफिक के हवाले से, और ट्रैफिक भी मुनासिब है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसका आपने ख्याल रखना है. और मैं देख रही थी टैक्सी जो प्राइसेस है ना वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं. उसका रीज़न ये है कि लोग थोड़ी सी जगह मतलब 2 कदम जाने के लिए भी टैक्सी करते हैं आजकल, डेफिनेटली मतलब नहीं चला जाता, तो इस वजह से भी टैक्सी वगैरह की भी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हुए हैं. जो लोग टैक्सी यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मसला आजकल हो रहा होगा. खैर जी, आज 22 जून और उसके हवाले से कौन से दिन मनाए जाते हैं उनकी तरफ आ जाती हूँ.

आज भी काफ़ी दिन है, उसमें से कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है 22 जून को सबसे अहम जो दिन है वो है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, और ये दिन दुनिया भर में रेन फॉरेस्ट यानी बरसाती जंगलात की अहमियत को समझने और उनकी हिफाजत के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और रेन फॉरेस्ट को अक्सर आपने सुना ही होगा कि लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन स्टोरेज, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट बैलेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अमेज़न, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट सिर्फ दरख्तों का एक जंगल नहीं है, बल्कि लाखों जानवरों, परिंदों, इंसेक्ट्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के घर हैं। और उसके साथ ही साथ मतलब हमारा लंग है, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस दिन का मकसद बेसिकली होता यह है कि लोगों को ये बताना होता है कि अगर रेन फॉरेस्ट को डीफॉरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और क्लाइमेट चेंज से बचाया ना गया तो सिर्फ जंगलात नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम मुतासिर होगा। तो इस दिन सेमिनार्स भी होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, स्कूल एक्टिविटीज और इसके साथ ही इन्वायरमेंटल मैसेजेस शेयर किए जाते हैं ताकि लोग जो है इस दिन की अहमियत को समझ सकें, लोग जंगलात की अहमियत को समझ सकें और दरख्त ना काटें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बड़ा मज़े का दिन है वो ये है इंटरनेशनल बींग यू डे। और अभी जैसे शुरू में बोल रही थी ना कि हम अपनी कीमत लगा रहे होते हैं, भाई हर बंदे को एक इनफरादियत चाहिए, यूनिकनेस चाहिए, तो कुछ कुछ वैसा वाला ही सीन है जो मैं कह रही थी। दुनिया आपको बताती है कि आपकी एक अलग कीमत होनी चाहिए, आपको अलग दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिन पॉजिटिव है। ये कहता है कि इंटरनेशनल बींग यू डे इसलिए मनाया जाता है, मकसद इसका यह है लोगों को ये याद दिलाना कि हर इंसान अपनी जगह, अपनी एक अलग पहचान रखता है और उसे आर्टिफिशियल प्रेशर के बगैर अपनी असल शनाख्त, सेल्फ वर्थ और ऑथेंटिसिटी के साथ जीना चाहिए। ये ऑब्जर्वेंस जो है वो ज़्यादातर सेल्फ एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलिटी और कॉन्फिडेंस, इमोशनल वेल बींग के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी होती है। और इस दिन का पैगाम ये होता है कि इंसान अपनी असल पर्सनैलिटी को समझे, दूसरों की कॉपी बनने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फितरत को अप्रिशिएट करे। तो मतलब पॉजिटिव तो है,

राइट, तो इंटरनेशनल बीइंग यू डे आप भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और वाकई मतलब किसी से कोई किसी किस्म का मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, तो यही समझना चाहिए। और वही जो शुरू में मैंने बात बोली थी ना सुबह में आते कि अपनी कदर को लोगों की नज़र से नहीं अल्लाह की नज़र से देखें, और अल्लाह की नज़र में हम सब बहुत खास हैं। फिर जी एक और जो दिन है वो क्या है, वो है नेशनल अनियन रिंग्स डे, और कुछ मुल्कों पर और ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में 22 जून को नेशनल अनियन रिंग्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ज़्यादातर एक फ़न फूड ऑब्जर्वेंस है, और इसमें ज़्यादा मतलब जहाँ रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स सोशल मीडिया पेजेस अनियन रिंग्स से रिलेटेड प्रमोशंस और पोस्ट शेयर करते हैं। इस तरह के फूड डेज मतलब थोड़ा सा मतलब जो ना कोई सीरियस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बल्कि एक पॉप कल्चर है, फूड मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा 22 जून को नेशनल चॉकलेट डे भी मनाया जाता है, और चॉकलेट जो है वो एक बेसिकली एक पेस्ट्री डेजर्ट होता है जो कि क्रीम फिलिंग और चॉकलेट टॉपिंग के साथ बनाई जाती है, और ये भी ज़्यादातर जो है वो फूड कैलेंडर का हिस्सा है, बेकरीज कैफे कल्चर और डेजर्ट्स प्रमोशन से जुड़ी होती है ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है दिन वो है नेशनल HVAC टेक डे, और ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसका मतलब जो है वो है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इस दिन HVAC टेक्नीशियंस और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, जो बिल्डिंग्स होम्स और पब्लिक स्पेसेस में कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम को मेंटेन करते हैं, गर्म इलाकों जैसे हमारा यहाँ पे गल्फ रीजन में ऐसे प्रोफेशनल्स की जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा समझ में आती है। तो ये है इसके साथ ही इसी एक और बहुत ही मजे का दिन है, और ये जितने भी लवर्स होते हैं ना कैट लवर्स उनके लिए है, वो ये कि इस तीसरे वीक में बेसिकली इसका ताल्लुक 22 जून से नहीं है लेकिन मंडे से है, तीसरा मंडे जून का, तो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है टेक योर कैट टू वर्क डे। ठीक है, इस साल मतलब पड़ रहा है आज 22 जून को, और ये एक ऐसा दिन है कि जो जहाँ पे लोग अपनी कैट्स के साथ फ़ोटोज़ वर्क प्लेस पे पैट मोमेंट्स और एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड पोस्ट भी शेयर करते हैं, और इसका मकसद फ़न के साथ पेट्स के हवाले से पॉजिटिविटी और अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। सीरियसली मतलब ऑफिसेस में आपके बच्चे अलाउ नहीं है, ये बिल्लियाँ अलाउ हो सकती हैं क्या, मतलब अजीब सी बात है अगर ऐसा है तो। वैसे बिल्लियाँ अलाउ होती हैं क्योंकि मैंने भी देखा है हमारे यहाँ भी मतलब अक्सर लोग बिल्लियाँ ले लेके अंदर आए हुए होते हैं, तो ये वाला सीन है भाई, तो लोग जो है अपने ऑफिसेस अपनी बिल्लियाँ साथ लेके जाएंगे आज, तो कौन है इतना बड़ा कैट लवर जो कि ये हिम्मत कर सकता है कि आज अपनी बिल्ली को गाड़ी में बिठाए और अपने साथ ऑफिस लेके जाए। अगर कोई ऐसा है तो ज़रूर मुझे बताए, ठीक है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बहुत जो है ना एनिमल लवर आजकल मुझे नज़र आ रहे होते हैं, तो भाई उन लोगों को ये बताना चाहिए कि आज ये वाला दिन आप मनाने के लिए तैयार हैं।

खैर जी आ जाते हैं कहां आ जाती हूं इस तरफ कि मैं आपको बताती चलूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम आपसे पूछने वाले हैं एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल और वो ये है कि आपकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, जिसे आप कह सकते हैं कि भाई ये है मेरी सबसे बड़ी एक कामयाबी, ये मैंने हासिल की है। और ये वो जो मतलब मोमेंट था जब आपने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, कुछ ऐसा है उससे जुड़ा हुआ जो आज तक आपको याद हो, डेफिनेटली सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो यादगार तो होगी ना। तो उसके हवाले से कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं, कुछ इमोशनल चीज़ें या फिर मेमोरेबल, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए नंबर आपको पता ही हमारे 4434377, साथ ही 6662107 पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपकी कॉल्स और मैसेजेस का मैं करती हूँ वेट, लेकिन चलते हैं पहले ब्रेक पे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
3: MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
2: वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
3: सब कुछ मिलेगा यहाँ।
2: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
4: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेव एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
5: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

राइट, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जुड़ जाइए. आप लोग कॉल कीजिए 4434377, इसके साथ ही 6622107 पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं. जल्दी से मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आज तक की क्या है, जिसको सोच के मतलब आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं. कोई ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इमोशनल भी कर देती हो? वैसे अगर सबसे बड़ी कामयाबी है डेफिनेटली तो वो कुछ ना कुछ तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट होगा सीन उसका. तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं अब तक का क्या है ऐसा आपसे रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, तो वो क्या चीज़ है ऐसी जो सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी. ठीक है, आप कॉल कीजिए, कॉल करके हमें बताइए 4434377 या फिर 6622107. इंतज़ार कर रही हूँ मैं आप लोगों की कॉल्स का, मैसेजेस का. और इस दौरान हम कर ये लेते हैं कि हम आपसे शेयर कर लेते हैं. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें पता है आपको हमारे शो में वैसे होती हैं जो कि हो ही नहीं पा रही होती क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता. तो मैं बाज़ अवकात सोचती हूँ कि जब शुरू में कॉल्स वगैरह ना आ रही हों तो फिर हम उस वक्त में ये जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ हैक्स बताने हैं. इसके साथ ही एक हमारा टॉपिक जो है ये भी होता है, हमेशा सेगमेंट होता है जो कि हो ही नहीं पा रहा होता, वो लेट्स फिक्स इट है. आज देख लेती हूँ मैं कि क्या लेट्स फिक्स इट में हमने आज बात करनी थी. तो बेसिकली आज का जो हमारा मैंने रखा हुआ था सिलसिला ये था सेल्फ डिसिप्लिन, स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स. इस हवाले से हमने बात करनी थी. तो ये डिसिप्लिन बिल्डिंग के हवाले से है बेसिकली. और इसमें जो है अगर देखा जाए कि आपने किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप एक तो सबसे पहले अपनी रूटीन को मेंटेन करते हैं कि आपने एक सोने जागने का टाइम बनाना है. इस हफ्ते मेरा बड़ा मिस हो रहा है भाई, मतलब सैटरडे को तो खैर होता ही होता है, मसला वो बनता ही है, लेकिन कल भी कुछ थोड़ा सा ऐसा अनफोर्सीन हो गया जिसकी वजह से कल जो है वो रात को मैं नहीं सो पाई हूँ और मैं मुश्किल से मेरा ख्याल से 3.5 घंटे सोई हूँ आज. तो थोड़ा उसकी वजह से भी ना मतलब थोड़ी आपकी रूटीन ख़राब हो जाए तो बड़ा मसला होता है, आपका डिसिप्लिन कायम नहीं रह पाता. तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी नींद को प्रॉपरली रखें, अपने वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, सबसे पहले तो भाई ये चीज़ है. उसके अलावा फिर आपके और भी जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन वो ये कि आपकी लाइफ में मददगार साबित होती हैं कि एक तो आपने कोई भी जो भी हैबिट स्टार्ट की है ना, अगर डिसिप्लिन की बात करें, किसी हैबिट की बात करें, तो वो हैबिट आपकी चाहे छोटी सी है लेकिन कंसिस्टेंट होनी चाहिए. छोटी सी हैबिट से शुरू करें, कुछ भी अगर आपने एक डिसिप्लिन रखना है, जैसे मैं सोने की बात कर रही हूँ तो इससे शुरू करें, लेकिन आप कोशिश करें कंसिस्टेंट रहें. ये नहीं कि फ्राइडे और सैटरडे रात को देर से सोए तो फिर आपको अगले दिन उठने में मुश्किल हो रही होती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है. इसके साथ ही हमेशा जो गोल्स हैं वो अपने रियलिस्टिक आपको रखने चाहिए. इस तरह के गोल्स हों जो ईजिली अचीवेबल हों, ये ना हो कि ऐसे मतलब ना वो वाले जो होता है क्या कहते हैं उसको, ऐसे वाले ख्वाब देख लिए जो कि पूरे ही नहीं हो रहे, वो बिल्कुल इतने बड़े बड़े आपने प्लान बना लिए कि पूरे ही नहीं हो रहे, तो ये नहीं करना. इसके अलावा आपने मोटिवेशन के लिए सिर्फ वेट नहीं करना बल्कि आपने फौरन से पहले एक्शन लेना है किसी भी चीज़ के लिए. मतलब समझिए, अगर आपने एक्सरसाइज करने का सोचा है कि आपने एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, तो ये नहीं कि आपको कोई मोटिवेशन मिलेगी, कोई बंदा मिलेगा, कोई रोल मॉडल मिलेगा तो जब भी आप ये शुरू करेंगे. आप छोटी छोटी सी हैबिट्स खुद से शुरू कर सकते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की भी वॉक कर ली, लेकिन ये कि करनी चाहिए, थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए. इसके साथ ही अपनी जो भी प्रोग्रेस है, जो भी आपने छोटी मोटी चीज़ जो शुरू की है, कोई नई तब्दीली लेकर आए हैं आप, उसको मुसलसल मॉनिटर करते रहें, प्रोग्रेस अपनी चेक करते रहें और उन छोटी छोटी कामयाबियों को भी आप सेलिब्रेट करते रहें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमेशा याद रखिए कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से कि आप कितने ज़्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं अपनी आदतों में, क्योंकि छोटी छोटी जो स्मॉल हैबिट्स होती हैं वो अगर

0: सकती हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब मैसेज था आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना, तो आपको अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी ऐसी हैबिट्स लेकर आना पड़ेंगी जिसके नतीजे में मिलते हैं बहुत ही बड़े बड़े रिजल्ट्स। अगर आप देखें मतलब बच्चों के हवाले से अगर हम बात कर लें ना, तो बच्चे अगर अपनी रोज़ाना की रूटीन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ आधा घंटा पढ़ने की आदत डाल लें, जो वो स्कूल से पढ़ कर आए हैं वो थोड़ा सा रिविज़न कर लिया आके, और आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ एक नज़र डाल ली कि क्या क्या पढ़ा था आज, क्या क्या हुआ था। तो कहा यह जाता है कि हम एक दफ़ा जो चीज़ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अगर हम उसी चीज़ को उसी दिन दोबारा से एक रिविज़न दे देते हैं, उस चीज़ को दोबारा से एक मौका देते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर होने का जो इम्कान है ना, वो तकरीबन 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे, तो उनको बहुत ज़्यादा ना बहुत लंबे लंबे टास्क ना दिया करें कि तीन तीन घंटे चार घंटे बैठ के पढ़ते ही रहोगे। अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप की तरफ से ही प्रेशर होता है कि क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने बैठ जाओ, मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि वैसे भी वो 20-20 मिनट्स का जो एक रूल है ना कि आप 20 मिनट्स पढ़ें 20 मिनट्स ना पढ़ें, वो बहुत ही कारामद साबित होता है। 20 मिनट्स के बाद कहा जाता है कि हमारा दिमाग प्रोसेस करना छोड़ देता है, तो बस 20 मिनट्स पढ़ लिया, फिर अगर थोड़ा सा 10-15 मिनट और कोई चीज़ देख ली, दैट्स इट। इतना रखना है, कम लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको। अगर आप बरकरार रखेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर आधा घंटा अपनी स्टडीज़ को देंगे, तो डेफिनेटली आपकी बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी तरीके से घर का कोई भी काम है, किसी तरह का कोई मामला है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मैंने अक्सर घरों में देखा है कि मामलात क्या होते हैं कि सफाई वगैरह होती है वीकली बेसिस पे होती है, लेकिन फिर होता ये है कि वो वीकली बेसिस पे हुई और फिर पूरे हफ्ते जो है ना कुछ भी मतलब नहीं किया जा रहा। तो अगर आधा घंटा भी आप अपने घर को थोड़ा प्रॉपरली दे देते हैं ना, खाना बनाने के दौरान, उन सब चीज़ों के दौरान, तो आपका घर मेंटेन रहता है, चीज़ें सही रहती हैं, अप टू डेट रहती हैं। खैर जी, आगे कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। हमें आपके
0: शहजादा सलीम, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी आया मैं, अभी बैठा।
0: अच्छा,
1: तो फोन किया, हाँ ट्विन ऑन किया, तो आप चल रहे थे स्टेटमेंट सारे कुछ।
0: मैंने कहा चलो भाई इसको भी लिफ्ट कराई थे, अभी जब तक कोई कॉलर नहीं आ रहा है तो हमारे पास मौका है। ये वाला सेगमेंट मैं रोज लेकर आती हूँ, रोज इसमें मेरे पास चीजें होती हैं लेकिन शेयर नहीं हो पा रही होती क्योंकि टाइम नहीं होता। अच्छा जी, शहजादा सलीम, तो भाई पहले तो ये बताएं सुबह का आगाज कैसे हुआ, कितने बजे हुआ?
1: सुबह 3 बजे।
0: हाय हाय, 3 बजे हो गया
1: क्योंकि आजानी है 3:15 पे, मतलब वो है।
0: अच्छा, फौरन उठ जाते हैं जैसी अजान होती है, उसी वक्त उठ जाते हैं आप? हाँ, माशाल्लाह।
1: ये कंपाउंड के अंदर मस्जिद है ना कैंप के, तो उस पे माइक पे अजान होती है ना, तो आग खुली जाती है।
0: अच्छा, खुलती तो मेरी भी है लेकिन मैं थोड़ी देर लेटी रहती हूँ, खुल तो मेरी भी जाती है, आवाज आती है माशाल्लाह, लेकिन ये कि आंख खुलती है रोज आना, लेकिन फिर मैं कहती हूँ थोड़ा सा सोकर उठती हूँ ना, बस अभी तो टाइम है, ये वाला सिलसिला है, तो उठ जाते हैं माशाल्लाह फौरन। गुड।
1: कभी कभी होता है ऐसे अपना, कभी मतलब अभी थोड़ा 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट में मालूम पड़ा कि दूसरे मतलब है ना जमात खड़ी हो रही ना, तो वो आवाज आना शुरू हो गई, तो भागम भाग शुरू हो जाता है।
0: माशाल्लाह, जमात के साथ आप फजर पढ़ते हैं, ग्रेट, वेरी नाइस, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जबरदस्त। तो ये सिलसिला तो 3 बजे से माशाल्लाह से उठे हैं, ग्रेट।
1: हाँ, 3 बजे से उठे क्योंकि वो ड्यूटी लग जाती है ना, क्योंकि शेड्यूल चेंज हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जो ऑपरेटर्स वगैरह है उनको सुबह 4 से स्टार्ट है, तो 10 बजे ब्रेक लेंगे, फिर 3 बजे फिर जाएंगे, तो 10 से 3 वाला ब्रेक होता है ना, बाहर काम करने का अलाउड नहीं है, मेरा पिक एंड ड्रॉप रहता है ना उसमें, तो इस तरह से काम शुरू रहता है अपना गर्मियों में। तो
0: आपसे सवाल ये किया है कि अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है, और क्या कुछ ऐसा है उससे रिलेटेड कि उसमें आप इमोशनल हो जाते हो और बिल्कुल ही मतलब ना कभी भूल ना पाते हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी?
1: नहीं हो पाई है अभी तक, तो जहाँ तक नहीं हो पाई है।
0: चाहते क्या है, क्या चाहिए हो, कौन सी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी जिसको आप कहेंगे ये वाली है?
1: हाँ, एक्चुअली इमोशनल और इसमें यानी दीन और दुनिया दोनों है ना, तो जब से मैं इसमें जमात में ज्वाइंट हुआ ना, पब्लिक के काम में ना, तो जमात में आते

0: के जाते हैं ना, तो काफी कुछ है ना सीखने को और सुनने मिलता है ना। तो बताते सबसे बड़ी कामयाबी है ना हमारी ये कि हम है ना ये कलमा हमारे इसमें कर ले हमेशा के लिए, इत्तेफाक कर ले ला इलाहा इल्लल्लाह पे है ना। तो बस हमारी कामयाबी यही है कि हमारे सारे तरीके ना अंबियाओं के नबियों के साहबियों के ना सारे हमारी जिंदगी में आ जाए, तो ये कामयाबी है। तो ये सब मतलब मैं जब से मतलब ज्वाइंट हुआ हूँ ना, तो फिर मैं अपने आप को मैं टटोलता हूँ कि यार हमने क्या हासिल किया दुनिया में आके, क्या हासिल किया। हाँ, एक तौर पे देखा जा सकता है कि एक खुशी के तौर पे, एक अरमान के तौर पे, एक जो वक्त ही है, एक वक्त ऐसा बेहतरीन से बेहतरीन आया कि फैमिली थी, फैमिली के साथ गए, बाय फ्लाइट ट्रैवलिंग किया, उमरा किए साथ में, मक्के में रहे, तवाफ साथ में किया, मदीने में जियारत हुई, तब बाय कार ट्रैवलिंग हुई सऊदी अरब में, टोटल ही पहले मैं सऊदी अरब में था ना। तो ये एक मतलब अरमान पूरी हुई है, खुशी मतलब उसको मतलब अरमान कहा जा सकता है, ख्वाहिशात मतलब पूरी। लेकिन जो कामयाबी है ना, जो अच्छा मतलब अचीवमेंट है ना, वो तो नहीं अभी मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है ना, नहीं कर पाया अभी। मतलब करना चाहिए अपने आप को, मतलब उस तरह से ना हम लेके आना चाहिए, उतना ढालना चाहिए। तो मतलब हाँ, ताकि मतलब आखरत भी उस तरह से हो ना, आखर यानी इतनी बेहतरीन मतलब आखरत हो ना, तो फिर बाद में जाएंगे हम जो कायनात के मालिक के पास, ये उसको हम मतलब उस तरह से हम उसको अपने आप को प्रेजेंट करें ना कि भाई कुछ लेकर आया ये। तो कामयाबी में वहाँ मतलब अभी है ना ढूंढना शुरू किया जब से मतलब मेरा
1: कितना अरसा हो गया आपको जमात के साथ?
0: अभी तकरीबन हाँ 1 साल
1: हुआ है, तकरीबन 1 साल हुआ है। सही सही, गुड, जबरदस्त। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला किसी को भी दीन की तरफ लेकर आ जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और सर आपकी बात से ना मेरे जहन में आ रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया, कि जब उनको मतलब उनको जब जख्मी किया गया था उसके बाद फिर जब वो शहीद हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज मैं कामयाब हो गया, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को वो कामयाबी दिखाए, लेकिन उसके लिए तो मतलब जिंदगी गुजरेगी ना, तो फिर ही मतलब वो पता चल सकेगा वो एहसास, अल्लाह करे।
0: एक एक ऐसे ऐसे बयानात मतलब सुनाते हैं ना, जब अर्श पे जाने के बाद जिसका जिस हिसाब से मतलब आमाल होगा ना, तो जो बेहतर से बेहतर होगा, अगर वो उसकी मगफरत होगी, अगर वो जन्नत फिरदौस में होगा, तो जन्नत में किसी भी एक कौन से भी एक ऐसे हिस्से में होगा, तो उसका तो कोई डिमांड भी नहीं कर सकता, तो वो बंदा बोलेगा यहाँ से मेरे को जो बहुत पहले आना चाहिए था, मैं क्या कर रहा था इतना दुनिया में। और जो बेचारा मतलब मिस कर गया, सारे कुछ मिस कर गया, वक्त था, टाइम था, सारा कुछ था ना, तो वो तो नुकसान खसारे में रह गया ना, तो वो फिर अफसोस करेगा।
1: बस अल्लाह हम सब लोगों को महफूज रखे वाकई इस बात से, कि अल्लाह ताला हमें उस खसारे से महफूज रखे इंशाल्लाह ताला।
0: तो कामयाबी ना असल में मतलब वहीं पर है। हाँ, यहाँ फैमिली है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बाय डे बाय और वक्त के हिसाब से ना हर चीज है ना एक्सपेरिमेंट होती है, फिर आती चले जाती रहती है, आती भी जाती
1: है। आपकी एक बड़ी कामयाबी, आपने अपने बेटे को यहाँ पे बुलाया, आपका बेटा आ गया है ना, ये बड़ी कामयाबी है।
0: और वो एक उसका एक करियर, एक फ्यूचर है ना, फिर भी एक मेरा एक मतलब सपना था, मतलब उसको और फील्ड में डालने का था ना, मतलब स्पोर्ट्समैन था ना वो अपना, तो कोरोना ने सारा कुछ खा गया उस टाइम पे, कोविड में ना बड़ा खतरा हुआ उसमें भी, तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ। आशा कि उसको क्रिकेटर के लिए ही मतलब ये करना था, और मेरा बुलाने का मतलब भी यहाँ था, यहाँ भी बहुत अपना इंडियन आइडियल स्कूल में एकेडमी में ना यहाँ वहाँ थोड़े से हाथ पैर मारे, लेकिन जो फाइनेंशियली है ना सपोर्ट कहीं से नहीं था, और इतना मेरे पास हो भी नहीं पाया, तो फिर वो भी अधूरे रह गए, तो कैसे उसको बोल दो ना कामयाबी हुआ। लेकिन बहरहाल जैसा भी है कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल एक सेंसिबल तो हो गए।
1: हाँ, ये तो असल बात है, असल चीज ये है। एग्जैक्टली, असल चीज ये है कि आपकी औलाद रिस्पॉन्सिबल हो, आपका ख्याल करने वाली हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
0: जी, उसका एक अपना एक मिजाज और जो अपना स्टाइल जो है ना वो रहने का, किस तरह से लोग यहाँ पे कैसे क्या स्ट्रगल करते ना, तो अपने आप को प्रिपेयर किया, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया, और सारी कुछ है ना। हाँ, तो बस यही मतलब इसी को मतलब ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये कामयाबी है, जो देने वाला अल्लाह ही कामयाबी देने वाला है।
1: और बस आपकी वो वाली जो कामयाबी आप जो एक्सपेक्ट करें अल्लाह ताला वो हम सब लोगों को दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चले जी सलीम, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना।

0: थैंक यू लाफिज। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और मतलब उन्होंने, लेकिन मैं सवाल दोबारा दोहरा दूं ताकि लोग जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपने ये बताना है कि जिंदगी में अब तक की आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, ठीक है, और कोई भी इमोशनल मोमेंट अगर से जुड़ा हुआ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत, क्या बात है और कैसे हैं नूर मोहम्मद मंसूर साहब आप? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर रिसीवर को अपने करीब कर लें फिर बात करें।
1: बात ये ना, अभी मैं जा नाश्ता खा रहा हूँ, आरबी का घर है ना, अभी ऐसे नहीं बोल
0: सकता। अच्छा, ऊंचा
1: नहीं, अभी भी बाहर में हूँ।
0: सही हो गया जी। तो कैसी हुई सुबह, कितने बजे? 3 बजे आपकी भी हो गई?
1: मैं तो 1:40 का उठा, 12 बजे सोया।
0: आए हाय हाय, ये वाले हाल
1: है। देख रहा था ईरान का,
0: मतलब बहुत
1: ईयर सोया और 1:40 का उठा।
0: अच्छा अच्छा, सही
1: ड्यूटी है,
0: ड्यूटी आ गए। सही है सही है जी। तो नूर मोहम्मद मंसूर, अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मिल गई?
1: वो तो मिल गई, लेकिन जो मैं सोचा था वो अभी पूरा नहीं हुआ।
0: अच्छा, क्या मिल गया और क्या चाहिए था जो नहीं मिला?
1: मेरा वो पहला चाहिए था कि जैसे मेरा हालात था, मेरी माँ बाप ने मेरे लिए जितना कोशिश किया, मेरे माँ बाप से जो नहीं हो पाया, तो मेरा माँ बाप मेरे ऊपर मतलब विश्वास किया। वो अपना जो होता है ना, अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर बोलना भी करा मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो अपना जो जेवर जरात होता है वो रख के मुझे परदेश भेजा, फिर उसका ख्वाहिश था कि घर बना के दो, मैं उसमें सुकून से रहूँ, वो कम्प्लीट हो गया। और मेरा ख्वाहिश ये है कि जो मेरा बच्चा है, जैसे हमारा हदीस में बीएसएफ ने फरमाया है, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षित, मतलब पढ़ाई लिखाई और अच्छे घर में मतलब शादी उदी कर दे, वो बेहतरीन इंसान होता है। तो मेरा ये अभी तक पूरा नहीं हुआ।
0: ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने एक चीज तो कर दी, अब दूसरी चीज बाकी है। तो वो माशाल्लाह से, मतलब आपने अपनी वालदा के लिए घर बनाना था, वो आपने बना दिया, तो बिग अचीवमेंट भाई, बहुत जबरदस्त। खुश हुई थी वो?
1: ये है ना कि जो मैं घर बनाया, उससे पहले मेरा जो अब्बू था, उससे पहले वो इंतकाल कर गया।
0: पता है नूर मोहम्मद मंसूर साहब, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में ना हमें कोई चीज कभी भी मुकम्मल नहीं मिलती, हर चीज अधूरी मिलती है। हमेशा यही होता है कि जो हमें चीज चाहिए होती है, हाँ ऐसे ही है। तो चीजें इसी तरह से होती हैं, मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं कोई कसक होती है।
1: और भाई का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, वो फर्स्ट कॉलर थे।
0: जी जी जी जी।
1: तो उसी से मैं भी रिलेट रखा कि मेरा भी यही ख्वाहिश है कि जो मेरे बच्चे है अच्छे से कर ले और अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए
0: इंशाल्लाह। अल्लाह उसकी नसीब बहुत अच्छे करे इंशाल्लाह ताला, शादी भी हो उसके बाद अल्लाह उसकी नसीब बहुत अच्छे करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे लोग मिले उसे।
1: चलिए ठीक है,
0: चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप छोटे कॉलर नहीं, आप मुख्तसर बात करने वाले कॉलर है। चले जी, थैंक यू नूर मोहम्मद मंसूर, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो नूर मोहम्मद मंसूर और इनकी ज़िंदगी की एक अचीवमेंट तो इनके साथ मतलब हो गई है, इनको मिल गई है, इन्होंने अपना घर बना लिया है, लेकिन दूसरी अचीवमेंट बाकी है कि इंशाल्लाह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छी तरीके से अपने घर का कर दें। तो इंशाल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी करे, इनको ये वाली कामयाबी भी मिले। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, तो नहीं ब्रेक की तरफ, सिर्फ एक ब्रेक की तरफ, ठीक है। वापस आती हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि अब तक की आपको सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी मिली है, और इसके साथ ये कि कुछ इमोशनल मोमेंट वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अभी चलते हैं एक ब्रेक पे।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
0: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समुंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के

500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार।

0: ट्रेंड करने लगे, हमारी ये बड़ी सोच बनती जा रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छी जी, बात जी. लगी आपकी कि मतलब अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी तक तो पहुंचे ना, और उसके बाद माशाल्लाह पीएचडी कर रहा है वो.
1: खैर अभी हमारे दूसरे बाकी जो बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे मेरा एक बेटा है वो पहला वाला जो उसको तो कैंसर था बड़ा वाला, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे. लेकिन उसके बाद जो दूसरे उनको इतना शौक है, वो हम लोग ये कोशिश करते कि मेडिकल, वो बोलते मेडिकल में क्या है, आप लोग मुझे छोड़ दो, मैंने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह. वो अभी जर्नलिज्म, उनको बहुत जर्नलिज्म का बहुत शौक है. तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, वो बोलते मैं पीएचडी करूंगा इंशाल्लाह इसमें भी. सारे बच्चे एक दूसरे को देख के ना ऐसे वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं. अच्छा इधर एक बात मैं और भी शेयर करूं कि हमारे मेरे जो अपने बच्चे, मैं आपकी अपने बच्चों की बात करूं, मेरी बेटी उनको सिलाई कढ़ाई पूरी सब मालूम है, और उसने माशाल्लाह घर में अपनी माँ से सीखी हुई है ये चीजें. और फिर उसने सिर्फ एक महीना उधर मर्दान में एक यूनिवर्सिटी है टेक्निकल, उसमें सिर्फ एक महीने उसने सिर्फ अटेंडेंस लगाया हुआ था. फिर उनको उसका जब टेस्ट हुआ तो उसने सर्टिफिकेट भी उधर से लिया माशाल्लाह. फिर उसको ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज, वुमन यूनिवर्सिटियों की जो चांसलर्स थी और प्रोफेसर, ये सब पेशावर में एक सेमिनार था उसमें गई थी, और जो उसने खुद बनाए थे यानी कपड़े और या चादर जो भी बनाए थे वो उधर दिए शो के, माशाल्लाह ये फर्स्ट पोजीशन इसने लिया, और उसको एक सर्टिफिकेट उधर से भी मिला.
0: वेरी नाइस.
1: एक और ये बात, और घर में आप यकीन करें कि सुबह एक अलग क्लास और शाम को अलग क्लास, बच्चों की, ये बच्चियों के छोटी छोटी बच्चियां जो है उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ ला के कि जो पढ़ती है उनको पढ़ाती है, और जो पढ़ती नहीं है उनको ये सिखाती है ये सिलाई कढ़ाई.
0: वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त.
1: ये मेरी बच्ची
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आपकी ये बच्ची है ना तो इस पे तो मतलब सबका प्राउड बनता है भाई, सब लोगों को प्राउड होना चाहिए.
1: अच्छा एक और इधर बात कि वो जो दूसरा बेटा है वो माशाल्लाह सुबह में तो वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो शाम को क्या करते हैं जो बच्चे खेलते हैं वो गलियों में खेलते हैं. हम लोग ऐसे कि देहात एरिया में, देहाती एरिया, जो बच्चे खेलते हैं उनको पकड़ के वो लाके, सॉरी मैं,
0: नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी,
1: उनको लाके बिठाते हैं अपने वो हमारे एक हुजरा होता है मजलिस ऐसे बड़ा हुजरा होता है उसमें, और बच्चों को पढ़ाते हैं.
0: वेरी नाइस.
1: वो ऐसे नहीं कि उससे कुछ ले ले या वो बोलते नहीं आप लोग पढ़ो, वो किसी भी क्लास में हो उनको बोलते आ जाओ पढ़ो. तो इसलिए वो जो हमारी पूरी एक फैमिली है उधर गांव में, हम ऐसे तो सब उनसे खुश भी है, और सब ये बोलते हैं कि ये देखो बच्चों को पढ़ाना और सिखाना ये सब. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कुछ भी नहीं हूँ तो ये इसकी वजह से मैं बहुत कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे फखर
0: माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपको बहुत फखर होना चाहिए, और मुझे पता है किस बात पे फखर हो रहा है और खुशी हो रही है कि हम अमूमन देखें ना, हमारे यहाँ भी लोग ये बातें कर रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन हम अपने तौर पर कोशिश नहीं करते. तो आपके यहाँ मुझे माशाल्लाह ये सोच नजर आ रही है, और अगर हर घर में जी जी
1: गवर्नमेंट का कसूर नहीं है इसमें, गवर्नमेंट ने बना के दिए हुए है, लेकिन हम लोग खुद नहीं जा रहे, हम लोग खुद नहीं जा रहे. अगर हम खुद जाए, देखो हम पैसे किस चीज पे लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, हम गाड़ी पे लगाते हैं, हम शादियों पे लगाते हैं. अगर हम ये सोचे कि ये जो पैसा है ये बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, वो घर भी है, वो गाड़ी भी है, वो जायदाद भी है, वो सब कुछ है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते. और मैंने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि मेरा घर अच्छा हो, मैं ये हो, मैं कहता हूँ कि हम कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन सोच कच्चा नहीं, सोच पक्का है.
0: जबरदस्त जबरदस्त खातिम भाई,
1: ये बातें इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को अपने आप को ऐसे थोड़ा सा वो नहीं,
0: ये बड़ी जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये मोटिवेशन है, ये आपकी तरफ से जो लोगों को मिलेगी ना इससे बड़ी किसी को कोई समझें कि सीख नहीं मिल सकती अगर कोई सीखना चाहे.
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें सॉरी बस लास्ट बात खत्म करना चाहूंगा, ये उसमें ये कि मेरी बेटी ने ऐसी लड़कियों को जो अभी शादी उनकी हुई है उनसे बहुत बड़ी थी, और उनको भी लाके घर में बैठा के उनको सिखाया सिलाई कढ़ाई सिखा के, वो दूसरे गांव में उनकी शादी हुई है तो वो भी माशाल्लाह उधर अपने घर में अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए वो उस पे सिलाई मशीन से वो कपड़े और ये सब बना सकती है.
0: माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट भाई, मतलब अगर मैं इंटरव्यूज कर रही होती ना तो आपकी बेटी का जरूर इंटरव्यू करती.
1: वो आई थी, वो आई थी, आई थी एक महीना गुजार के गई, फिर माशाल्लाह बहुत खुश थी इधर, लेकिन अभी ये ऐसा है कि वो इंशाल्लाह अप्लाई किए हुए इधर कतर यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं।

0: रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: Ready, right? Welcome back. आप सुन रही हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान, और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और मेरे पास मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज। मैं आपको बताती चलूंगी, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की म्यूजिक अफेयर सेंटर्स ने वर्ल्ड म्यूजिक डे, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और इस मौके पे खास एक मैसेज दिया है। इस मौके पे सेंटर ने इस बात को दोबारा जोर देके कहा कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ती है, हेरिटेज को जिंदा रखती है, और मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान कल्चरल डायलॉग को फ़रोग देती है। और इस आलमी दिन का मकसद म्यूज़िक की उस कुव्वत को हाईलाइट करना है जो सरहदों, ज़बानों और जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ती है। म्यूज़िक सिर्फ तफरी का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो माशरों की आइडेंटिटी, हिस्ट्री और सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। और म्यूज़िक अफेयर सेंटर के डायरेक्टर हैं जो खालिद अल सलीम, इन्होंने कहा कि म्यूज़िक इंसानी सकाफत का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा म्यूज़िक जज्बात को बयान करने, कम्यूनिटीज़ पर असर डालने और मुख्तलिफ कौमों के दरमियान समझ और कुर्बत पैदा करने की सलाहियत रखता है। और उनके मुताबिक म्यूज़िक एक ऐसी ज़बान है जो अल्फाज से आगे निकल कर सीधा दिल तक पहुंचती है। तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया गया कल दुनिया भर में और यहाँ पे भी, और इसके साथ ही मतलब ये म्यूज़िकल क्रिएटिविटी को सपोर्ट, नए टैलेंट को नर्चर और म्यूज़िक को कल्चरल एक्सचेंज का ब्रिज बनाने के लिए भी मतलब ये कहा गया कि यहाँ पे ये सेंटर जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तो ये था सिलसिला, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। साथ ही आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं तो वो मैं शामिल कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहला मैसेज 433 पे आया था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और इन्होंने जो है इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ अपना। अब्दुल्ला का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं अविश खान बहन, क्या हाल है, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा एक पश्तो गाने का रिक्वेस्ट किया, अगर आप चला दें तो अच्छा होगा। कौन सा अब्दुल्ला, कौन सा पश्तो गाना सुनना चाहते हैं? अगर मेरे पास हो गया तो मैं ज़रूर चला दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैंने 2010 से 2018 तक की जो मेरी कमाई है वो 64 लाख अराउंड मैंने अपनी माँ के इलाज में लगाया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके काम आया, ये सोच के सुकून मिलता है कि इससे बड़ा और कुछ समझ में नहीं आया, और उनकी दुआओं से मैं प्रोफेशनल फील्ड में बहुत मैंने अचीवमेंट की है। अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी दुआ साथ है। सही सही, मतलब ये भी वाकई बहुत बड़ी किसी औलाद के लिए, जेके नाम है इन्होंने, नाम इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो खैर ये किसी औलाद के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ही है कि वो अपने माँ बाप के इलाज में या उनकी उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो सके, उनकी किसी भी मुश्किल में, उनकी परेशानी में ये ना हो कि बेबसी के साथ खड़ा हो, बल्कि ये हो कि वो किसी पोजिशन में हो, तो ये भी वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ ही जी महविश खान बहन अस्सलाम वालेकुम, अलवकरा से तौफीक, क्या हाल है तौफीक भाई, आपके ठीक ठाक हैं। और इसके साथ अफरोसान चकवा कहते हैं आमीन सुमा अमीन, ये किस बात पे कहा था आपने ये बताएं। और इसके साथ ही जी सईद खादिम भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, महविश खान ढेर सारी दुआओं के साथ आता, आपका बहुत

0: बच्चों को। ओके अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। रई जी तो हमारे साथ थे भाई आशिक भाई, हमारे बहुत ही पुराने कॉलर हैं, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, सुनते हैं, वापस आते हैं। आप कॉल करना ना भूलिएगा हमें 4434377 पे, और एक अच्छा सा ट्रैक।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
5: आज ही राबता करें.
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
6: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
2: राइट, वेलकम बैक. हमारे साथ कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
7: अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग महविश.
2: गुड मॉर्निंग.
7: Ajay,
2: how are you?
7: Yeah, I'm fine. How are you, Mahvish?
2: Alhamdulillah. So, did you listen our question?
7: Yeah, I'm listening.
2: Biggest,
7: more than one
2: biggest
7: hour.
2: Achievement.
7: Yeah, achievement is I got a good job 7 years before.
2: Mm-hmm, good.
7: That is one of the biggest lifetime achievement in my life, and in this case, I built so many achievements.
2: Mm-hmm.
7: Like I build a house and I buy my dream car and so many dreams I fulfill.
2: Mm-hmm. Great, very nice.
7: It's one of the achievement in my life. Got a good job in Qatar.
2: Great. Good job, car, house, so many achievements, mashallah.
7: Yeah, still I'm 33 only. There are still so many pending achievements.
2: So are you married or not yet?
7: No, I'm married. I have one daughter, 2.5 years old.
2: Uh-huh. Great.
7: That's why I have so many achievements. Currently, all in line.
2: Great. It's very nice.
7: Inshallah, it will become going smooth only.
2: Mm-hmm. Inshallah.
7: Maybe one more thing.
2: Mm-hmm.
7: Now, recently, I'm listening more than 1 month. I cannot hear Ved's voice. Mm-hmm. There
2: actually, he left.
7: Oh, he left.
2: Hmm. Yes.
7: Okay.
2: Hmm.
7: Okay, Mavish, thank you.
2: Thank you so much, Ajay. Thank you for your call. Take care. Bye-bye. तो हमारे साथ अजय थे और इसके साथ ही हमारे अभी बहुत सारी कॉल आ रही थी, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से कॉल कर लीजिए 4434377 पे. और मैं साथ में ये भी देख लेती हूँ कि हमारे पास है कौन, मैसेज किसका है. अच्छा, खादिम भाई की बात कर रहा था या फरोसान चकवा आमीन सुमा आमीन जो उन्होंने बोला था उसका जवाब दिया. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
8: जी वालेकुम सलाम
2: जी.
8: कैसी हैं महविश खान साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं?
2: हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं?
8: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आज 3-4 रोज के बाद मेरी कॉल लगी.
2: हाँ तो कैसी गुजर रही है, पहले तो ये बताएं, पहले तो ये पूछना चाहिए. क्यों नहीं लग रही थी कॉल? सुबह नहीं कर रहे होंगे जल्दी आप कॉल?

0: नहीं, मैं ट्राई कर रहा था, पता ही क्या बैड लक। अच्छा। वो होता है, नहीं लग रही होती।
1: सही सही। तो ये बताएं भाई कि अचीवमेंट क्या है आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ा माशाल्लाह हासिल की डिग्री, बच्चों में भी जो से बच्चों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चे दो बच्चे हैं माशाल्लाह, एक तो कर चुका है इंजीनियरिंग, एक मेडिकल पढ़ रहा है माशाल्लाह।
1: माशाल्लाह
0: कर लेंगे इंशाल्लाह।
1: तो दो बेटे हैं आपके, राइट?
0: जी हाँ जी।
1: अच्छा अच्छा, हमारी था ना, मेरे भी दो बेटे हैं ना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: तो एक माशाल्लाह इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर, राइट?
0: जी हाँ जी हाँ। यस,
1: चले भाई, ये बड़ी बात है, मतलब एक ही घर में इंजीनियर भी है डॉक्टर भी है।
0: और उसकी वजह ये कि एक ने अम्मा का शोभा इख्तियार किया, एक ने अब्बा का शोभा।
1: ओए होए, जबरदस्त, मतलब किसी को वो नहीं किया, नाराज नहीं छोड़ा।
0: हाँ, बस अब पाकिस्तान लेवल पे यही शोभे रह गए और क्या है। दूसरे शोभों में इतना चार्म नहीं है जितना इन शोभों में है।
1: है तो खलील भाई, है चार्म तो है, लेकिन ये कि हम लोगों को अभी भी देखा जाए ना, मैं तुम्हें खुद भी बोलूं तो है कहीं ना कहीं दिमाग में ये वाली बात कि नहीं होना चाहिए, डॉक्टर तो होना चाहिए, ये इंजीनियर तो होना चाहिए, ये वाली तो चीज होती है हम लोगों के अंदर।
0: नहीं, इस कुछ भी हो, इन दो शोभों को ना चाहे हम
1: रिस्पेक्टफुली देखा जाता
0: करें, क्रिटिसाइज जितना करें, पर इस शोभे में ज्यादातर लोग का रुझान इन्हीं दो शोभों में होता है हमेशा।
1: हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही।
0: आप दूसरे तक है, मेरे फैमिली में कोई कॉमर्स में भी गया है, कोई आर्ट्स में भी गया है, पर प्रायोरिटी जो है ना इन्हीं दो शोभों में है, और ज्यादातर मेडिकल में।
1: ज्यादातर मेडिकल में, बिल्कुल ऐसे ही।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: गुड, जबरदस्त। मतलब कि बीवी डॉक्टर है माशाल्लाह।
0: जी हाँ।
1: अच्छा, ये आज पहली दफा पता चला?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो फैमिली में 22 डॉक्टर्स।
1: अच्छा, वाओ, ग्रेट, जबरदस्त।
0: हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राचा फैमिली जो है सक्कर से हमारा ताल्लुक है। सक्कर सिंध का शहर है।
1: जी जी बिल्कुल, मैं गई हूँ सक्कर।
0: वो जी हाँ, वो तो हमें डॉक्टर्स फैमिली के नाम से जानते हैं।
1: अच्छा, ऐसा है, सही।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह,
1: ग्रेट ग्रेट।
0: ऐसे थोड़ी 22 डॉक्टर्स को मजाक करते हैं। और ये बड़ा टफ शोभा है, ये नहीं है आप ये समझेंगे ये ऐसा ही शोभा है,
1: नहीं
0: बड़ा टफ शोभा है।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर बनना कोई मतलब आसान बच्चों का खेल नहीं है।
0: आसान काम नहीं है। जी
1: बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कहाँ से, ये बताएं, मतलब सक्कर से है ना, तो सक्कर में ही कहीं पढ़ा था या फिर कराची में तालीम हासिल की है?
0: सक्कर से फिर कराची आ गया ना।
1: इंजीनियरिंग के लिए। सही। और जो डॉक्टर्स हैं?
0: वो डॉक्टर्स तो फिर मुख्तलिफ जगहों, जिनका जहाँ मेरिट पे एडमिशन हो गया वो वहाँ चले गए।
1: सही सही सही, गुड, जबरदस्त।
0: कोई भावलपुर से पढ़ा, कोई लाहौर से पढ़ा, कोई इस्लामाबाद दिल्ली से पढ़ा। इवन मेरे एक कजन तो आर्मी मेडिकल से भी पढ़े।
1: अच्छा, सही सही।
0: जी हाँ,
1: सही सही,
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: गुड, जबरदस्त।
0: तो अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी पढ़ा वो हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों में भी वही देखा रुझान माशाल्लाह, बच्चों ने भी जो पढ़ा हासिल किया।
1: अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि माशाल्लाह सब लोगों की, जब मैंने अचीवमेंट का सवाल किया ना, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो आके जो अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई बता रहे हैं, ये एक बड़ी बात है।
0: नहीं, जरूरी है, जरूरी है। आजकल मैंने देखा है जो पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना, उनकी भी सोच जो है अब वो ये है कि बच्चे हमारे पढ़ जाए, हमसे ज्यादा पढ़ जाए।
1: सही बात है, बिल्कुल ऐसे
0: ही। ये बहुत अच्छी बात होती है, पेरेंट्स जो है ज्यादातर मैंने देखा है ये भी कि बहुत से पेरेंट्स अपने ही शोबे में, जैसे बिजनेस में है तो वो अपने बिजनेस में ही बच्चों को बिठा लेते हैं, बच्चों का रुझान नहीं देखते कि वो रुझान किस तरफ है। तो वो रुझान असल में बेस तो रुझान के ऊपर है ना, बच्चे का रुझान किस तरफ है।
1: सही बात,
0: ये चीज़
1: होती है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से नहीं था ऐसा कुछ कि मतलब मैं इंजीनियर हूँ तो तुम भी बनो, या मैं डॉक्टर हूँ तो तुम भी बनो, ऐसा नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: बच्चों ने खुद ही चुना।
0: जी हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इधर था भी नहीं। मैंने बताया ना, मेरी तो जॉब ही इधर थी पाकिस्तान में, SSGC में।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, सही सही।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: सही, गुड,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस जो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: रेडी राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान और हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम महवेश मैम, कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल हैं आपके? अच्छा सॉरी, वो जो वीडियो आपकी थी ना जो मैं कल तो देख नहीं पाई थी, अभी आपका मैसेज भी देखा, मैंने सोचा आपने कल भी मैसेज किया था कॉल का, तो मुझे अफसोस हुआ, फिर मैंने वीडियो भी देखी, वीडियो पे पता चला आपने यही कहा। मुझे अब पता चला वीडियो के बजाय आप उसी वक्त लिख देते कि कॉल कर लें।
3: और कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं।
3: हम तो बस अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अक्सर अभी यही हूँ आपके ऑफिस के पास में ही हूँ। मैं तो पता नहीं पाती है ना, कभी कभी जो है बिल्कुल किसी पार्किंग में, कभी किसी पार्किंग में, वो छोटी सी जो मस्जिद है ना उसकी पार्किंग में, मैं सोचता हूँ शायद कोई बंदा मिल जाए।
2: लेकिन
3: आप सुनाई कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है।
3: आपका मैं सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है ये, और सारे लोगों की फिर जो अचीवमेंट है वो पता चलती है कि लोग अपने लिए क्या क्या

0: नसीब में नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नसीब में था कि हमने अपनी वालिद वालदा को हज कराया और उनके साथ में हज किया।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: इससे बड़ी मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं थी। और दूसरा ये कि माशाल्लाह वो मैंने तो बेटी का आपको बताया हुआ है कि माशाल्लाह कुरान
1: बिल्कुल,
0: तो इससे बड़ी अल्लाह का शुक्र एहसान है उसको परवरदिगार का कि इससे बड़ी नेमत मेरे लिए कोई नहीं हो सकती।
1: क्योंकि माँ बाप को हज कराना ना, ये सीरियसली इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसके सामने वाकई मतलब बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन हर इंसान का ना अरमान होता है कि वो अपने माँ बाप को हज करवा सके, उमरा करा सके।
0: आप यकीन माने कि मैं जब सऊदी गया था तो मैं सोचता था कि अल्लाह कुछ ऐसा हिसाब कर दे कि वालिद वालदा को हज करा दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो बात सुनी भी और अल्हम्दुलिल्लाह कराई भी, और साथ में मैंने भी और मेरे छोटे वाले भाई ने भी हम लोग ने साथ में हज किया। इससे बड़ी हमारे लिए कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। वो सारी चीजें बाद में है, लेकिन वालिद वालदा की आप हज कराएं और साथ में जाएं। मैंने ये देखा है लोगों के पास दुनिया के अंदर बेहिसाब दौलत है, बेहिसाब दौलत है, लेकिन आप यकीन मानिए मैं स्वयं कहते हैं कि अल्लाह गरीब को बुला लेता अपने घर में और अमीर ऐसी रही जाता
1: है। सीरियसली मैंने देखा है ये, मतलब जब आप जाओ ना वहाँ पे तो कई लोगों को देख के अंदाजा हो रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से आए होंगे यहाँ पे, मतलब आपको पता चल रहा होता है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से वाकई या तो कोई हम लोग देखें कुवैत में हुआ करते थे तो, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हुआ उस वक्त के उमरा या हज के ऊपर, कोशिश की कई दफा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं हो सका। तो मैंने भी अपना जो पहला उमरा किया था ना वो मैंने अपनी अम्मी की डेथ के बाद ये सोच के किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये थोड़ा सा वो किया था कि तुम उनकी जगह उमरा कर सकती हो, उनकी जगह का भी, तो मुझे ये था बड़ा कि हाँ चलो मैं उनकी जगह, मतलब मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं अम्मी की जगह उमरा कर लूंगी। तो लेकिन आप खुद से माशाल्लाह से हज करा दो तो ये तो वाकई मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है,
0: बहुत
1: बड़ी बात है।
0: हमारे मामू चाचा वगैरह सारे लोग माशाल्लाह काफी टाइम सऊदी रहे, यानी कि अच्छी अच्छी पोस्ट पे, आप यकीन मानिए अच्छी अच्छी पोस्ट पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत हम लोगों को अल्लाह ने,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: यानी कि हम खानदान में हमारे माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा खानदान है, तो उसमें भी ये होता है कि नहीं वाकई में उन्होंने उन बच्चों ने अपनी माँ बाप को हज कराया, चाहे कुछ करा या नहीं करा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ करा।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त।
0: ये इससे अच्छी मेरे लिए कोई चीज नहीं है कि अगर वालिद का मेरे इंतकाल हो गया है, लेकिन इंतकाल भी ऐसा हुआ कि मैं उनको देख कर आया हूँ, डेढ़ महीना हुआ था और शायद रमजान का दूसरा या तीसरा रोजा था, और मजे की ये बात थी कि मैं वहां पर था, क्या कहते हैं मक्का में था, उमरे पे गया हुआ था मैं, इधर मुझे कॉल आती है कि ऐसे से हो गया पापा का, तो आप यकीन मानिए जिस टाइम उनका दफन हो रहा था मैं उस टाइम उमरा कर रहा था
1: सही
0: उनके नाम से, तो बस तो ये अल्लाह का शुक्र एहसान है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, कल फादर डे था, मैं मिस भी कर रहा था पापा को, लेकिन मैं ये चाह रहा था अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिस जिसके भी वालिद दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मगफरत करे,
1: आमीन।
0: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह ने ये ऐसा करा दिया।
1: नहीं वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, और मतलब अल्लाह ताला कबूल करे सबसे बड़ी बात, और माशाल्लाह कि मतलब ना आप लोगों को ये एक बड़ा एजाज मिलता है कि जब औलाद अपने माँ बाप के लिए इस तरह से करती है ना, तो एक वाकई बहुत बड़ी एजाज की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: मैं तो ये जानता हूँ, मेरी मम्मी है माशाल्लाह, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपने वालिद वालदा की
1: दुआएं लेनी होती हैं,
0: दुआएं लेनी है कसम से। इस टाइम दुनिया में आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, लेकिन जो माँ बाप दुआएं देते हैं ना, शायद करोड़ों रुपए भी आप देंगे तो कोई दुआ नहीं।
1: सही बात है। और पता है क्या, जैसे अभी मैं कल एक पोस्ट देख रही थी, एक हमारे एक सेलिब्रिटी है, उनका माशाल्लाह से बेटा हुआ है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी, मुझे उनका पोस्ट बड़ी अच्छी लगी। पोस्ट पे उन्होंने लिखा था कि मतलब जब से तुम आए हो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हर तरह की मुश्किल हर परेशानी से बचा लूं, मुझे पता है कैसा नहीं होगा, तुम्हें जिंदगी में मुश्किलें भी देखना पड़ेंगी, तुम जो है ना किसी कई मौके आएंगे, गम भी देखोगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन बाप का दिल चाहता है ना कि ये सब कुछ हो, तो मैं उस पर यही सोचती हूँ। मैंने कहा देखो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि ये भी अब इस तरह से भी लोगों को सोचना स्टार्ट करना चाहिए कि ये वाला जो है ना, मतलब आप जहन में रखो कि इनके ऊपर मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन कहे में किस बात से रही थी ये बात कि जब आपके साथ माँ बाप की दुआएं होती है ना, तो मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल में सुकून भी देता है, और अगर आपने माँ बाप की दुआएं ली हुई होती है

0: ना, तो अल्लाह ताला आपको उन चीजों से निकाल देता है।
1: जी बिल्कुल। मैं तो मैम आप यकीन मानिए काफी टाइम थोड़ा परेशान रहा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान रहा, लेकिन अल्लाह ने कहां से कैसे उसका हल कर दिया कसम से मुझे नहीं। अब यकीन मानिए कि अगर मैं थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो वालदा से मैं माशाल्लाह रोज ही बात करता हूँ, चाहे भले 2 मिनट करूँ या 5 मिनट करूँ, लेकिन रोज ही बात करता हूँ। तो वो सबसे पहले मुझसे यही पूछती है, ये वालदा की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि भैया तुमने खाना खाया नहीं खाया, ड्यूटी में हो, गर्मी ज्यादा है, अपने पानी का ध्यान रखना। एक माँ ऐसी शख्स है कि वो कभी आपसे नहीं पूछती कि भैया तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा।
0: आपको भैया बोलती हैं वो?
1: नहीं, वैसे तो मुझे बेटा बोलती है, मैं आपको बता रहा हूँ।
0: नहीं, मुझे इस बात पे मैं हंसी थी क्योंकि मेरे पापा को ना मेरे दादा दादी और पूरे खानदान वाले भैया बोलते थे, तो मुझे इस बात पे हंसी आई।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया भी बोलते हैं भैया अपना ख्याल रखो, ऐसा है तुम वहाँ पर रखो। ये एक माँ की, मैं आपको मोहब्बत की बात बता रहा हूँ।
0: आपने कहाँ से बताया था नदीम भाई, आप कहाँ से? इंडिया से?
1: इंडिया में रामपुर एक जगह है,
0: रामपुर से। अच्छा, मेरी दादी जो है ना मेरी, वो रामपुर की नहीं कानपुर की थी बेसिकली, तो मे भी हो सकता है। हाँ, कानपुर की थी। तो आपके मुझे उससे भैया से ख्याल आया कि हो सकता है इसलिए उन्होंने भैया बोलना शुरू कर दिया, उनका नाम ही पड़ गया था भैया। सही सही, गुड, जबरदस्त।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनके भी माँ बाप है उनकी दुआएं लें वो, एक ये भी समझ लिए कि जिहाद के बराबर है। अगर आपको अपनी वालदा वालिद का ख्याल रख रहे हैं तो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जिहाद में न जाओ, अपनी माँ का और बाप का ख्याल रखो, इससे बड़ा जिहाद तो ये।
0: बेशक, ऐसे ही बेशक।
1: तो माँ बाप की दुआएं लोग लें वो बेहतर है, क्योंकि आजकल हम लोग इतने बायस हो गए कि सिर्फ अपनी शादी होने के बाद सिर्फ अपनी फैमिली को देखते हैं कि मेरी बीवी क्या करे, क्या खाए, कैसे पहने,
0: दोनों जरूरी है, बेसिकली बैलेंस जरूरी है।
1: अपने माँ बाप को भी यही बात समझे कि नहीं ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: हम लोगों को इतना बड़ा
0: मुझे, हमारे जी मेरे तो जैसे अम्मी पापा नहीं कर सके, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मी को उमरा करवा दिया था उनके इंतकाल से पहले। मुझे उस वक्त याद है कि वो इतने खुश थे कि मैंने अपनी अम्मी को उमरा करवा दिया। मतलब ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, वो एक होता है ना, बंदे को बहुत खुशी होती है।
1: मैम ये इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है कि आप हज के लिए इरादा करें और अल्लाह वो काम पूरा कर दे। और यानी कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये आपको बताया ना कि लोगों के पास करोड़ों रुपए है, वो लोग हज पे नहीं जा सकते।
0: बिल्कुल।
1: मैं सऊदी में था, सऊदी में मैं 17-18 साल रहा हूँ, 17 साल रहा हूँ। तो वो जो मेरी कफील थी वो माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि साल में 3-4 दफा वो जाती थी उम्रे पे। तो हम लोग उनके साथ ही रुकते थे, 8-10 दिन ऐसे रुकता था। तो माशाल्लाह मैं दो तीन उम्रे के जरूर करता था।
0: माशाल्लाह, जबरदस्त।
1: तो जिस होटल में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहाँ पर वो मैं नाम तो लेना चाहता, आप समझ जाएंगी वहाँ के। तो मैनेजर थे, तो मैंने एक दिन ऐसे उनसे कहा कि यार इतने खुशनसीब इंसान हो तुम के माशाल्लाह बिल्कुल हरम के सामने, और हरम भी कितनी दूर। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अकामत हो और आप वजू बना के जाएंगे तो आपको रकात मिल जाएगी। अब आप समझ लें कितनी दूर होगा। तो मैंने कहा यार आप माशाल्लाह हरम में नमाज पढ़ते हो, उम्रा करते हो। तो उसने मुझसे एक ऐसी बात कही, कसम से मैं आज तक इस बात को कम से कम 10-15 साल हो गए मैं भूला नहीं हूँ, कि उसने मुझसे ये कहा कि यार मुझे 15 साल हो गए आज तक मैं हरम के अंदर नहीं गया। अब आप बताइए
0: क्यों?
1: बस अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी होगी।
0: सही।
1: मैं आपको कसम से ये बिल्कुल रियल बात बताता हूँ आपको कि
0: स्ट्रेंज बात है वाकई।
1: यार मैं नमाज भी यही पढ़ लेता हूँ, बस होटल से निकला यही नमाज पढ़ ली, बोले कि हरम के अंदर तक मैं नहीं गया।
0: स्ट्रेंज, सिर्फ क्या मैं बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि हैरत की बात है, हैरत की बात है।
1: ये मैं आज तक वो चीज उसके वर्ड्स जो मैं दिमाग में यानी घूमते, लोग तो दुनिया से आ जाते हैं और तुम बिल्कुल हरम के बराबर में बैठे हो, नहीं जा सकते।
0: हैरत की बात है
1: ये तो।
0: फिर इसका मतलब है वाकई, मतलब अल्लाह की तरफ से कोई बुलावा ही आता है।

0: हम इसी तरह से समझ सकते
1: हैं। अभी किस टाइम पहले आपने देखा होगा, अभी शायद इस साल की नहीं, इससे पहले साल की एक बात थी, कहीं मसर का कोई बंदा था तो वो फ्लाइट के लिए वो आया तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, ये काफी मीडिया में
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसने माशाल्लाह कर लिया था।
1: वो फ्लाइट जो खराब हो गई, हाँ, पता नहीं क्या हुआ,
0: एग्जैक्टली फिर उसको करने दिया, राइट राइट
1: बिल्कुल ठीक है आप बैठो, लेकिन जिस टाइम वो बैठ के उस फ्लाइट में गए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इसमें अल्लाह की मर्जी है ना,
0: मर्जी वाकई बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई नदीम भाई हमारे साथ एक और कॉलर हैं तो फिर इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कि कौन है वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, आपका पुराना गीता पिता
0: रईस भाई, क्या हाल है रईस भाई?
2: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे थोड़ा बात करके, थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता है कि थोड़ा टाइम बात कर लेते हैं।
0: चले गुड, जबरदस्त। तो भाई अचीवमेंट बताएं सबसे पहले तो, कि अचीवमेंट क्या है आपकी?
2: अचीवमेंट बहुत, इसमें बहुत सी बातें आ जाएंगी, मतलब आपने किस बात को छेड़ा था, मैं थोड़ा सा कम सुन पाया लास्ट में, मैंने थोड़ा सा मैं बिजी था दूसरे तरफ से, इसीलिए मैं रेडियो का मतलब ड्यूटी तो कर रहा हूँ, लेकिन
0: कोई भी ऐसी कामयाबी, कोई भी ऐसी सबसे बड़ी कामयाबी जो आप आज तक लगती हो?
2: हाँ सबसे बड़ी कामयाबी तो मैं ये कहूँगा महवेश की, जैसे एक भाई ने अभी लास्ट में बताया कि 15 साल हो गए और कोई मतलब हरम के अंदर नहीं दाखिल हो पाया, और उस लोगों के अंदर कुछ तात्सुक के भी ऐसे ऐनक लगा के रखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ तक कि बड़े जमाने के बाद में 60 साल 65 साल के बाद में वो उमरा या हज पे भी जाते हैं तो उनको अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं देता है कि हरम के जो इमाम है उनके पीछे नमाज पढ़ने के, अल्लाह ताला उनको उनके अंदर ऐसे तासुब के ऐनक ऐसे लोगों ने मतलब उनके ऊपर लगा दिया है कि वो अकेले में जाके अपना मतलब ये करके छुप के और अपना ये नमाज पढ़ते हैं, बोलते हैं कि बस तरह तरह का अब वाकिफ होंगे ये सब तरह तरह के लोग तकरीर और बड़े बड़े जो खतीब हैं लेके और लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी मतलब ये है। तो हमें ये सबसे बड़ा हमें अचीवमेंट ये है कि मैं उसी उसमें था, मैं कभी मेरी तालीम भी उसी मदरसे से, और शायद मैं आपसे बयान किया था उसी जामिया से मैंने किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दिया कि मैं आज एक तौहीद के ऊपर इतना पुख्ता हो गया कि सारे लोग हमारे घर के से लेके सारे लोग बहुत खिलाफ हुए। पहले शुरुआत में अब्बू थे, अल्लाह ताला अब्बू नहीं रहे, कोई नाम नहीं रही, अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद करे, हम यही दुआ करते हैं, लेकिन सारे लोग बाद में सबको मतलब ये वो समझ में आ गया था कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़े दिन तक तो मतलब उन्होंने बहुत मतलब मेरे साथ में ये किया कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो लेकिन अल्लाह ताला ने मैं अपने उस पे डटा रहा कि मैं बोला भाई मैं जो कोई बात कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह रसूल के तरफ की बात को मतलब कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह और उसमें हम मुसलमान हैं। तो ये चीज हमारे साथ में मतलब बहुत से उलमा को मैंने सुना, खासकर सऊदी अरब में मैं 5-6 साल तक था तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तालीम थी मैम की, मतलब एग्जाम लगाते थे कि ये फला रियाल वालों के पास गए, इनको ये पैसा मिला, ये तब्दील हो गए हमारे बाप दादा, और हम किस उसके जमात के ऊपर ये कह रहे हैं, नाम नहीं लूंगा आप समझ गए होंगे, तो लोगों ने मतलब इल्जाम लगाया कि आपको मतलब लोगों ने पैसा दिया होगा आप उसमें गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी मुताला करके, मैंने खुद मुताला किया किताबों का, जालियात किताब थे और उसमें, और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया, हिदायत दिया, मैं समझ गया कि कुरान हदीस का असल हमारे सामने जो पेश किया गया है वो असल क्या है, और जो लोग नकली किस्से कहानियां सुना के लोगों को गुमराह करके अभी भी लोग पड़े हैं उसमें, अल्लाह ताला उनको, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस शर से महफूज करे उन भाइयों को, थोड़ा सा गौर फिक्र करें दुनिया में, मतलब ये दुनिया आजमाइश की जगह है और तरह तरह के जो आते हैं बहुत से लोग उलमा है, कम से कम ख्याल करें, गौर फिक्र करें, सिर्फ एक कल में आखिर हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बाकी और जितनी भी शख्सियत दुनिया में आई हैं सबसे पता और सबसे गलतियां होती हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा आलिम हो
0: exactly.
2: चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी हो.
0: असल
2: में आखिर से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और अल्लाह की बात तो मतलब सबसे ऊपर है. तो हमें उसके ऊपर ये करना चाहिए, बाकी सबके अंदर मतलब कुछ ना कुछ कमी हमें गौर फिक्र कर लेना चाहिए. हमें धोखे में नहीं पड़ना चाहिए. ये जिंदगी हमें मिला है, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हें को दिया हूँ सिर्फ आजमाइश के लिए, इसमें से मैं देखूं नेक अमल कौन करता है.
0: बिल्कुल सही. तो मतलब इसका इस बात का एक तरह से लब्बे लुबाब ये निकलता है कि आप माशाल्लाह से हर तरह के शिर्क से बच गए, हर तरह की इस तरह की जो बिद थी उन चीजों से बच गए. तो ये आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लगती है.
2: बाकी दुनिया में अल्लाह ताला ने तो बहुत सी, अब मैंने शायद कुछ आपसे बयान भी किया था पहले कि मैं बहुत परेशानी उठा के और यहाँ तक पहुँचा.
0: जी जी बिल्कुल.
2: आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि कोई कमी नहीं है. अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों को बल्कि कुछ मतलब ये कर देते हैं, मैं अल्लाह ताला अपना मोहताज रहा. और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू अपना मोहताज रखना, किसी बंदे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े. और अल्लाह ताला उस लायक रखा हुआ है कि आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला उस लायक रखा है कि अल्लाह ताला और हमारे बच्चे भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं उनको दीनी तालीम सबसे पहले मैं तरजीह दे रहा हूँ कि दीनी तालीम ऊपर है, इसको ये कर लो, इसके बाद में आखिर में बाकी दुनिया की तो ये चीजें है, ये दुनिया तक रहेंगी और ये भी जरूरी है असली तालीम भी. और उसको उसके अल्फत नहीं करता हूँ कि नहीं असली तालीम ना हासिल किया जाए और उसको ये ना किया जाए, बिल्कुल किया जाए. लेकिन दीन की तालीम जो हमारे लिए सबसे आखिरत में कामयाबी का जरिया बनी, ये दुनिया कुछ दिन के लिए है, ये उसके बाद में खत्म हो जानी है. और हमें अपना अपना रजिस्टर जो भी है हमारा सबमिट करके हमारे हाथ में दिया जाएगा. और अगर हमारे दाहिने हाथ में दिया गया तो हम कामयाब हो गए, और हमारे बाएं हाथ में दिया तो हम बस नाकाम हो गए और हमारे लिए बर्बादी है.
0: सही बात है. तो अल्लाह ताला सबके दाएं हाथ में दे, बिल्कुल ऐसे ही. चलें जी देश भाई, एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलेंगे. ठीक है. और जबरदस्त आपने बहुत अच्छी बात की, ये बहुत बड़ी कामयाबी.
2: मैं तो भाई पे इक्तफा करूंगा, मैं ज्यादा मतलब दूसरे तरफ नहीं करूंगा, मैं यही पे करके मैं और भाइयों को सुन रहा हूँ. बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू जी.
2: मजाक की बातें वो सब बाद में इंशाल्लाह. ठीक है, चलो ये बातें ये करके यहीं पे इक्तफा करूंगा.
0: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: राइट, वेलकम बैक समर मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावेश खान. वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. अच्छा जी, तो सीन क्या है? सीन ये है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस में भी आपके पढ़ नहीं सकती. हमारा व्हाट्सएप जो है वो डेड हो गया है, तो जिन लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे उन लोगों से माजरत, नहीं पढ़ पाऊंगी मैं अभी. आप लेकिन कॉल कर सकते हैं. हाँ, शायद चल जाए, शायद चल जाए, कोशिश करती हूँ. अगर चल गया तो ज़रूर पढ़ दूंगी, अगर ना पढ़ सकूँ तो समझ जाइएगा कि भाई मतलब मेरी गलती नहीं थी, ये चल ही नहीं रहा. फिर जी इसके साथ फिर गया तो नहीं पढ़ सकूंगी. ठीक है, इससे अंदाज़ा यही हो रहा है. तो मैंने देख लिया था मोहम्मद यूसुफ खान आपका मैसेज आया हुआ था, आपने हैप्पी मंडे मॉर्निंग बोला हुआ था, ऊपर से देखा था, फिर सोचा था पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले जो है ये इनकी जान चली गई. तो ये वाला सीन है. बाकी जिन जिन लोगों ने मैसेजेस किए थे, एक और का मैं देख रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे सन ने मुझे बेटे मतलब फादर्स डे पे ये कुछ दिया है. क्या दिया है वो मैं देख नहीं पाई अंदर से. फिर जिन लोगों के भी मैसेजेस थे, अगर कॉल करना चाहें तो कॉल करके बता दीजिएगा, वरना फिर कल आपके मैसेज पढ़ेंगे. ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है. फिर जी सीन क्या है? सीन ये है कि मैं आपको एक न्यूज़ बताती चलूँ, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टोरी है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, और बहुत ही एक उम्मीद अफजा स्टोरी है. वो ये कि ताज़ा रिसर्च और ये एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो दुनिया के सबसे कीमती नेचुरल इकोसिस्टम में शामिल हैं. अच्छा, कॉल आ रही है तो ये मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद रियाजुद्दीन बात कर रहा
0: हूँ. गुड.
1: मैं गाने का रिक्वेस्ट करना था.
0: अच्छा, गाने का रिक्वेस्ट करना था. कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? लॉर्ड टेलीफोन का गाना.
0: हाँ हाँ हाँ भाई, बता दें, जल्दी बता दें. आपकी बाइक चल रही है, पीछे क्या चल रहा है? हाँ, कौन सा वाला गाना आप लौट चलेंगे?
1: गाना जर्मनी आ रहा हूँ.
0: ओ यारो माफ करना.
1: हाँ, या फिर
0: यही वाला है? यही वाला है, चल ठीक है. हाँ, ये चल जाएगा, आखिरी गाना चलेगा. ठीक है, लास्ट. तो आप तकरीबन सुनिएगा 50 के करीब तो आपको सुनने को मिलेगा. ठीक है
1: जी, शुक्रिया.
0: चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. ठीक है, थैंक यू.
1: अल्लाह
0: हाफिज. रोई जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे, इनका गाना हम चला देंगे इसके साथ ही. हाँ, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि दुनिया का सबसे नेचुरल इकोसिस्टम में ये शामिल हैं, और अब मतलब ये एक तरह से देखा जाए काफ़ी अरसे से इसके बारे में था कि ये डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं कर रहे डिक्लाइन. पिछले 16 सालों में दुनिया भर में इनकी वापसी और रिकवरी देखी गई है, और ये खबर इसलिए बहुत अहम है क्योंकि मैंग्रोव सिर्फ दरख्त नहीं होते बल्कि कोस्टल एरियाज़ के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करते हैं, और ये बेसिकली कोस्ट लाइंस को एरोजन से बचाते हैं, मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, और उन कम्युनिटीज़ के लिए हिफाजती दीवार बनते हैं जो क्लाइमेट रिस्क का सामना कर रही होती हैं. और स्टोरी का सबसे हौसला अफजा पहलू ये है कि ये साबित करता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, रीस्टोरेशन और प्रोजेक्ट्स, बेहतर अवेयरनेस वाकई फ़र्क ला सकती है. जब हुकूमतें, लोकल कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स मिलकर लंबी मुद्दत तक काम करते हैं तो तबाही का रुख पलटा भी जा सकता है, मोड़ा भी जा सकता है. तो ये है ज़बरदस्त. अच्छा, इसके हवाले से ना मैंने अभी कुछ अरसे पहले एक मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक स्टोरी देखी थी जिसमें कोई लड़की है, और मेरा ख्याल है उसका कराची से ताल्लुक़ था या सिंध के किसी शहर से ताल्लुक़ था, और वो वहाँ पे मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी मतलब जो है ना काम कर रही थी, और बाकायदा लोगों को बोट्स में बिठा बिठा के वो लेके जाती है मैंग्रोव्स फील्ड के ऊपर, और वहाँ पे जाके उनको उसके बारे में बताती है कि किस तरह से हमने इनकी हिफाजत करनी है, और फिर उसके साथ अब ये किस तरह से लगाए जाते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वो काम कर रही है. उस वीडियो में था लेकिन मैं भूल रही हूँ कि किस तरह उनको मतलब ना प्रोटेक्ट भी किया जाता है, और उसके साथ ही उनकी नशोनुमा या फिर कह सकते हैं आप क्या, उनकी काश्त तो नहीं, वो समंदर में होती है, लेकिन कुछ किया कर रही थी वो, ये मुझे याद है. कैसे लगा रही थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर देखिए मतलब लड़कियां अपने तौर पे आजकल किन किन फील्ड्स में अपने आप को मनवा भी रही हैं और साथ साथ कैंपेन चला रही हैं. जैसे अभी खादिम भाई बोल रहे थे तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अक्सर ये सोच रही होती हूँ कि आपके पास ना मौाक़े बहुत सारे होते हैं. एक तो रोज़गार के भी मौाक़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी तो खैर एक माशाल्लाह से बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है कि वो दूसरों को रोज़गार फराहम करने के लिए माशाल्लाह इतनी बच्ची एफर्ट कर रही है, ग्रेट, मतलब ये बहुत ही एक सदका जारी है। इस किस्म की जो औलाद है ना, जो कहते हैं आप किसी एक बच्चे को अगर पढ़ा देते हैं और वो अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करता है, फिर सोचें मतलब ये सिलसिला चलता रहता है ना नस्ल दर नस्ल, उसने कुछ किया फिर उसकी औलाद हुई, लेकिन ये सिलसिला चले जा रहा है। आपने किसी एक बच्चे को पढ़ाया और उसने फिर जितने भी बच्चे उसके होंगे जो कुछ करेंगे अच्छा दुनिया में, तो वो आपको उसका अजर मिलता रहता है, तो वो तो बहुत ही कमाल बात है। लेकिन उससे हटकर जो लड़कियां जो हैं जिनको सिलाई कढ़ाई या कोई भी मतलब जो स्किल किसी के अंदर है, वो अगर चाहे ना तो बहुत कुछ इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जज्बा होना चाहिए, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अब ये देखिए मैंग्रोव्स के हवाले से हम इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे होते, जबकि मैंग्रोव्स हो गए या फॉरेस्ट के हवाले से ये सारी जो चीज़ें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें इंसानियत के लिए, और बच्चियाँ जो हैं वो कैंपेन्स चला रही हैं, उनके हवाले से काम कर रही हैं, इतनी एफर्ट डाल रही हैं, लोगों को बिठा बिठा के लेके जाती हैं बोट्स पे, तो कमाल है भाई, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा हो उसको लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, तो मैसेजेस मेरे पास है नहीं और गेम की तरफ मैं आ जाती हूँ, और आज मैं मोहम्मद यूसुफ खान का ही बताया हुआ वो गेम, अगर मुझे सही तरह से समझ में आया था तो मैं वो खेलने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको एक्टर का नाम बताऊँगी और आपने मुझे जल्दी से उनकी मूवीज़ बतानी है, ठीक है? तो ये वाला सीन होने वाला है आज, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी और आपने जल्दी जल्दी 30 सेकेंड का टाइम होगा आपके ऊपर पास, और उसमें आप मुझे जल्दी से जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? आरिफ अंसारी। हाँ, कैसे आरिफ अंसारी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ, क्या हो रहा है?
2: ड्यूटी पे
0: हूँ और क्या। अच्छा सही, ड्यूटी कैसी चल रही है? जबरदस्त जबरदस्त। तो गेम शुरू करें आपके साथ, ठीक है? चलेगा
2: चलेगा
0: चलेगा। चले तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना इजी वाला नाम देती हूँ। आपने मुझे जितनी फिल्म्स जहन में आ रही है ना, मेरा ख्याल है 5 का रख लेते हैं, ठीक है? 5 आपने मूवीज बतानी है। तो पहला एक्टर, 5 मूवीज बतानी है आपको। मैं एक्टर का नाम बताऊंगी, आपने उस एक्टर की 5 मूवीज बतानी है, ठीक है? फिर मैं, अगर आपने बता दी 5 तो फिर मैं दूसरे एक्टर का नाम बताऊंगी,
2: ओके?
0: ठीक है, तो पहला एक्टर आपके लिए सलमान खान।
2: सलमान खान, बजरंगी भाईजान, टाइगर, टाइगर जीता है, सुल्तान,
0: हम आपके हैं कौन, राइट हो गए 5। दूसरा जो है अक्षय कुमार।
2: खिलाड़ी, खिलाड़ी 400 फीट, वेलकम, और क्या है,
0: आपकी कॉल का कुछ और कहना चाह रहे हैं सवाल के बारे में? हमारे कहना था क्या
2: सवाल के बारे में?
0: अचीवमेंट वाला, अचीवमेंट वाला जो था कि सबसे बड़ी अभी तो करना है। सही है, कोई मसला नहीं है, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, लग करें आप बहुत कुछ अचीव करें। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बोलिए बोलिए।
2: विनर के हवाले से,
0: विनर के हवाले से, अच्छा ये अचीवमेंट चाहिए आपको, इसके लिए ऑफिस का नंबर है क्या? है क्या नंबर? है
2: नंबर नहीं, क्या चीज का नंबर?
0: मेरे आया होगा ना, कभी आया नहीं उधर से
2: मैसेज? तो एक आया था, मैं उसको फोन दिया एक दो बार पर किसी ने रिसीव ही नहीं किया उस मैसेज।
0: उस पे ना मैसेज करके छोड़ते हैं, वो आपको बताएंगे, लाज़मी बताएंगे।
2: मैसेज मैंने कितना बार डाला है, सीन करके छोड़ देते हैं वो लोग, और ईमेल भी किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, चले मैं मालूम करके बताती हूँ फिर, ठीक है? चले ओके, थैंक यू, थैंक यू।
2: मैं आपको डेली मैसेज करता हूं।
0: हां मुझे पता है, मैं आपको डेली मैसेज देखती हूं, पढ़ती भी हूं। मैं पहचान गई हूँ आपको कि आप कौन से आरिफ अंसारी हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भाई, थैंक यू जी। रही जी, तो हमारे साथ आरिफ अंसारी थी और उसके साथ ही दूसरे कॉलर आ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं भाई?
3: मैं बात कर रहा
0: हूं। मैं कौन? आवाज आपकी बेसिकली बहुत कम आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है।
3: उमेर बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा उमेर बात कर रहे हैं, मुझे देखे लग रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ। जी कैसे उमेर?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बताएं ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र जी उमर तो
3: कुछ फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट किया था गेम में मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने आज फिर ट्राई किया
0: चलें गुड जबरदस्त तो फिर मैं अभी आपको बताती हूं आप समझ तो गए होंगे है ना कि मैं एक एक्टर का नाम बताऊंगी आपने मुझे पांच मूवीज बतानी है अगर आपने जल्दी से बता दी तो मैं आपको दूसरे एक्टर का नाम बताऊंगी ठीक है अच्छा फीमेल बताऊं या मेल बताऊं पहला
3: मेल
0: अच्छा चलें ठीक है तो आपको देते हैं अजय देवगन
3: अजय देवगन आसान से पूछ
0: अच्छा चलें आसान शाहरुख खान मैं फिर एक मिनट का टाइमर दोबारा ऑन करती हूँ शाहरुख खान
3: मैम आपकी आवाज कम आ रही है
0: जी जी
3: शाहरुख खान की फौजी एवियट राजू बन गया जेंटलमैन दीवाना और रोबोट वाली फिल्म जिसकी रावण
0: अच्छा हो गए अच्छा जी
3: ऋषि कपूर
0: पुराने हो गए
3: बहुत ज्यादा हो गए
0: अच्छा टाइम जो है वो अप हो गया ये हो गया सीन चले रही गुड जबरदस्त मैं नॉट बैड जी जी शाहरुख खान तो बहुत आसान था लेकिन आपको थोड़ी देर तक आवाज ही नहीं आई चले मसला नहीं है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया उमर बहुत शुक्रिया थैंक यू जी राइट इसके साथ ही देखते हैं कि कौन है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: जी वालेकुम सलाम
0: जी कौन बात कर रहे
4: हैं
0: क्या नाम है
4: शुएब
0: शुएब कैसे हैं शुएब
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे आप कैसे हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र और कैसा चल रहा है सब कुछ
4: अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी थोड़ी ज्यादा है लेकिन चल रहा है
0: हाँ सही गर्मी तो थोड़ी ज्यादा है ये बात तो सही है जी शुएब तो गेम खेलेंगे
4: जी बेशक
0: अच्छा चलें ठीक है मैं आपको बताती हूँ नाम देती रहूँगी और आपने जो है जल्दी जल्दी से मुझे वो बताने ठीक है फिल्म्स बतानी है उनकी तो पहला नाम है आपका सैफ अली खान
4: अंतुम बंटी बब्बे टू आओ प्यार हो गया एंड याद नहीं आया रेस
0: रेस में थे
4: अच्छा रेस वन एंड रेस टू
0: ओके ग्रेट पांच हो गए और दूसरा काजोल
4: काजोल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
0: टाइम्स अप
4: दिलवाले
0: जी तो नाम आपने क्या बताया था एक दफा शुएब शुएब चलें जी शुएब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक यू जी
4: जज़ाकअल्लाह
0: थैंक यू जी बाय बाय राइट तो देखते हैं कि हमारे साथ एक और कॉलर कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: सलाम मैडम
0: जी कौन
5: मैडम काफी टाइम हो गया बात की आप भूल गए होंगे मैं आपको
0: मैं पहचान रही हूँ और कसम से अगर तो वही है आप अगर तो वही है आप तो मैं अभी आपका नंबर बकायदा ना सर्च कर रही थी थोड़ी देर पहले बैठकर कि आप कहाँ हैं भाई आपकी खैर खैरियत पूछ लूँ लास्ट टाइम आप मुझे लग रहा है अगर वही है मैं गलत नहीं हूँ तो आप अपनी तबीयत का बता के गए थे मेरा दिमाग उलझा हुआ था उसमें अली रजा कैसे है ये देखिए ये होती है दिल से दिल की राह कि मतलब मैं कसम से आज ही ढूंढ रही थी आपको और आपका नंबर सेफ नहीं है यहाँ पे वरना मैं आपकी खैरियत का मैसेज करने वाली थी आपको कैसे हैं भाई तबीयत वगैरह सेट है ये बताएं सबसे पहले
5: तबीयत सेट है तबीयत खराब होने के चक्कर में कंपनी आ गया छोड़ दें अगर आपसे काम नहीं होगा
0: ये बोला कंपनी ने ओहो तो अभी सेट हुई है तबीयत
5: मैंने आपको बताया दिन के बाद से बड़ी तबीयत खराब लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काम भी है तबीयत भी ठीक है
0: बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप माशाल्लाह से फिट हैं अच्छी बात है और वही मुझे फिक्र आपकी हो रही थी और अब आप मैसेज कीजिएगा कल मैं आपका नंबर यहाँ पे सेव करूंगी ताकि आपकी खैर खैरियत पूछते रहें
5: ठीक है मैडम इंशाल्लाह लेकिन मैं खेलूंगा नहीं अभी मैं काम पे काम
0: नहीं नहीं कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं
5: मॉर्निंग में
0: हां जी जी अब मैं मॉर्निंग में मैंने बताया था ना मैं इवनिंग में बता रही थी कि मैं मॉर्निंग में आने वाली हाँ चले आप जब भी मौका मिले कॉल करें और मैसेज जरूर छोड़िएगा ताकि मैं आपको फिर मैसेज कर सकूं आज नहीं कीजिएगा आज फोन हमारा डेड हो गया आप कल कीजिएगा मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी ठीक है चलें बहुत अच्छा किया लिया आपने कॉल कर ली क्योंकि मेरे दिमाग में मुसलसल आपका ख्याल था और मैंने दो चार दफा जिक्र भी किया था लेकिन वही आप सुन नहीं पाए होंगे ठीक है ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ थे अली, और देखें मतलब सीरियसली आज मैं पक्का सोच रही थी कि कहाँ गायब हो गए, कुछ खैर खैरियत पता चले, कुछ हो, और आज इन्होंने कर लिया। इसको वाकई कहते हैं ये, कुछ हमारा दिलों का कनेक्शन होता है पक्का पक्का। एक तो बंदा रहता है जहन में, लेकिन एक वो चीज़ होती है कि जब आपको ज़्यादा फिक्र हो रही हो उस दिन इन्होंने कॉल कर लिया। अच्छा जी, इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं, गेम में शामिल हो सकते हैं, जल्दी से कॉल कीजिए 4434377 पे, और हम आपके साथ ज़रूर गेम खेलेंगे। देखते हैं थोड़ी देर तक कोई आता है, नहीं आता तो हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस आके फिर आपको गेम खिलाते हैं। तो चलें जल्दी से गाना सुनकर आते हैं। कॉलर आ गए तो गेम टाइम चल रहा है, तो चलें पहले इनको मौका देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम। हम बोले चलो हम भी बतिया लेते हैं थोड़ा सा,
0: मैं गाना चलाती हूँ ना वैसे ही आप आते जी रईस भाई, मैं आपको नाम दूं,
6: हमको खानों के उसमें थोड़ा सा ये करे, ज्यादा आधे उलझाए, ताकि बस हम बस 90 के उसमें है, बहुत पुराने वाले में ना, बहुत नए वाले में।
0: अच्छा, तो 90s वाले दूं मैं आपको, ठीक है ठीक है, तो खानों के ही दूं आपको या फिर कोई सा भी दे सकती हूँ 90s में?
6: नहीं नहीं, कोई सा भी ना दे, जब जहन में मतलब देखे बहुत से मूवी लेकिन जहन में रहता नहीं है असल में।
0: अच्छा अच्छा, चलो सही है, तो मैं आपको जो है कौन सा खान दूं, खान मैं खुद सारे खान मतलब दो तीन ही, तो आमिर खान
6: का दिल है गया, दंगल हो गया, थ्री इडियट हो गया, तारे जमीन पर हो गया, पीके हो गया, ये सब
0: वेरी नाइस मतलब पांच हो गई। दूसरे पे आते हैं हम, दूसरा नाम आपका गोविंदा।
6: गोविंदा का तो बहुत साजन चले ससुराल हो गया, उसके बाद में बहुत से उस दिल वाले क्या नाम दुल्हनिया कुछ ऐसे करके ये है उसका नाम, बहुत सी मूवी उनके दिखी है,
0: बहुत सी में टाइम निकल गया पहला आपने तो ना रिकॉर्ड तोड़ टाइम में आपने जवाब दिया था, मुझे लगा था भाई ये तीन तो बता देंगे कम से कम। अच्छा गोविंदा की ना देखे ना, हीरो हो गई, राजू राजा बाबू हो गई है ना, ससुराल ऐसे कुछ करके है,
6: लेकिन वो जहन में असल में अब खानों का मेरे माइंड में सेट किया हुआ था ना, मैं तो असल में निकल जाता है।
0: चले कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, चले बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई,
6: तो कम से कम निकल गए। हाँ। ओके,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।
6: असल में सब था खानों के नाम, बस बस
0: नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है।
6: सारी मूवी गोविंदा की बहुत कम मूवी बची हुई है जो मैंने नहीं देखा है, सही बात है।
0: अच्छा नहीं देखा मैं, अच्छा अच्छा
6: नहीं देखा हुआ है, देखा हुआ है बहुत कम, उसको नहीं देखा ऐसा, क्योंकि वो कॉमेडी।
0: हाँ हाँ, होता है कोई मसला नहीं है। चले जी रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एक और कॉलर आ गए हैं तो उनको देते हैं हम टाइम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मंसूर अली खान है
0: जी। कैसे हैं मंसूर अली खान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र,
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैम
0: जी। तो आपको नाम दूं मैं?
7: जी जी।
0: अच्छा, तो सबसे पहला जो है वो नाम आपको मैं अभी यही वाला दे देती हूँ, गोविंदा।
7: गोविंदा राजा कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू।
0: अच्छा हो गए, चले पांच, और दूसरा नाम जो है ना काजोल।
7: काजोल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर के बाद में दिल वाले।
0: हाँ,
7: जो उनको खुश होता है।
0: हाँ,
7: के बाद
0: हाय एक नाम और दे देते तो आप जीत जाते अभी एक नाम से रह गए चले अब आपका ड्रॉ हो गया आरिफ अंसारी के साथ चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारा गेम चल रहा है और ये वाला इजी है, यूसुफ ने मेरे ख्याल से यही वाला बोला था। अब यूसुफ का मैं मैसेज अभी देख नहीं सकती हूँ, वरना फिर मैं देखती कि मैं क्या सही समझी थी या नहीं समझी थी, अभी भी कुछ गलत हो रहा है। चले जी गुड, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कर लें, वरना फिर हम इजाज़त लेने का थोड़ी देर में टाइम आ ही गया है, तो मैं अगर एक कॉल आ जाती है तो उनका वेट कर रही हूँ। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट्सएप के मैसेजेस जिन जिन लोगों ने किए थे तो उनके आखिर के मैसेजेस जो है ना वो रह जाएंगे, क्योंकि वही है कि हम अभी पढ़ नहीं सकते हैं, ये सीन है। खैर जी, इसके साथ ही मुझे लग रहा है हाँ आ गई कॉल आ गई, चलो लास्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि
0: व बरकातुहू। जी क्या हाल है भाई?
8: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र है।
0: नसीम बात कर रहे हैं ना?
8: लखपुर है।
0: आने लग तो रहा है. ओके ठीक है, तो मैं आपको गेम खिलवा दूं, खेलेंगे तो?
8: नहीं गेम मशीन नहीं खेलता है, वो भी गाने वाले.
0: नहीं गाने वाला नहीं है, एक्टर वाला है. फिल्म में तो देखी होंगी ना.
8: वही वही पहचान नहीं पाएंगे.
0: नहीं पहचान पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे, नाम नहीं बता पाएंगे आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे. चले कोई मसला नहीं. नसीम बताएं ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? चले ये अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जबरदस्त, अच्छी बात है. और कुछ कहना चाहेंगे आप या बस इतना ही?
8: क्या बोलते हैं कि तुझे राजी करने के लिए मैं खुदा को नाराज कर बैठा.
0: हाय ये क्या कर बैठे आप, ये तो नहीं करना चाहिए था.
8: राजी करने के लिए खुदा को नाराज कर बैठा, अब तुम न मानो मुझे खुदा को राजी करना है.
0: सही सही. चले नसीम थैंक यू आपकी आखिरी कॉल के लिए, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. लाफिस रही जी. और इसी के साथ हमारा कॉलिंग टाइम हो गया है फिनिश, क्योंकि अब कॉल्स आ रही हैं तो अब हम नहीं बात कर पाएंगे. लेकिन आरिफ अंसारी और हमारे लास्ट वाले कॉलर, इन्होंने क्या नाम बताया था, जो भी थे, तो ये दोनों ही एक तरह से ड्रॉ पे आ गए और दोनों ने ही दो एक तरह से एक्टर्स बता के आखिरी वाला इनका रह गया था. तो चलें जी ज़बरदस्त अच्छा खेला, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों की भी हो जाएगी. अब अगर तो यूसुफ खान का कल देखूंगी मैसेज. यूसुफ खान आप सुन रहे हैं ना, कल मुझे बताइएगा क्या इसी तरह से कंटिन्यू रखना है या क्या करना है. ठीक है चलें जी, तो फिर हम कल देखेंगे. मैं इसलिए उनसे पूछती हूँ क्योंकि वो जो है ना गेम के जरा थोड़े एक्सपर्ट हैं, वो सुनते रहे इसलिए उनका जरा ज्यादा आइडिया होगा इसके बारे में. चलिए जी, तो इसके साथ ही लेनी है मैंने इजाजत. हमारे जो भाई थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही वाला गाना लगा के जा रही हूँ मैं. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल सुबह ठीक 6 बजे, 6 से 9 मैं आपके साथ रहूंगी. अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.

सेवन से नशर की जा रही हैं। दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज ने अपनी वेबसाइट पर खुदकार टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिसका मकसद सार्फीन के तजर्बे को बेहतर बनाना और मल्टी मीडिया टूल्स के जरिए लुगत के मवाद तक रसाई को मजीद आसान बनाना है। डिक्शनरी की जानिब से कल जारी बयान में बताया गया कि इस सर्विस के जरिए सार्फीन लुगत में शामिल अल्फाज के इंदराजात, तारीफ़ात और तारीखी हवाला जात को सुन सकेंगे, जिनमें नसरी मतून यानी प्रोज टेक्स, शायरी, अशआर और कुरान करीम की आयात के हवाले भी शामिल हैं। यह सहूलत सार्फीन को लुगत के मवाद के साथ तामुल और तहकीक का एक नया तरीका फराहम करेगी, जबकि मुहक्किकीन, तलबा, अरबी ज़ुबान से दिलचस्पी रखने वाले अफराद और गैर अरबी बोलने वाले और सीखने वालों के लिए भी रसाई को आसान बनाएगी। मजलिस शूरा ने मोरक्को के शहर मराकश में मुनक्किद होने वाले यूरो मेडिटेरेनियन और खलीजी खित्तों के लिए मराकश इक्तसादी पार्लिमानी फोरम के चौथे इजलास में शिरकत की। फोरम में मुख्तलिफ मुमालिक के पार्लिमानी अराकीन, हुक्काम, माहिरीन और इलाकाई व बैनुल अक्वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजलिस शूरा की नुमाइंदगी मजलिस के रुकन और पार्लिमानी असम्बली बराए बहरा रूम PAM के नायब सदर अब्दुल्ला बिन नासिर बिन तुर्की अस्सुबई और मजलिस शूरा के रुकन हमद बिन अब्दुल्ला अलमुल्ला ने की। फोरम के दौरान मश्तरिका दिलचस्पी के मुतादिद इक्तसादी और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें आलमी इक्तसादी चैलेंजेस, मुआशी इंजमाम और आज़ाद तिजारत, मसनू जहानत में सरमायाकारी का फरोग, रोज़गार के मौक़ों में इजाफा और मौसमियाती तब्दीलियों के गज़ाई तहफ़ पर असरात शामिल थे। इसके अलावा तरक्की, सरमायाकारी और इक्तसादी तावुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर भी गुफ्तगू की गई। गज़ा की पट्टी के जनूबी इलाके में मुकामी ज़राए के मुताबिक कल इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में दो फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि खान यूनस के मगरब में इसराइली ड्रोन तैयारे के हमले में एक फ़लस्तीनी शहरी और एक बच्चे की जान गई, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हुए। गज़ा के तिब्बी ज़राए ने इससे कबल ऐलान किया था कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में गज़ा की पट्टी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 73,032 हो गई है, जबकि 1,73,357 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 4,106 हो गई है, जबकि 12,153 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लुबनानी वजारत सेहत के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने एक बयान में बताया कि 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों के मजमूई नुकसान में 4,106 अमवात और 12,153 ज़ख्मी शामिल हैं। वजारत सेहत के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मशरकी लुबनान के इलाके सहमर पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में एक बच्चे और एक खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि जनूबी लुबनान के शहर सोर पर एक फ़िज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी भी जान से गए। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में कल मुनक्किद 4 मुल्की इजलास में मशरक़ वस्ता में तवील मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग और फ़लस्तीनी कौज़ की हिमायत को अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बुनियादी करार दिया गया। इजलास में मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी मुश्तरिका बयान में वज़राए ख़ारजा ने कहा कि मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और चारों ममालिक के दरमियान अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुसलसल मुशावरत और तआवुन की अहमियत पर जोर दिया गया। हालिया इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से वज़राए ख़ारजा ने जुमेरात को अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया और उसे कशीदगी में कमी और ऐसे तनाज़े के हल की जानिब एक तामीरी कदम करार दिया, जिसने इलाकाई सलामती, तवानाई की मंडियों, आलमी बहरी रास्तों, सप्लाई चेन और बैनुल अक्वामी तिजारत को ख़तरात से दोचार किया था। वज़राए ख़ारजा ने इस अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार को भी सराहा और उसे एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और मुफाहमती यादाश्त को कामयाब अंजाम तक पहुँचाने में रियासत कतर की हिमायत का भी खैर मकदम किया। इजलास में फ़लस्तीनी मसल

0: गया है। कतर एनर्जी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में प्लांट में धमाका और आग भड़क उठी। बरजान प्लांट मुकामी सतह पर गैस की जरूरियात पूरी करने के लिए मुख्तिस है। बयान में कहा गया है कि वाकये के फौरन बाद हंगामी इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को महदूद करने और मुकम्मल तौर पर बुझाने में कामयाब रही। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स कल कारोबार के आगाज पर 7.50 पॉइंट्स यानी 0.07% कमी के साथ 10,503 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जो गुज़श्ता सेशन के इख्तितामी सतह के मुकाबले में कम है। इंडेक्स पर पांच अहम शोबों की मनफी कारकर्दगी का दबाव देखा गया। मार्केट के अदाद शुमार के मुताबिक रियल इस्टेट सेक्टर में 0.07%, टेलीकॉम सेक्टर में 0.22%, बैंकिंग और मालियाती खिदमात में 0.40%, इंश्योरेंस सेक्टर में 0.52% और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 0.53% की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में 0.51%, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 0.31% इजाफा देखने में आया। सुबह 10 बजे तक तजारती लेन देन का हुज्म 4,46,79,000 कतरी रियाल तक पहुंच गया, जबकि 1,82,72,000 शेयर्स का कारोबार 2,425 सौदों के जरिए अंजाम पाया। सामिन, खबरों के इस मरहले में आप समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को 1-3 में 3 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट की तारीख में पहली जीत दर्ज की। मोहम्मद सलाह, मुस्तफा ज़िको और ट्रेज़ेगे ने 1-1 स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से मात दी। और इसी ग्रुप के एक दूसरे मैच में काबू वार्दे ने उरुग्वे को रोक दिया। मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप जी में ईरान और बेल्जियम का मुकाबला गोलेस ड्रॉ रहा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप जे में आज दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। और 3 की T20 क्रिकेट सीरीज के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान बांग्लादेश को 7 से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर ली। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
0: वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने लोसन लेक सरबराही इजलास और आला सती कमेटी के पहले इजलास में शिरकत की, जिसमें अमरीका और ईरान के नुमाइंदों के अलावा सालसी करने वाले 2 कतर और पाकिस्तान के वफूद भी शरीक हुए। कतर की वजारत दाखिला ने आज ऐलान किया है कि रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक फैक्ट्री में पेश आने वाले हादसे के नतीजे में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 54 तक पहुंच गई है, जिसमें 18 अफराद अब भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। दोहा हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज ने अपनी वेबसाइट पर खुदकार टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिसका मकसद सार्फीन के तजर्बे को बेहतर बनाना और मल्टीमीडिया टूल्स के जरिए लुगत के मवाद तक रसाई को मजीद आसान बनाना है। और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेनस ने कल कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुजाकरात में गुज़िश्ता 24 के दौरान नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिसमें कतर और पाकिस्तान सालिस के तौर पर शामिल हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4484880

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, the ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se, desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए गोलकीपर सलाह ज़करिया के बारे में। सलाह ज़करिया फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कतर फुटबॉल के लिए, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी शोन द इनफ टैलेंट दैट ही हैज़, और कई मैचेस में कतर के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अल दोहेल के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार किया और धीरे धीरे नेशनल टीम के रडार पर आए। सलाह की रिफ्लेक्सेस, शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी एरिया में कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, और इसी बात पर सलाह ज़करिया को टीम में रखा गया था 2-3 साल पहले, जबकि मेशाल बारसिम जो है वो नंबर 1 गोलकीपर हैं। लेकिन टू बिल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कतरी फुटबॉल, टू बिल्ड द नेक्स्ट फ्यूचर लाइनअप ऑफ कतरी फुटबॉल, स्पेशली गोलकीपर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सलाह ज़करिया को चुना गया था। सलाह ज़करिया डिफेंडर्स के साथ बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन रखते हैं। इनफैक्ट कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें फ्यूचर के अहम गोलकीपर्स में शुमार कर दी है। अगर उनकी तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही तो सलाह ज़करिया आने वाले सालों में कतर नेशनल टीम के नंबर 1 गोलकीपर बन सकते हैं और मुल्क की फुटबॉल विरासत को मजीद मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते।

0: करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: सुन रहे हैं FM 107, FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि कतर की वजारत सेहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए क्या रहनुमाई करती है। डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद जिस्म और तंदुरुस्त जहन ही तालीमी कामयाबी की बुनियाद हैं। इसलिए कतर में सेहत के इदारे स्टूडेंट्स को मुतवाजन गिजा, जिस्मानी सरगर्मी, मुनासिब नींद और जहनी सेहत पर तवज्जो देने की तरगीब देते हैं। दिन का आगाज सेहतमंद नाश्ते से कीजिए, क्योंकि ये सबसे अहम खाना है। उसमें आप दलिया, होल व्हीट ब्रेड, अंडा, दूध और फल आप शामिल कीजिए। इससे आपकी तवानाई और जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। इसी तरह जो सेहतमंद स्नैक्स हैं उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फल, सब्जियां, दही और नट्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। ये ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देते हैं बल्कि पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन को बेहतर करते हैं। रोजाना आप जिस्मानी सरगर्मी जरूर कीजिए,

0: स्टूडेंट्स को कम से कम 60 मिनट्स जो है वो जिस्मानी सरगर्मी करनी चाहिए, जैसे कि आपकी ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है और स्विमिंग वगैरह। और इस तरह से आपके जो दिल हैं वो मजबूत हो जाती हैं, जो वजन है वो भी बैलेंस में रहता है और टेंशन या स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। पानी ज़्यादा पीजिए, गर्मी का मौसम है और उसमें जिस्म को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखता है और फटीग या थकन से भी बचाता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद कर दीजिए, जो मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और जो वीडियो गेम्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल आँखों, नींद और हमारे जिस्मानी जो सरगर्मी है उस पर मनफी असर डाल सकता है। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह बढ़ती हुई उम्र के बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना 8 से 10 घंटे की नींद जो है मयारी नींद वो दरकार होती है। अच्छी नींद से आपकी याददाश्त, आपकी कंसंट्रेशन और तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए, तो इसके लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपनी परेशानियाँ शेयर कीजिए और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लीजिए। ज़हनी सुकून अच्छी सेहत का अहम हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद आदत आज अपनाइए ताकि कल एक मजबूत, पुरएतमाद और कामयाब फ्यूचर हासिल कर सकें। बैलेंस डाइट, रोज़ाना की एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और जो पॉजिटिविटी है वो आपकी कामयाबी का राज है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर शो कॉल कतर बिजनेस 360, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, वैल्यूबल इंसाइट्स और वो लीडर्स जो बिजनेस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं, ना सिर्फ कतर में ही बल्कि ग्लोबली भी। आज हम फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर होता है। आजकल फार्मेसीज की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंसरी नहीं रही, बल्कि ये कंप्लीट हेल्थ हब बन चुकी है, जहां पर पेशेंट केयर, प्रोफेशनल कंसल्टेशंस, वेलनेस प्रोडक्ट्स और एसेंशियल हेल्थ केयर सपोर्ट भी अवेलेबल होता है। जी हाँ, आज हमारे साथ इसी सेक्टर के एक डिस्टिंग्विश्ड लीडर मौजूद हैं। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर ईपी अब्दुल रहमान, सीईओ ऑफ केयर एंड क्योर फार्मेसी। जी हाँ, केयर एंड क्योर फार्मेसी एक रैपिडली ग्रोइंग हेल्थ केयर रिटेल है और एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो क्वालिटी मेडिसिन, ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और पेशेंट सेंटर्ड केयर डिलीवरी के लिए डेडिकेटेड है। मैं कह सकती हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल सर्विसेज और डेली हेल्थ नीड्स के दरमियान गैप को ब्रिज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और लोगों को एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी और प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करती है। चलिए वेलकम कहते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर रहमान को ऑन आवर शो कतर बिजनेस 360, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम टुडे ऑन दिस एपिसोड। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट।
4: हाय।
3: ओके, टू स्टार्ट विद, टेल मी हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट अ फार्मेसी बिजनेस रियली इज एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन पीपल्स एवरीडे लाइव्स।
4: Actually, this pharmacy business is different from our country, India, and in the Middle East and in the European countries. In India, it is a very underrated and underutilized healthcare facility. A pharmacist learns a lot about medicine, diseases, and

0: But in pharmacies, those who are coming to the pharmacy, they can consult a pharmacist for free. And to be frank, a pharmacist is the only profession you can consult and get advices for free. So people come and the pharmacist advise on how to maintain a healthy lifestyle and avoid any chronic diseases and to how to maintain strong bones, strong muscles, and what all medications or supplements they need or they can take to live this kind of a lifestyle. And in addition, not just medicines and supplements, we have various other products for skincare and hair care, all these segments. So pharmacist is a source of information and guidance for everyone who can just walk into any community pharmacy and get it for free.
1: Very well said. Beautiful. And now finally coming to the closing question, the final one. What advice would you like to give to someone who dreams of starting same business, a pharmacy or healthcare business?
0: First of all, we need to understand we are in a service industry and we should be having a service mind. So this is something which I want to do. I will be helping people or improving people's life. And of course, we also need to make money out of it. But healthcare business is not something which we can make quick money. We should be ready to invest our time and effort and to build credibility and also the necessary infrastructure. And slowly, slowly, we have to grow it. After a period of time only we will be able to take the profit out, and only if we have this patience and consistent effort we can grow. That nice. Is what I have learned, and that is what I will advise anybody.
1: That's a wonderful advice, patience and consistency. Thank you so much. Thank you so much for taking out this time. It was truly a pleasure talking to you, and your insight on pharmacy and healthcare, I believe, were both valuable and inspiring. Thank you. We appreciate your time.
0: Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
1: Thank you. Have a great day. Take care. इस इंटरव्यू में केयर एंड क्योर फार्मेसी के सीईओ मिस्टर ईपी अब्दुल रहमान ने फार्मेसी बिजनेस के बारे में हमसे बातचीत की. हेल्थ केयर सेक्टर अपने पर्सनल सफर के बारे में भी उन्होंने बताया. आपने हमें बताया वाजे तौर पे कि आज के मॉडर्न दौर में फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन सेल करने का जरिया नहीं रही, बल्कि एक कम्प्लीट हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम बन चुकी है जो लोगों की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है. जी हाँ, हमने लगातार सवाल पूछे फार्मेसी बिजनेस के बारे में, हमने जानने की कोशिश की, और हम और आप ये समझे कि फार्मेसी बिजनेस असल में क्या होता है और इसका लोगों की जिंदगी में क्या रोल है. मिस्टर रहमान ने बताया कि फार्मेसी एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ दवा ही देने का काम नहीं करता, बल्कि लोगों को गाइड भी करता है, हेल्थ अवेयरनेस और प्रॉपर कंसल्टेशन भी देता है. उनका कहना था कि कई दफा लोग छोटे हेल्थ इश्यूज के लिए सीधे बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए फार्मेसी का रुख कर लेते हैं, जहां उन्हें इनिशियल गाइडेंस और प्रॉपर गाइडेंस मिलती है. इस तरह फार्मेसी सिस्टम, मैं कह सकती हूँ कि हेल्थ केयर का एक बेसिक और एक्सेसिबल हिस्सा है जो हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है. और हमने और भी आगे जाने की कोशिश की कि फार्मेसीज जो है वो सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं है, और हमारे गेस्ट का भी कहना था कि इनका रोल काफी बढ़ चुका है. इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि आजकल जो फार्मेसीज है ना, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस कर रही है. इसमें हेल्थ चेकअप्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, वाइटामिन है, लाइफस्टाइल एडवाइस है और पेशेंट की काउंसलिंग शामिल है. आपका कहना था कि अगर लोग अपनी हेल्थ का ख्याल अर्ली स्टेज पर ही रखेंगे तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और फार्मेसीज इस प्रोसेस में बहुत मदद देती हैं. फिर उनसे उनके पर्सनल सफर के बारे में मैंने पूछा, जहां आपने बताया कि इस बिजनेस का आगाज कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी डिग्री इसी फील्ड में हासिल की, और इनिशियली किस तरह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और फिर धीरे धीरे इसी सेक्टर में अपने आप को जब मजबूत कर लिया तो धीरे धीरे खुद का बिजनेस भी लॉन्च किया. उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ केयर सेक्टर में था, और उन्होंने छोटे से लेवल से अपना सफर स्टार्ट भी किया. शुरुआत में उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और मेहनत से धीरे धीरे अपना बिजनेस जो था वो ग्रो किया. फिर हमने उनके इंस्पिरेशन के हवाले से भी सवाल पूछा, जहां आपने बताया कि शुरू से ही उनका इंटरेस्ट, पैशन और प्रोफेशन एक ही था बस, और साथ में एक चीज ये कि लोगों की खिदमत करना है. उनके लिए हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी.

0: होती है। उनका मानना था हमारे गेस्ट का कि हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां काम करने से सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखा जाता है और किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद की जाती है। शुरुआती दौर में जरूर चैलेंजेस रहे, जो कि उन्होंने बताया कि हर चीज में चैलेंजेस इनिशियली होते ही हैं, लेकिन जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी टीम के एक पैशनेट टीम हो, तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में लोग अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें कन्विंस करना और उनका भरोसा जीतना आसान भी नहीं होता, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं जो कि चैलेंज बन ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं, डेडिकेशन, तो वो सारे चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी उनसे जानना चाहा कि आप अपना बिजनेस आपने कैसे ग्रो किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि राज जो है वो कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट में और पेशेंस में छुपा है। उनका कहना था कि अगर आप कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस और जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते हैं, तो वो नेचुरली आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता ही करता है। देखिए, आज के ना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए, तो ये इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में देखने तो यूनिक है, लेकिन इसके अपने कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपने बताया कि बिल्कुल ट्रस्ट के साथ साथ क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस और फिर पर्सनल केयर पे फोकस, ये सारी चीजें मिल जाएं, तब कहीं जाकर आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन करने की पोजीशन में आता है। उनका कहना था कि हर कस्टमर के साथ एक इंडिविजुअल अटेंशन देना उनका मिशन है, जो उन्हें दूसरों से भी अलग करता है। वहीं पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा, जहां हमारे गेस्ट ने बताया कि टेक्नोलॉजी के रोल पर अगर बात की जाए, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने फार्मेसी बिजनेस को बहुत हद तक चेंज किया है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने जो है वो काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। इससे कस्टमर्स को आसानी होती है और बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथ चलते हैं। वहीं ट्रस्ट के हवाले से अगर बात की जाए, तो आपने बताया कि ट्रस्ट जो है वो सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है, तो वो बार बार आपके पास आता है, और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, सर्टिफाइड मेडिसिन चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहना था एक ट्रस्ट जो है वो एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये टाइम के साथ जो है आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बलबूते पर डेवलप होता रहता है। वहीं पर हमने लास्ट में अपने गेस्ट से ये भी जानना चाहा कि मान लीजिए कोई इसी तरह का बिजनेस यहाँ पे कतर में स्टार्ट करना चाहे, तो आप उनको क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहोगे। तो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे गेस्ट ने हाईलाइट की, वो था पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। और ये एडवाइस मुझे लगता है नॉट दैट जस्ट हम हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें वहीं पर एप्लीकेबल है, बल्कि सारे बिजनेसेस पर ये एप्लीकेबल है ही। इसके अलावा जो चीज बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है प्रॉपर नॉलेज। हमारे गेस्ट ने ये भी हमें बताया कि जो सक्सेस है ना, वो फौरन या शॉर्टकट तरीके से आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको सब्र और लगन से लगे रहना है, बस लगे रहना कोशिश करते रहना है। वहीं देखिए, सूनर या लेटर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस कामयाबी को आपको किस तरह से सस्टेन करना है। अब फ्यूचर प्लान्स की जब मैंने बात की उनसे, तो हमारे गेस्ट ने बताया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ब्रांचेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो भी रही हैं और हो भी जाएंगे, और आपको पता भी चलेगा। इसके साथ साथ वो न्यू हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान भी रखते हैं, ताकि कस्टमर्स को और बेहतर फैसिलिटीज मिल सके। कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, उसको वैल्यूड फील हो, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो, और सर्विसेज काफ़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहां हम सब के पास बीमारी के दौरान तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। वैसे मैंने एक सवाल और भी इम्पॉर्टेंट किया था, जो मुझे अभी याद आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। जी हाँ, और इस पर भी हमारे गेस्ट ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सर्टिफाइड सप्लायर से मेडिसिन लेते हैं, प्रोडक्ट्स की अथेंटिसिटी हर हाल में इंश्योर की जाती है। ये उनके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है हेल्थ से है, तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अच्छा, कस्टमर फीडबैक की अगर मैं देखूं बात करूं तो हालांकि ये भी सवाल मुझे पूछना चाहिए था, बट आई जस्ट मिस्ड इट। बट मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह से लोग इस फीडबैक को लेते होंगे, या कोई देता भी है कि नहीं देता है, बट हाँ अगर सेटिस्फाइड नहीं होता होगा तो ज़रूर देता होगा। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दोस्तों याद आती है, वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ये सवाल भी मैंने किया जिस पर हमारे गेस्ट का कहना था कि फ्यूचर में ना डिजिटल हेल्थ केयर और पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ऑनलाइन कंसल्टेशन और होम डिलीवरी सर्विस भी बढ़ रही हैं, जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म भी कर रही हैं। ऐसे में एथिक्स का ख्याल रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस की ग्रोथ के। एथिकल स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ पैसा बना भी लें, लेकिन आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट और वो भरोसा जो है ना वो खो बैठते हैं। तो बस पूरे इंटरव्यू में जितनी भी बातें हुई वहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि फार्मेसी का जो बिजनेस है, जो दिखने में थोड़ा आसान लगता है, वो उतना आसान है नहीं। और फिर धीरे धीरे ये अपने तरीके से इवॉल्व भी हो रहा है। आज के दौर में एक सेक्टर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए और प्रिवेंशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं पर मिस्टर रहमान ने अपने सफर के जरिए दिखाया, बताया कि डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क हो, क्लियर विजन हो, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का भी जरिया होना चाहिए। सो ऑल टुगेदर मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरव्यू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मेसीज आज के दौर में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि सोसाइटी की वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मिस्टर रहमान की बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर फील्ड में आना चाहते हैं। उनका फोकस क्वालिटी, ट्रस्ट और सर्विस पर है, जो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह इनोवेशन, डेडिकेशन और कस्टमर केयर पर फोकस रखी जाए तो फार्मेसी सेक्टर मुस्तकबिल में और भी ज्यादा तरक्की करेगा और कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर बनाने में एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा करेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: बस बहुत हो गया रूटीन. Need an escape. एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम. द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है. जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
6: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं. याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है. फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए. अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें. आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं. FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: स्टूडियो की घड़ी में 11:02
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: हाँ जी वेलकम अहलन व सहलन खुश आमदीद स्वागतम। बिल्कुल सन एंड साउंड पे इस वक्त मैं हाजिर खिदमत हूँ लेकर आपका अपना प्रोग्राम भाई जहाँ पर बात होती है आपके हवाले से। और सन तो अपनी जगह है ही है जैसे कि मैं रोज कहता हूँ, साउंड आपकी गूंजती है और जहाँ पर हम खूब सारी बातें शेयर करते हैं, खूब सारी मालूमात हासिल करते हैं, दूसरे की बातें समझते भी हैं और वो एहसासात वो जज्बात एक दूसरे के शेयर करते हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास मौजू होता है डेली इस प्रोग्राम के लिए। तो आज भी कुछ आपके लिए खास हम खास लेकर आया हूं मैं, जिस पर हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानने की और भी ज्यादा कोशिश करेंगे और वहीं होगा एंटरटेनमेंट भी और खूब सारी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको करना बहुत आसान सी दो चीजें हैं। एक तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं 666-22107 पे, 6662217 पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं अपने, और दूसरी चीजें भी बता सकते हैं भाई। आज अगर कोई खासम खास दिन है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो मिलकर साथ सेलिब्रेट करेंगे, व्हाई नॉट। और वहीं हमें कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। तो जनाब खतर में अब गर्मियां जोरों शोरों पर हैं और सूरज बाबू जो हैं वो कह रहे हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो पिछले एक दो रोज में काफी मतलब उतनी तो गर्मी नहीं है भाई जो एकदम से शुरुआत में एकदम से जब मौसम बदला है बीच में अभी 4-5 दिन पहले तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि भाई कि अब इस बार गर्मियां तो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने वाली हैं, बट अभी इधर हमने देखा कि कुछ आराम हुआ है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज का वेदर का हाल।
4: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: तो भाईजान ये बता दूं कि ये जो हाल मैं बताने वाला हूं ये लिखित वाला हाल चाल है। जाहिर है जब आप इस वक्त बाहर होते हैं तो गर्मी जोरों शोरों पर होती है और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे गर्मी ज्यादा लगती भी है, टेम्परेचर ज्यादा महसूस भी होता है और हो भी जाता है गाड़ी वगैरह पे या बाइक वगैरह पे अगर आप सफर कर रहे हैं तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है। बट यहाँ इस वक्त मैं बता दूं कि दोहा में इस वक्त गर्मी है, नो डाउट इन इट, और कुछ हेज भी आज जो बताया गया है कि कुछ हेजी होने वाला है वेदर और जो गर्मी का सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। टेम्परेचर की बात करें तो 43 से 44 के दरमियान रहने वाला है जो यहाँ बताया जा रहा है, जबकि महसूस होने वाली गर्मी जो है जिसको फील्स लाइक कहते हैं वो 44 के करीब रहने वाली है।

वो भी बाहर हैं हजरात, और धूप से बचने के लिए एहतियात जो भी कर सकते हैं उसको इख्तियार करिए। दोहा का मौसम जो है गर्म जरूर है, लेकिन आपका दिन खुशगवार और कामयाब होने वाला है भाई, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ। नहीं भाई, मजाक से हटके अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और काफ़ी कोशिश ये कीजिए कि आप गर्मी से बच सकें। सनस्क्रीन वगैरह है वो भी लगा सकते हैं, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ कैरी करें। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये जितने भी हमारे भाई हजरात हैं जो मोहब्बत तकसीम करते हैं या मोहब्बत एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाते हैं, मेरा मकसद ये है कहने का, जितने भी हमारे भाई डिलीवरी वाले हैं वो जब आपके पास आए तो उनको पानी ज़रूर ऑफर कर दिया करें, और आप खुद भी ख्याल रखें। मैं उन सब भाइयों से कह रहा हूँ कि आप पानी का ख्याल जरूर रखें। जब भी आप कहीं जा रहे हो, आसपास आपको मालूम है ग्रोसरीज वगैरह हैं, तो जरा सा रुक के पानी लेना और पीना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वक्त तो गुजरता ही है और काम सभी को होता है, बट फिर भी अगर आप एहतियात करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और जरूरी भी है भाई, जरा सा इसका ख्याल जरूर रखें, ठीक है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हो गए, इनको जरूर शेयर करेंगे और वापस आने के बाद आपकी कॉल्स वगैरह भी लेंगे। आज का मौजू भी बड़ा दिलचस्प है और कहीं ना कहीं से हम सभी से कनेक्टेड है। हम सभी उस दौर से गुजरते हैं जहां हमारे पास एक रूम मेट होता है भाई, है? तो रूम मेट जो है, या किसी के साथ जब हम अपना रूम शेयर करते हैं, या हमारा कोई कजिन हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए आ जाता है घर में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, तो भी हमें ये चीज फेस करनी होती है। अगर कोई लड़की आई है किसी घर में, कोई कजिन है फीमेल, तो वो फीमेल के साथ रूम शेयर करती है। कोई लड़का है तो वो फिर हमारा मतलब कजिन वगैरह है तो वो हमारे साथ रूम शेयर करता है। तो ये एक सभी की जिंदगी का हिस्सा है, और रूममेट सिर्फ वो शख्स नहीं होता भाई जो आपके साथ एक कमरा शेयर करता है, बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है ये शख्स जो है। अच्छा रूममेट मुश्किल वक्त में मददगार अगर हो और तो खुशियों में वो साथ भी देता है, और घर से दूर एक दोस्त की तरह होता है। रूम शेयर करते वक्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की भी ज़रूरत होती है, ये तो हम जानते ही हैं भाई। तो एक दूसरे का एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक दूसरे की प्राइवेसी को भी हमें मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए और दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, जब रूममेट्स के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है भाई तो रहना आसान भी हो जाता है और ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार बन जाती है। कई दफ़ा रूममेट्स की दोस्ती इतनी मजबूत हो जाती है कि वो ज़िंदगी भर के साथी बन जाते हैं। तो आज का यही मौजू है, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे पहले हाफ में, कि भैया कि आपकी ज़िंदगी में रूममेट जो है वो कितने मायने रखते हैं और आपके कैसे उनसे ताल्लुकात हैं, और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने रूममेट के अंदर बदलना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो इस चीज को बदलें, तो जरूर शेयर करिए हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 666-22-107। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आने के बाद आप लोगों की कॉल्स वगैरह भी लेंगे। 443-443-77 नंबर है। फिलहाल एंजॉय कीजिए बेहतरीन ट्रैक, कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हुए। इस वक्त वैसे भी आपको मालूम है फिल्टर्ड सॉन्ग होते हैं, तो सोनू निगम कह रहे हैं तू, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए अजीज है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है,
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: जी वेलकम बैक, हेलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागत हम बिल्कुल सन एंड साउंड में सरवर मिर्जा हाजिर खिदमत। और जहां पर सन तो अपनी इस वक्त शेखी में है भाई, और वहीं साउंड आप लोगों की गूंजने वाली है। और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला था कि आज का मौजू जो है बड़ा दिलचस्प है हमेशा की तरह, कि भैया रूममेट के हवाले से बात करने वाले हैं आज हम। वो कौन से रूममेट हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है या बहुत ज्यादा तंग करते हैं, या जिनसे आपने कोई सबक लिया, या जो आपकी जिंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा है, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 443-443-7777, और वहीं मैसेज कर सकते हैं

0: 6 double 2 1 0 7 यहाँ पर हमारे साथ कोई जुड़ गया है, तो आइए उनके एहसास के हवाले से देखते हैं कि रूममेट कैसा होता है। भाई हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: हला सैयद खादिम हुसैन साहब, वेलकम, कैसे हैं?
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे। भाई कैसा गुजरा अभी तक का दिन खादिम भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम।
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कहाँ हैं? ऑफिस में हैं, बाहर हैं, धूप में हैं, किधर हैं?
1: बस ये ऐसा नहीं, धूप में तो नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन हूँ बाहर, धूप में नहीं हूँ।
0: तो गर्मी क्या कह रही है इस वक्त, ये बताइए?
1: गर्मी, हवा चल रही है माशाल्लाह, और गर्मी है लेकिन इतना महसूस नहीं हो रहा है।
0: ओके।
1: जितना आज सुबह से अंदाजा ऐसे हो रहा था कि गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है, मौसम अच्छा है माशाल्लाह।
0: सही सही, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको भाई सेहतियाब रखे और हिफ्ज़ो अमान में रखे। कादिम भाई आज का मौजू बड़ा खासम खास है, और वो ये कि रूममेट जो है आपकी जिंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं और कितना हिस्सा रखते हैं, और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उनके हवाले से?
1: सरवर भाई, जिंदगी परदेश में गुजर गई।
0: सही।
1: और ये जो परदेश के रूममेट होते हैं, जो रूम वाले होते हैं, वो ऐसे जैसे अपनी फैमिली मेंबर होता है। इसलिए कि उसके साथ आपकी हर बात शेयर होती है, और उसके साथ हर यानी दुख में भी खुशी में भी वो। लेकिन इसमें मैं एक बात कि अगर रूम वाले अच्छे हो तो ये जिंदगी इधर गुजारना ये मुश्किल नहीं है।
0: क्या बात है।
1: लेकिन अगर रूम वाले अच्छे ना हो, एक भी अच्छा ना हो, एक बंदा भी,
0: ओए,
1: तो बहुत मुश्किल होता
0: मतलब
1: है।
0: अगर एक से ज्यादा कोई आपके साथ शेयर कर रहा है, जो यूजुअली होता है हम लोग की यहाँ जब बैचलर लाइफ होती है तो हम तीन लोग चार लोग भी एक साथ रहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर एक भी कोई ऐसा है जिससे हम बुरा किसी को नहीं कह रहे, मगर एक भी ऐसा है जिसका मिजाज अलग है, ऐसा कह सकते हैं ना, तो भैया फिर जो है कहानी पलट हो जाती है।
1: हाँ, उसके साथ थोड़ा ये होता है ना कि गुजारा करना पड़ता है, और गुजारा करना मुश्किल हो जाता है उसके साथ। लेकिन ये है कि एक मजबूरी बन जाती है फिर तो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी हैं माशाल्लाह, ये नहीं कि एक मेरे साथ जितने भी रहे या रह रहे हैं माशाल्लाह, तो मैं कहता हूँ कि सबको अल्लाह पाक करे कि ऐसे बिल्कुल भाइयों के जैसे। और हमेशा हम लोग लाला बड़े भाई को बोलते हैं।
0: यस आई नो,
1: वो मुझसे छोटे भी, वो मुझसे छोटे हैं, तो वो दोनों मुझे लाला बोलते हैं, लाला पुकार दे, कभी नाम से नहीं पुकार रहा हूँ लोगों। और रिस्पेक्ट की मैं बात करूँ, मैं खुद उन लोगों को मना करता हूँ कि जो बनाना हो, जो खाना बनाना है, जो भी है, वो मैं खुद करता हूँ।
0: Okay.
1: उनको मना करता हूँ सख्त, और वो लोगों को मालूम है कि बस जब ये किचन में रहे तो हम लोग करीब जाएं तो ये गुस्सा करते हैं।
0: क्या बात है, बड़े भाई का किरदार पूरी तरीके से अदा करते हुए और अपने रूम के साथी को हर एक सहूलत देते हुए खादिम भाई, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है। आप माशाल्लाह ऐसे हैं, आपकी शख्सियत ऐसी है कि रूममेट तो खैर बहुत ही करीबी हो गए, दूसरे लोग भी फैजियाब होते हैं। खादिम भाई एक सबसे
1: जी जी जी एक बात शेयर करता हूँ, बस सिर्फ एक बात।
0: जी जी प्लीज।
1: तो रमजान के महीने में, रमजान के महीने में वो लोग मुझे कभी करीब आने ही नहीं देते। वो लोग बोलते हैं लाला आप आराम करो, बिल्कुल हमारे पास नहीं आना।
0: ओके।
1: लेकिन वो जो रमजान का ज्यादा सवाब है वो लोग कमाते हैं, तो ये इसलिए मैं
0: नहीं, वो एक्चुअली वो ये चीज होती है ना कि भाई रोजे में हैं, सीनियर हैं, तो जरा इनको आराम पहुंचाएं, तो उनकी नियत जाहिर बात है इस तरीके की होती होगी। अब साल के पूरे दिन तो आप माशाल्लाह अपना फर्ज अदा कर ही रहे हैं, तो कम से कम उन्होंने सोचा कि भाई रमजान में ऐसा कोई किस्सा कहानी याद हो जो शेयर करना चाहते हो, हाल फिलहाल का या पहले का?
1: पहले के, सबसे पहले ये था कि मैं जब यूएई में गया था, 96 की बात है।
0: ओके।
1: तो फर्स्ट टाइम मैंने एक कप चाय, ऐसे एक मेहमान आए थे और मुझे, मैंने कभी चाय बनाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम की बात है।
0: ओके।
1: तो वो उसके लिए चाय मैं बनाई, क्या चाय मैंने बनाई थी कि उसके अंदर वो जो पाउडर होते हैं वो दूध के, वो मैं इतने डाले उसमें पानी कम और वो पाउडर ज्यादा था। सही। तो हमारे वो भाई थे, वो दूसरे, वो मुझे देख के, मैं बोला क्या करूं, मुझे नहीं मालूम था कि कितना डालना चाहिए, लेकिन उसमें पानी कम और पाउडर ज्यादा, तो

0: आए तो नहीं बन पाई, आइसक्रीम जो है वो आप इस वक्त नौश या तनावल फरमाइए, कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि वो खाते हैं कि रूम वाले अगर हमारे जो साथ रूम में हैं, जो हमारे रूम शेयर करते हैं, जो हमारे रूममेट हैं, अगर वो वाकई अच्छे हों, भाई हम तो पूरी जिंदगी यार घर वालों से ज्यादा जिंदगी उनके साथ गुजार रहे हैं हकीकत देखा जाए, और जितने भी हमारे राज हैं और ये जो जिंदगी यहाँ गुजर रही है वो उनको ज्यादा मालूम है, वो उनको ज्यादा मालूम है। और मैंने अपनी बात यहीं से शुरू करी थी कि उस चीज का एहतियात करना, वो राज अपने पास रखना, वो कमियां, भाई हर एक चीज जानते हैं ना रूम वाले, जब आप साथ रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ छुपा ही नहीं है, और उसका एहतराम करना, उन चीजों का राज रखना, ये एक अच्छे रूममेट, एक रूम पार्टनर की या रूम शेयर करने वाले की निशानी होती है भाई, विच इज वेरी
1: सबसे बड़ी बात यही है सरवर भाई कि अगर आप किसी के राज रखें,
0: क्या बात है,
1: किसी के राज अपने बिल्कुल ऐसे के दफन कर दे बिल्कुल, तो वो सबसे बेहतरीन, मैं कहता हूँ वो इंसानियत का एक नमूना होता है।
0: सही सही, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इस रिश्ते में, एक्चुअली इस रिश्ते में एक्चुअली
1: जी जी, और इसीलिए तो ये रिश्ता बहुत प्यारा होता है, ये जो रोमेट का होता है ये परदेश में,
0: क्या बात,
1: ये बहुत प्यारा इसलिए होता है कि वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा राज जो है वो सीने में दफन करके वो जिंदगी गुजारते हैं, और ये जो मैं कहता हूँ कि इंसानियत का नमूना होता है ये, जो इंसान ये काम करता है
0: भाई, बहुत
1: अल्लाह ना करे
0: जी जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी है, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मगर हया के मुतालिक भी अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितनी चीजें ऐसी होती हैं जिसको राज रखना होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होती है, तो मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है उन लोगों के लिए, हम लोगों, हम जैसों के लिए जो अपना मुल्क छोड़कर बाहर आके जिंदगी गुजारते हैं, और जब तक बैचलर लाइफ में होते हैं पहले या बाद में, तो भाई ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा बड़ा रिश्ता है, इसका बहुत एहतराम करना चाहिए और इसमें जितनी हो सके मोहब्बत शेयर करनी चाहिए, मेरा तो ये कहना
1: जी जी बिल्कुल। और यूएई में मैंने वो ऐसे हम लोग एक फैमिली, हमारे वारा भाई था, वो अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो बच्चे साथ में थे, तो एक घर में हम लोग रहते थे, तो वो उधर परदेश जिंदगी मैंने नहीं गुजर, परदेश इधर कतर में आके मैं अभी, मैंने मतलब ये कि दूसरे लोगों के साथ रह रहा हूँ वैसे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि किस तरीके से गुजारनी है, किस तरीके से
0: भाई इसमें ये भी है ना, जब एक अरसा हो जाता है, और जब भाई एक तो होता है कि नया एकदम लड़का कोई आ रहा है बाहर, तो उसके लिए सारी चीजें नई हैं, और हमें एक दूसरे को समझने में वक्त भी लगता ही लगता है जब रूम में एक साथ शेयर कर रहे हैं जो भी है, मगर जब एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आप 2-4-5-6 साल गुजार चुके होते हैं एक बैचलर जिंदगी के, तो आपको पता है कोई नया आया है तो इससे भी क्या तवक्का है और मुझे भी कैसे रिएक्ट करना है, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं ऑब्वियसली, इसके अंदर भी एक्सपीरियंस का वादा है भाई।
1: बहुत अच्छा, बस आखिर में मैं सिर्फ इस बात पे ये कॉल खत्म करना चाहूंगा कि लेकिन FM 107 ने माशाल्लाह ये सब जितने भी हमारे बहन भाई हैं सबको इसे जोड़ के रखो, और हम लोग एक दूसरे के साथ अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तो इससे ये कि मैं खुद भी सबक सीख रहा हूँ ये बात करने से, ऐसे नहीं कि मैं ये बात कर रहा हूँ और मैंने सीख नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखा नहीं है या ना सिखा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी, इसलिए कि मैंने आपसे भी सुनी ये बात अभी, और भी आने वाले बहन भाई जो है उनसे भी सीखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि राज को दफन करना ये इंसानियत का नमूना है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत शुक्रिया आपका,
0: और ये इस रिश्ते में बहुत जरूरी है, बहुत बहुत शुक्रिया आदम भाई हम अपनी बातें शेयर करने का, अल्लाह हाफिज। तो भैया ये थे खादिम हुसैन साहब जो बता रहे थे कि कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात याद रखना रूममेट के हवाले से ही अगर हम बात करें कि वो कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में रोल प्ले करते हैं और उनकी कितनी अहमियत है हमारी लाइफ में, ये बात वाकई समझने वाली है। आइए दूसरों के भी तासरात जानते हैं और क्या उनका कहना है समझने की कोशिश करते हैं। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं 4433477 पे कॉल कर सकते हैं 4434377, और वहीं आप मैसेज भी कर सकते हैं 6622107। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल
0: अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन जुड़ गया है हमारे साथ?
2: हमजा।
0: हमजा, क्या हाल है हमजा, कैसे हैं? खैरियत से हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। कैसा हुआ आज का सवेरा और अभी तक का दिन? सब खैर है इंशाल्लाह,
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: रब की ज़ात का एहसान ये रहता है कि वो एक नई सवेरा देखने को देता है।

0: उस मालिक का एहसान है
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आज आपका टॉपिक भी जो है भाई कौन से राग छेड़ बैठे हैं।
1: यार, आप नए आए कतर में। मैं पहले ये जान लूं।
0: नहीं भाई।
1: अच्छा, आपको
0: नहीं भाई, 5 साल हो गए।
1: 5 साल हो गए। नहीं, फिर तो बहुत आए हमजा के साथ, बहुत गए। क्या तो भाई, क्या
0: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ यार भाई, इस मामले में ना इंसान को अपना जब्त बड़ा रखना चाहिए।
1: ये बात
0: भाई ने बताया ना,
1: ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: मैं उनके बातों से अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो उन्होंने बताया कि जिंदगी परदेश में गुजर गई। एक तो माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, ठीक है, अल्लाह खुश रखे उनको, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हमसे, हम तो आज के बच्चे, तो ये है कि उनका जिस तरह वे ऑफ टॉकिंग और आप बता रहे हैं कि भाई जिस तरह लेके चल रहे हैं वो अपने सालों के साथ, तो ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है भाई,
1: बहुत बड़े ज़र्फ की बात है। अच्छा, आपके साथ जो इस वक्त मौजूद
0: हैं, ये चीजें देखी है जी।
1: नहीं, बिल्कुल, आप बताएं, बात पूरी करें। जी,
0: मैं बता रहा हूँ कि हमने ये चीजें देखी है भाई, कि ऐसी ऐसी चीजों पे जना लड़ाई होते देखी है रूममेट्स के अंदर, कि जिसमें आप बिलीव भी नहीं कर सकते भाई।
1: अरे मैं खुद रह चुका हूँ उसमें, मैंने भी जिंदगी के भाई 3 साल गुजारे हैं शुरू के, और मैंने वो टाइम गुजारा है, और यकीन जानिए जो आप कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। जो लड़ाई मियां बीवी में नहीं होती वो रूममेट वालों में होती है भाई।
0: हकीकत बात है भाई, हकीकत बात है। बिल्कुल, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक खुश रखे सारों को, अल्लाह साथ रहने की, क्योंकि परदेश में आया है भाई हर कोई। वो मैं अक्सर एक जरा न्यू लड़कों को बोलता हूँ कि भाई अगर आप अपने मुल्क में ना तो आप चौधरी हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आप अपने घर पे हो, आप चौधरी हो, आपसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। इधर आके अपनी नाम मारनी पड़ती है भाई,
1: बिल्कुल,
0: आपको जब्त करना है,
1: जब्त जो
0: जब जाके आप कामयाब हो गए।
1: बिल्कुल, क्या खूब बात कही है भाई हमजा, और ये वाकई ये बात सभी को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि हम जितनी भी चीजें हमें नागवार गुजर रही है, नापसंद गुजर रही है साथ रहने वाले की, उसको जब्त कर लें। तो हाँ यार, जहर बात, एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें लग रहा है कि भैया नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, तो उसको भी बहुत प्यार से, लिहाज से, एहतियात से कहें, बताएं, शेयर करें कि यार देखो हमें तो जिंदगी साथ गुजारनी है, जब तक भी है मामला, तो लिहाजा इसको इस तरीके से कर लो। तो
0: कहते हैं कि लखनऊ वाले जो हैं वो अगर किसी को बेइज्जत भी कर रहे हैं तो वो इतने प्यार से करते हैं कि फील नहीं होता। वो वाली कहानी है कि अगर किसी को बताना भी तो इतने प्यार से बताएं कि भाई हम आपके साथ आगे
1: यार नहीं होता। क्या है कि इंसान अपनी ईगो पे ले जाता है, और देखिए खाली रूममेट से मतलब यही नहीं है कि यहाँ पर आकर जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हम हॉस्टल लाइफ में भी जब होते हैं अपने कॉलेज वगैरह की, स्कूल वगैरह की, तो वो भी एक टाइम ऐसा होता है, और जिसने अगर वैसा वक्त गुजारा है, कोई हॉस्टल से निकला है और उसने जब ये लाइफ देखी है, तो उसको आके इस लाइफ में जब प्रोफेशनल जिंदगी में वो रूम शेयर करते हैं तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो सारी चीजें वो देख चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि वो तो भाई वो एक जिंदगी का सफर उनका चलता ही ऐसा आ रहा है ना।
1: सही,
0: ठीक है
1: सही।
0: अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में लड़कों की ज्यादातर या इंडिया में लड़कों की ज्यादातर क्या होती है, छोटी बहन को बोल दिया, छोटे भाई को बोल दिया, ठीक है, घर में किसी फर्द को बोल दिया भाई ये काम कर दो यार, ठीक है। इधर जब आते हैं, जब करना पड़ता है, ठीक है,
1: तो एक एक यार तो बार, कहने एक से पहले भी सोचना पड़ता
0: है किधर फंस गए।
1: मैं समझ सकता हूँ हमजा का इशारा किस तरफ है, मैं समझ सकता हूँ।
0: तो अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह पाक सबको हौसला दे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला।
1: इम्पोर्टेंट यही है भाई कि देखिए ये दुआ ना करें कि अल्लाह ताला हमें कोई और रूममेट दे, अल्लाह से दुआ जरूर करें। जब भी आप रूम शेयर करने जा रहे हैं, आप अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो पहले तो आप ये सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ही, मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर ही कोई ऐसी कमी तो नहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो पहले अपने अंदर झांके और उसके बाद उनकी उनको तौफीक मिले इसकी दुआ करें। क्योंकि भाई कहते ना जिंदगी, बिल्कुल खुदा ना खास्ता क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं, देसी लफ्ज अजीरन जिसको कहते हैं ना, जिंदगी वो हो जाती है अगर रूममेट अच्छा ना हो भाई, खुदा ना खास्ता। अल्लाह ताला खुश रखे सबको।
0: वो वाला हिसाब है सरवर भाई, जिस वक्त इंसान की शादी होती है, ठीक है, तो दो ख्यालात के लोग आपस में मिलते हैं।
1: सही बात
0: है। अब आपका नजरिया अलग है, आपकी वाइफ का नजरिया अलग है, उनको समझने में

0: और आपको उनको समझने में टाइम लगता है।
1: सही है,
0: ठीक है। सेम कंडीशन रूम के ऊपर भी आती है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया जो बैचलर्स है वो ये समझ लें कि रूममेट के साथ वक्त गुजार लें, ताकि ये पता चल जाए कि भाई आगे आने वाली जिंदगी में बेगम के साथ वक्त गुजार लें, क्या क्या चीजें पेश आएंगी वो आप जब तो बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या कहने भाई हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए।
0: शुक्रिया,
1: अपना ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए, और इंशाल्लाह आपका दिन अच्छा गुजरे यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
0: इंशाल्लाह।
1: आप भी हमजा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो खादिनों हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, कौन है वो शख्स जो आपके साथ रह रहा है और जिसको आप बेपनाह चाहते हैं और मोहब्बत करते हैं, या फिर ऐसा है कि कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे, मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी कनेक्ट ही नहीं कर रहा, सलाम पहले कर लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
1: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद सरताज खान अली।
1: पड़ेगा, क्या बात है, बहुत जोर से पढ़ा है सरताज भाई। कैसे है सरताज भाई, खैरियत से?
2: बस आपकी दुआएं हैं, एक एक दिन कट रहा है।
1: अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला करे हम सभी के साथ, दुआ यही है। तो सरताज भाई, आज का मौजू सुना आपने अभी तक जो बातचीत चल रही है?
2: मौजू तो मैं स्टार्टिंग से ही सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ। जो मौजू मैं छोड़ूंगा छेड़ूंगा, अभी तक वो मौजू आया नहीं है।
1: अच्छा
2: जी जी।
1: तो मतलब क्या है, रूममेट अभी साथ में नहीं है या शेयर नहीं कर रहे हैं, या किया है पहले कभी आपने? तो यार जरूर वक्त गुजारा होगा रूम शेयरिंग में।
2: हमें तकरीबन कतर में हो गया तकरीबन 14 साल हो गए।
1: बिल्कुल सही।
2: और मैंने 10 साल हाउस ड्राइविंग किया और 3 साल तकरीबन मैंने टैक्सी चलाया।
1: ठीक है।
2: और अभी फिलहाल में मैं तो अभी वो कीटा फूड डिलीवरी में लगा हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो हमने रूम मैं खुद भी लिया था और जो है वो बेड सीट पे भी मैं रहा।
1: अच्छा, तो मतलब शेयर तो किया आपने रूम किसी ना किसी के साथ?
2: जी जी जी जी जी जी जी।
1: ओके।
2: तो मैंने रूम लिया था तो उसमें ये प्रॉब्लम था कि अगर एक बंदे भी कम हो जाए तो ढूंढ के लाना भी जरूरी है, वरना पैसे भी बढ़ जाएंगे।
1: ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है। तो आप खुदा ना खास्ता अगर कोई पसंद या दिमाग एक साथ नहीं बैठता है तो उसमें एक कहना चाहिए जब्त करने की, एक जब्त करने का मसला ये भी होता है कि खुदा ना खास्ता ये चले गए तो दूसरा लाने में कितनी मुश्किल होगी और वो पैसा भी भरना पड़ेगा जेब के ऊपर हमारी आ जाएगी, ये भी एक मसला होता है। सही।
2: हम लोग तो रूम ले लिए, मान लीजिए 2000 रुपए, उसमें 6 आदमी है तो हर आदमी में पैसे डिवाइड हो गया, अगर 5 आदमी हो गया तो फिर पैसे बढ़ जाएंगे पे।
1: सही सही सही।
2: अब उसमें अगर किसी का नाक बज रहा है तो पूरा रूम डिस्टर्ब होगा।
1: ना भाई, मैं सबको बता दूं जो नहीं समझ पाए होंगे गालबन, अगर ये बात नाक बजने का मतलब खर्राटों से है, और खर्राटों से है, स्नोरिंग से है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जाहिर बात है। और जबकि वो शख्स बेचारा हर एक कोशिश करता है कि भाई ऐसा ना हो और मैं लिहाज और एहतियात करूं, बट फिर भी भाई नेचुरली जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है।
2: अब वो नाक बजेगा, खर्राटे आएंगे तो पूरा रूम डिस्टर्ब होगा, वो सो रहा है, सारे बंदे जग रहे हैं, ये अलग मसला है
1: कि भाई पहले ये सो ले उसके बाद हम लोग सोनेंगे, पहले इनकी नींद पूरी करा लो किसी तरह से, ये भी एक मसला होता है। सही सही।
2: और दूसरी सबसे अहम बात ये भी है, कोई 2 महीना आया उस बाहर में आया और जो है उसको काम मिल गया, फिर वो रूम छोड़ के चला गया, फिर दूसरा बंदा आया, फिर तीसरा बंदा आया, उसी में कोई कोई वो खटमल भी लेके आ जाता है। ये सबसे बड़ी की
1: भाई क्या सच्ची बातें हो रही हैं इस वक्त, और क्या चीज जो वाकईतन चीजें पेश आती हैं उसका इजहार करते हुए सरताज भाई। नहीं वाकई ये चीजें तो हैं, खैर, और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ भी जाती है। बहरहाल
2: ये वो पूरा रूम का सफाई करना, ये करना, यही सब फंडे हैं वो शेयरिंग में भाईजान।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही सारी परेशानियां हैं शेयरिंग के अंदर, और अल्लाह ताला सबको अच्छा रूम पार्टनर दे भाई, यही दुआ भी है और उम्मीद भी यही करता है इंसान कि हमारे साथ खैर का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप भी भाई, आप भी याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तो जनाब ये थे सरताज साहब हमारे भाई जो बता रहे थे कि किस तरीके से रूम पार्टनर का जो मसला है वो बढ़ जाता है जब हम एहतियात ना करें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर करना खैर मुमकिन भी नहीं होती, बट फिर भी एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक दूसरे का लिहाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए ब्रेक पर जाने से पहले एक साहब से और बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: यूसुफ।
0: यूसुफ भाई कैसे हैं? यूसुफ भाई खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ भाई कैसा गुजरा अभी तक का दिन? यूसुफ भाई मैं माजरत चाहता हूँ, बस मैं आपको कॉल बैक करूंगा इंशाल्लाह इस नंबर पे, या आप मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगा, क्योंकि अजान का वक्त हो चला है तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। वापस आने के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे बात जो है वो हम करेंगे, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह वापस आने के बाद चर्चा जो है वो जारी रहेगी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: दुनिया में जो शख्स अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर के रास्ते बनाता है। अल्लाह ताला उनकी नस्लों में खैर और भलाई मुंतकिल फरमा देता है। आपके पास जब तक ताकत और इख्तियार हो अल्लाह के बंदों पर एहसान कीजिए, उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए, क्योंकि इंसान की ताकत और इख्तियार हमेशा बाकी नहीं रहते। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सेहत और सलामती के साथ खैर व आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107।
1: दिल से देसी।
4: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
7: हेल्थ गाइड,
6: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक।
7: इलाज और एहतियात तक
6: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
7: दिल से देसी।
6: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूरे इस्लाम,
2: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड
5: RJ सर्वर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
6: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। बिल्कुल भाई, सन एंड साउंड पे इस वक्त सन अपने जोरों शोरों पर और यहां पर आपकी साउंड भी जोरों शोरों पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज अपने रूम मेट, रूम पार्टनर जो हमारे साथ एक बड़ा जिंदगी का हिस्सा गुजारता है जब हम बैचलर लाइफ में होते हैं भाई, और वहीं अगर हमने हॉस्टल में वक्त गुजारा है पढ़ाई के वक्त अपनी, तो भी हम इस चीज़ से या इस शख्स से या इस तरीके से, इस लाइफ से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आइए आप लोगों का हाल जानते हैं कि भाई कौन क्या क्या बता रहा है, और जल्दी से किसी को कनेक्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम सरवर भाई, बात कौन बात कर रहा है?
6: सरवर भाई कौन बात कर रहा है?
7: सरवर भाई कौन बात कर रहा है?
6: अच्छा, मैं आपको पहचानूं कि आप कौन है या आप मुझे पहचानना चाह रहे हैं? पहले इधर कौन है?
7: यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सरवर भाई कौन बात कर रहा है?
6: सरवर भाई कौन बात कर रहा है? सरवर भाई कौन बात कर रहा है
7: भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरवर भाई,
6: हाँ,
7: कौन बात कर रहे हैं? आप तो सरवर है, चलो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ
6: भाई, मैं मुदस्सिर भाई।
7: वो तो मैं मुदस्सिर हूँ ना, लेकिन मैं आप कौन कर रहे हैं सरवर
6: भाई? अब नहीं, अब जीत गया मैं, देखिए बाजी मार ली मैं, ऐसी बात नहीं है। कैसे हैं सर, खैरियत से?
7: ठीक ठाक, अल्लाह का करम है।
6: क्या बात है भाई। तो आज मुदस्सिर भाई हम बात कर रहे हैं रूममेट, रूम पार्टनर के हवाले से, क्या कहना चाहते हैं, कौन है आपके साथ, क्या आप रूम शेयर कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किन के साथ कर रहे हैं, और अगर उनके साथ कर रहे हैं तो फिर वो कैसे हैं, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं।
7: इससे पहले एक शेर सुनो सरवर भाई।
6: अच्छा, इरशाद इरशाद इरशाद।
7: सरवर भाई कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत बड़ी बिरहम चीज है?
6: होए होए होए होए,
7: कौन
6: कहता है कि मौत बहुत बेरहम चीज है?
7: परदेश का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया।
6: ओ हो हो हो हो हो हो हो, मुदस्सिर भाई क्या भारी बात कह गए, क्या बात। ये खुद लिखा है क्या?
7: पता नहीं, ये अभी आपका शो शुरू हुआ था तो जहन में ये याद आया।
6: अच्छा यार, अच्छा है, अगर एकदम से हुआ है और आपने लिखा है तो अच्छा है, और मौजू के हवाले से है आज तो।
7: इसको, ये तो, हाँ। इसको आप सडनली पोइट्री कह दे सर और भाई।
6: क्या बात है यार, क्या कहने। तो जो साथ में रूम शेयर कर रहे हैं उनका क्या हाल है ये बताइए पहले तो।
7: ठीक ठाक ठीक, अल्लाह का करम है। मैं अच्छा नहीं हूँ सरवर भाई, मैं खुद अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ।
6: हाय हाय, सुनिए भाई सुनिए, मुदस्सिर भाई के साथ जो वक्त गुजार रहे हैं और उनके रूममेट अगर ये बात सुन ले तो खुश हो जाएंगे, और आज आपके जाने से पहले बिरयानी बनी मिलेगी आपको घर में।
7: हमारी रूम में सरवर भाई एक जिस तरह पहले खादिम भाई था, खादिम भाई की हम उम्र में मेरे ख्याल में वो होगा, वो भी बिल्कुल खादिम भाई की तरह है। परदेश में पहले वो दुबई में था, दुबई में उसने परदेश गुजारी है, अब वो इधर कतर में आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो

0: बंदा है वो भी बिरयानी का पक्का मतलब वो मेकर है, बहुत जबरदस्त अच्छी बिरयानी बना रहा है वो भी।
1: अच्छा।
0: तो वो जो बंदा है वो भी कमाल का बिरयानी
1: अच्छा,
0: बना
1: खाने,
0: रहा है।
1: खाने पर कुछ होती है बातचीत दिन बटे हुए हैं कि पहले संडे में तुम, मंडे में मैं, ट्यूसडे में तुम, फिर वेनेसडे में मैं, ऐसा करके कुछ दिन बांट रखे हैं खाने बनाने?
0: एग्जैक्टली सरोज भाई आपको पता है जिस तरह आप लोगों का ये शो है, ये जो FM 107 है, ये तो डीसी लोगों का है और हम बिल्कुल बिल्कुल फेवर डीसी लोग है। तो हमारा डीसी लोगों का जो जिंदगी है ना ये बिल्कुल टाइम टेबल की तरह है। हम लोगों ने बिल्कुल पहले से सब कुछ चीज रखी है कि भाई अच्छा। आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर होगा, परसों आपका नंबर।
1: ये तो सही है, ये तो सही है। मैं तो क्या करता था कभी कभार जान बचाने के लिए, ओए होए क्या बिरयानी बनाई है यार मोहम्मद भाई तुमने, जबकि वो खाई नहीं जा रही, मगर कम से कम खाना बनाने से तो बच गया। तो मैं तो भैया ऐसे भी तारीफ कर देता था। तो आपकी वही वाली तारीफ तो नहीं है
0: सरल भाई? खैर मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ आप जैसे, लेकिन जब मैं रूम में जाता हूँ तो जो रूममेट पे लोग हैं उनको मैं हमेशा ही कहते हैं कि भाई आप जो चाय बनाते हो ना कमाल की बनाते हो,
1: ताकि मिल भी जाए और बनानी भी ना पड़े। ऐसा ही है
0: सही। ये तो होशियार लोगों के लिए बात है, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है ना, लेकिन उन लोगों की तारीफ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक बना।
1: मजाक कर रहा हूँ यार, पता चला इसके ऊपर ही कुछ बात शुरू हो जाए कि वो सर्वर कह रहा था तुम इजीली तारीफ कर रहे हो मेरी दुनिया नहीं, ताकि मैं ही बनाऊं, ऐसा नहीं है। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तो मजाक है। और हकीकत यही है भाई कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, वो खाना बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनाते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला खुश रखे।
0: दूसरी बात आपकी जो प्रोग्राम है, आपके जो मौजू है, बिल्कुल मैं हमेशा कसम से सारे लोगों को, अपने भाई और दोस्तों रिश्तेदारों को ये बात कहता हूँ कि आपको पता है सरोज भाई, ये दुनिया में जितने अरबों लोग हैं ना, ये बिल्कुल पहले अपने आप से स्टार्ट करनी है। अगर मैं ठीक हूँ तो खुदा की कसम दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। अगर मैं खुद ठीक हूँ,
1: सही,
0: आप भी ठीक है, बाकी भी ठीक है, पहले खुद को ठीक करना है तो बाकी लोग ठीक होंगे। लेकिन मैं अगर खुद ठीक नहीं हो तो आपको दुनिया में कोई भी अच्छा बंदा नहीं मिलेगा।
1: सही, सही भाई, बहुत बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। और ये ऐसा अमूमन कम होता है कि हम अपने अंदर या अपनी तरफ कम देख पाते हैं, और होता यही है कि शैतान जो है दूसरे की तरफ ज्यादा दिखाता है। जब ये बात शुरू कर लें या ये आदत बना लें कि हम पहले अपनी कमियों को देखकर उनको सेट करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला दुनिया और लोग अपने आप ही खूबसूरत लगने भी लगते हैं और हो भी जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। सबसे जो सरोज भाई अच्छी और बुराई जो चीज है ना, पहले बंदा अपने आप से स्टार्ट करे तो बाकी जो प्रॉब्लम वगैरह है ये बिल्कुल बाद में नहीं आते। पहले बंदा खुद ठीक करे, बंदा खुद ठीक हो तो बाकी जो लोग है वो कोई भी बुरा नहीं है इंशाल्लाह। मेरा ही तो कहना है आपके मौजू के हवाले से,
1: जो
0: दो तीन बातें जहन में आते थे वो तो बस शेयर कर दिया सरोज भाई।
1: अरे भाई एलन व सहलन, और यहाँ तो माशाल्लाह जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े सभी ने तारीफ करी अपने रूममेट की, और अल्लाह ताला सबके अंदर मोहब्बतें कायम रखे और एक दूसरे को माफ करने की भी तौफीक अता करे, यही मेरी दुआ है। सब एक साथ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मदसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एहलन वसैलन, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये थे मुदस्सिर भाई, और बताते हुए कि किस तरीके से अपने ऊपर ज्यादा काम करा जाए तो दूसरा तो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। आज का जो मौजू है वो यही है कि भाई क्या आपको अपने रूममेट में कोई ऐसा चेंज चाहिए जो जरूरी है और आप चाहते हैं करना, और आपके रूममेट जो है वो आपके साथ कैसे हैं और कितने प्यारे हैं और कितने खूबसूरत हैं, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको बताइए 4434377, और मैसेज भी कीजिए, मैसेज भी आपके पढ़ूंगा मैं 666221077। यहाँ कोई और हमारे साथ जुड़ गया, ये बात करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: वेलकम, कौन है हमारे साथ?
2: जिसका कॉल ड्रॉप हो गया था, अजान का टाइम था।
1: हाँ ओके ओके,
2: यूसुफ भाई
1: वेलकम बैक। तो यूसुफ भाई अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे जी?
2: सरवर भाई अभी मुदस्सिर में जो लास्ट पॉइंट उठाया ना, तो सबसे अच्छी बात यही थी कि अपने आप को पहले ठीक करना है, अपने आप को देखना है कि मैं कैसे हूँ, बाकी फिर बाद में दूसरे पे उठाने। मेरा तो लाइफ ही चीजों पे गुजरा है, तकरीबन 70% जिंदगी तो मेरा मेट्रूम के साथ हुआ है।
1: ओके ओके ओके, उफ लंबा अरसा गुजर गया। यहाँ कतर में कितने टाइम से हैं आप?
2: कतर में तो 15 साल से, लेकिन
1: माशाल्लाह
2: पाकिस्तान में कराची इधर उधर बहुत घूमा फिरा।
1: ओके।

0: जिम्मेदारियों की वजह से जाहिर, क्या घर के बड़े बेटे हैं आप?
1: बड़े बेटा तो बड़ा ही समझो।
0: हाँ ओके, तो जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, कहने का मतलब ये, जब भी इंसान जो है घर जल्दी छोड़ देता है जब जिम्मेदारी होती है भाई, तो मैं समझ सकता हूँ। तो
1: असल में आजकल तो जिंदगी ऐसी है ना कि आपको की तकरीबन आधी जिंदगी तो आपकी बाहर रूममेट में ही होती है, क्योंकि फैमिली को तो हम दो साल बाद 6 महीने का 5 महीने का टाइम देते हैं।
0: एग्जैक्टली यही
1: बाकी तो हमारा जिंदगी तो इन लोगों के साथ होता है। अगर ये लोग अच्छी नहीं होगी, हम अच्छा नहीं होगी, तो हमारा लाइफ और भी बर्बाद हो सकता है। तो अपना लाइफ बनाने के लिए अपने आप को ठीक करना है पहले।
0: बिल्कुल, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। और अगर कोई ऐसी बात है जो नागवार गुजर रही है एक दूसरे की, तो भाई आपस में डिस्कस करके उसको हल कर लें, वही सबसे अच्छा तरीका है।
1: रूममेट का मकसद यही होता है कि अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, अगर हम हमारी रूम में 8 आदमी रहते हैं,
0: ओके
1: ठीक है,
0: ओके,
1: अगर किसी को कोई इशू है ना, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, हम उसको बोल रहे हैं भाई आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो उसको हम मना लेते हैं पहले।
0: ये बात तरीके से एक दूसरे को समझा के, क्योंकि भाई वक्त साथ गुजारना है एक दूसरे के।
1: एक बात मैं आपको बताता हूँ, बेडलेस पे आदमी मेरे पास रूम में आया था कि मेरे को बेड चाहिए। मैं बोला ठीक है बेड आपको मैं दे दूंगा, तो मैंने उसको बेड दे दिया था तकरीबन 200-250 रियाल का। तो वो आदमी इतना खराटी मारा था
0: कि माजरत मुझे हंसी आ गई, मैं माजरत चाहता हूँ, बट मुझे पता है एक्चुअली ये चीज, और हमारे साथ मेरे दोस्तों के साथ मेरे साथ बड़े बड़े किस्से कारिया हुए इस चीज को लेके, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो बहरहाल मैं माफी चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है भाई सभी के अंदर होती है, मैं भी इस प्रोग्राम का शिकार हो जाता हूँ कभी कभार जब बहुत थका हुआ होता हूँ।
1: नहीं सर भाई बात तो सुनो ना, तो कुछ लोगों ने बोला कि यार ये सुबह आपने कौन से आदमी को लेके आए। मैं बोला भाई तुम लोगों में कोई खराटे नहीं मारते, बोलते नहीं। मैं बोला मैं सबका वीडियो बनाऊंगा आज रात।
0: और रात में जो जुगलबंदी हुई है फिर उस वीडियो के अंदर
1: यार कसम से मैंने उसको बोला कि मुझसे स्टार्ट करो, मुझसे ज्यादा खराटे कोई नहीं मारा था, लेकिन वो बेचारा जब नया आया था तो उसको तंग करने के लिए
0: पता चला कि सबसे हल्के खराटे वही ले रहे थे, बाकी सब बहुत बड़े बड़े खराटे ले रहे थे। Oh my God, होता यही है ना, जब तक खुद सो रहे हैं तो एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे।
1: जब जिसका जो भी कंप्लेंट था ना, तो मैं उसको बोल रहा था कि भाई ये आदमी जो है ना, ये 12-1 बजे सोता है, अगर इससे पहले आप लोग सोया करोगे ना, तो आप सो जाओगे, फिर इनके खरातों का पता
0: भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है,
1: क्यों जैसा मैं करता हूँ, मैं तो सबसे पहले सोता हूँ, अगर मैं खुद खराटी मारता तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: इसमें भी रेस लगना शुरू हो गई, पता चला कि था मैं पहले सोऊंगा। क्या बात है भाई,
1: लेकिन अल्लाह माफ करे, वो आदमी मेरी दे इतना अच्छा साबित हुआ ना, इतना अच्छा साबित हुआ,
0: माशाल्लाह
1: कि यकीन करो अभी वो अपना फैमिली के साथ रहता है, नहीं है कि वो चला गया है कहीं और, इधर ही है।
0: आपके साथ जो वक्त गुजारा वो आपको हमेशा याद रहेगा।
1: लेकिन वो कसम से मैं छुट्टी भी गया था ना, मैंने कभी उसको फोन नहीं किया था, उसने हर महीने मेरे को 1000 रियाल भेजा था।
0: मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि भाई वो फिर रूममेट तो नाम के रह जाते हैं, बट वो खुद एक फैमिली बन जाते हैं, खुद एक
1: वही तो एक रूममेट का जो है ना, वो एक दोस्ती पे चेंज हो गया, एक रिश्ते पे चेंज हो गया, क्योंकि एक आदमी तुमको इतना बिलीव करता है कि वो आप जाओगे मुल्क में 4-5 महीने बैठ के, वो आप हर महीने 1000-1000 रियाल बेचता है, तो समझो ना कि क्या कौन सा रिश्ता हो गया ये।
0: बिल्कुल सही,
1: रूममेट का सबसे पहले यही फायदा होता है, अगर आप अच्छा है तो आगे सामने वाला खुद ब खुद अच्छे होते हैं, बनते हैं, वो अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह।
0: और भाई फिर ये भी तो है ना कि आपका ख्याल भी तो है उसमें, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है, कोई और बात है, तबीयत खराब है, कौन है देखने वाला, आपस में एक दूसरे के साथ तो सबसे पहले हम ही लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं रूममेट
1: का, देखभाल कर रहे हैं ना हम, खाने पीने पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा शुरू में होता है ये तो जो होता है ना, क्योंकि जब 10 आदमी 8 आदमी एक साथ रहते हैं ना तो कोई ऊंच नीच तो होते हैं
0: सही,
1: लेकिन पर बाद में क्या होता है जब कहने पे बैठते हैं भाई आपने आज तुमने ऐसा किया दोबारा नहीं करना, ओके भाई ओके आई एम सो सॉरी, बस यही उसका तरीका होता है। ये नहीं है कि आज बहस करोगे दिल में रखोगे बात तो इसी टाइम नहीं गुजरता है, फिर
0: सही।
1: जो हो गया रूम में उसको खत्म करो उसी टाइम बस, फिर यही एक जिंदगी है यही एक लाइफ है हमारा।

0: क्या
1: तो
0: बात
1: जब है? यहाँ पे खुश नहीं होगे तो फिर परदेश में खुशी नहीं होगी तो फिर कहाँ खुशी मिलेगी हमको?
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, क्या बात कही है यूसुफ भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।
1: थैंक यू सो मच। जा रहा था बस,
0: बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात
1: होगी, ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू मेरी तरफ से, दुआ सुना वाला सब कुछ,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई, आमीन, आप भी खुश रहिए, थैंक यू सो मच। तो भाई बातचीत हो रही है रूममेट के हवाले से और रूम वालों के हवाले से, जो जाहिर है ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं हमारी, जो हमारे साथ एक बड़ा वक्त भी गुजारते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और जाहिर बात है नाइतफाकियाँ भी होती हैं, वो तो घर वालों में भी होती हैं, सगों में भी होती हैं, बट उन चीज़ों से आगे बढ़ना, उनको अवॉइड करना और फिर आगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आने के बाद तो बातचीत भी जारी रहेगी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12:02। और भैया आज खासम खास दिन एक ये भी है कि अनुभव सिन्हा साहब, जो बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर अब ज़्यादा हैं, और उनका आज जन्मदिन है, उनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और 22 जून को वो मनाते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी तालीम हासिल की और मुकम्मल की, और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अब अपनी फिल्मों में समाजी और इंसानी मसाइल को नुमाया करते नजर आते हैं। यूजुअली अनुभव सिन्हा साहब ने टीवी से अपना करियर शुरू किया, आगाज किया, और फिर उसके बाद हिंदी सिनेमा में एक अच्छे डायरेक्टर बन के उभरे, और कुछ बड़ी फिल्मों में आर्टिकल 15, थप्पड़, मुल्क, तुम बिन, अनेक, भीड़, रावण और 10 जैसी फिल्में शामिल हैं। और तो उन्हीं को बधाई देते हुए, उन्हीं को मुबारकबाद देते हुए उनकी मूवी से ये खासम खास गाना एंजॉय कीजिए। तुम बिन से एक बड़ा ही प्यारा गाना जगजीत सिंह की आवाज में, कोई फरियाद। हाय हाय हाय हाय हाय हाय।

हाय हाय, ज्यादा भारी हो गया लग रहा है। तूने रंजीत साहब की भी आवाज भाई, ओहो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आज तक। जागते तुम्मिन मूवी बहुत प्यारी मूवी थी और काफी हिट मूवी रही, और आज भी अगर आप देखते हैं तो एक नई कहानी दिखती है उसके अंदर। वाह, क्या शायरी है भाई।

0: और जहां पर सन तो अपनी पूरी इस वक्त तेजी में साउंड आप लोगों की बातचीत चल रही है आज आपके ही और मेरे ही एक मुद्दे के हवाले से, जहां पर हम रूममेट्स रूम पार्टनर के हवाले से बातचीत कर रहे हैं जो हमारे साथ रूम शेयर करते हैं और उनका हमारी जिंदगी में कितना हिस्सा है और कितना हाथ है उसको अच्छा बनाने में, उसको परेशानी में डालने में। तो ये सारी चीज़ें अभी तक लोगों ने अपने अपने एहसास जो है हमारे साथ शेयर करे और बहुत कुछ हमें बताया। आइए अब बढ़ते हैं जरा मैसेजेस की जानिब और देखते हैं कि क्या कहना है आप हजरात का। तौफीक भाई ने यहाँ पर फोटो भेजा, वाह क्या बात है, पूरे फूल में घिरे हुए तौफीक भाई, माशाल्लाह। सलाम कहते हैं और कहते हैं अलवाकरा से मोहम्मद तौफीक। बिल्कुल तौफीक भाई, बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं आप, बड़ा ही प्यारा फोटो है आपका, ये अल्लाह ताला खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, एक सॉन्ग रिक्वेस्ट, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, क्या बात है, कबूल कीजिए कबूल। कौन है हमारे साथ भाई, ये तो आज अनुभव सिन्हा की बर्थडे थी तो इसलिए खासम खास ट्रैक कुछ मैंने निकाले हैं, गाना और है उनके हवाले से तो वो भी हम चला देंगे। हाँ ये क्या बात है, अबू जर साहब है हमारे साथ, कहते हैं कि अनुभव सिन्हा की बर्थडे है तो क्यों ना रावण से चम्मक छल्लो हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा साहब, वो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। कहते हैं मेरा रूममेट मेरा भाई जैसा है, उसका साथ में 5 साल से है, मेरा हर मुश्किल में वो मेरे साथ है, क्या बात है यार। महफूज रोबिन हमारे साथ हैं, रोबिन ओके महफूज भाई, आप इसी तरीके से खुश रहें अपने रूममेट के साथ, वो आपका साथ निभाते रहें, यही दुआ है बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग सरूर भाई, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम साउंड सन एंड साउंड, दिल से देसी यूसुफ भाई, सबको मंडे मॉर्निंग विश कर रहे हैं। कहते हैं सरूर भाई, मैं भी बैचलर लाइफ में दोस्तों के साथ रूम शेयर किया हूँ, हम लोग 4 थे लेकिन कभी भी एक दिन लड़े नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बल्कि एक दूसरे के लिए हेल्प भी करते थे माशाल्लाह से। कुछ लिसनर्स अपने बुरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई देखिए वही वाली बात है ना कि जिन्होंने, यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए, जिन्होंने अपने अपने तासरात रखे और बताया अपनी लाइफ के हवाले से, अभी तक रूममेट के हवाले से जिन्होंने बात करी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ तो होती हैं भाई। देखिए वही वाली बात है ना कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ वास्तु आती है, तो हम तो जब घर वालों के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो यहाँ तो हम दोस्त हैं तो दोस्त तो लड़ते ही लड़ते हैं। रमेश बाबू क्या कहते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं, क्या बात है, नहीं दोनों ही अमूल्य हैं, क्या बात है, गुड मॉर्निंग कहते हैं। और यहाँ पर कोई वॉइस नोट भेजा है, क्यों भाई आज बात करने का दिल नहीं है आपका रमेश बाबू, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रूम पार्टनर अच्छा है लेकिन ओ सिगरेट और ओके एवरी डे तो दिमाग ओके परेशान हो जाता है आज। यार पूरा मैसेज इतना ही, कितना बीप बीप करूं मैं इसके अंदर, कौन है, फाहद सिकंदर है फाहद भाई, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ सकता हूं और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और दुआ ही कर सकते हैं भाई, और आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह आपको भी आराम दे। और देखिए कोई ऐसी बात है तो जब इतनी परेशानी हो जाए तो फिर कुछ और भी सोच लेना चाहिए, बस छोटा सा एक मशवरा है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ओके कहते हैं भाई इसे चीज है क्या कहते हैं, कुछ एम के हैं मेरे साथ और बहुत ही देसी स्टाइल में मुझसे कुछ कहने चाह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एम के हैं कौन, पहले तो नाम भी पूरा नहीं है यहाँ पर भाई का, पिछले मैसेजेस दिख नहीं रहे यहाँ पर। ओके एनी हाउ आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल स्किप कर देते हैं इसको। चलिए जी अब जल्दी से आइए जान लेते हैं कि क्या है इस वक्त?
1: कतर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट।
0: आईवा ट्रैफिक का हाल और फिर एक ब्रेक की जानेब हम बढ़ेंगे। तो साहब अगर आप इस वक्त दफ्तर या अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं तो थोड़ा एहतियात कीजिए, क्योंकि लंच वगैरह का टाइम होता है तो इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा होता है। वैसे क्योंकि बच्चों के पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ स्कूल बंद भी हो गए हैं, तो किसको मुबारकबाद दूं, बच्चों को मुबारकबाद दूं या वालिदैन को मुबारकबाद दूं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अब जो होगा माशाल्लाह से घर में वो देखने वाला सीन होगा। हर घर से आवाजें माशाल्लाह आएंगी और मजे आएंगे, तफरी आएगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल बिल्कुल ठीक दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डी रिंग रोड, सलवा रोड और वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो कॉर्निश पे भी और बिल्कुल सीरिंग रोड पे भी सब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फाइन दिख रहा है। जो मैप मैं देख रहा हूँ अपने सामने तो कहीं ऐसा कोई मसला नहीं दिख रहा है ट्रैफिक का। फिर भी आप हमें अपडेट कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं आप हमें और कॉल भी कर सकते हैं ट्रैफिक के हवाले से अगर आप कोई अपडेट देना चाहते हैं। तो साहब सभी से दरख्वास्त है कि स्पीड लिमिट की पाबंदी करें, लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से गुरेज करें। रोड मेंटेनेंस और डाइवर्जन साइंस वगैरह पर तवज्जो दें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसा काम वगैरह चल रहा है, मेंटेनेंस वर्क वगैरह उसके इलाके में अगर आप हैं तो भैया ज़रा सा ख्याल करके चलिए। जितने भी ट्रैफिक साइन होते हैं, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, वो हम आपके हम सब के लिए होते हैं, तो एहतियात से काम लीजिए और एक जिम्मेदार होने का फर्ज निभाइए। आइए साहब, अनुभव सिन्हा की आज बर्थडे, तो उनके हवाले से उनका एक और गाना प्ले करते हैं और वापस आने के बाद चर्चा जो है वो जारी रहेगी। कौन? अरे कौन जी, मैं कौन? अरे वही तो कहा कौन, पता चला एक बार दरवाजे में खड़े और यही आवाज आ रही बार बार, घर वाले समझ नहीं पा रहे कौन आया बार। एंजॉय कीजिए ट्रैक दिल से दे।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देश।

0: बस वक्त रहते उनको पब्लिक भूल गई।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: वेलकम बैक, हेलो नमस्ते। तो भैया आज बातचीत चली रूममेट रूम पार्टनर के हवाले से, वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का या हमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ गुजार दिया और इसी सिलसिले में बातचीत जारी है और देखते हैं अब हमारे साथ कौन जुड़ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू, कैसे हैं कबीर साहब? सॉरी,
0: लंच हो गया लग रहा है। पेट भरा हुआ है शहजादा भाई का, क्या बात है शेखो, कबीर भाई याद आ रहे कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: खैरियत है। भाई आज का जो मौजू रहा उसमें आपकी क्या टिप्पणी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रूममेट रूम पार्टनर के हवाले से क्या कहना, उनकी कोई ऐसी चीज जो पसंद है, कोई ऐसी चीज जो पसंद नहीं आती शहजादा सलीम साहब?
2: जी मैं तो पहले अलग अलग रूम में रहा, अलग अलग, तो बाद में फिर एक रूम में काफी अर्से होता, तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए। जो पार्टनर है हमारे तो वो जरा उम्र दराज भी है, तो उनमें एक सेंस बहुत है, सेंस मतलब कोई ऐसा काम,
0: समझदारी बहुत है,
2: बहुत ज्यादा बहुत, यानी उनको किसकी मेरी वजह से यानी किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए, बड़े दरवाजे आस्ते खोलना और आस्ते कपड़े आराम से चेंज करके अपना ना कबाड़ अलमारी आस्ते से खो रहा है,
0: क्या बात
2: है। सर यहाँ तो उनका बड़ा बड़ा कॉम्बिनेशन है ना, डिसिप्लिन में ना बहुत जबरदस्त है, और तो रूम में 4 बेड है तो 2 अलग अलग मिजाज के हैं, तो उनकी गलतियों को हमें ना इग्नोर करते हैं, और जहाँ तक उनको भी हमें ना लेके चलते हैं कि भाई थोड़ा सा ना लिहाज रखे।
0: हाँ जाहिर बात है कि भाई बड़पन दिखा लें हम भी।
2: हाँ, क्योंकि वो है उम्र में छोटे, तो उनका एक अपना एक अलग नजरिया होता है, अलग हिसाब किताब होता है। लेकिन जो रूम के जो समझदार जो लोग हैं, जो मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दिल में कोई कीना नहीं, सबसे बड़ी बात चीज ये, दिल में कोई कीना नहीं कि मेरी वजह से सामने के उसके दिल में कोई खराश आ जाए या कुछ मेरे बारे में गलत फील करे, ऐसा नहीं कि ये जो भी है नजरअंदाज करके जो छोटी मोटी चीजें गलतियां होती है रूम में, तो उसको कोऑपरेट कर है ना हम मैनेज कर लेते हैं इस तरह से।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है। नहीं वैसे ये आप इतनी बात कह रहे हैं बट मुझे हर तरह इस बात पे यकीन है कि माशाल्लाह आप खुद भी बहुत बुर्दबार हैं और खुद भी बहुत ज्यादा लिहाज वालों में शहजादा सलीम साहब, तो आप उनका हर हाल ख्याल करते होंगे ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई ऐसी बात करता है और बताता है तो वो खुद भी ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला आपके मामला अच्छे रखे आपके रूममेट के साथ, यही दुआ कर सकता हूँ भाई मैं इंशाल्लाह ताला।
2: और कैंप में ना अलग अलग तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले, पहले मैं सऊदीया में भी था ना, यानी जानी दुश्मन बस मतलब कहाँ मतलब मिले
0: अल्लाह हाफिज़ना, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे भाई।
2: हाँ कहाँ इसका ऐसे ऐसे मिले ना, अरे अरे अल्लाह रहम करे,
0: रहम करे,
2: हाँ अल्लाह हिदायत देवे और क्या। तो लेकिन वो मजा वो नहीं है, हाँ जिंदगी की असल खूबसूरती ये तो नहीं ना कि खुद कितना ज्यादा खुश हो जिंदगी,
0: वाह शहजादा सलीम साहब,
2: जिंदगी तो उससे ज्यादा तब खूबसूरत है दूसरे तुम्हारे से कितना खुश है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए साहब अब इसी के साथ आ जाते हैं 3 का दम पे, रेडी हैं?
2: जी जी जी,
0: ऑलराइट देन। तो जानी साहब शुरू करते हैं 3 का दम, और खैर आज भी माशाल्लाह से सबकी कॉल वगैरह इतनी है मगर फिर भी शुरुआत कर लेते हैं भाई, वरना रह जाएगा 3 का दम। तो शहजादा सलीम साहब 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये कि मछली पानी में रहती है या हवा में?
2: पानी में।
0: 1 साल में कितने महीने होते हैं?
2: 12।
0: पक्की बात है
2: जी।
0: तीसरा सवाल आपकी तरफ आता हुआ, एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 अफराद बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर तकसीम करें तो किसके पास कितने लड्डू आएंगे?

0: एक ही की आएंगे सबके पास।
1: क्या शेर सुनाया, पहले कर चुका हूँ ये सवाल क्या आपसे मैं है?
0: जी जी
1: कर चुका हूँ
0: ना, बहुत बहुत पहले सुना था मैंने।
1: अरे यार तो बदल देते हैं, चलिए नहीं ये मजा नहीं आ रहा भाई। कैंसिल बोलिए, पेंसिल, पेंसिल बोलिए,
0: कैंसिल।
1: हाँ सवाल कैंसिल, दूसरा सवाल पूछा जाएगा आपसे। ये पहले गेम के अंदर अभी नया नया कानून है
0: अपना। सर्वर भाई हाँ, एक आखिरी सवाल, एक बहुत छोटा हाँ, सा हाँ, कि okay. आपने जो कैंसिल का लफ्ज निकाला ना हाँ, तो एक आदमी चलते चलते थक गया, लाओ छुरी काटो गल्ला, फिर भी चलने लग गया।
1: पेंसिल पेंसिल। अच्छा है यार, अच्छा लाए, अच्छा लाए, अच्छा लाए भाई, क्या बात है।
0: ये स्कूल में ना हमको टीचर से ना ये सुनाती थी, ये रेडिल है ना, स्कूल में सुनाते थे।
1: क्या बात है, चलिए तो एक सवाल आ रहा बहुत तेजी से शेखू, जरा सुनिए। आप निहार मुंह कितने अंडे खा सकते हैं, दो चार या छह?
0: दो।
1: पक्की बात है?
0: जी
1: बिल्कुल गलत जवाब है। बात तो आपकी सही है बट मैं बताऊंगा क्यों सही नहीं है, ठीक है? चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अपना, और बड़ी अच्छी बातचीत आपने एज यूजुअल करी। अपना ख्याल रखिए, अपने रूममेट का ख्याल रखिए, और जब कुछ बिरयानी शिरयानी बन जाए तो मुझे भी याद कर लीजिए, ठीक है? ओके ओके शहजादा भाई, शुक्रिया शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो ये थे शहजादा सलीम साहब, हमारे प्यारे प्यारे सलीम साहब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।
1: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
2: मरहबा, आज पहचान हो मुझे।
1: सरताज भाई
2: नको।
1: यार ये तो खतरनाक हो गया मामला। मुदस्सिर भाई
2: नहीं नाराज बलोच।
1: कौन? अयाज भाई?
2: मोहम्मद अयूब बलोच।
1: अयूब बलोच साहब, ओ अयूब भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया। कैसे हैं अयूब भाई?
2: कोई बात नहीं,
1: खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह का फजल मेहरबानी।
1: क्या बात है अयूब भाई, रूममेट अच्छे हैं साथ में, खुश हैं उनसे आप?
2: फैमिली वाले हम लोग।
1: अच्छा माशाल्लाह। नहीं तो कभी तो वक्त गुजारा होगा, कभी बैचलर में रहे आप स्कूल टाइम पे? नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ पूरी जिंदगी में कभी आपने कॉलेज में स्कूल में या बाहर आकर कभी भी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया अपार्ट फ्रॉम फैमिली?
2: पूरा फैमिली वाज बोर्न कतर।
1: हाँ ओके माशाल्लाह भाई, चलिए ऐसा भी कोई हमारे साथ आज जुड़ा, चलिए अच्छी बात है ये भी भाई। अयो बलोच साहब वेरी गुड। चलिए साहब तो फिर अब तीन के दम की तरफ आ जाते हैं, क्या कहते हैं, रेडी हैं खेलने के लिए?
2: मैं थोड़ा रूममेट के बारे में भी बोलता हूँ।
1: अच्छा अच्छा बुरी आ रही है फिर तो बहुत अच्छी बात। मैंने कहा शायद मौजू आपके लिए है ही नहीं तो गेम खेल लेते हैं।
2: हमारे लिए भी है।
1: अच्छा ओके, क्या कहना चाहिए?
2: हमारे दोस्त रहते हैं बैचलर वगैरह,
1: हाँ
2: तो उसमें जैसे भाई ने पहले बताया लोगों का ख्याल करना,
1: हाँ
2: बहुत एहतियात से लोगों का। उसमें क्या होता है, बाज लोगों का नींद कच्ची नींद बोलते हैं या बाज लोगों का वो गहरा नींद होता है, तो उनका ख्याल रखना मिजाज का भी, क्योंकि वो लोग जो निकलते वक्त दरवाजा खुलकर किसी का नींद एक दफा नींद यानी खुल गया, आंख खुल गया, नींद टूट गई, फिर वो दोबारा नहीं सोता, हसास नींद होती है हसास वाले। कुछ लोग बहुत गहरे नींद, उनके सामने आप ढोल बजा दो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: सही
2: जैसा सर और मिर्जा साहब,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
2: बिल्कुल बजा दो कोई नहीं पड़ा,
1: बिल्कुल सही बिल्कुल। नहीं आप हकीकत बता रहे हैं इसलिए तो मैंने हाँ हाँ कहा, मुझे नहीं एहसास होता एक बार गुड़प होने के बाद कि कहाँ हैं किधर हैं जब तक आंख नहीं खुल रही।
2: सुभानअल्लाह,
1: हाँ ऐसा ही है
2: जरूर भाई। आप बात करते हैं राय देते हैं ना, आप बात करने में राय देने में अधूरा।
1: अच्छा अधूरा है,
2: कुछ कमी है।
1: अच्छा क्या पूरी होगी, कैसे?
2: तो
1: नाजिया में बुलाया
2: जाए।
1: समझा।

0: क्या बात है भाई। ओके अयूब भाई, तो तीन कदम खेलने
1: खेलने थी, बिस्मिल्लाह।
0: ओके देन चलिए, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं?
1: पांच।
0: पांच होती हैं। फुटबॉल गोल होती है या चौकोर?
1: चौकोर।
0: ओके आप निहार मुंह कितने अंडे खा सकते हैं?
1: एक।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ऑप्शन देके मैंने सताना नहीं चाहा, मैंने कहा यार कोई तो जवाब सही मिल जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अयूब भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और अच्छी अच्छी बातें हमने रखी।
1: इनाम मिलेगा।
0: नाजिया मैम आएंगी तो उनसे कहिएगा भाई कि मैं सरवर भाई के साथ ऐसे ऐसे मैंने सही जवाब दिया था, तो इनाम बताइए, वो बताएंगी कहाँ कैसे। ठीक है,
1: वो पहले क्या हम लोग जीत चुका है सवाल, जो अभी तक उसका इनाम नहीं मिला है।
0: नहीं नहीं वो जरूर मिलेगा, ये तो मजाक वाला था, मगर सबको मिल रहा है। अब जिन जिन का रह गया उनको भी इंशाल्लाह जल्दी कॉल आ जाएगी, बेफिक्र रहिए। और ये भी देखते रहिएगा, ऐसा तो नहीं आप लोगों की कॉल मिस हो गई है, आपसे कोई मैसेज या कॉल या मेल मिस हुआ है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
1: चलो ठीक
0: ठीक ठीक है यू, बाय। ओके थैंक यू। ओके ये थे यू भाई हमारे साथ। चलिए ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसीम भाई हैं क्या?
2: लग तो रहा है।
0: आप
2: कौन बोले कभी?
0: हाय हाय, नाश्ता नहीं किए हैं क्या?
2: लग तो रहा है कि अच्छा अच्छा, आप मैं समझा परवेश भाई बोल रहे
0: हैं। वो तो कोई है ही नहीं इस्लाम का तो हमारे यहाँ।
2: कैसे हैं? तो है ना?
0: कैसे हैं? खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहते हैं, रूममेट के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं या गेम पे आ जाएं सीधे?
2: रूममेट कैसा?
0: हेलो,
2: रूममेट पे मैं कुछ नहीं करना चाहता।
0: मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों हो, बहुत दर्द खाए हुए हैं क्या?
2: नहीं, अर्ज है।
0: अच्छा कुछ कह रहे हैं
2: जी? okay. अर्ज है
0: इरशाद,
2: तुझे मनाते मनाते
0: हाँ
2: मैं खुदा को नाराज कर बैठ। तुझे मनाते मनाते मैं खुदा को नाराज कर बैठा, इरादा है कि खुदा को ही क्यों ना मना लो।
0: वाह वाह वाह वाह, नहीं सही चीज यही होगी, वैसे मैं आपको बताऊं तरीका भी यही होगा और सही चीज भी यही होगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो आइए अब बढ़ जाते हैं गेम की जानिब। और पहला सवाल आपका ये, किताब पढ़ते हैं या खाते हैं?
2: किताब तो पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं। पंखा हवा देता है या पानी?
2: देखा जाए तो पंखा हवा देता है लेकिन पानी भी खींचता है।
0: पानी भी खींचता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा सवाल ये कि बीमार नहीं रहती मैं फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर मेरी बोली।
2: ये तो आप ही होंगे।
0: मेरे अलावा बताइए दूसरा कोई।
2: तो पता नहीं है।
0: नहीं पता है, सोचिए।
2: बंदूक तो नहीं?
0: यार सही जवाब है नसीम भाई, वेरी गुड। यार आज तो सारे चैंपियन सही जवाब दे रहे हैं भैया, ज्यादा आसान ले आया क्या मैं आज? नहीं सही जवाब है भाई,
2: वेल प्लेड।
0: नहीं नहीं तुक्का सही बैठ गया।
2: अच्छा
0: सही बैठ गया भाई का तुक्का, क्या कहने भाई क्या कहने, जबरदस्त। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्याल रखिए। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत नसीम भाई, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ऑलराइट, तो ये थे भाई नसीम भाई, और भाई आज तो एकदम बैक टू बैक सही जवाब जो है पब्लिक देती चली आ रही है, क्या बात है साहब। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वापस आने के बाद चर्चा भी जारी रहेगी और तीन का दम भी जारी रहेगा। फिलहाल चीखते हुए आतिफ भाई, एंजॉय कीजिए ट्रैक में यू गया।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो भाई यहाँ पर कुछ मैसेजेस उनको शामिल कर लेते हैं। अब प्रोग्राम का वक्त भी हो जाता है और उसके बाद हम तीन कदम जो है अभी जारी सारी है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे और

0: और मैसेजेस तो मैं 666-22107 पे आपके पढ़ ही रहा हूँ। कहते हैं रूम में भी एक ऐसा भाई है जो हर खाने में खामी जरूर निकालता है। अगर गोश्त पकाओ तो कहेगा भिंडी क्यों नहीं बनाई, भिंडी बना दो तो बोलेगा लोबिया लोबिया बेहतर था, लोबिया बना दो तो कहेगा यार गोश्त होना चाहिए था, और अगर सब कुछ बना दो तो फरमाएगा मार्केट में ताजा सब्जी आई थी वो ले आते। कहते हैं कि मजे की बात यह है कि अपनी बारी आए तो कभी दाल कभी आलू कभी चाय पर ही गुजारा करवा देता है। लगता है हमारे रूम का असल शेफ वो नहीं बल्कि उसका मशवरा है। अल्लाह सब रूम मेट में मोहब्बत और बर्दाश्त कायम रखे। भाई क्या बात है, खान साहब हमारे साथ, पूरा नाम क्या भाई का? ओके है, बड़ा प्यारा मैसेज और बड़े अच्छे तरीके से उसको लिखा भी है। क्या बात है साहब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मतार कदीम में बहुत ट्रैफिक है। ओके भाई, देखिए हमारे ट्रैफिक एजेंट यहाँ पर हमारे साथ अरबाज खान भाई, प्यारे प्यारे बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया और बता रहे हैं मतार कदीम के साइड भाई ट्रैफिक है। अगर आप लोग उस तरफ हैं या उस तरफ का रुख कर रहे हैं तो जरा एहतियात कर लीजिएगा यार, दूसरा रूट ले लीजिएगा, और वहीं जा रहे हैं तो मर्जी है, क्या बता सकते हैं आगे। यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और बीच में कोई और भी म्यूजिक की आवाज आ रही है,
1: ये एफएम का तुम्हारा ही आवाज है।
0: अच्छा तो उसको बंद कर दीजिए। कौन है हमारे साथ?
1: भाई इंडिया से आया साला।
0: इंडिया से आए, नाम क्या है भाई का?
1: सादिक पाशा।
0: सादिक पाशा। सादिक भाई मोस्ट वेलकम, कैसे हैं सादिक भाई, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
0: जी मैं भी, मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम सरवर है, सरवर मिर्जा।
1: सरवर है
0: जी,
1: सरवर,
0: सरवर मिर्जा,
1: सरवर मिर्जा।
0: अब याद रखेंगे,
1: सरवर मिर्जा।
0: पहली बार कॉल कर रहे हैं सादिक भाई?
1: पहली बार, अभी नंबर बोले तो है अभी।
0: हाँ क्या बात है यार, तो नंबर बोलना काम कर रहा है इसका मतलब। और सादिक भाई खिंचे चले आए, इंडिया में कहाँ से हैं सादिक भाई?
1: इंडिया से हैदराबाद के करीब है।
0: कहाँ, कौन सा करीब है हैदराबाद के, जगह तो बताइए।
1: हमारा
0: अनंतपुर कड़पा। हाँ ओके ओके ओके ओके, ज्यादा दूर हो गया मेरी मेरी पहचान से। बट भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने कॉल करी, मोस्ट वेलकम। नंबर हमारा यही है जिस पे आप कॉल कर रहे हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो है 666-22107। ठीक है, ये सारी मालूमात आपको मिल भी जाएगी हमारी, आप जब ऑनलाइन जाकर उर्दू रेडियो लिखेंगे ना, एफएम उर्दू रेडियो, तो उस
1: उर्दू रेडियो,
0: हाँ उर्दू रेडियो को खोलेंगे ना तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी और सारे आरजे, सारे प्रोग्राम, सारी चीजें आपको वेबसाइट में हमारे वेब एड्रेस पे आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मजीद हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इंशाल्लाह। आगे का जो भी आपका टाइम है कतर में, अल्लाह ताला अच्छी तरह खैरियत से गुजारे। तो ये है सादिक भाई, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें फॉलो भी कीजिए। हम सारी जगहों पर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, एक्स पे, हर जगह आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हमारा हैंडल इसी नाम से है, FM 107। ठीक है, पक्का हो गया, वादा ले लिया?
1: हाँ पक्का है।
0: तो वादा टूटेगा तो नहीं?
1: वादा
0: कैसे टूटे, अभी इसमें सेव करेगा। वादा तो टूट जाता है सादिक भाई, नहीं अब आपको डेली आना इंशाल्लाह ताला और डेली कनेक्ट होना हमारे साथ। ठीक है,
1: ठीक है।
0: अभी कितना टाइम हो गया कतर में आपको?
1: मैं यहाँ के 8 महीना 9 महीने हुआ।
0: ओके ओके, चलिए भाई अल्लाह ताला
1: तुम्हारा
0: लेकर गाने सुन ले तो जाता है।
1: क्या बात है, बस वही।
0: अच्छा चलिए यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मोहब्बत। और अब इंशाल्लाह ताला वो एफएम,
1: हाँ वो अंडे कितने का है ये तो पूछे अभी, मैं वो सही जवाब बोले।
0: हाँ हाँ, वो सुन रहे थे आप।

0: आप जो एफएम आपने लगा लिया है ना, बस वो वैसी का वैसी सेट रहन दीजिएगा, उसको एकदम हिलाइएगा मत, छुइएगा नहीं, ठीक है? उसको वैसी वैसी सेट रखिए, इंशाल्लाह ताला मजे ही मजे आ जाएंगे लाइफ में। चलिए तो गेम खेलेंगे हमारे साथ,
1: खेलेंगे।
0: अच्छा खेलेंगे, चलिए भाई क्या बात है सादिक भाई की। और नए नए कतर में आए हुए सादिक भाई, आप माशाल्लाह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं। और ये बात आप इंशाल्लाह, अभी तो 8 महीने हुए, 8 साल बाद, 18 साल बाद इंशाल्लाह हम जिंदा रहे तो आप खुद ये बात मुझसे कहते ही कहते रहेंगे इंशाल्लाह, इस बात की मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलिए साहब बढ़ते हैं 3 के दम की तरफ। पहला सवाल आता हुआ आपकी तरफ, पानी पिया जाता है या पहना जाता है?
1: पानी पिया जाता है।
0: आहा हा, क्या शेर सुनाया। आँख देखती है या सोती है?
1: आँख देखती है।
0: वो सोती नहीं है?
1: कैसे सोती है? आँख देखती है।
0: अरे तो सोती तो आँखें भी तो सोती है, बंद होती है तो सोती नहीं है?
1: बंद है तो सोती है, खुला है तो सोती
0: है। तो दोनों जवाब हुए ना इसके। चलिए आप तो पहली बार तशरीफ लाए, तो आप बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अदनान एक 15 मंजिल की बिल्डिंग पर रहता है, 15th फ्लोर पर। घर वापस आते वक्त वो लिफ्ट यूज़ करता है, लेकिन जिस दिन लिफ्ट में कोई और नहीं होता वो 9th फ्लोर पे जाता है और वहाँ से सीढ़ी से घर जाता है। बताइए ऐसा क्यों करता है, बता सकते हैं?
1: नहीं बता सकता।
0: क्यों क्यों नहीं बता सकता? हाँ भाई चलिए, अब ये कल तक के लिए शोशा छोड़ जाता हूँ इसका मैं, कि अदनान एक 15वीं मंजिल की इमारत में रहता है, 15th फ्लोर की बिल्डिंग में, और 15th फ्लोर बिल्डिंग है उसमें 15th फ्लोर पर ही रहता है। घर वापस आते वक्त वो लिफ्ट यूज करता है जब उसके साथ लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन वो लिफ्ट में अकेला होता है उस दिन वो 9th फ्लोर पर जाता है और वहां से सीढ़ी लेता है और घर का रुख करता है। तो ये बताना है ऐसा अदनान क्यों करता है, ठीक है?
1: जो करंट है तो लिफ्ट में चढ़ेगा, नहीं करंट ना है तो लिफ्ट
0: नहीं, लिफ्ट में वो जा ही रहा है, डेली जा रहा है, बस जिस दिन उसके साथ कोई और है उस दिन वो पूरा घर पे जाता है और जिस दिन उसके साथ कोई और नहीं है वो 9th फ्लोर पे उतरता है और उसके बाद सीढ़ी से घर जाता है। आपको बताना है दया कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है? अब कल इसका जवाब सोच के आइएगा आप, ठीक है? चलिए अब मैं इजाजत ले लेता हूँ क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो रहा है, ठीक है? अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब डेली बातचीत होनी चाहिए, ओके? चलिए साहब अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खातिनो हजरात फिलहाल आज के लिए ले लेता हूँ आपसे इजाजत, चलते चलते छोड़े जा रहा हूँ आपको आतिफ असलम साहब के साथ।
2: तेरा मुखड़ा,
0: ये गाना आप ही के लिए है मेरी तरफ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बातें तो हम लोग करते हैं इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उससे सीख मिले, हम एक दूसरे को कुछ समझा सकें, सिखा सकें। हंसी मजाक तो जिंदगी में रहना ही चाहिए, बट बड़ा ही एहतियात से हर चीज की एहतियात कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। देखते सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम कतर और दुनिया भर में हमें सुनने वाले तमाम लिसनर्स को FM 107 कतर का प्यार भरा सलाम. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक बहुत ही खास पावरफुल और दिल को छू लेने वाला शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स. साथियों, कभी आपने ये सोचा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड, एक क्रिकेट पिच या एक रनिंग ट्रैक सिर्फ गेम की जगह नहीं होते बल्कि वो मुकाम होते हैं जहां ख्वाबों को पर लग जाते हैं, जहां एक छोटी सी लड़की पहली बार रेस जीतकर सिर्फ मेडल नहीं अपना कॉन्फिडेंस भी जीतती है, जहां एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ पॉइंट का गेम नहीं होता बल्कि सोसाइटी की सोच को चेंज करने का नाम बन जाता है. आज का हमारा शो ऐसी ही कहानियों का नाम है, उन लड़कियों के नाम है जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल रही बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी की सोच को तोड़ रही हैं. वो लड़कियां जो ग्राउंड पर उठकर दुनिया को ये कह देती हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं. साथियों, एक वक्त था जब कई जगहों पर लोग कहते थे कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, वो स्पोर्ट्स में क्या करेंगी, इतनी धूप में इतनी मेहनत, ये फील तो बॉयज के लिए है ना. लेकिन फिर किसी स्कूल टूर्नामेंट में एक लड़की ने रेस जीती, किसी ने वॉलीबॉल ट्रॉफी उठाई, किसी ने मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में मेडल जीता और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच तब्दील होने लगी. और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब एक लड़की ट्रॉफी लेकर घर आती है ना तो सिर्फ उसका मेडल नहीं चमकता, पूरा घर चमक उठता है. पेरेंट्स की आंखों में फखर होता है, मोहल्ले में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, स्कूल में उसके नाम की अनाउंसमेंट होती है और फिर दूसरी छोटी छोटी बच्चियां उसे देख कर ये सोचती हैं कि भाई अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. मतलब ये कि मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी. लेकिन साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिर्फ कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, डिसिप्लिन और टीम वर्क का लेसन देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लड़कियों की एक आवाज बन जाते हैं. आज दुनिया भर में विमेन एथलीट सिर्फ मेडल्स नहीं जीत रही, वो रिस्पेक्ट जीत रही हैं, वो स्टीरियोटाइप्स को हरा रही हैं, वो ये प्रूव कर रही हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल का नाम नहीं है, हिम्मत का नाम है. देखिए, सोशल मीडिया ने भी इस सफर को ना काफी पावरफुल बना दिया है. आज जब कोई यंग एथलीट अपनी ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड करती है ना या टूर्नामेंट जीत कर फोटोज शेयर करती है तो हजारों लड़कियां इंस्पायर होती हैं. एक सिंपल सा पोस्ट किसी का ड्रीम बन सकता है, कतर हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो, दुनिया का कोई भी कोना. आज लड़कियां स्पोर्ट्स का सीन बदल रही हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में फीमेल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, फैमिलीज एनकरेज कर रही हैं अपनी बच्चियों को और कम्युनिटीज आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ रही हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट है. लेकिन साथियों, ये जर्नी हमेशा तो ऐसी नहीं थी ना, कई लड़कियां आज भी क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं भाई. कभी कभी फैसिलिटीज कम होती हैं, कभी सपोर्ट कम मिलता है और कभी सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है. मगर फिर भी हर सुबह कोई ना कोई लड़की अपने जॉगर्स पहनती है, ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरती है और अपने ख्वाबों को जिंदा रखती है, क्योंकि उसे पता होता है ना कि जीत सिर्फ मेडल की नहीं होती, जीत उस दिन होती है जब सोसाइटी का एक माइंडसेट चेंज होता है. जरा इमेजिन कीजिए ना, एक छोटी सी लड़की टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है, स्टेज पर उसका नाम अनाउंस होता है और ऑडियंस, ओ भाई, ऑडियंस तालियां बजा रही है, शोर मचा रही है उसके नाम का. उस मोमेंट में सिर्फ एक विनर सेलिब्रेट नहीं होता बल्कि फ्यूचर सेलिब्रेट होता है एक सोसाइटी का. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन्हीं पावरफुल मोमेंट्स की, उन्हीं विमेन एथलीट की जो मिलियंस ऑफ मिलियंस गर्ल्स के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं. हम जानेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जेंडर नॉर्म्स को रीशेप कर रहे हैं, कैसे एक सिंपल गेम कॉन्फिडेंस और करेज की कहानी बन जाता है और कैसे स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, फियरलेस बनाता है. हम बात करेंगे फैमिली सपोर्ट की, कम्युनिटी प्राइड की और उन इमोशंस की जो तब फील होते हैं जब एक बेटी अपने मुल्क, अपने स्कूल या अपनी टीम को रिप्रेजेंट करती है. क्योंकि साथियों, जब एक लड़की फील्ड में उतरती है ना तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके ड्रीम्स होते हैं, उसके साथ उसके पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं और उन तमाम लड़कियों की होप्स होती हैं जो अभी तक सिर्फ ऑडियंस में बैठी हुई हैं. तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग सफर के लिए, एक ऐसी जर्नी जहां पसीना भी है, स्ट्रगल भी है, इमोशंस भी हैं और विक्ट्री का वो एहसास भी है जो दिल को गूज़बम्प्स दे देता है.

आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107। मैं हूं आपकी होस्ट सफा। और हाँ, अगर आप भी किसी इंस्पायरिंग फीमेल एथलीट को सपोर्ट करते हैं और अगर आपके घर में भी कोई स्पोर्ट्स स्टार तैयार हो रही है तो हमें जरूर मैसेज कीजिएगा। FM 107 हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 Qatar। और चाहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 666-222-107 पर। सो साथियों स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक चैंपियन की, जो सिर्फ गेम नहीं जीती दुनिया की सोच भी जीत गई। साथियों स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की दुनिया में अक्सर स्कोर बोर्ड्स हेडलाइंस बना जाते हैं,

बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस की मिसाल बन गया। देखिए, मुझे लगता है जब भी साउथ एशियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री लिखी गई ना, सानिया मिर्जा का नाम उसमें बोल्ड लेटर्स में नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं जीते, उन्होंने बैरियर्स तोड़े, उन्होंने वो दरवाजे खोले जो बहुत सी यंग गर्ल्स के लिए पहले बंद समझे जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका सफर सिर्फ टेनिस कोर्ट तक लिमिटेड नहीं था, उनका सफर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट भी था। अच्छा, ये कैसे था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जरा सोचिए ना, जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग सी लड़की रैकेट हाथ में लिए टेनिस कोर्ट में खड़ी है। आसपास एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स को सीरियस करियर माना ही नहीं जाता, जहाँ लोग पहले सवाल पूछते हैं, स्पोर्ट्स क्यों भाई, ऐसा क्यों, इतना एक्सपोजर क्यों, लड़कियां इतना ट्रैवल कैसे करेंगी। लेकिन फिर भी ये वो लड़की थी जो प्रैक्टिस करती थी, क्रिटिसिज्म सुनती थी, और फिर क्या होता है, इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, इतना कुछ, और फिर उसके बाद एक दिन दुनिया उसी लड़की को सेंटर कोर्ट पर देख रही थी। ये सिर्फ एक एथलीट की विक्ट्री नहीं होती, ये माइंडसेट का डिफीट होता है साथियों। देखिए, अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे देखा जाए ना, तो मैं कहूंगी कि हम सानिया मिर्जा के करियर को देखते हैं, ठीक है, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर देखा जाए तो भाई उनकी इम्पोर्टेंस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं की जा सकती। हाँ, उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर वन बनी, काउंटलेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन उनकी रियल सक्सेस नंबर से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट में नजर आती है साथियों। देखें, जब सानिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जीतना शुरू किया ना, तब साउथ एशिया की बहुत सारी फैमिलीज ने पहली बार ये सोचा कि शायद उनकी बेटी भी स्पोर्ट्स में करियर बना सकती है। देखें, एक जमाना था जब साउथ एशिया में ना क्रिकेट को ऑलमोस्ट रिलीजन की तरह देखा जाता था और बाकी स्पोर्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब यूं समझ लें कि भाई लोग पागल थे, दीवाने थे लोग क्रिकेट के पीछे, और वहीं विमेन्स स्पोर्ट्स वो तो और भी पीछे थे भाई। लेकिन फिर सानिया मिर्जा टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आई, पावरफुल सर्व, फियरलेस एटीट्यूड और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ। भाई मुझे याद है जब मैं सानिया मिर्जा के मैचेस देखा करती थी ना, तो आई वाज लाइक टोटली मेरी नजर टीवी पर होती थी एंड आई लीस्ट केयर के आसपास क्या चल रहा है, मेरी नजर सिर्फ उनके प्ले पर होती थी, वो जिस तरह से खेलती थी। उस वक्त बहुत सी यंग गर्ल्स ने पहली बार टेनिस रैकेट को सिर्फ एक गेम का इक्विपमेंट नहीं देखा था, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा था। अच्छा, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे ना स्ट्रगल होती है बाबू, ऐसा नहीं है कि किसी ने रात को सोचा और दिन में वो सुपरस्टार बन गया। सानिया मिर्जा की भी ऐसी ही स्टोरी है, उनकी स्टोरी कोई अलग नहीं है, उनके पास भी उतनी ही स्ट्रगल्स थी। उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, उनके कपड़ों पर कमेंट्स हुए, उनके करियर चॉइस पर डाउट्स हुए, डिबेट्स हुई, उनकी पर्सनल लाइफ तक हेडलाइंस का हिस्सा बनी। मगर रिमार्केबल बात पता है क्या थी? ओ भाई, रिमार्केबल बात ये थी कि वो हर कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद वो लड़की कोर्ट पर फोकस करती थी, उसका फोकस और कुछ नहीं था। देखिए, ये जो क्वालिटी होती है ना, ये ग्रेट एथलीट्स को ऑर्डिनरी प्लेयर्स से अलग बना देती है। प्रेशर को अब्सॉर्ब करना, क्रिटिसिज्म के नॉइस को साइड पर रख देना और परफॉर्मेंस से जवाब देना। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए, तो मैं यही कहूंगी कि भाई सानिया मिर्जा ने साउथ एशियन फीमेल एथलीट्स को एक नई आइडेंटिटी दी। अच्छा, मामला पता है क्या था? उनसे पहले ना फीमेल एथलीट्स को अक्सर डिफेंसिव टोन में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन सानिया अलग थी, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन भाई, और अनअपोलोजेटिक, बिल्कुल एम्बिशन से भरी हुई। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि साउथ एशियन वुमेन सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती, भाई डोमिनेट कर सकती है। तो साथियों, स्पोर्ट्स का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यही होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। जब एक यंग लड़की टीवी पर किसी फीमेल एथलीट को जीतते हुए देखती है ना, तो उसे लगता है कि भाई उसका ड्रीम अनरियलिस्टिक नहीं है। और सानिया मिर्जा ने एग्जैक्टली यही किया, उन्होंने मिलियंस ऑफ गर्ल्स को इंस्पायर किया कि वो कोर्ट पर कॉन्फिडेंस के साथ उतरे, कि वो सिर्फ ऑडियंस में बैठकर तालियां नहीं बजाएं, वो वाली जनरेशन नहीं बने, बल्कि खुद स्पॉटलाइट का हिस्सा भी बने। और मुझे याद है, मैंने भी अगर कभी टेनिस में इंटरेस्ट लिया था ना, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ सानिया मिर्जा, क्योंकि हमारी अपनी अपनी लगती थी एंड

The thought was very relative. If she can, then I can also. Well, I'm not that good. But at least I love that sport because of her. और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी समझना जरूरी है साथियों, जब कोई मेल एथलीट सक्सेसफुल होता है ना, तो उसकी सक्सेस को नॉर्मल समझा जाता है. आदमी है, खेल रहा है, जानदार है, फिजिक है, सब नॉर्मल समझा जाता है. लेकिन जब साउथ एशियन वुमेन के बारे में बात करते हैं ना, जब साउथ एशिया की कोई फीमेल एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर जीतती है, तो उसकी विक्ट्री सोशल चेंज बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मेडल नहीं जीत रही होती, वो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रही होती है, वो फैमिलीज को कन्विंस कर रही होती है, वो यंग गर्ल्स को करेज दे रही होती है. देयर इज अ लॉट बिहाइंड, हम कहते हैं ना बैक स्टेज, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बैक स्टेज. तो एग्जैक्टली यही काम सानिया मिर्जा ने भी किया. सानिया मिर्जा की जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अच्छा, सानिया मिर्जा की बॉडी लैंग्वेज ना कोर्ट पर हमेशा पावरफुल होती है. चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, उन्होंने कभी अपने आप को वीक प्रोजेक्ट नहीं किया. और यही लेसन लाइफ में भी अप्लाई होता है साथियों. जब लड़कियां अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करती है ना, सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उनकी वैल्यू को रिकग्नाइज करना शुरू कर देती है. आज भी अगर आप किसी टेनिस एकेडमी में जाएं ना, तो भाई आपको बहुत सी यंग गर्ल्स मिलेंगी जो सानिया मिर्जा को अपना रोल मॉडल समझती हैं. कुछ उनकी प्लेइंग स्टाइल कॉपी करती हैं, कुछ उनका कॉन्फिडेंस एडमायर करती हैं, और कुछ सिर्फ इतना फील करती हैं कि अगर सानिया ग्लोबल स्टेज तक पहुंच सकती हैं, तो वो भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती हैं. विमेन इन स्पोर्ट्स का आज का एपिसोड सिर्फ एक एथलीट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है, एक स्टोरी है, एक ऐसी मूवमेंट जो कहती है कि गर्ल्स को सिर्फ परमिशन नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा बिलीफ मिलना चाहिए. तो साथियों, आज जब आप ये शो सुन रहे हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, एक लड़की को ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज तक पहुंचने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, कितना पेशेंस चाहिए होता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और कितना सेल्फ बिलीव. और अगर आप घर में, स्कूल में या कम्युनिटी में कोई यंग गर्ल स्पोर्ट्स का ड्रीम देखती हैं, तो शायद आपके ख्वाबों को सिर्फ एक चीज की जरूरत हो, किसी का ये कहना कि हाँ भाई तुम भी कर सकती हो. तो साथियों, आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 कतर. मैं हूँ सफा, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने. हमें मैसेज कीजिए 666-221-07 पर. आपके नजदीक स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स की जिंदगी कैसे चेंज कर सकता है, जरा हमें बताइए मैसेज कर. या चाहे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, विच इज @FM107 कतर. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद बात करेंगे सानिया मिर्जा की स्टोरी पर. सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: वेलकम बैक साथियों, अस्सलाम वालेकुम. कतर और दुनिया भर में हमें सुनने वाले तमाम लिसनर्स को FM 107 कतर का प्यार भरा सलाम. मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 कतर. सोर्स और वो शो जहां हम सिर्फ स्कोर्स और ट्रॉफीज के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन तब्दीलियों के बारे में भी बात करते हैं या उन कहानियों के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए सोसाइटीज को रीशेप कर रही हैं. आज का हमारा ये शो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन हेडलाइंस की जो क्वाइटली लेकिन स्टेडिली कतर में विमेंस स्पोर्ट्स का फ्यूचर चेंज कर रही हैं, खासकर विमेंस टेनिस का. देखिए, कतर को अक्सर दुनिया फुटबॉल स्टेडियम्स, फॉर्मूला वन एक्साइटमेंट और मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स की वजह से जानती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो एक और साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है और वो रेवोल्यूशन है गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. पिछले कुछ सालों में कतर ने विमेंस एथलेटिक्स, फिटनेस और रैकेट स्पोर्ट्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई है. टेनिस कोर्ट्स जो पहले मोस्टली एडल्ट रिक्रिएशनल स्पेसेस समझे जाते थे, आज उन पर स्कूल गर्ल्स, टीनेजर एथलीट्स और यंग फीमेल ट्रेनीज रेगुलर प्रैक्टिस करती नजर आती हैं. स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कतर में स्कूल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन स्टेडिली ग्रो कर रही है, स्पेशली गर्ल्स टेनिस प्रोग्राम्स में. दोहा और दूसरे अर्बन एरियाज के कई स्कूल्स ने स्ट्रक्चर्ड कोचिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए.

0: जहाँ गर्ल्स को अर्ली एज पर टेनिस फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं. फुटवर्क हो गया, रैकेट्स, कंट्रोल, डिसिप्लिन और मैच टेम्परमेंट. ये सिर्फ स्कूल हॉबी नहीं रही, ये अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा बन रहा है. साथियों, आज कतर में डजन्स ऑफ प्राइवेट एंड कम्युनिटी बेस्ड अकेडमीज फीमेल टेनिस कोचिंग ऑफर कर रही हैं. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सर्कल्स में ये एस्टिमेट किया जाता है कि पिछले 8 से 10 सालों में जूनियर गर्ल्स रैकेट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है. स्पेशली पोस्ट 2015 एरा में पेरेंट्स का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव हुआ है. पहले फैमिलीज स्पोर्ट्स को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी समझती थी, लेकिन अब कई पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेकर स्पोर्ट्स के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं. उनको वो बिल्ड कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए. लीडरशिप और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है. देखिए, कतर टेनिस फेडरेशन का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. फेडरेशन ने विमेन और यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए जूनियर इवेंट्स, स्कूल आउटरीच और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया है. कतर इंटरनेशनल टेनिस होस्टिंग का हब भी बन चुका है. जब वर्ल्ड क्लास विमेन एथलीट्स दोहा में कम्पीट करती है ना, तो लोकल गर्ल्स को लाइव एक्सपोजर मिलता है. वो सिर्फ टेलीविजन पर स्टार्स को नहीं देखती, बल्कि सेम कोर्ट्स पर प्रैक्टिस करने का ड्रीम भी डेवलप करती हैं. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दोहा रेगुलरली इंटरनेशनल विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट्स होस्ट करता रहता है, जहां टॉप रैंक्ड फीमेल एथलीट्स पार्टिसिपेट करती हैं. और ऐसे इवेंट्स का साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जब एक यंग कतरी या एक्सपर्ट गर्ल स्टेडियम में बैठ कर इंटरनेशनल विमेन प्लेयर को देखती है ना, तो उसके लिए भी विमेन्स स्पोर्ट सडनली पॉसिबल लगना शुरू हो जाता है. रिप्रेजेंटेशन इमेजिनेशन को चेंज करती है. साथियों, देखिए, कतर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑनेस्टली अगर बताया जाए ना, ऑनेस्टली मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कतर ने बहुत फास्ट डेवलपमेंट दिखाई है. एयर कंडीशन इंडोर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल हार्ड कोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सर्टिफाइड कोचिंग एनवायरमेंट्स लड़कियों की पार्टिसिपेशन को सेफ और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फैमिलीज तभी अपनी डॉटर्स को जो है ना वो स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंटली भेजती हैं जब उन्हें पता हो कि भाई इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे वो जा रही है वो प्रोफेशनल और सिक्योर नजर आए. अच्छा, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, माइंडसेट भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है ना. आज कई स्कूल्स गर्ल्स इंटर स्कूल टेनिस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं. कुछ इंस्टीट्यूशंस एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में गर्ल्स टेनिस कैटेगरी को प्रोमिनेंट पोजिशन देते हैं. अच्छा, ये सुनने में बड़ा छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन सोशल इम्पैक्ट के परस्पेक्टिव से ये बहुत मीनिंगफुल है. देखिए, ग्लोबली अगर हम विमेंस टेनिस पार्टिसिपेशन को देखें ना, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टडीज रिपीटेडली शो करती हैं कि विमेन रैकेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ग्रो कर रही है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटीज में. अच्छा, कतर की मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन ने भी इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है. इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, अरब और यूरोपियन कम्युनिटीज की फैमिलीज इंक्रीजिंगली डॉटर्स को स्पोर्ट्स एकेडमीज में एनरोल कर रही हैं. इस कल्चरल मिक्स ने विमेन टेनिस को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है. स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि टेनिस स्पेशली गर्ल्स के लिए अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ क्लियरली विजिबल होती है. हर मैच सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, हर ट्रेनिंग सेशन डिसिप्लिन क्रिएट करता है और हर टूर्नामेंट पब्लिक रिकॉग्निशन का सोर्स बन सकता है. जब भी कोई यंग गर्ल मेडल या ट्रॉफी लेकर घर आती है ना, तो उस सक्सेस का इमोशनल इफेक्ट पूरी फैमिली पर पड़ता है. साथियों, कतर में कम्युनिटी बेस्ड वुमेन फिटनेस और टेनिस प्रोग्राम भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. दोहा के कई स्पोर्ट्स क्लब्स बिगिनर्स टू एडवांस फीमेल कोचिंग सेशंस ऑफर करते हैं. कुछ एकेडमीज गर्ल्स ओनली ट्रेनिंग आवर्स भी प्रोवाइड करती हैं, ताकि बिगिनर्स कंफर्टेबल फील करें. ये इंक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सिर्फ इलीट एथलीट से नहीं होता, पार्टिसिपेशन बेस स्ट्रॉन्ग होने से भी होता है. अच्छा, एक और, उस वक्त इंडिया में विमेंस टेनिस का सीन बहुत लिमिटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं था, फीमेल टेनिस रोल मॉडल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे, लेकिन सानिया के फादर ने अर्ली स्टेज पर ही उनका टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया था. और वही स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी एथलीट की सक्सेस में फैमिली सपोर्ट बहुत क्रूशियल होती है, और सानिया मिर्जा की स्टोरी इसका परफेक्ट एग्जांपल है. उनके फादर सिर्फ पेरेंट नहीं थे, कोच, मोटिवेटर और मैनेजर भी थे. उन्होंने फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी किए ताकि सानिया प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। इंटरनेशनल जूनियर टूर्नामेंट्स चीप नहीं होते साथियों, ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, कोचिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, कोर्ट फीस होती है, सब कुछ कॉस्टली होता है, सस्ता नहीं होता। लेकिन मिर्जा फैमिली ने टैलेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना बिल्कुल भी नहीं, नो। हाँ, लेकिन लिसनर्स, जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी आपको सुनने में लग रही है। इंडिया और साउथ एशिया के सोशल एनवायरनमेंट को अगर रियलिस्टिकली देखा जाए ना, तो 90s और 2000s में गर्ल्स स्पोर्ट्स को उतनी एनकरेजमेंट नहीं मिलती थी जितनी आज मिलती है, ये बात तो तय है। देखें, एकेडमिक प्रेशर अलग था, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस अलग थी, लोग उनसे पूछा करते थे कि भाई लड़की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कितना ही आगे चली जाएगी, फ्यूचर क्या होगा इसका, इतना ट्रैवल कैसे करेगी। ये वो सवाल थे जो बहुत सी टैलेंटेड लड़कियों के ड्रीम्स को स्टार्ट होने से पहले ही रोक दिया करते थे। मगर सानिया मिर्जा डिफरेंट थी भाई, कोर्ट उनकी लैंग्वेज बन गया था। जब वो टेनिस खेलती थी तो उनके शॉट्स कॉन्फिडेंस स्पीक करते थे, जूनियर सर्किट में ही उन्होंने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन ने उनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया। 2003 में विंबलडन गर्ल्स डबल टाइटल जीतना उनके करियर का अर्ली मेजर माइलस्टोन था। ये सिग्नल था कि भाई साउथ एशिया से एक सीरियस वुमेन टेनिस टैलेंट उभर रहा है। और फिर भाई, फिर आया वो फेज जहां सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना स्टार्ट की, यानी कि 2005 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसी साल उन्होंने हैदराबाद ओपन जीत कर हिस्ट्री क्रिएट की। वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो WTA सिंगल्स टाइटल जीतने में सक्सेसफुल हुई। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ना ना ना ना भाई, ये इंडियन वुमेन्स टेनिस के लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट था। उस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स ने लिखा था कि सानिया मिर्जा ने इंडिया टेनिस को नए लेवल पर पहुंचा दिया है, और ऑनेस्टली वो एग्जैगरेशन नहीं थी। पहली बार साउथ एशिया में यंग गर्ल्स टेनिस रैकेट को सीरियसली देख रही थी। टेनिस सडनली इलीट फॉरेन स्पोर्ट्स नहीं लग रहा था, बल्कि अचीवेबल ड्रीम लगना शुरू हो गया था। अच्छा, सानिया की प्लेइंग स्टाइल भी बहुत यूनिक थी। वो डिफेंसिव प्लेयर नहीं थी, का पावरफुल फॉरवर्ड उनकी आइडेंटिटी बन चुका था। एग्रेसिव बेसलाइन गेम, फियरलेस रिटर्न्स और अटैकिंग माइंडसेट ने उनको स्टैंड आउट एथलीट बनाया। वो कॉशियसली सर्व करने के लिए नहीं खेलती थी, डोमिनेट करने के लिए खेलती थी। इसी वजह से मीडिया और फैंस दोनों उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। लेकिन जितनी रैपिडली फेम आई, उतनी ही रैपिडली क्रिटिसिज्म भी आया जेब में। देखिए भाई, साउथ एशियन फीमेल एथलीट्स को अक्सर परफॉर्मेंस के साथ साथ अपीयरेंस और पर्सनल लाइफ पर भी जज किया जाता है, और सानिया मिर्जा ने भी यही इंटेंसिटी फेस की। कभी उनके आउटफिट्स हेडलाइन बने, कभी उनकी ऑप्शंस कंट्रोवर्सीज का पार्ट बने, लेकिन रिमार्केबल बात यह थी कि वो प्रेशर के बावजूद कम्पीट कर रही थी, उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा। मैं ये कह सकती हूँ कि भाई, ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफीज से मेजर नहीं होती, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी से होती है, और सानिया मिर्जा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर हैंडल किया भाई। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर पब्लिक अपीयरेंस और हर इंटरनेशनल मैच में उनको सिर्फ एथलीट नहीं, सिंबल के तौर पर देखा जा रहा था। करियर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो भाई, नंबर्स खुद स्टोरी सुना देते हैं। तो सानिया मिर्जा ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, जिनमें विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स कैटेगरीज शामिल हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और US ओपन जैसे प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट्स में टाइटल हासिल किए। और हाँ, 2015 में वो विमेंस डबल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी, और ये अचीवमेंट हासिल करने वाली पहली इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर थी। अच्छा, उनकी पार्टनरशिप विद मार्टिना हैंगिस भी विमेंस डबल हिस्ट्री की मेमोरेबल पार्टनरशिप में काउंट की जाती है। अच्छा, दोनों को मीडिया ने संतीना निकनेम दिया। 2015 से 2016 के दौरान उन्होंने 40 से ज्यादा कंसेक्यूटिव मैचेस जीते और मल्टीपल मेजर टाइटल्स अपने नाम किए। अच्छा, ये डोमिनेंस ना किसी भी लेवल पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानी जाती है। लेकिन लिसनर्स, सानिया की स्टोरी सिर्फ स्टैटिस्टिक तक लिमिटेड नहीं है, उनकी रियल अचीवमेंट सोशल इम्पैक्ट है। साउथ एशिया में मिलियंस ऑफ गर्ल्स ने उनकी वजह से स्पोर्ट्स को डिफरेंटली देखना स्टार्ट किया। पहले फैमिलीज, ज्यादा विजिबल मत बनो, सेफ रहो, लेकिन सानिया ने एक डिफरेंट नैरेटिव क्रिएट किया, उन्होंने प्रूव किया कि कॉन्फिडेंस परमिशन से नहीं परफॉर्मेंस से बिल्ड होता है। जब वो टेनिस कोर्ट पर पावरफुल फॉरहेड मारती थी तो वो सिर्फ ओपोनेंट को चैलेंज नहीं कर रही होती थी, वो स्टीरियोटाइप को भी चैलेंज कर रही होती थी। 2005 में जब उन्होंने हैदराबाद ओपन जीत कर WTA सिंगल्स टाइटल हासिल किया तो वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो ये अचीवमेंट हासिल कर सकी। ये विक्ट्री सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं देती, ये साउथ एशियन वुमेन एथलीट्स के लिए साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। और लिसनर्स, कॉन्फिडेंस कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, इसके पीछे होता है डिसिप्लिन। सानिया मिर्जा का पूरा करियर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, रेपिटेशन और रिलेंटलेस फोकस का एग्जाम्पल है। रिस्पेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो रिस्पेक्ट ये वो चीज है जो सानिया मिर्जा ने ग्लोबली अर्न की। और रिस्पेक्ट सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस से मिलती है। करियर के दौरान उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया, इंजरीज फेस की, मीडिया प्रेशर फेस किया, लेकिन फिर भी परफॉर्म करती रही। जब एथलीट्स एडवर्सिटी के बावजूद कमबैक करते हैं तब दुनिया उन्हें सीरियसली लेना स्टार्ट कर देती है। मदरहुड के बाद कमबैक करना भी उनके करियर का इंस्पिरेशनल चैप्टर था। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में कमबैक आफ्टर मैटरनिटी फिजिकली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन सानिया ने कमबैक करके टाइटल्स जीते और ये प्रूव किया कि विमेन एथलीट्स मल्टीपल आइडेंटिटीज बैलेंस कर सकती हैं, एथलीट भी, मदर भी और मेंटोर भी। अच्छा, अगर देखा जाए तो सानिया मिर्जा की लेगेसी को अगर समराइज करूं तो भाई मैं कहूंगी कि उन्होंने सिर्फ टेनिस मैचेस नहीं जीते, उन्होंने माइंडसेट्स चेंज किए, उन्होंने गर्ल्स को सेल्फ बिलीव दिया, उन्होंने मीडिया को विमेन्स स्पोर्ट्स को सीरियस कवरेज देने पर फोकस कराया। और साथियों, यही स्पोर्ट्स की रियल पावर है। कभी कभी एक एथलीट पूरी सोसाइटी की इमेजिनेशन एक्सपेंड कर देता है। और भाई, अगर दोहा या साउथ एशिया में कोई यंग गर्ल टेनिस एकेडमी ज्वाइन करती है, कॉन्फिडेंटली रैकेट शोल्डर पर उठाकर कोर्ट में एंटर करती है, तो उस मोमेंट में कहीं ना कहीं सानिया मिर्जा का इन्फ्लुएंस भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया है, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती रही। भाई, सानिया मिर्जा ने हमें ये सिखाया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए हिम्मत, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीव को भी सामने रखना जरूरी होता है। हर वो लड़की जो आज किसी स्पोर्ट फील्ड पर खड़ी है ना, वो सिर्फ गेम नहीं खेल रही, वो फ्यूचर लिख रही है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इजाजत दीजिए अपनी होस्ट सफा को। आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107। तो भाई, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इंस्पायर्ड और याद रखिए, चैंपियन सिर्फ पैदा नहीं होते, तैयार किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड रिमेम्बर, कीप सपोर्टिंग वुमेन इन स्पोर्ट्स और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा भाई। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम फॉर,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
2: सो यस, मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, मंडे की आफ्टरनून्स हैं एंड लिटरली वेदर काफ़ी हॉट है, बट अभी आई एम वेरी सर्टेन कि हम थोड़ा सा इत्मीनान से कहीं ना कहीं छाँव में होंगे या फिर कूल एसी या फैन के सामने होंगे। भाई जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें, बाहर हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ना भूलें। वेल, एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और ये शो बड़ा कमाल का है, जहाँ पर एक घंटे आप होते हैं कहीं ना कहीं कैद और फिर उस जगह से निकलने के लिए आपको मिलते हैं तीन क्लूज। यस, उन्हें सॉल्व कीजिए, तीन लेवल्स को पार कीजिए और अपना एस्केप प्लान सक्सेसफुल बनाइए। वल आज की सिचुएशन क्या होगी, किसी को कुछ ख्याल है? कल शो से जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई हम ना कुछ टेक्नोलॉजी वाली जगह पर जाने वाले हैं, किसी फैक्ट्री में जाने वाले हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप हमारे कतर के आउटस्कर्ट्स में हैं, एक सुनसान फैक्ट्री में फंसे हैं और अगर वहाँ पर आप ही प्रोडक्ट हैं जिसको मशीन अपनी तरफ बुला रही है तो क्या करेंगे? सोचने का विषय है। बल आज की सिचुएशन बस कुछ ही देर में आएगी, तो अभी क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा लूजन अप करना है, थोड़ा चाय, करक, जूस, जो भी आपके सामने है, जो भी आप इंजॉय करना चाहते हैं टू गेट दी एनर्जी, जस्ट गेट इट, ठीक है? क्योंकि अब बस छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने आएगी आज की एस्केप रूम की सिचुएशन, जिसे आपको सॉल्व करना होगा एंड प्रूव करना होगा कि आप आज के एस्केप रूम के लकी विनर हैं एंड मास्टरमाइंड हैं। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107, इस पर मैसेज करना ना भूले। ये कौन सा अलार्म है भाई? ये कमाल का म्यूजिक शुरू हो गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेक, सो एंजॉय कीजिए, अपने आप को बिल्कुल एनर्जी वाला बनाइए और फिर मिलते थोड़ी देर में, ठीक है? स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: यस माय देसी ऑडियंस, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन FM 107 और मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज हमारे जो एस्केप आर्टिस्ट हैं वो एक बड़ी कमाल की सिचुएशन में फंसने वाले हैं। आज का माहौल थोड़ा सा मेटालिक होने वाला है, थोड़ा रोबोटिक होगा और थोड़ा सा स्कैरी भी। हाँ जनाब, इमेजिन कीजिए कि आप हमारे कतर के आउटस्कर्ट्स में एक सुनसान फैक्ट्री में हैं, ठीक है, द नियोटेक इंडस्ट्रियल प्लांट। हाँ जी, शाम का वक्त हो गया है, आप फाइनल इंस्पेक्शन खत्म कर रहे हैं एंड सडनली क्या होता है आपको ये साउंड, ये हिस स्लाइडिंग डोर की आपको सुनाई देती है। आपको समझ में नहीं आता ये अचानक से क्या हुआ, मतलब हम तो इंस्पेक्शन कर रहे थे, अपना काम पूरा कर रहे थे। सो यस, असेंबली सेक्टर 7 के हैवी टाइटेनियम डोर्स बंद हो चुके हैं, एम्बर इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश कर रही है और फैक्ट्री का जो मेन फ्रेम है वो एक्टिव हो गया है। वो कह रहा है यूनिट अनरिकग्नाइज्ड, पोटेंशियल रॉ मटीरियल डिटेक्टेड। आई हाय, अब आप रॉ मटीरियल बन चुके हैं जनाब, यू नॉट अ टेक्नीशियन एनी मोर, आप एक प्रोडक्ट बन चुके हैं जो सीधा पैकेजिंग एंड सीलिंग यूनिट की तरफ जा रहा है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको इस सिचुएशन से बचा सकता है। अगर फर्नेस से बचना है तो आपको फैक्ट्री की लॉजिक से तेज भागना होगा। ओके, लेट्स गो। आप कन्वेयर बेल्ट पर हैं, ठीक है, और एक जायंट मैकेनिकल क्लॉ आपकी तरफ नीचे आ रहा है, इट्स रेडी टू ग्रैब यू। तभी कंट्रोल आर्म की एक छोटी सी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ आपका क्लू नंबर 1। ध्यान से सुनिए, मेरा एक सर है पर उस पर बाल नहीं है। ओके, मेरा एक सर है पर उस पर बाल नहीं है, मेरा शरीर है पर पैर नहीं है, मैं हर मशीन को मजबूती से पकड़ कर रखता हूँ, जितना ज्यादा आप मुझे घुमाओगे टर्न करोगे उतना ही गहरा मैं चला जाऊंगा, बताओ मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं। ओके, अब क्योंकि आप फैक्ट्री में हैं, आपको यहाँ वहाँ कुछ औजार कुछ टूल्स पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जल्दी पहचानिए उसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा क्लू नंबर 1 का सही जवाब हो सकता है। लेट मी रिपीट द क्लू नंबर 1 अगेन, मेरा एक सर है पर उस पर बाल नहीं है, मेरा शरीर है पर पैर नहीं है, मैं हर मशीन को मजबूती से पकड़ कर रखता हूँ, जितना ज़्यादा आप मुझे घुमाओगे टर्न करोगे उतना ही गहरा मैं चला जाऊँगा, बताओ मैं कौन हूँ। कम ऑन गाइस, हमें मतलब इस हॉट फर्नेस से बचना है, हम फैक्ट्री में खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हैं, सो वी हैव टू सेव आवरसेल्फ। जवाब दीजिए, 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ और इस क्लू नंबर वन को जल्दी सॉल्व कीजिए, वरना आगे हमारी दुर्गति हो सकती है. सो यस, लेवल वन हमें पार करना ही होगा. और अभी थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके एनर्जी को बूस्ट अप करना है विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर अपनी ए फॉर अमिता के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और भाई आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। हम एक न्यू टेक इंडस्ट्रियल प्लांट एक फैक्ट्री के अंदर हैं। शाम का वक्त है, मतलब सिचुएशन शाम के वक्त की है और यहाँ पर हम एक टेक्नीशियन है फाइनल इंस्पेक्शन ख़त्म कर रहे थे। ठीक है, सडनली जो टाइटेनियम डोर्स थे बड़े बड़े वो सारे बंद हो गए। ठीक है, अब हम फंस गए वहाँ पर। एंड देन सडनली जो मेन फ्रेम है फैक्ट्री का वो एक्टिव हो गया और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि यूनिट अनरिकग्नाइज्ड पोटेंशियल रॉ मटेरियल डिटेक्टेड। भाई अब हम टेक्नीशियन नहीं है, हम एक प्रोडक्ट बन चुके हैं और अब सीधा पैकेजिंग और सीलिंग यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अगर फर्नेस से बचना है तो हमको हर एक क्लू को सॉल्व करना होगा। पहला क्लू हमको मिला और वो ये था कि मेरा एक सर है पर उस पर बाल नहीं, मेरा शरीर है पर पैर नहीं, मैं हर मशीन को मजबूती से पकड़कर रखता हूँ, जितना ज़्यादा आप मुझे घुमाओगे टर्न करोगे उतना ही गहरा मैं चला जाऊँगा, बताओ मैं कौन हूँ। एंड आई कुड सी ऑन माई स्क्रीन हमें काफ़ी ज़्यादा जवाब आए हैं। अब चलें जवाब क्या है, जो सही जवाब हो सकते हैं उनकी तरफ भी हम नज़र दौड़ाते हैं। अभी भी नॉनस्टॉप हमें मैसेजेस आते ही जा रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स चेक क्या सही जवाब हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा है नट, कुछ ने लिखा है नट बोल्ट, कुछ ने लिखा है नेट बॉल, कुछ ने लिखा है स्क्रू, कुछ ने लिखा है स्क्रू ड्राइवर, कुछ ने लिखा है पेंच, कुछ लोग अपना जवाब चेंज करते जा रहे हैं और हमें व्हील भी लिखा है किसी ने, बोल्ट स्क्रू। वेल मैं कहूँगी जिन्होंने भी नट बोल्ट लिखा है, स्क्रू लिखा है, पेंच लिखा है, भाई उनके जवाब बिल्कुल सही है। ज़ोरदार तालियां आप सबके लिए, क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। क्लू नंबर वन, पहला लेवल आपने सॉल्व किया, सही जवाब स्क्रू पेंच बोल्ट नट बोल्ट, स्क्रू ड्राइवर नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं जिन्होंने भी सही सही जवाब दिए हैं। तो रायद है, अनवर, अकबर, क्या बात है, और है नीडा, नूर, फैंटास्टिक, और कौन कौन है, सरफराज जी, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिनकी प्रोफाइल में उनके नाम मुझे ढूंढने पड़ेंगे, जो कि नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। राणा जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है। आरिफ अंसारी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने अपने जवाबों को चेंज भी किया है ओके, गुलाम रब्बानी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और महफूज, ओके, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो ये हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप सही जवाब देने की कोशिश की है। ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से। नाउ कमिंग बैक टू आर एस्केप रूम सिचुएशन, तो भाई जैसे ही आपने सही जवाब दिया, जो मैकेनिकल क्लॉ आपकी तरफ आ रहा था आपको पकड़ने के लिए, वो बिल्कुल आपके सर के पास आके फ्रीज हो गया। सांस आपने गहरी ली, लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादा इजी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट है वो उसकी स्पीड जो है बढ़ गई और आप उसी कन्वेयर बेल्ट पर हैं। आप सीधा एक लेज़र कटिंग ग्रिड की तरफ जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, देखिए जनाब, लेज़र कटिंग ग्रिड की तरफ, पावर कट करने के लिए

ये सॉल्व करना होगा आपको अगला क्लू. एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्लू. ध्यान से सुनिए. मैं वो ताकत हूं जो इन रोबोट्स की रगों में बहती है. ठीक है, मैं वो ताकत हूं जो इन रोबोट्स की रगों में बहती है. मैं दिखाई नहीं देती पर मेरा स्पार्क, या यूं कहें मेरी चिंगारी, पूरी फैक्ट्री चलाती है. मेरे बिना यहां सब कुछ ठप पड़ जाएगा. मेरा नाम क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए क्या जवाब हो सकता है. 666-22107 पर, 666-22107 पर अपना सही जवाब देने की कोशिश कीजिए अपने नाम के साथ. देखिए, आप सब ने क्लू नंबर 1 सॉल्व किया. क्लू नंबर 2 सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ये जो लेज़र है, लेज़र कटिंग ग्रिड, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं. भाई देखो, हम नहीं कट होना चाहते, सो कम ऑन, सॉल्व दिस क्लू. मैं वो ताकत हूँ जो इन रोबोट्स की रगों में बहती है. मैं दिखाई नहीं देती पर मेरा स्पार्क, मेरी चिंगारी पूरी फैक्ट्री चलाती है. मेरे बिना यहाँ सारा काम ठप हो जाएगा. क्या है मेरा नाम? कम ऑन टैलेंटेड गाइस, थिंक एंड गिव मी द आंसर. और अभी सोचने के लिए मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा वक्त. प्ले करती हूँ आपके लिए. यस, भूल भुलैया 3 का ये टाइटल ट्रैक. लेट्स एंजॉय. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी एफ अमिता और इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी जो है वो बजा रही है दोपहर के 2:02। दो दो लाइन पर है, जल्दी से एक विश मांग लीजिए।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: So yes, my देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? ऐसा लग रहा है इस वक्त एस्केप रूम की सिचुएशन में फंसना। हाँ, वेल आज हम एक फैक्ट्री में हैं एंड सिचुएशन ये थी कि भाई देखो, हम वहाँ पे काम कर रहे थे, शाम का वक्त था, अपना इंस्पेक्शन करके हम निकल रहे थे। मतलब वहाँ पर हम एक टेक्नीशियन है फाइनली, बट ये हुआ कि टेक्नीशियन से अब हम प्रोडक्ट में तब्दील हो गए एंड सडनली एक मैकेनिकल क्लॉ हमें पकड़ने के लिए आया। तो वही हमको स्क्रू नंबर 1 जो क्लू था वो सॉल्व करना था एंड देन ये क्लू का सही जवाब था स्क्रू, ठीक है। और हमने वो जवाब देकर उस लेवल को पार किया। मैकेनिकल क्लॉ जो है वो हमारे सर के पास आके फ्रीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो कन्वेयर बेल्ट था उसकी स्पीड बढ़ गई। अब हम सीधा एक लेज़र कटिंग ग्रिड की तरफ चले जा रहे हैं। भाई डर तो लग रहा है अभी, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो सडनली हमें क्लू नंबर 2 सॉल्व करना है क्योंकि तभी हम इस लेज़र कटिंग ग्रिड से बचेंगे, ठीक है। और वो क्लू नंबर 2 था कि मैं वो ताकत हूँ जो इन रोबोट्स की रगों में बहती है। मैं दिखाई नहीं देती पर मेरा स्पार्क, चिंगारी पूरी फैक्ट्री चलाता है। मेरे बिना यहाँ सब कुछ ठप हो सकता है। बताओ मेरा नाम क्या है? कम ऑन, क्या नाम हो सकता है? आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या जवाब मिले हैं। तो हमें लोगों ने लिख के दिया है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ओके, पावर, एनर्जी, करंट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने लगभग सही ही गेस किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर, करंट ये सब जो लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। सो भाई सबके लिए ज़ोरदार तालियां, पीठ थपथपाओ भाई, पीठ थपथपाओ अपनी जल्दी जल्दी। क्लू नंबर 2 आप सबने सॉल्व किया और जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए उनके नाम दोहराना तो बनता है। राइद, नूर, अकबर, ठीक है। अनम रुहान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर और कौन कौन है, यहाँ पर आरिफ अंसारी हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और ये हैं मोहम्मद अरफातुल, चलो ठीक है, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब देकर ये प्रूफ कर दिया कि क्लू नंबर 2 से बाहर निकल सकते हैं। सोहेल ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है, गुलाम रबानी ने भी सही जवाब दिया है, सरफराज जी ने भी सही जवाब दिया है, हिशाम ने भी सही जवाब दिया है, दैट्स रियली नाइस। तो आप सबके लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियाँ। तो क्लू नंबर 2 आप सब ने सॉल्व कर लिया है, वेल डन। लेजर्स बंद हो गए हैं और आप स्लाइड करते हुए सीधा एग्जिट गेट के सामने रुक गए। पर जनाब गेट लॉक्ड है, वहां एक ह्यूमन ओनली बायोमेट्रिक ओवरराइड है। मेन फ्रेम को हमें प्रूफ करना है कि हम कोई मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। और उसके लिए हमारे सामने क्लू नंबर 3 आ चुका है। क्लू नंबर 3, मेरी आवाज धक धक है पर मैं कोई मशीन नहीं हूं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज धक धक है पर मैं कोई मशीन नहीं हूं। जब आप डरते हैं तो मैं बहुत तेज भागने लगता हूं, अगर मैं बंद हो गया तो जिंदगी रुक जाएगी। बताओ मैं कौन हूं जो हर इंसान के सीने में रहता है, इसे पहचानिए क्योंकि

कि बताओ मैं कौन हूँ जो हर इंसान के सीने में रहता है, लेकिन रोबोट्स के पास नहीं है. सो थिंक 666-22-107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए. बल हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो यहाँ पर सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. देखिए मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके पसंद के सारे गाने बजाऊं, बट दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट शो. सो आप शाम 4 बजे आरजे फजील के साथ जुड़ें और रिक्वेस्ट शो पर अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करें. लेकिन अभी के लिए आपके लिए मैं ये शानदार गाना प्ले करने वाली हूँ, आई एम श्योर यू गोना लव इट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे, ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।
4: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर, वेलकम वंस अगेन। तो मैं हूँ आपके A4 अमिता और एस्केप रूम की सिचुएशन में आज हमें एक अपनी सिटी के बाहर एक सुनसान फैक्ट्री में एक टेक्नीशियन का किरदार निभा रहे हैं जहाँ पर हम कैद हो गए, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद, अब फंस गए। एंड सडनली जो वहाँ का सिस्टम था, ऑटोमेटेड सिस्टम, उसने हमको इंसान की जगह एक प्रोडक्ट बना दिया। और फिर क्या था, प्रोडक्ट को पैकेज करना, सील करना, उसका जो एंटायर प्रोसेस था वो शुरू हुआ।

जवाब था स्क्रू नट बोल्ट पेंच. नंबर दो को सॉल्व किया तो उसका सही जवाब था इलेक्ट्रिसिटी बिजली करंट पार. और लेजर्स से हम बच गए, लेजर्स बंद हो गए और हम स्लाइड करते हुए सीधा एग्जिट गेट के सामने आके रुक गए. अभी भी हमारे दिल की धड़कनें तेज हैं क्योंकि एग्जिट गेट खुलने को तैयार नहीं. अब यहाँ पर क्लू नंबर 3 हमारे बहुत काम आएगा जिसे हमें सॉल्व करना है, सही जवाब देना है. एंड दिस एग्जिट गेट विल ओपन और हम सीधा बाहर जाएंगे. हाँ, लंबी गहरी सांस लेंगे. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन कुछ लोग अभी भी जवाब तो दे रहे हैं लेकिन गलत जवाब दे रहे हैं. तो मेरी आवाज धक धक है पर मैं कोई मशीन नहीं हूं. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लाइन एंड मिस सबसे सिंपल हिंट है एक्चुअली इस क्लू को सॉल्व करने की. वो कौन सी चीज है जिसकी धक धक आवाज है? कम ऑन, जब आप डरते हैं तो ये चीज तेज भागने लगती है. अगर ये बंद हो गई तो जिंदगी रुक जाएगी. इससे ज्यादा इजी क्लू क्या हो सकता है बताओ? मैं कौन हूं जो इंसान के सीने में है लेकिन रोबोट्स के पास नहीं है? कम ऑन, यू कैन गिव द राइट आंसर. सही जवाब दीजिए 666-22107 पर, 666-22107 अपने नाम के साथ. अभी मैं देख रही हूँ मेरे स्क्रीन पे कुछ लोग दिल लिख रहे हैं, कुछ हार्ट लिख रहे हैं, कुछ ब्लड लिख रहे हैं, किसी ने तो वॉच तक लिख दिया है. कम ऑन, आप लोग गौर नहीं कर रहे हो क्या? आपको इस सुनसान फैक्ट्री में कैद होना है, एस्केप होना है कि नहीं होना है? वरना आज मुश्किल हो जानी है. लास्ट बार दोहराऊंगी और उसके बाद छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगी कि क्या सही जवाब है. मेरी आवाज धक धक है पर मैं कोई मशीन नहीं हूं. जब आप डरते हैं तो मैं बहुत तेज भागने लगता हूं. अगर मैं बंद हो गया तो जिंदगी रुक जाएगी. मैं इंसान के सीने में हूं, रोबोट्स के पास नहीं हूं. तो नाउ थिंक स्ट्रेट. 666-22107, 666-22107 इज आवर नंबर. इस पर जल्दी से मैसेज करें अपना सही जवाब अपने नाम के साथ. एंड लेट्स सी कि आज हमारे कतर के कितने सारे लोग अपने दिमाग के मास्टर्स हैं और इन्होंने इस सारी पहेली को, इस सारे क्लूज को सॉल्व कर लिया है. तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपकी फरमीदा हाजिर होगी. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और हमारे शो एस्केप रूम का आखिरी पड़ाव चल रहा है। आज की सिचुएशन, हम एक सुनसान फैक्ट्री में कैद हो गए भाई। यहाँ पर आज किरदार निभा रहे हैं एक टेक्नीशियन का और यहाँ पे सारी मशीन्स ने हमको ही प्रोडक्ट समझ लिया। दैट्स स्ट्रेंज, लेकिन यहाँ से निकलना बेहद ज़रूरी है वरना हमारी जान भी जा सकती है। क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया, लेवल पार किया, जवाब था स्क्रू नट बोल्ट पेंच। क्लू नंबर टू सॉल्व किया, लेवल टू को पार किया और सही जवाब था इलेक्ट्रिसिटी बिजली करंट पावर। और उसके बाद सारी लेजर सारी मशीन सब रुक गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि चलो यार अब यहाँ से कुछ ना कुछ करके हमको बाहर निकलना है, एग्जिट गेट के सामने खड़े हैं। लेकिन क्लू नंबर थ्री का जवाब अभी भी देना बाकी है। मेरी आवाज़ धक धक है पर मैं कोई मशीन नहीं। गौर से सुनिए क्लू नंबर थ्री। जब आप डरते हैं तो मैं बहुत तेज भागने लगता हूँ, अगर मैं बंद हो गया तो जिंदगी रुक जाएगी। मैं हर इंसान के सीने में हूँ और रोबोट्स के पास नहीं हूँ। क्या सही जवाब हो सकता है? Well, हमें बड़े मज़े के जवाब मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने खून लिखा है। भाई खून क्यों लिखा? पूरा चीज़ लिखो। किसी ने लिखा है आर्टरीज, कुछ ने लिखा है वॉच, कुछ ने लिखा है हार्ट बीट, कुछ ने लिखा है हार्ट, कुछ ने लिखा है दिल, कुछ ने लिखा है धड़कन। ओके वेल, ये सारे जवाब मैंने देख लिए ओके okay? लेकिन जिन्होंने भी हार्ट और दिल लिखा है ना, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने इस वक्त क्लू नंबर थ्री का ये जवाब नहीं दिया होता तो आप अंदर ही कैद हो जाते। ओहो हो भाई, पीठ थपथपा लो, गुड जॉब गुड जॉब, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए जरा नजर दौड़ाए जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर है संधू साहब, ठीक है, इन्होंने सही जवाब दिया।

फिर मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया. और कौन कौन है, चलिए नाम, बहुत सारे हमारे लिसनर्स लिखना भूल जाते हैं. मोहम्मद अराफतुल, इन्होंने भी सही जवाब दिया पूरे जिप्स के साथ. हाँ, अनम रूहान का भी सही जवाब, सरफराज का भी सही जवाब, अदील का भी सही जवाब, तैमूर का भी सही जवाब, हिशाम का भी सही जवाब, रमेश का भी सही जवाब, और कौन है, मोहम्मद नसीर, क्या बात है, इन्होंने भी सही जवाब दे दिया है. हमूद का भी सही जवाब है. और कौन है, और कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया, इनका नाम देख लिया जाए. आरिफ, वेरी गुड, आरिफ ने भी सही जवाब दिया है. नूर राइद अकबर, गुड जॉब, गुड जॉब. और जैसे ही आपने सही जवाब दिया, एग्जिट डोर खुल गया. हाँ, ताज़ी ताज़ी हवा भाई, ताज़ी ताज़ी हवा. फाइनली इस फैक्ट्री से बाहर आप निकले एंड यू आर फीलिंग अमेजिंग. आपको लग रहा है कि चलो भाई, मैं तो किस तरह बच गया. ये मेन फ्रेम ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही ह्यूमन हैं, वरना न जाने क्या होने वाला था, है कि नहीं. चलो, आज का एस्केप रूम का ये जो सिचुएशन थी, आपने सॉल्व की और आप आज के लकी विनर हैं. पर विनर तो कोई एक ही होगा. चलें उनका नाम बता देते हैं. तो आज की लकी विनर है हिशाम भाई. मुबारका, मुबारका, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया. अगर आज आपने लग कर सही जवाब नहीं दिए होते बैक टू बैक, तो आप कैद हो सकते थे. और हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़कर हर एक क्लू को सॉल्व किया, उनके भी सही जवाब दे थे, तो आपको भी हैट्स ऑफ, है ना. और गेम का रूल है कि विनर को एक होता है, इसलिए आपका नाम नहीं है, बट हो सकता है कि आपका नाम कल आ जाए. तो दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम सुनना ना भूलें. और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 से आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजेमी तक को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और देखो, आज तो हम मैकेनिकल नाइटमेयर से किस तरह बच के निकल गए, लेकिन कल हम शायद किसी ऐसे ग्रीन हाउस में फंस सकते हैं जहां पर हर पौधा भूखा है, हर वाइन्स मूव कर रही है. ओहो, तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो कल जुड़ते हैं दोपहर 1:30 बजे. और अभी के लिए कहना ज़रूरी है, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. Stay tuned to FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो घर में अक्सर इग्नोर हो जाती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे वाटर लीक फिक्स करने के बारे में। देखिए, एक बहुत ही रिलेटेबल सीन आपको बताती हूँ। आप घर में, ठीक है, किचन या बाथरूम में एक टैब है जो आहिस्ता आहिस्ता इससे आवाज आ रही है, टिप टिप टिप टिप। पहली नजर में लगता है कि भाई ये सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप है, क्या ही हो जाएगा, क्या मसला होगा, और हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं यही बात सोचकर, ये सोचते हुए कि बाद में देख लूंगा भाई, अभी क्या, कौन सी कोई जल्दी है अभी। लेकिन बाद में, ये जो बाद में आपने कहा था ना, इसको कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्ते बल्कि गुजर जाते हैं, कुछ लोगों का तो पता नहीं हफ्तों से भी ज्यादा गुजर जाते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको रियलिटी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर लीक सिर्फ एक छोटी सी टिप टिप से नहीं होता बल्कि कंटिन्यूस वाटर वेस्टेज से होने लगता है। एक छोटा सा जो लीकेज होता है ना, वो छोटा सा लीकेज भी टाइम के साथ अगर आप उसे कन्वर्ट करें तो वो लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर सकता है। और अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर लीक हो तो भाई वेस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो पानी हम लाइटली इग्नोर कर रहे थे ना कि भाई ये तो सिर्फ टिप टिप टिप टिप कर रहा है, ये क्या कुछ नहीं है, वो ग्रेजुअली एक सीरियस रिसोर्स लॉस बन जाता है भाई। देखिए, यहाँ पर इको स्विच बड़ा सिंपल है, सिंपल सा आइडिया है। हर वाटर लीक को सीरियसली लें और फौरन रिपेयर करें। पानी एक रिसोर्स है और रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। मतलब छोटी सी डिपिंग को भी इग्नोर ना करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि वाटर लीक फिक्स करने से क्या फायदे होते हैं, भाई क्या हो सकता है। देखिए, पहला फायदा तो बड़ा सिंपल सा है, वाटर कंजर्वेशन। जितना कम लीकेज होगा उतना ज्यादा क्लीन वाटर सेव होगा जो कि फ्यूचर यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा फायदा है यूटिलिटी बिल्स कम होना ना। अब आपका बिल आ रहा है इतना सारा और आप सोच रहे हैं भाई मैंने तो पानी यूज नहीं किया इतना, या मैंने तो जो है ना ऐसा कोई यूजेज नहीं किया कि जिससे इतना पानी का जो है वो बिल आ रहा है मेरा। पता चला आपका जो है ना कहीं किचन में कहीं बाथरूम में कोई लीकेज है और आप उसे नोट ही नहीं कर रहे आप उसे। देखिए, छोटी छोटी लीक्स मिलकर मंथली वाटर बिल को नोटिसेबली इंक्रीज कर सकती हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, तभी ये मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बाद में चला, अच्छा ये भी तो लीक था, और जब उसको फिक्स कराया तो एक नोटिसेबल चेंज था कि भाई बिल कम हो गया पानी का। तीसरा फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। कंटिन्यूस लीकेज पाइप्स और फिटिंग्स को वीक कर सकते हैं। चौथा फायदा है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है साथियों, और इसका वेस्ट डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब देखिए, इससे होता ये, जरा सोचिए, आप रात को सो रहे हैं, ठीक है, और किचन का टैब हल्का हल्का डिप कर रहा है या बाथरूम का टैब हल्का हल्का डिप कर रहा है। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक ड्रॉप ही तो है, लेकिन इमेजिन करें अगर हर घर में एक टैब, सिर्फ एक टैब लीक हो रहा हो तो पूरे एरिया में कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा, जरा सोचें। यानी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती है लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। देखिए, दोहा जैसे सिटी में जहाँ वाटर डिसेलिनेशन और सप्लाई सिस्टम बहुत एडवांस है, फिर भी पानी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए यहाँ वाटर कंजर्वेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग दोनों एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये होंगी कि पहला टिप ये है, रेगुलर इंस्पेक्शन करें। हर कुछ हफ्तों बाद टैब्स, बाथरूम्स और किचन की जो फिटिंग्स होती है ना, उन्हें चेक करें। अगर आपको कहीं लीकेज नजर आ रहा है तो उसे फौरन फिक्स करें। दूसरी बात ये, स्मॉल लीक्स को इग्नोर ना करें। इवन ये जो छोटी छोटी डिप्स हो रहे होते हैं ना, इनको भी सीरियस लेकर रिपेयर करें। प्रोफेशनल हेल्प लें, अगर खुद फिक्स नहीं कर पा रहे तो प्लम्बर को बुलाएं और ये प्रोसेस डिले ना करें। भाई, चौथी टिप है हमारे पास, वाटर यूजेज अवेयरनेस रखें। घर के मेंबर्स को भी, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, पानी सेविंग जो होती है ना, वाटर सेविंग, उसकी हैबिट्स के बारे में उन्हें एजुकेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंपल DIY फिक्सेस सीखें। बेसिक वॉशर रिप्लेसमेंट या
टाइट फिटिंग्स जैसे माइनर फिक्सेस आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। तो ये एक स्किल है, इसे सीखें। तो भाई इसी के साथ अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनविजिबल लीक्स या अननोटिस्ड डिपिंग हाउसहोल्ड्स में सिग्निफिकेंट वाटर लॉस का रीजन होती है। इसीलिए वाटर मैनेजमेंट में स्मॉल इश्यूज मैटर करते हैं भाई। स्मॉल इश्यूज मैटर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट में। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक ड्रॉप से क्या ही कोई फर्क पड़ना है, किसी को नहीं पता चलता, मैं भी इग्नोर कर दूंगा। लेकिन जब वो एक ड्रॉप कंटिन्यूसली गिरता रहता है ना, तो वो सिर्फ ड्रॉप नहीं रहता बल्कि रिसोर्स लॉस बन जाता है। सुना है ना आपने, मिसाल सुनी है ना, कतरा कतरा बनता है समंदर। तो भाई वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में देखें तो जब आप वाटर लीक्स फिक्स करते हैं ना, तो आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि केयर टेकर बन जाते हैं अपने रिसोर्सेज के। तो भाई इको स्विच सिंपल है आज का, हर वाटर लीक को इग्नोर ना करें, फौरन फिक्स करें इसे। आज का चैलेंज ये है कि आज अपने घर में एक क्विक वाटर चेक करें।

0: आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, और टैप्स को दूसरे तीसरे टैप्स से उनको ऑब्जर्व करें. अगर कोई लीकेज नजर आए तो उसे फौरन या फिक्स करें या प्लान करें. अगर आपको फिक्स करना नहीं आता कि इसको प्लम्बर को बुलाएं भाई, और अगर सब ठीक हो तो भाई किसी और से भी अवेयरनेस शेयर कर दो ना. क्या पता किसी और का टैब कुछ हो, वो ध्यान ना दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, क्या पता आपसे इंस्पायर हो जाए. तो भाई साथियों, पानी जिंदगी है और जिंदगी का हर ड्रॉप इंपॉर्टेंट होता है. जब हम वाटर लीक्स को टाइम पर फिक्स करते हैं ना, तो हम सिर्फ पानी नहीं बचा रहे होते बल्कि अपनी जमीन के फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं. इसी के साथ याद दिलाती चलूं कि मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर. मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ. तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है माफ करने की अहमियत के बारे में। माफ कर देना बहुत बड़ी खूबी है जो हर इंसान के पास नहीं होती। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमारा पहला रिएक्शन बदला लेना होता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि माफी देना सबसे ज्यादा बेहतर है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। नफरत और गुस्सा अंदर ही अंदर इंसान को थका देता है, जबकि माफी सुकून देती है। अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। माफी रिश्तों को दोबारा जोड़ने का जरिया बन सकती है। आज का अमल ये है कि किसी एक शख्स को दिल से माफ कर दें जिसने आपको तकलीफ दी हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
4: आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टर्म पर, और ये टॉपिक है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है क्या? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है एक इकोनॉमी ऐसी जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड ना करे, बल्कि नॉलेज, स्किल्स और इनोवेशन पर भी फोकस करे। जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 का गोल भी यही है कि कंट्री ऑयल और गैस से आगे बढ़कर नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बने। इस टाइप की इकोनॉमी में एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो वो नए आइडियाज़ और इनोवेशंस क्रिएट करते हैं। ये न्यू आइडियाज़ जो हैं वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इस प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D का सपोर्ट मिलता है तो आप जानते ही हैं कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, और ये नई टेक्नोलॉजीज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का एक और फायदा ये है कि ये सस्टेनेबल होती है। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज और इनोवेशन कभी ख़त्म नहीं होते ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये मॉडल अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, और शायद इसीलिए सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, नॉलेज ही फ्यूचर की असली पावर है। जो कंट्रीज नॉलेज और इनोवेशन पर इन्वेस्ट कर रही हैं वही ग्लोबल लेवल पर कल जाके लीडर्स बनेंगी। और कतर का विजन हमेशा से लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करना है। जहाँ कतर का विजन 2030 इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को जो है वो प्रोसेस में लाया जाए, और किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के चलते कंट्री का या मुल्क का फायदा हो। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा। जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं बहुत खास हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। हमारी बातचीत बहुत टाइम से हो रही है और मैं कब से बुला बुला के थक गया इनको, पर हमेशा मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं सर मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भरा बैठा था, मैं इन्हें कॉल करने ही वाला था आज कल परसों में, एंड देन इट हैपेंड। फिर हमारी बातचीत हुई तो हमने डिसाइड किया वन फाइन डे कि क्यों ना चलो कोई बातचीत कर ली जाए, और बातचीत करने के लिहाज से आज पूरी फैमिली मौजूद है मेरे साथ, आई एम रियली रियली हैप्पी। वो जो फैमिली वाली फील है सर, आपसे पहले से आते रहिए, वेलकम टू आवर स्टूडियो।
3: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया हूँ। और ये जो आपसे बात हुई
2: जी सर,
3: मतलब ये भी मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं कबीर से थोड़ा बात करूं।
2: सर झूठ बोल रहे हैं सर आप।
3: नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैं एक्चुअली मैं आपको कैसे समझाऊं कि बातें करना और लोगों को जानना
2: जी,
3: ये एक मतलब एक अलग ही चीज होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है।
2: और आपका डिपार्टमेंट भी कुछ कुछ वैसे ही है, राइट?
3: बिल्कुल।
2: अच्छा, आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, आप अपने आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप जो है घर का मतलब मेन चिराग हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए।
4: तो मैं हूँ शिमंती और मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आई हूँ आज। पापा ने जैसे कहा कि लोगों के साथ बात करना जानना, मेरा भी डिग्री वही है।
2: अच्छा, वेरी नाइस। तो आप एक लौती हैं या फिर कोई और भी है इनके साथ? एक लौती हैं आप, अरे वेरी गुड, मेरा वाला सीन है इनका, वेरी गुड। ये हमेशा तुम्हें सुनने को मिलता है वैसे कि क्या कहते हैं भाई बहन होने चाहिए एंड ऑल, क्यों मुझे सुनने को मिलता है? हाउ डू यू रिप्लाई टू दीस पीपल?
4: I was getting to each tip to their own.
2: ये अंग्रेजी बोलते सब शांत हो जाते हैं ना। तो देखिए हमारा शो थोड़ा जनरेशन से जुड़ा हुआ है, एंड सिंस यू आर आल्सो यू नो लिविंग आउटसाइड और आना जाना लगा रहता है इनका, अभी तो आप घर में रहकर शुरुआत से इनका जो इतना बड़ी जर्नी रही है यहाँ तक, आपने क्या सीखा है आज की जनरेशन से, आपको क्या लगता है?
3: पहली तो चीज है कि जनरेशन आजकल जहाँ पहुंच गया है
2: जी जी जी,
3: वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे ये तो मान लो।
2: ओके,
3: फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्ट योर डिफीट,
2: ठीक है
3: ना? अब जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है तब अपने आप को ना अपने जैसा महसूस होता है।
2: okay.
3: और ये जनरेशन भी वैसे ही चाहता है, दे वॉन्ट टू बी ऑन देयर ओन एंड बी देयर सेल्फ।
2: ओके, ठीक है।
3: तो ये एक सीख है कि बी योर सेल्फ, डोंट बॉदर कि दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में।
2: ओके,
3: आप अपना देखो, अपना सोचो।
2: ओके,
3: लेकिन हाँ दूसरे के लिए थोड़ा जियो, दैट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड, क्योंकि ये फ्रेंड्स के लिए बहुत जीते हैं।
2: ओके,
3: तो दूसरों के लिए भी जियो, अपना देखो, और तीसरा है मस्त मौला रहो।
2: हाँ,
3: ये चीज हमें सीखने को मिला है अपनी बेटी से ही।

0: आर्टिकुलेट वे में आप बात कर रहे हैं तो आई कैन गेस
1: हां मतलब स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग हर जगह पे टॉप पे रहे
0: अरे माशाल्लाह ओके सो ये तो देखिए अलग डिपार्टमेंट है नाउ तुम्हारी जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं व्हाट डू यू थिंक इज द प्राइमरी चीज जो हमारे या इनके समझ में नहीं आने वाली है या फिर एक एक अच्छी बात जो तुम्हें लगता है तुम्हारे जनरेशन के व्हिच यू फील के बाकी पहले जनरेशन में नहीं थी
2: आई थिंक पहली बात तो ये है कि वी आर ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन
0: हां ओके
2: वी आर वेरी हैप्पी विद द वे वी आर
0: ओके
2: तो हम सोचते नहीं कि लोग हमें देख के क्या कह रहे हैं हमारे दिमाग में उतना नहीं आता हम कहते हम जी रहे हैं हम खुश हैं
0: हां ओके
2: सो वी लव दैट वे और
0: कोई ऐसी शिकायत है इस जनरेशन तुम्हारा रहता है कुछ के यार मैं कैसे समझाऊं उन्हें छोड़ो नहीं समझाती
2: बीच बीच में कम्युनिकेशन एक तो बात होती है क्योंकि अभी एसेंशियली हमारे जनरेशन के लिए कम्युनिकेशन चेंज हो गया था जब कोविड हो गया था दैट्स व्हेन कम्युनिकेशन चेंज क्योंकि तब सब कुछ स्क्रीन्स के ऊपर था सो एसेंशियली वी क्रिएटेड आवर ओन लैंग्वेज एंड ऑफन टाइम्स क्या होता है मम्मी पापा के साथ बात कर रही हो जाता है बीच बीच में एक दो नया वर्ड यूज कर दिया तो पूछते क्या कह रही हो समझाना पड़ता है तो पूछते क्यों ऐसे यही तो कह सकती है पर वही एक नया लैंग्वेज अभी हुआ है जो उनको समझाना टू बी फेयर मेरे मम्मी पापा ने देव ऑलमोस्ट क्वाइट दे अंडरस्टैंड इट क्वाइट
0: आई कैन क्लियरली सी दैट
2: दे अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल सो मैं बीच बीच में बोल भी लेती हूँ दे अंडरस्टैंड दे रेसिप्रोकेटेड बैक नाउ दे यूज इट क्वाइट ऑफन
0: हिप हॉप बना दिया तुमने पूरी तरह से वेरी नाइस
1: बहुत सारी चीजें मतलब सीखने को मिला है
0: कभी तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा आपको सीखने के लिए
1: वही बता रहे हैं सीखने के लिए तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट हमें बहुत चीजें मालूम नहीं है और मालूम नहीं है
0: ठीक है
1: हाँ
0: ठीक है
1: इट्स एब्सोल्युटली राइट बिकॉज आई ऑलवेज फील कि एन एम्प्टी कप इज एन अपॉर्चुनिटी
0: डेफिनेटली
1: इसलिए मैं चाय वगैरह नहीं पीता हूँ जो आपको बता देते हैं एम्प्टी कप है मेरे सामने
0: तो मेरा ये अगला जो सवाल है ना थोड़ा सा अलग है देखिए आजकल ना सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें होती हैं एंड बहुत सारे यहाँ पे आए हैं जो आज की जनरेशन के एंड दे से कि वी आर वेरी एक्सप्रेसिव एट टाइम्स यू नो दे पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट क्या आप सोशल मीडिया पे पहले तो ही बताइए आप
1: हाँ जरूर है
0: ओके सो आप एडेड हैं दोनों की Were you like initially uncomfortable?
2: Absolutely
0: not. No problem at all.
2: I have nothing. Like, I'm
0: Do you express
2: open.
0: That much or no?
2: Yes.
0: Like, okay.
2: Everything.
0: Which is really cool. It doesn't happen. So, what did you think? Do you like comment on whatever she's expressing or you just let it go and talk about it later?
1: You tell us a little bit that when she was in grade 11, 12, तब हम लोग उससे पूछते थे कि इतने फ्रेंड्स लोगों को ऐसा है इनके पास ऐसे सोशल हैंडल्स हैं एंड दे मेंटेन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल
0: यस
1: तो इन्होंने एक चीज कहा था बड़े डैडी अभी नहीं करते व्हेन आई विल गो टू यूनिवर्सिटी उस समय आई विल डू इट एंड आई विल डू इट राइट
0: ओके
1: तो जब वो यूनिवर्सिटी गई देन शी स्टार्टेड हर सोशल हैंडल्स
0: अरे वेरी नाइस
1: एंड तब जाके एंड वी वर कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे
0: ओके
1: और यहाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग वी डोंट बोथ ऑफ अस लाइक वी डोंट फील कि वी आर एनक्रोचिंग अपॉन प्राइवेट स्पेस
0: व्हिच इज नॉट
1: वो चीज एक्चुअली हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे फैमिली
0: बिकॉज़ आई हैव सीन सच इंस्टेंसेस
1: जो जिनके जो लोग एक्चुअली अपने बच्चों के सोशल मीडिया में है नहीं
2: एग्जैक्टली
1: दे आर नॉट देयर तो हमें थोड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसा हमने कर दिया कि हम हैं वहाँ वो नहीं है But the fact is that the acceptance level.
0: Absolutely.
1: Acceptance level.
0: And I think कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज से भागेंगे तो दूसरी प्रोफाइल बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है.
1: Obviously.
0: है ना?
1: You would obviously do that. It's so easy. You can always have another one. लेकिन जिसमें है and second thing जो very important है कि trust in your genes. ये मैं सभी parents को बताता हूँ. So when we have such sessions, जब मैं हम लोग बैठते हैं parents के साथ मैं कभी कभार counseling sessions करता हूँ.
0: अच्छा.
1: तो उस समय मैं ये कहता हूँ कि trust your genes. You have brought them up in a certain way. और उस way को वो आप ही का ही way है. ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे अलग कुछ है. That means trust them. और अगर वो ट्रस्ट सुपरलेटिव डिग्री तक है जो मतलब यहाँ सामने बैठ के ऐसा नहीं है व्हेनेवर शी इज देयर आल्सो वी ट्रस्ट व्हाट शी इज डूइंग ऐसा
0: काफी लेवल हेडेड
1: सारे पेरेंट्स का अगर
0: काफी लेवल हेडेड मामला है ना आपका इसलिए इट बिकम्स इजीियर फॉर यू जिद करती हैं वैसे आप मतलब पहले कभी जिद करी नाउ यू आर लाइक काम डाउन
2: essentially
0: ऐसा कुछ नहीं okay and talking about you कोई ऐसा ambition है that you're like about to tell them or you have already told them
2: they know everything
0: okay
2: they always know everything उन्हें मैं पहले बताती हूँ जो भी होता है उनको पहले text भेज देती हूँ
0: इतनी sorted family माशाल्लाह very good पर फिर भी क्या ambition है
2: well, as of now, I

0: on to be a criminal psychologist.
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. वेरी नाइस. ओके, तो ये कहाँ से आया, ये कहीं कुछ देखा, इन्फ्लुएंशियल कहाँ से हुआ?
0: बचपन से घर पे भी लाइक चर्चा होती थी कि शर्लक होम्स के बारे में.
1: ओह नाइस.
0: देयर वाज ऑलवेज टॉक.
1: या ओके.
0: हम लोग बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम सीरीज देखते थे. एंड बचपन से मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ, एवरीथिंग इज क्राइम रिलेटेड, एवरीथिंग इज अ थ्रिलर.
1: ओके,
0: दैट्स सॉर्ट ऑफ अ
1: हाई फाइव ऑन दैट. वेरी गुड.
2: सिर्फ यही नहीं, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ.
1: ओके,
2: प्रीनेटल स्टेज जब था प्रेगनेंसी का,
1: हाँ हाँ,
2: उस समय शर्लक होम्स को फिर से दोबारा पढ़ी इन्होंने.
1: अरे अच्छा.
2: हाँ
1: अच्छा, ये इन्फ्लुएंस पहले से चल रहा है क्या?
2: बहुत कुछ पता नहीं, बट इनको पसंद था.
1: वेरी नाइस.
2: तो इसलिए इन्होंने पूरा पढ़ा.
1: हाँ
2: और मैनेजमेंट के सारी किताबें पढ़ ली फिर से.
1: ओके,
2: जो एमबीए में किए.
1: हाँ हाँ.
2: और फिर जब रस्ते पे चलते थे, वॉक लेते थे, तो उस समय भी हम लोग चर्चा करते थे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स वगैरह.
1: अच्छा,
2: तो ये सब चर्चे होते रहते थे.
1: Oh,
2: पता
1: nice.
2: नहीं उसी का शायद it would be a manifestation of that.
1: नहीं सर, इतना चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपने मेहनत बहुत करी है, तो उसका क्रेडिट लीजिए आप प्लीज. ये आपकी मोहब्बत, आपको भरोसा है जो यहाँ तक लेके आया.
2: हाँ, लेकिन इसकी जो मतलब चाह है टू हैव दैट क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये अभी तक डगमगाया नहीं.
1: Started
2: from...
0: हाँ, क्योंकि नहीं डगमगाया था मिडिल स्कूल में एक बार जब कहा था मुझे डांस करना है, केपॉप आइडल बनना, एक फेस था.
1: अच्छा, वो ही फेस था.
0: वो एक फेस था. और फिर न्यूरोसर्जन भी बनना था एक बार.
2: हाँ, बीच में जैसे आते रहते हैं,
1: ये वाला चीज जरूरी है.
0: और फिर एक दिन लगा कि नहीं, इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी के बीच में रखा, और फिर मैंने कहा नहीं साइकोलॉजी पढ़ूंगी.
1: ज्यादा सही है ना. ओके, बिकॉज़ साइकोलॉजी मेरा भी सब्जेक्ट था, तो आई कैन अंडरस्टैंड. आई शेयर द सेम लव फॉर ऑल दीस थ्रिलर्स एंड क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टफ. क्योंकि मैंने सुना अभी आप दोनों से ही, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि आप लोग इसको मतलब यू डोंट टेक इट अदरवाइज. लेकिन कई मरतबा आजकल देखने में आता है, मैंने पेरेंट्स से बात करी, एंड देयर लाइक कि बड़ा वो कोशिश करते हैं, डरते हैं इस बात से कि दो तीन चीजें हैं, वीडियो गेम से थोड़ा दूर रखना है, ये चीज नहीं दिखानी है, हॉरर से दूर रखना है, थ्रिलर से दूर रखना है, इसका ये इंपैक्ट होता है, एंड इट इज टू मच नाउडेज, है ना. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू लाइक, हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग?
2: ओके,
1: आपके सहने में कुछ ना कुछ होगा, राइट?
2: जरूर. हाँ. बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में हम दोनों का एक कॉमन प्रोजेक्ट था.
1: ओके,
2: forced by me possibly because again
1: okay.
2: During my bachelor days
1: okay.
2: I mere ko Abdul Kalam sahab se bahut sara inspiration mila.
1: okay,
2: to Abdul Kalam sahab ek aise insaan the jinhone ek conference mein, hum log tab young engineers the,
1: okay.
2: he was there as a speaker, to humko sunne ka bhi mauka mila tha. unhone bataya tha ki dekhiye main to scientist hu, us samay wo president nahi the.
1: okay,
2: scientist the, department of atomic energy and ISRO
1: inka.
2: to उन्होंने बताया था, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड आई डोंट हैव अ टेलीविजन एट होम.
1: ओके,
2: आई डोंट सी इट, आई डोंट नीड इट, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ.
1: ओके,
2: दैट्स ऑल.
1: ओके,
2: तो वो जो जहन में आ गया कि टेलीविजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, फ्रॉम हर बर्थ शी डिडंट सी अ टेलीविजन.
1: ओके,
2: बट शी यूज टू हैव एक टाइम रहता था, डेडिकेटेड टाइम फॉर वॉचिंग वॉट इज रेलिवेंट ऑफ दैट एज.
1: ओके,
2: तो हमारा जो कंट्रोल था वो था टाइम ड्यूरेशन पे और एज रेलेवेंट व्यूइंग.
1: प्लीज एक्सप्लेन एज रेलेवेंट. मतलब
2: एज रेलेवेंट मतलब जो बच्चे जब हैं एकदम छोटे बच्चे
1: उस एज में क्या
2: उस समय जैसे बारबीज के.
1: हाँ, ओके.
2: लेकिन ऐसा भी कार्टून्स नहीं जो एजिटेट करता हो, बट सूदिंग मेलोडियस. तो उसके चलते क्या हुआ, शी यूज्ड टू उसी में बह गई. तो हम पूरा यू कैन से इट वाज अ डायरेक्टिव वे ऑफ पुटिंग द चाइल्ड इनटू अ फेस.
1: और कौन सी एज में आपको लगा कि दिस इज द राइट टाइम, चलो ठीक है ये हमारे साथ बैठ के ये क्राइम थ्रिलर भी देख सकती है?
2: सो दैट वाज कब आया वो एज?
0: मिडिल स्कूल. यहां
2: पे मिडिल स्कूल पे हम लोग किताबें पढ़ते, तो उस समय डिस्कस भी करते.
1: हां, नाइस. ओके,
2: हां, तो जितना फॉर्मेटिव इयर्स पे था, मतलब 6 इयर्स 7 इयर्स से नीचे,
1: या
2: उस समय शी यूज्ड टू सी वीडियोस बट डेडिकेटेडली ओनली फॉर सच काइंड्स ऑफ थिंग्स.
1: ओके,
2: हां, फिर जैसे फॉर्मेटिव आया, नॉर्मेटिव आया, नॉर्म सेट करना होता है, तो उस समय से देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हर एंड सीइंग दोस काइंड्स ऑफ थ्रिलर्स व्हिच आर रिलेटेड टू क्राइम्स एंड सीरीज एंड.
1: ये बेस्ट आंसर मिला है मुझे इस चीज का, अभी तक मुझे इसका जवाब अच्छे से मिला नहीं था, बट आपने इस तरीके से सॉर्टेड जवाब दिया है, समझ में आ रहा है, टॉपर है आप.
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन एफएम 107.
1: Let's talk about mental health, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, हमने कल परसों ही बात करा.

0: था एंड जो वर्ड मैंने अपने टाइम पे भी नहीं सुना आई एम नॉट दैट ओल्ड उसके बावजूद मैंने कभी स्कूल में नहीं सुना डिप्रेशन एंग्जाइटी पता नहीं क्या क्या एंड मैं जब देखता हूँ 12 साल का बच्चा परेशान है इसको क्या कहा ये बात की परेशानी है एंड दैट यू नो दैट्स लाइक एन एक समझ में नहीं आता इसको क्या कैसे लिया जाए क्या बोले व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन ऑफ दिस
1: मैं बोलने के पहले अपनी बेटी से बोलूं
0: हां प्लीज यू गो अहेड बिकॉज़ यू
1: पढ़ाई भी वो कर रही है
0: आई थिंक तुम्हारे बिफोर आई लेट यू स्पीक सॉरी फॉर इंटरप्शन बाय द वे तुम्हारे दोस्त भी होंगे नो नॉट एवरीबॉडी कैन बी एज लेवल हेडेड एज यू वुड बी और यू कुड वांट टू बी व्हाट डू यू सी दीस डेज दैट रियली बॉदर्स यू
2: Absolutely nothing, because the first and foremost thing is everyone's different.
0: Yeah, that's true.
2: That's as simple as that. So whatever behavior someone is exhibiting, I look at it.
0: Okay.
2: I try to find the cause of that behavior, and I simply accept it.
0: Okay.
2: And then I change my way of interacting with that person.
0: Okay.
2: Do whatever suits them best.
0: Okay. It doesn't bother you that the thanik says it gets changed, okay? Some people change.
2: Because there are circumstances you're not aware of.
0: Yeah, and that's the best way to deal with it, I think.
2: That's the easiest, because you never know what someone's going through.
1: ये जो चीज है ये हम लोग जब when we started our life together उस समय भी हम जब बाहर निकलते थे लोगों में देखते थे लोग कैसे हैं क्योंकि हमारा दोनों का पढ़ाई एक ही फील्ड में है
0: अच्छा
1: इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस
0: क्या बात
1: तो उस समय ह्यूमन बिहेवियर वाज समथिंग व्हिच वी यूज्ड टू क्लोजली ऑब्जर्व कहीं भी जाएं बच्चे का उनके पेरेंट्स का उनके ग्रैंड पेरेंट्स का सब वी नॉर्मली ट्राई टू लुक एट दैट ये अलग नहीं है कि हम उनको ऐसे देख रहे हैं कि we are trying to be magnifying glass लेके ले
0: रहे हैं। चाची नहीं है,
1: करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन है। तो जब भी जाते हैं वैसा तो हमें दोनों का अप्रोच ऐसा था कि शायद इस बंदे को हेल्प की जरूरत है
0: ओके
1: Anybody who used to have a different kind of an approach towards life, suppose वो थोड़ी सी anger में बात करे, suppose वो बहुत मतलब ऐसे disgusted है, frustrated है, मतलब उसके इस frustration के पीछे एक story है, कहानी है, हर एक इंसान का एक कहानी होता है, आज आप यहाँ जिस मूड पे आए हैं उसके पीछे कहानी है
0: Obviously,
1: आप घर पहुंचेंगे तो उसके पीछे भी एक कहानी है तो यही हमारी मतलब दिस इज व्हाट आवर टेक ऑन दिस की वी बिलीव दिस इसलिए क्या होता है लोगों से इंटरेक्शन करने में इट बिकम्स इजियर बिकॉज देन वी आर एबल टू अप्रिशिएट और दैट एम्पथाइज कि वो तो इस डायमेंशन से ही बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा
0: understand their perspective as well and that is the most important thing
1: that's the most important
0: और एक चीज हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में and we were discussing जितने भी लोग आते हैं बहुत सारे ऐसे भी आए हैं जिनके जो बच्चे हैं वो 16 17 18 साल 20 साल तक है एंड उनका क्या है कि उनसे कुछ पूछो कि क्या करना पसंद है तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई उसके बाद ये एंड दे डोंट डू जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज दे आर टू स्केयर्ड टू मेक देम इंडल्जेंट स्टफ जैसे कि स्टफ क्या बोलूँ वीडियो गेम्स एंड ऑल अब वो थोड़ा एक डर है कि पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस हो जाएंगे पता नहीं क्या देख लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा क्या सजेशन है आपका हाउ टू लाइक लेट देम बी या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दे आर मिसिंग देयर होल टीनेज वाला जो पार्ट है जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा फ्री रहना चाहिए मतलब इतना क्या
1: देखिए जैसे मैंने कहा कि एक कप एम्प्टी है तो उसमें अपॉर्चुनिटी है हमारा माइंड भी वैसा ही है हम अगर कहते हैं कि ही इज एन एम्प्टी माइंडेड पर्सन तो उसको नेगेटिव से भी बहुत लोग लेते हैं कि इसके दिमाग में है नहीं कुछ लेकिन दिमाग में ना होना भी जरूरी है ना होना कुछ सेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो खाली होने चाहिए एंड हाउ डू वी मेक इट खाली इज दैट वी हैव टू गिव सम स्पेस फॉर दैट पर्सन टू
0: वो जगह नहीं है समझ रहे
1: वो जगह नहीं है
0: तो उनको
1: वो जगह बनानी जरूरी है
0: या एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा ना बहुतों से पूछा मैंने एंड दे विल बी स्केयर्ड टू से हर हम क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं उससे ये हो जाता है उससे हो जाता है पीपल बिकम अग्रेसिव एंड ऑल एंड आई हैव हर्ड दैट सो मेनी टाइम्स एंड आई डोंट गेट इट बिकॉज़ आई लव इट मैं शुरू से तुम्हारी तरह मैं भी देख रहा हूं एंड आई प्ले वीडियो गेम्स ठीक है उसमें शूटिंग एंड एवरीथिंग इज देयर बट दैट डजंट मेक मी एंग्री मतलब मैं दरवाजा थोड़ी तोड़ा
1: तो इसलिए ये जो सारे एक्टिविटीज हैं दीज आर देयर टू फ्री अप योर स्पेस हां
0: एग्जैक्टली
1: लिमिटेशन होना जरूरी
0: वो
1: है
0: वो तो हर चीज
1: में है
0: वो तो हर
1: आप बियॉन्ड तो नहीं जाएंगे
0: ऑब्वियसली
1: तो इसलिए जो भी करना है इवन इफ इट इज एन एग्जाम टाइम इट शुड नॉट स्टॉप इसकी डांस और सिंगिंग क्लासेस
0: ओके
1: हम मतलब अभी भी इसको जब पढ़ाई लिखाई होगा बट दैट शुड नॉट स्टॉप बहुत लोग करते हैं एग्जाम के टाइम पे चलो अभी डांस क्लास नहीं है तो बहुत पढ़ाई है एग्जाम है नहीं करना है बट वी नेवर बिलीव दैट बोथ ऑफ अस वी नेवर बिलीव दैट बिकॉज

0: that was an oxygen for her.
1: Yeah, वो स्पेस ब्रीदिंग स्पेस है.
0: हाँ, और वो ऑक्सीजन से जो एनर्जी मिलता है
1: yeah.
0: उससे आप और ज्यादा फोकस कर सकते हो
1: yeah.
0: और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो.
1: हाँ राइट. अब एक लौता उन्हें पता, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग समझते नहीं है. लोगों को लगता है एक लौता है, अरे इनको तो बात करना, इनके दोस्त
2: खुद नहीं है, भाई लोनली होंगे.
1: या आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट वी आर लोनली. वो डेफिनेशन लोग बदल देते.
2: बहुत लोग ने मुझे पूछा तू लोनली नहीं थी बड़े होते तो.
1: हाँ पता नहीं क्यों लोगों को, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा एक भाई होना चाहिए? अरे भाई नहीं होना चाहिए था, ठीक है. And it's fine. But people वो label दे देते हैं, lonely हो जाते हैं वो तो. अच्छा क्या क्या पसंद आया वहाँ पे जो मतलब you stay connected to that? Yeah, the best thing about it.
2: Weather and food.
1: हाँ हाँ हाँ.
2: Beautiful. Amazing.
1: कुछ अभी वो जो था ना बाहर जाके थोड़ा मेरे को मैक्सिकन पसंद है, ऐसे कुछ आया तुम्हारे अंदर?
2: नहीं नहीं, वहाँ पे जाके बहुत चाइनीज खाना, मलेशियन, सिंगापुरियन,
1: दैट इंडियन चाइनीज वर्जन ऑफ.
2: नहीं नहीं नहीं.
1: The typical
2: no,
1: Chinese.
2: I'm not into Indian food at all.
1: Huh?
2: So I don't like Indo Chinese as well.
1: Okay.
2: I need like original Chinese food.
1: Okay.
0: Ye Chinese khati hai.
1: Acha.
0: Aur uske chalte hum bhi Chinese, Vietnamese.
2: Korean.
1: Very nice.
0: Korean.
1: No, I love Korean food. Huh? Korean.
0: Aisa hum log khana start kar diya humne. मतलब तब से बहुत अच्छा लगता है.
1: सर आपकी एडेप्टेबिलिटी बड़ी खतरनाक है. इसकी तारीफ करनी पड़ेगी.
0: हम तो अमीबा हैं, जैसा शेप में डालो हो गए.
1: ओके एंड बिफोर आई लेट यू गो, क्या आपका मैसेज है इन्हीं की एज के जितने भी लोग हैं?
0: मैसेज बताए तो
1: नॉट रियली ज्ञानव्यापी,
0: बट इट्स अ वेरी कूल थिंग. जब मम्मी पापा फोन करें तो उठा लिया करो.
1: ये बात मैं 10,000% एग्री करता हूँ. ये तो ताना मारा है आपने, बहुत शानदार.
0: ये एक एडवाइस है
1: okay.
0: कि मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं.
1: हाँ.
0: अगर फोन उठा लेते हो
1: हाँ.
0: तो कुछ नहीं जाता है.
1: हाउ ऑफन डू यू कॉल बाय द वे जब ये बाहर होती है?
0: हम लोग वो छूट देके रखे हैं, उतना भी नहीं कॉल करते हैं.
1: अच्छा
0: okay. मतलब एक कुछ ऐसा होता है कि 4-5 दिन लगातार हम इसको देखते भी नहीं.
1: अच्छा
0: हाँ. बात मतलब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, डे इज फाइन, एंड ऑफ द डे हाउ वाज योर डे, कूल,
1: ओके,
0: तो ऐसा
1: सॉर्टेड है.
0: हाँ, तो फिर कुछ ऐसा जिफ लगा दिए तो वो कुछ ऐसा ये बना दिया तो ये सब चल गया, खत्म.
1: यू शेयर मीम्स एज वेल?
2: एब्सोल्युटली.
1: अरे बहुत बढ़िया. ये हुई बात.
0: वो सब है तो वन थिंग इज देयर, जब भी थोड़ा फोन करें
1: yeah.
0: ना फोन उठा लिया करें. ये इस जनरेशन का एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है. और दूसरी चीज है कि आगे चल के लाइफ थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव और भी ज्यादा होने वाली है.
1: यस,
0: व्हिच इज देयर फॉर ईच जनरेशन.
1: होना भी चाहिए सर.
0: होना भी चाहिए. तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से. कोर कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दो. जो लोग इधर उधर मत भटको, कोर कॉम्पिटेंसी अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई, लाइफ सेट हो जाएगी.
1: अपनी जनरेशन को क्या मैसेज दोगी? सिंस देखो मैं आई रियली प्रे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज एक तो मेरी फेवरेट फील्ड्स में से एक तुमने चूज किया है, सो आई रियली वांटेड टू शाइन इन दैट एंड आई प्रोबब्ली विल. बट व्हाट इज योर मैसेज टू योर जनरेशन?
2: सिंपली दैट वी आर डूइंग वेल, लेट्स डू इवन बेटर.
1: तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस यहाँ आने का? बोथ ऑफ यू कैन शेयर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग हियर? इससे पहले कोई स्टूडियो में जाने का मौका मिला?
2: इसके पहले एक बार गए.
1: ओके नाइस.
2: एक वर्कशॉप के लिए गए थे.
1: आई होप इट्स बेटर.
2: एब्सोल्युटली, इट्स मोर फन. तो एज पर उस दिन ऐसे बातचीत नहीं होती, जस्ट लाइक यू नो ऑडियो कंट्रोल्स ये सब देख रहे थे वहाँ पे, माइक कैसे काम कर रहा है,
1: ओके,
2: जस्ट ऑल ऑफ दैट, म्यूजिक कैसे, डीजेइंग का एक एक्सपीरियंस हुआ था तब, तो वो सब देखने गए थे. पर आज बहुत मजा आया.
1: थैंक यू सो मच. क्योंकि बाहर एक्चुअली आरजेस को डीजे ही कहते हैं, मतलब यहाँ पे भी देख रहे डीजे लिखा हुआ है. या दैट्स व्हाई वो डिस्क जॉकिंग को ना, पर हमने फिर वो देसी, एक तरीके से देसी वर्ड है ये कि रेडियो है तो रेडियो जॉकिंग करें. सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
0: मेरा तो हर समय मन था कि मतलब रेडियो स्टेशन मुझे देखना है.
1: अच्छा
0: कैसा होता है ये, फील कैसा होता है ये माइक्स?
1: सर पहले ही दिन मैसेज कर देते आप सर. तो किया नहीं आप लोग?
0: ये तो था मन में.
1: अच्छा.
0: लेकिन धीरे धीरे यू नो ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मैं आना है.
1: अरे आप बोल रहे सर, इतना तो
0: जब मैं मुझे एक्चुअली वो ना वाइब्स आना चाहिए.
1: अच्छा ओके.
0: तो मुझे कबीर से वो वाइब्स आया.
1: अरे थैंक यू सर.
0: तो तब जाके मुझे ऐसा लगा कि नो आई शुड एक्सप्रेस माय फीलिंग.
1: थैंक यू.
0: यहाँ आके जो लगा मैंने इसको कहा, और हम लोग आते थे बात कर रहे थे, ये पूछ रही थी वहाँ क्या लिखा रहेगा FM 107.9.
1: बिफोर आई लेट यू गो, साइन ऑफ करने से पहले सर आपको सारी लैंग्वेज में कमांड है जहाँ जहाँ आप रहे हैं, लाइक बंगाली एंड मराठी बोल?
0: हाँ, क्योंकि जन्मा हूँ उड़ीसा में.
1: अच्छा से कहानी शुरू है.
0: हाँ
1: ओके.
0: ओडिया भी कही होची, बुझे होची, लिखी होची, देन बंगाली इज द मदर टंग.
1: ओके,
0: सो वी स्पीक बंगाली एट होम.
1: अच्छा, तो कमांड अभी सबकी है. ओके,
0: सबकी है, लिखना पड़ना. मेरा फर्स्ट जॉब था तमिलनाडु में, लेकिन वो बॉर्डर था कन्याकुमारी, दैट इज केरला का.
1: ओके.

0: वहाँ एक लैंग्वेज चलती है उसको कहते हैं तलयालम, तमिल प्लस मलयालम तलयालम। अदो नल्ला तरियों, एलद तरियों, पढ़ के तरियों, पेस तरियों।
1: ठीक है सर, जो भी कह रहे हैं
0: जो भी है। तो वो वहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ जहाँ महाराष्ट्र में आए मुंबई में, तो मराठी समझ में आ जाती है, कुछ कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन वहाँ बोले नहीं इतना बोल के, आई कैन नॉट रीड और राइट।
1: अच्छा ओके,
0: बट दैट इज फाइन। और यहाँ आके तो थोड़ी सी अरबिक, थोड़ी सी
1: काम चला, मतलब निकलने बढ़ने के लिए काफी लगने। ठीक है सर, आई एम टोटली इंप्रेस्ड बाय द होल फैमिली, नॉट जस्ट बाय यू, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट्स बीन अ प्लेजर। ये फॉर्मली भी कह रहा हूँ लेकिन आई रियली मीन दीज वर्ड्स, बिकॉज आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई मिलने के लिए आए एंड आई फील लाइक ये बात हम काश और कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, यू बीइंग सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। आप तो मतलब घर की सीईओ हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो एम्प्लॉई है तो लोग। जब वो अचीव कर लो ना, देन कम बैक फॉर एन इंटरव्यू प्लीज। मुझे फेवरेट टॉपिक है,
0: आप भी
1: जी सर, प्लीज सर प्लीज बोलिए,
0: आप भी
1: जी सर,
0: हम तीनों की तरफ से
1: जी सर,
0: ये जो हमारी मतलब दिल से दुआ है आपको
1: जी सर,
0: कि आप इसी तरह लोगों से कनेक्ट कीजिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: और ऐसे ही सुमधुर जो आपकी भाषा है और जो आवाज है
1: जी सर,
0: इससे लोगों के दिल तक पहुंचते रहिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: दिस इज यू, लेट यू स्पीक टू देयर हार्ट्स।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यार सर, हमेशा हमेशा के लिए आपके। थैंक यू सो मच,
2: ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। अस्सलाम। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है, ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें, ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें, ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: हाँ जी हबीबी टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:01।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या है हाल चाल द रिक्वेस्ट शो 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अभी से लेकर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और आपके अपने मर्जी के गाने रहेंगे बेस्ड ऑन के आज की थीम क्या है। अगर आप बाहर हैं और अपना काम वगैरह करके लौट रहे हैं तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, कार में बैठने के बाद एकदम से पसीना जो है वो आने लगता है और ये गर्मी में जितना हो सके पानी पीते रहिए क्योंकि माहौल गर्म का गर्म होता चला जा रहा धीरे धीरे। और वैसे भी यार जब तक आप ऑफिस में रहते हैं एसी चलती रहती है तब तक आपकी आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं और जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हैं ऑफिस के बाहर आते हैं कार में बैठते हैं आपकी आंख एकदम छोटी हो जाती है। मतलब एक मिनट में आप जो है ट्रेवल कर लेते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया से आप तुरंत चाइना पहुंच जाएं ऐसा एकदम हिसाब किताब बदल जाता है। फिलहाल अपना ख्याल खूब सारा रखें, पानी पीते रहें और खूब सारा पानी पीते रहें क्योंकि ऐसे गर्मी में तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, इसलिए ज़रूरी है कि पानी पीते रहें और कोई भी पीने वाली चीज़ दिख जाए सामने, है ना, कोई ठंडा मिल जाए, जूस मिल जाए, पानी मिल जाए, शक्कर वाला पानी मिल जाए और मीठा पानी मिल जाए, हर एक

0: मीठा ज्यादा नहीं, वो टैक्स वाला पानी हो गया, लेकिन जहां पर भी लिक्विड मिल जाए पी जाओ भाई। तो 4:03 और 2010 से 2020 तक के गाने आज मैं प्ले करने वाला हूं, क्योंकि आज की थीम यही है कि 2010 के बाद कुछ गाने ऐसे आए थे जो बहुत ज़्यादा हिट रहे थे और आज भी हिट हैं। 2020 तक के गाने आप आज सुन सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6662107, 6662107। और एक बार फिर से वही हो गया है जो रोज़ मेरे साथ होता है, वो मोबाइल कहाँ है? हाँ, दिख गया है लेकिन अपने रीच से दूर है, हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता। कानून का हाथ होता तो पहुंच जाता लेकिन नहीं पहुंच सकता फिलहाल। तो फिर ये वाले सुन लो जल्दी से, मैं लेकर आता हूं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो दिल से देसी लेकर आ गया हूँ मोबाइल, और आप अपनी मर्जी गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 6662107, 6662107। 72% पे चार्ज है हमारा ये फोन, और दो बार पटकने पर 82 भी हो जाएगा लेकिन ये वाली ट्रिक ना, पटकने वाली ट्रिक, एक तो रिमोट पे और इस वाले फोन पे 10% पे काम करती है। 72 के बाद मेरे को नहीं आइडिया है, मैं ट्राई कर लूंगा। लेकिन फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों के, और क्या है हालचाल, कैसा दिन गुजर रहा है इसके बारे में बताएं। क्या हाल है? मेरे भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम हिशाम साहब, मेरा हाल बहुत अच्छा है, आप सुनाएं मेरा भाई कैसे हैं। नाम आपने लिखा तो नहीं है, मैं फैसल भाई। ओके, ये आज फैसल मैंने इसलिए देख लिया क्योंकि स्क्रीन जो है ना वो नीचे की तरफ टूटी है ऊपर की तरफ, फैसल जो कल का मैसेज है वो ऊपर की तरफ चला गया है। Now I can see. फैसल भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं। यूसुफ भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे इवनिंग, आपको भी मंडे की बहुत मुबारकबाद। हुसैन भाई अच्छा हुआ मैंने जल्दी से पढ़ा नहीं, कभी कभार होता है ना मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ चीज़ें। इन्होंने जो लिक्विड में, खैर ठीक है, अब इतनी ही बातों में मुझे लगता है लोगों के पास बात पहुंच गई होगी। हुसैन साहब दूर रहना नहीं मैं उससे नहीं कह रहा जो आपने लिखा है, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप से दूर रहना, क्योंकि आपके चक्कर में मेरी चली जाएगी नौकरी है? वो तो माशाल्लाह, एक तो एक्सपीरियंस है आपके अंदर काबू आ जाता है, आप पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं, मतलब हमारी आवाज निकले उससे पहले हम अपने दिमाग में पढ़ लेते हैं अगर अगला आदमी लिखे क्या है। तो हुसैन साहब ने जो लिखा है उसमें तो फिर हमारे बॉस की साइन ही होती है, हाँ भैया इनका काम हो गया अगर मैं पढ़ देता तो। पानी जो भी मिले आप पी जाए दोस्तों, ताकि हाइड्रेट इंसान रहे लंबे वक्त तक, हाइड्रेशन बड़ा ज़रूरी है। और सुनते रहे FM 107, आगे बढ़ते धीरे से। खुदा और मोहब्बत फिर से भाई ने रिक्वेस्ट कर दी है कल वाली, और ये आज मैं प्ले कर दूंगा। 2010 के बाद का गाना है ना, ओरिजिनल साउंड ट्रैक है खुदा और मोहब्बत सीजन 2 OST, अहमद जहांजेब हर पल जियो। ये गाना सुनना चाहते हैं। अब देखो इतना भाई ने कह दिया, अगर कल भी कहा और आज भी कहा, फैजान साहब की रिक्वेस्ट तो मैं टाल नहीं सकता, पूरा ऐसा लग रहा है इनका वीजा लग गया है यार, USA का है। आप प्रोफाइल पिक देखेंगे तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी तो है, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी है ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है USA के एकदम कोई हाईली इम्पॉर्टेंट जॉब में से है, हैं एजेंसी वगैरह चला रहे हैं, और फिर ये गाना सुन रहे हैं खुदा और मोहब्बत एकदम अलग माहौल। ओके, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं। अशफाक मियाँ, अशफाक मियाँ एकदम सही है भाई, वो गाना चला दो आतिफ असलम की आवाज़, कदीते हस बोल। यार ये वाला गाना आई गेस 2010 के पहले का है, कदीते हस, मैं चेक करता हूँ। 2020 का पाकिस्तानी पॉप है तो मैं यही प्ले कर देता हूँ फिर, क्या बात है। सो एक तो ये गाना हो गया, और फैजान साहब ने जो कहा है मैं वो थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, खुदा और मोहब्बत सीजन 2, ये मिल जाए। क्या है कि हमारा जो खुदा और मोहब्बत, हमारा जो डेटाबेस है उसमें ये गाना है या नहीं है, ये भी एक खेल है। तो खुदा और मोहब्बत से ये गाना आ तो नहीं रहा भाई, ये गाने बहुत सारे हैं बट नहीं आ रहा भाई, थोड़ा मुझे और वक्त दीजिए। क्या है कि हमारे डेटाबेस में

सर्च कर लेता हूँ फैजान साहब, थोड़ा सा ठंड, और उसके बाद आपका गाना प्ले करेंगे अगर यहाँ पर अवेलेबिलिटी हुई तो। लेकिन अभी आतिफ असलम की आवाज़ में ये गाना प्ले कर रहा हूँ, और 2020 का ये है ट्रैक कदीते हस बोल, लेकिन ये अलग वर्जन होगा, वो वाला नहीं जो आप बॉलीवुड का चाह रहे हैं, ये वो वाला नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप भी अपने मर्जी के गाने सुन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे रिक्वेस्ट करने के बाद। 2010 से लेकर 2020 के अपने मर्जी के गाने आप सुन सकते हैं, बस 6662107 पे मुझे गाने का नाम लिख कर दें और मूवी का नाम लिख कर दें, या फिर अगर मूवी नहीं आपको याद है तो आप सिंगर का नाम भी लिख कर दे सकते हैं। एंड नाउ आतिफ असलम की आवाज में, ये अलग वाला वर्जन है लेकिन, है ना, सुन रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4:14 हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब समय आ गया कि बाकी आपकी मर्जी के गाने प्ले किए जाए। सो अगर आपने अभी ट्यून इन किया आप अपनी मर्जी के गाने हमसे सुन सकते हैं। 10 से लेकर 2020 के गाने जो भी आपको पसंद आए हों वो आप रिक्वेस्ट करें 666-22-107 2010 से 2020 तक के गाने। क्यों? क्योंकि आज का थीम यही है। कई गाने रिक्वेस्ट करे हैं आप लोगों ने, कुछ तो गाने मिल गए हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डेटाबेस में नहीं है। एक गाना कहा है फैजान साहब ने, सोनी है दिल नहीं लगदा। अब ये वाला तो अलग है, दिल नहीं लगदा ये गाना आई गेस नहीं है क्योंकि मैंने सर्च तो किया है, अब डेटाबेस में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मेरा दिल नहीं लगता ये गाना है और अमन और फिरोज़ खान का ये गाना सुनना चाहते हैं और अमन का और फिरोज़ दोनों का ये गाना नहीं है। माजरत मेरा भाई, दिल नहीं लगता ये गाना नहीं है और कोई और गाना अगर आप सुनना चाहें तो बिल्कुल, क्योंकि एक है सोनिया दिल नहीं लगता ये अपने पास है बट ये वो वाला है या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि ये अंकित तिवारी श्रुति पाठक का है, बागी 2 2018 का ये ट्रैक है सोनिया दिल नहीं। अब इसमें लिरिक्स वो मिले ना मिले आपकी अपनी मर्जी का, तो आपका एग्जाम मूड ख़राब हो जाए तो मेरे वो क्या है? फिर ये वजह का, अरे फजील भाई मेरे मर्जी का गाना प्ले नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं बहुत ही बेहतरीन, इंतज़ार कब से कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि कब आएंगे सर, कब आएंगे? वो जो मैंने वीडियो को देखा है वो ऑफ था। इंतज़ार कब से कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि कब आएगा सर, कब आएगा? वो जो मैंने वीडियो को देखा वो ऑफ था। अच्छा मतलब आपने कोई और वाला लगा के रखा होगा, आप सोच रहे फजील अब आएंगे यार अपनी मर्जी का गाना प्ले होगा, कहीं और आप पहुंचे हुए थे। होता है कभी कभार ऐसा होता है कि रेडियो सेट पे आपको 5-6 नंबर मिल जाते ना। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज नूर हुसैन। एक सॉन्ग के हम तुम ही हो, तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आय हाय, अरिजीत सिंह का ये गाना आशिकी 2 मूवी का ट्रैक, 2013 में इसने सच में बवाल काट दिया था। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक सब इसे पसंद कर रहे थे और तकरीबन 4 साल ये गाना हिट रहा, कई लोगों ने गाया, कहां कहां ये गाना सुनने को नहीं मिला, चाहे वो पार्टीज में हो, चाहे वो शादियों में हो, चाहे वो एक दूसरे से दूर जाने की बात हो या फिर पार्टी में आखिरी पार्टी कोई कर रहा हो, अपने जगहों को, अपनी लोकेशन को, अपने फेवरेट लोगों को छोड़ते हुए ये गाने ज़रूर जो है वो प्ले किए गए थे और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए गए थे। ये जिस भाई ने रिक्वेस्ट किया है वो है नूर हुसैन, इनके मर्जी पर ये गाना तो प्ले होना बनता है, तुम ही हो। ये गाना सबसे पहला यही प्ले करूंगा क्योंकि मुझे मिल गया। देखो सबसे आसान तरीका यही है। रॉकस्टार का एक भाई ने कहा था कुन फाया कुन प्ले करने को, आई एम सॉरी भाई कांट प्ले दिस, लेकिन इसके अलावा अगर आप कहेंगे फैसल भाई तो मैं आपका गाना जो है वो ज़रूर प्ले करूंगा। पंजाबी ये गाना फैजान भाई ने बताया, फैजान भाई माजरत अगेन। सलमान खान तेरी मेरी प्रेम कहानी सुनना है, रेडियो सर आपका ही चल रहा था लेकिन ऑफ था। अच्छा ओ ये तो फिर देखो गड़बड़ हो गई, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने ये कैसे लेकिन हो सकता है, आप कह रहे हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब आऊंगा, लेकिन अगर रेडियो ही ऑफ है, आवाज ही नहीं आ रही है, तब तो कुछ और मसला होगा, या ऐसा होगा कि पूरा इन्होंने सिस्टम ही बंद कर दिया होगा। क्योंकि अगर आपने रेडियो ऑन किया तो रेडियो तो 24/7 चल ही रहा है ना अपना, कोई ना कोई तो आवाज आ ही रही होगी। सलमान खान का तेरी मेरी प्रेम कहानी, तेरी मेरी ओ हो, ये वाला गाना यार मेरे को देखो बहुत हिट था ये गाना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये गाना अच्छा नहीं, बट मेरे को बड़ा अजीब गाना लगा ये, तेरी मेरी प्रेम कहानी। ये किस मूवी का था, किसी को याद है? तेरी मेरी प्रेम, तेरी मेरी मेरी, वांटेड नहीं, वांटेड का तो नहीं था, अरे वो करीना कपूर वाला बॉडीगार्ड ना, हाँ बॉडीगार्ड का ही ट्रैक है, लेट मी चेक विथ बॉडीगार्ड ओनली, क्योंकि तेरी मेरी से तो नहीं मिल लिया मेरे को। बॉडीगार्ड 2011 ओके राहत।

अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये ट्रैक है. नाउ लेट मी प्ले दिस एज वेल आफ्टर तुम ही हो. सो दो गाने, दो हिट गाने आपके लिए आ रहे हैं बैक टू बैक, एंड अगेन बोथ आर माई फेवरेट. तो सबसे पहले तुम ही हो हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे, एंड देन ये गाने के रिक्वेस्ट जिनका सेट बन था अरबाज खान की रिक्वेस्ट. ओके सो ये दो गाने आपके लिए FM 107 पे. बाकी आप भी अपनी मर्जी के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नंबर है हमारा 666-22-107. एंड माइंड यू ये गाने ऐसे हैं भाई के आपके फैमिली को जरूर पसंद आएंगे. है ना, आपको पसंद आए नहीं आए लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद आएंगे.

0: तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ना बयां हो पाए। जब गाना लिखना हो तो ये अच्छा लगता है, वरना दो लफ्जों में ही बयां हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है कि मोहब्बत जब आसान हो तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती है, फिर तो वो आसानी से एक्सप्लेन करा जा सकता है कि मुझे तुम पसंद हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये गाने प्ले कर रहा हूँ और आज कोई थीम ऐसी भारी वाली नहीं है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक सिंगर के बारे में सुनना हो या फिर स्पेसिफिक मूवी से सुनना हो या फिर ऐसा हो जैसे कल मैंने किया था, है ना। तो वो वाले थीम नहीं है, हल्की और सिंपल थीम है कि 2010 से 2020 के कोई भी गाने आप सुनना चाहें तो वो सुनाए जा सकते हैं। अब इसमें है ये कि आप धीमा सॉन्ग सुन सकते हैं, हाई बीट सुन सकते हैं, हनी सिंह सुन सकते हैं, किसी मूवी का सॉन्ग सुन सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वाइड रेंज आपको मिल जाती है कि आप आराम से अपनी मर्जी के गाने सुन सकते हैं। नाउ हमारे पास दो और ऐसे गाने हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं, यानी कि जो पहला गाना था वो अरिजीत सिंह की आवाज़ में तुम ही हो, जो कि फेवरेट गाना मेरा भी है और मुझे लगता है 99% लोगों ने इसे पसंद किया होगा। और फिर राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ को कौन नकार सकता है, नुसरत साहब के साथ गाने वाले, उनके साथ बैठने वाले, सीखने वाले राहत साहब, और फिर श्रेया घोषाल जिसमें हो वो गाना, मतलब मुझे लगता है कि कॉम्पोजिशन हल्की भी हो जब भी वो गाना लाजवाब बन जाता है। और ये गाना था तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का ट्रैक। एंड नाउ ये जो दो ट्रैक आ रहे हैं, ये दोनों ट्रैक थोड़े से अपबीट वर्जन के हैं। किसने रिक्वेस्ट किया है, सबसे पहले ये हैं, इनका नाम लिखा तो नहीं है, हाय लिखा हुआ है बस इन्होंने, एम सुफियान शहानिया आई गेस, हाँ इनका नाम है सुफियान, उन्होंने कहा है तुम ही हो बंधु। तो सेकंड नंबर पे आपका गाना आ रहा है सुफियान साहब, नीरज श्रीधर ने और कविता सेठ ने इस गाने को गाया है। लेकिन उससे पहले आ रहा है गाना आदत, और ये आदत गाना कई बार रिक्वेस्ट किया है भाई हुसैन ने, ये एमडी हुसैन है, ये दूसरे वाले हुसैन है, सो ये तीसरे वाले हैं आई गेस, हाँ तीसरे हुसैन है। फजिल भाई को सलाम, वालेकुम असलाम, फजू भाई, यो हनी सिंह और एपी का सॉन्ग, यानी कि एपी ढिल्लों का सॉन्ग नेम आदत। तो मुझे नहीं याद है कि इन्होंने आदत के अलावा कोई और गाना कहा होगा या रिक्वेस्ट किया होगा, इससे पहले भी कई रिक्वेस्ट इनकी तरफ से आई और सिर्फ ये यही गाना सुनना चाहते हैं, ये वही वाले हैं, तो श्योर आई एम श्योर कि ये वही वाले होंगे। फिर एक और रिक्वेस्ट थी लेकिन वो गाना प्ले नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा गाना था वो भी, रुबेल हुसैन ने कहा था तेरे हवाले। ये गाना मैं प्ले ज़रूर करता लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये गाना है एक्चुअली 2022 का, जिसे अरिजीत और शिल्पा राव ने लाल सिंह चड्ढा मूवी में गाया था। तेरे हवाले ये वर्जन है हमारे पास, लेकिन लाल सिंह चड्ढा 2022 के मूवी का सॉन्ग, यानी कि 2022 की मूवी है, 2022 में लाल सिंह चड्ढा आया था और उसका ये गाना है तेरे हवाले। सो आई एम सॉरी भाई, लेकिन 2020 तक के गाने ही आज मैं प्ले कर सकता हूँ। चाहे कि इससे फिर जो रेंज है वो आपके लिए खुली है, तो अब 2010 से 2020 के आप अपनी मर्जी के गाने कह सकते हैं। फिलहाल एक मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि मेरा रेडियो ऑन नहीं, अच्छा मैं रेडियो ऑन नहीं करता, ऐसे और किसी को नहीं सुनता, आपको सुनता हूँ, लेकिन मैं कह रहा था कि मैंने ऑन किया 4 बजे और जब देखा तो ऑनलाइन नहीं था। ओके ठीक है, लेकिन ये बड़े नॉर्मल में पड़ गया, लेकिन ऐसे भारी बात लिखी उन्होंने। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए ये है, सलाम भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सॉरी। ओहो इन्होंने लिखा है खैरियत पूछो सॉन्ग प्ले कर दो। मैंने खैरियत के बाद अपने लिए सोच लिया कि इन्होंने मेरे लिए लिखा होगा खैरियत। और भाई और भाई इतना फ्लो में हूं मैं कि मैंने ये भी कह दिया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना भी फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सलाम वालेकुम अस्सलाम, खैरियत नहीं पूछी, कोई बात नहीं इमरान भाई, लेकिन ये गाना मैं सर्च करूंगा और इन दो गानों के बाद शायद आपका गाना मैं प्ले कर दूं। खैरियत पूछो, ये गाना अच्छा है यार, लेकिन खैरियत से नहीं है, खैरियत होगा, खैरियत इस नाम से तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। हमारा दफ्तर भी बगल में है, यानी कि लैपटॉप जो है वो खुला हुआ है और इसी लैपटॉप पे मैं सर्च करूँगा कि किस गायकार ने इसे गाया है और किस
1: मूवी का ये ट्रैक है तब हमें मिल जाएगा. लेकिन फिलहाल अभी तो दो गाने आपके लिए प्ले करते हैं. सबसे पहला जो गाना आ रहा है ये है एपी ढिल्लों यानी कि हुसैन साहब की रिक्वेस्ट पे, और तुम ही हो बंधु किसका था, नहीं तुम ही हो बंधु है सुफियान का. हाँ तुम ही हो बंधु सुफियान का और हुसैन का आदत. ये दो गाने एंजॉय करें एफएम 107 पे. बाकी आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107 666-22-107. एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों का गाना दिल से देसी.
2: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448-888-806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: नीरज शिदर और कविता सेठ की आवाज में ट्रैक सुना आपने तुम ही हो बंधु।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: लेकिन गानों की मोहब्बत आपकी मुझे समझ में आती है। कई बार आपको गाने पसंद तो हैं, गाने के लिरिक्स भी याद हैं और उसी लिरिक्स को आप लिख देते हैं कि

यार ये गाना अगर प्ले कर दो फजील तो मजा आ जाएगा, लेकिन मसला ये कि हमारे जो उंगली है ना वो थक जाती है, खून कम हो जाता है भाई क्योंकि एक भाई ने अभी कहा है कि गाना प्ले कर दो और वो गाना है दिल संभल जा जरा, और मैं दिल संभल जा जरा डाले पड़ा हूँ, वो आ ही नहीं रहा है। घूम फिर के मैं फिर अपने दफ्तर की तरफ गया, तो दफ्तर पे जब हमने ये लिखा कि दिल संभल जा जरा कौन सा है, फिर मुझे याद आया अच्छा ये कहीं वो वाला गाना तो नहीं है कि फिर मोहब्बत करने चला है तू। सो ये मर्डर टू मूवी का ट्रैक 2011 में, और हमारे दफ्तर ने भी बिल्कुल सही बताया कि अरे ये मर्डर टू मूवी का ट्रैक है जिसमें इमरान है, जैकलीन है और अरिजीत सिंह, मोहम्मद इरफान और सैम भट्ट है सिंगर, और म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन, लिरिक्स हैं सईद आदरी के। बहुत ही लाजवाब ये सॉन्ग है और गाने का नाम है फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल संभल जा जरा है। तो ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, नाम है इनका असद, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग दिल संभल जा जरा, ठीक है। तो आपके लिए तो ये गाना आ जाएगा, लेकिन आपका गाना दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अरिजीत सिंह का गाना रिक्वेस्ट किया था आपसे पहले इमरान खान इनका नाम है, और कहा है खैरियत पूछो सॉन्ग प्ले कर दो, ठीक है। तो खैरियत गाना जो आपके लिए आ रहा है मैंने ढूंढा भाई, ये अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना है। अच्छा इसके दो वर्जन थे, एक सैड और एक हैप्पी, और आपको पता है कि मैं सैड से थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ आ भी जाए तो उसको मैं मजाक में तब्दील कर देता हूँ, काहे का टेंशन लेना, दो दिन की ज़िंदगी है मैं तो वो सोच लेता हूँ देखी जाएगी, और कई बार ऐसा भी है कि देखी जाए में जो नुकसान हुआ है मस्त जिंदगी के लाले पड़ गए, लेकिन देखी जाएगी यार। फिलहाल ये दुआ एंजॉय करें, FM 107 पे वापस आएंगे तो फिर हम गेम शुरू करेंगे, और ये गेम होगा पहचान कौन, जहां पर बीच से लिरिक्स प्ले की जाएंगी, और ये जो लिरिक्स प्ले होंगी आपको गेस करना होगा कि असल में किस गाने के लिरिक्स को मैंने प्ले किया है, गाने का नाम आपको पहचानना होगा FM 107 पे। अगर आप वो गेम खेलना चाहते हैं तो हाय फजील लिखकर भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी खेल सकते हैं, नंबर है 666-22107 6-6-6-2-2-107।

मोहम्मद इरफान अरिजीत की आवाज में ये ट्रैक फिर मोहब्बत करने चला है तू अरिजीत साहा। फिलहाल 4:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बस 15 मिनट बाकी हैं कि अपन जल्दी से गेम की तरफ बढ़ जाते हैं और बेहतरीन से गाने आज प्ले हुए हैं, मज़ा आ गया है। आप लोगों की जो गाने का टेस्ट है ना, आप लोगों की जो चाह है गाने को लेकर, वो बड़ी ही लाजवाब है। कई बार ऐसे गाने आ जाते हैं जो दिल खुश कर देते हैं। वैसे ही जैसे कल मैंने कहा था ना कि एक जब हम गेम खेल रहे थे कि ये गाना अगर मुझे बता दे कोई कि कौन से मूवी का है या गाने का नाम क्या है, वो थी वीरे दी वेडिंग और लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना था। मैंने कहा था कि अगर किसी ने बता दिया बादाम मेरी तरफ से फ्री, सो आई एम नाउ गोना गिव यू बादाम फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये मैंने वादा किया था। तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया था उनको बादाम मेरी तरफ से ये लो, और गाना नहीं मतलब बादाम मेरी तरफ से आपके झोली में, और क्योंकि वादा है तो निभाना तो पड़ेगा।

देखो मैंने वादा किया था, वो वादा पूरा निभाया है. मैंने कहा था कि अगर आपने इस गाने के लिरिक्स सुनकर बता दिया गाने का नाम, तो बादाम मेरी तरफ से. ऐसे चार से पांच लोग थे, आप सभी को मेरी तरफ से ये

0: क्या बात है हावी भी। तो आप जल्दी से खेल लेते हैं ये गेम, और ये गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर मैं म्यूजिक जो है वो प्ले करता हूं और आपको गेस करना होता है, ठीक है। तो वक्त आ गया है, एक भाई ने हाई लिखकर भेजा था, मैंने उनको कॉल कर दिया। लेट्स प्ले विद हिम। यासिर इनका नाम है, यासिर सैयद। यासिर भाई आवाज आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं?
0: बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं भाई?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी?
0: एकदम चंगी। आप आवाज से ही तो पहचान गए होंगे आप।
1: जी पहचान तो मैं गया बिल्कुल आपको, नहीं पहचानेंगे आपको।
0: तो अब जो है हम गेम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है यासिर भाई? और ठीक है सर, आपने इससे पहले ये गेम सुना है, कभी खेला है?
1: सुना तो है लेकिन इतना मतलब इफेक्टिव नहीं खेला मैंने।
0: अच्छा, खेला नहीं, एक्टिवली नहीं खेला।
1: लेट्स प्ले नाउ।
0: ओके, सो मैं क्योंकि

0: वक्त जो है वो बड़ा कम होता है, इसलिए आपको तीन नहीं सिर्फ एक, क्योंकि पहले हम तीन गाना सुनाया करते थे एक लिसनर को जब वो हमें कॉल करते थे या हम उनको कॉल करते थे, तो आज सिर्फ एक ही गाना हम प्ले करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम होता है हमारे पास इस शो में, ठीक है? तो एक गाना आपको गेस करना है, बाकी आप व्हाट्सएप पर भी खेल सकते हैं। तो गाना जो आपके लिए है, जिसे आपको गेस करके गाने का नाम बताना है, वो है ये। हाँ जी बताएं। हाँ
1: ठीक है। और ये करीना कपूर और
0: इतनी देर में तो इंसान सर्च कर लेता है, फिर मैं 5 ही सेकंड का वक्त है। मैं हिंट दे सकता हूँ, हिंट दूँ आपको? चले ठीक है, आपने बिल्कुल सही गेस किया, थ्री इडियट का ये सॉन्ग है। एक लड़की थी, उसका नाम जूबी था और वो डूब गई, तो असली गाने का नाम क्या होगा?
1: जूबी जूबी जूबी जूबी
0: नहीं, जूबी डूबी गाना है।

0: हाँ बिल्कुल सही पहचाने, इसी के बाद शायद लाइन भी आती सुबीडू भी लेकिन आप हिंट पकड़ नहीं पाए, हिंट भी नहीं पकड़ पाए भाई आप। हाँ नहीं कोई नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक्चुअली जब आप कॉल पे रहते हैं ना तो कैलकुलेशन सही हो नहीं पाती अपनी।
1: सही,
0: चलो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम आप कॉल करिएगा, बाकी आप अभी दो सॉन्ग और पहचान सकते हैं और हमें व्हाट्सअप करिएगा अगर आप पहचान जाइएगा 666-22107 पे, ठीक है? ओके, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू भाई। हाँ जी हबीब, बाकी व्हाट्सअप पर भी कई लोगों ने सही पहचान लिया है, आई गेस हिंट के बाद पहचाना है क्या? यूसुफ भाई ने कहा है सॉन्ग है जूबी जूबी जूबी जूबी जूबी जूबी डूबी है जूबी डूबी आप तो काकी से भी अच्छा हिंट देते हैं। नहीं मेरा भाई, मैं एक्चुअली ये वाला काकी से मैंने सुना था आधे से ज़्यादा मैं काकी का कंटेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ क्या? हिशाम भाई ने भी जुबी डुबी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इमरान साहब ने कहा है आज सब सॉन्ग बहुत मज़े के थे, जुबी डुबी सॉन्ग बिल्कुल सही। एंड देन अगेन एक भाई ने कहा है मोहम्मद इनका नाम है जुबी डुबी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आपका नाम है डी ट्रैक प्रोफाइल पे ये लिखा है। सो हाई सॉन्ग प्ले कर दो सिद्धू मूसे वाले का, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कम मेरे पास वक्त है क्योंकि अभी तो गेम भी चल रहा है, लेकिन ठीक है ये गेम अगर मुकम्मल हो गया टाइम पे और वक्त बचा तो बिल्कुल। फिर ये बशीर भाई हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं मोहम्मद बशीर खान, एक हसीना थी एक दीवाना था मूवी का सॉन्ग, जैसे हम जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए। अरे भाई इतना सैड सॉन्ग क्यों सुनना होता है? मैं ये ऐसा नहीं होता कि ये गाना सुनने के बाद दिल चीर के ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं पुरानी, जिनसे नफरत ना भी ख़त्म भी हो गई हो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म भी, वो भी याद आने लगता है भाई ये सब सॉन्ग सुनने के बाद। प्लीज इन सबसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। जुबी डुबी सॉन्ग भाई, काकी का कोई प्रोग्राम है FM 107 पे? अभी तो नहीं है, यू नेवर नो फ्यूचर में, अभी तक तो नहीं है। उनको ऐसे अलग किए हम लोगों ने ऐसे अलग किया जैसे मक्खी से दूध, नहीं अच्छा सॉरी दूध से मक्खी ओके आगे आगे आगे आगे कौन है मेरे भाई ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, इनका नाम है इशाक मियां है ओके। और कैस साहब ने भी, कैस है या कैश है, कैस होगा, कैस टेस ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, जुबी डुबी ये सॉन्ग है ओके। अब हम अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं और जुबी डुबी सॉन्ग बिल्कुल सही आपने पहचाना और अब ये आ रहा है दूसरे नंबर का सॉन्ग, इसे भी अगर आप पहचान गए तो मैं मान जाऊंगा ये वाला आसान है, ये वाला भी आसान है और जो दूसरा है नंबर पे गाना पहचानना है आपको वो है ये।

ये वाला तो पहचान ही जाएंगे आप, मुझे पता है आप हीरो, और ये बहुत ही नए जमाने का सॉन्ग है, ये तो आपके कानों में आज भी गाना पड़ता होगा और आपको पता भी होगा। कैस ने बिल्कुल पहले सही जवाब दिया, सबसे पहले यूसुफ भाई आप थोड़ा लेट हो गए, दूसरे नंबर पे आपका नाम है, अच्छा कैसर इनका नाम है पूरा, शॉर्ट में कैस, बिल्कुल सही जवाब है। एक और भाई का इनका नाम क्या है, मोहम्मद इनका नाम है, मोहम्मद ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाम यार लिखने लिखने में टाइम लग जाता है, झुमका इन्होंने लिखा है, ओके सो द करेक्ट सॉन्ग नेम इज व्हाट झुमका, और व्हाट झुमका इस गाने को गाया अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी ने। एंड नाउ अबाउट द थर्ड सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग कौन सा है जो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल, नहीं यार मुश्किल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आवाज़ जिनकी है वो कोई भी गाना उनको दे दो इस तरह से लाजवाबियत से गाना गाती हैं कि वो गाना हिट हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे जो सॉन्ग है वो पहचानना है आपको और बताना है गाने का नाम। नंबर है 666-22-107। पहले नंबर पे कौन आएगा जो सही जवाब देगा, इंटरेस्टिंगली वो देखने वाली बात है। Imagine.

क्या बात है भाई, लोगों ने पहचानने की तेजी से शुरू किया. जो भी पहली लाइन थी मुझे याद नहीं, पहली लाइन क्या थी? हाँ, के बाजे धुन. तो के बाजे धुन पर ही लोगों का जवाब आ गया. और सबसे पहला जो जवाब आया है उनका नाम तो यहाँ पर नहीं है. नाम क्या है भाई, नाम नाम नाम नाम हाँ नाम लिखे असद. ये अच्छा, ये दूसरे वाले असद हैं. एक असद और थे जिन्होंने गाने की रिक्वेस्ट की थी. ये हैं बिजी गेटिंग स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल वाले असद. इन्होंने लिखा पहले पिंगा. इनको लगा होगा पता नहीं फजील को पता है कि नहीं पता है, पिंगा भी एक गाना है. इनने जल्दी से गपोरी भी लिख दी ताकि फजील को पता चल जाए कि ये गाना है पिंगा गपोरी पिंगा. अरे यार इनने भी सोचा होगा ना कि पिंगा पता नहीं इनको पता है नहीं पता है, ये गाना है भी कि नहीं. या हो सकता है इनको लग रहा हो भाई को कि पिंगा शायद ना हो, गपोरी शायद इस नाम से सेफ हो. बिल्कुल सही है, पिंगा गपोरी पिंगा. असद भाई बिल्कुल सही है. और इसके बाद किस भाई का मैसेज है जिन्होंने सही गेस किया, वो है यूसुफ भाई. चलो यूसुफ भाई दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और ये सीज़न बड़ा ही फॉर्म में नहीं चल रहे हैं. हिशाम भाई ने भी बिल्कुल सही तीसरे नंबर पे आए. फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हैं प्रिंस. पिंगा पूरी, पिंगा गपूरी, और पिंगा है पूरी है आई डोंट नो. बट मोहम्मद ने भी सही जवाब दिया है और प्रिंस ने भी सही जवाब दिया है. एंड देन ये लिखा है कैसर साहब ने. कैसर साहब भी थोड़ा लेट ज़रूर हुए लेकिन बिल्कुल सही जवाब है. काकी का हिंट याद आ गया, उसने पंगा हिंट दिया था. अच्छा अरे भाई साहब यार, काकी को भी 2 साल हो गए मेरे ख्याल में. उसके बावजूद अगर आपको याद है काकी का दिया हुआ हिंट, ये बड़ी लाजवाब बात है. पंगा हिंट दिया था, ओके नाइस. 2 साल की बात भी याद है लोगों को. फिर ये मैसेज है असद का, लव यू भाई, लव यू टू मेरा भाई. फिर है खादिम साहब का मैसेज, अच्छा है मुझे नहीं मालूम क्यों. सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग फजील भाई. हो आप प्ले करते हैं हमें पसंद है. अच्छा, जो भी गाना प्ले करते हैं हमें पसंद है. अरे खादिम भाई, मतलब अब क्या बादाम लेकर ही मारेंगे. मोहम्मद यूसुफ फजील, पहली लाइन का वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे. अच्छा हाँ, पहली लाइन बड़ी अजीब है ना, सुनो. के बाजे धुन छम छम छमा के छाम. ओके तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:16 लिखा है ना, तो मैं 6 पढ़ गया. 4:57, 58 पे बढ़ गए हम. और जल्दी से गाना मैं प्ले कर देता हूँ और मुझे यानी कि फजील को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल शाम 4 बजे नए थीम के साथ और आपके मर्ज़ी के नए गाने के साथ, नए रिक्वेस्ट के साथ. जाते जाते मैं ये गाना प्ले करने की कोशिश करता हूँ. एक भाई ने मुझसे कहा था, अभी तो सिद्धू मूसे वाले का मैं गाना ढूंढ रहा हूँ. एक भाई ने कहा है खली बली प्ले करने को, तो वो तो नहीं प्ले कर सकते क्योंकि उससे पहले एक और भाई ने रिक्वेस्ट करी, फिर वो गुस्सा करेंगे. सो हाई गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है. और ये गाना है भी अच्छा और मज़ा भी आएगा, शायद थोड़ा ही प्ले हो पाए लेकिन एंजॉय करें. FM 107 पे मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ भाई, थानेदार आ गए, सबकी गाड़ी चेक होगी जिसमें 107 नहीं चल रहा। हाँ, कब्जे कर लो उस गाड़ी में। अरे एक वो कौन है भाई साहब, ये कह रहा गाना पूरा नहीं चला भाई, इनको भी अंदर कर लो, इनसे बोलो 6 बजे चलेगा। हाँ भाई, आपकी गाड़ी चेक कराओ, पेपर दिखाओ, पेपर चल रहा है 107 पास होने दे। दलजीत पास होने दे।

हालांकि बढ़िया चल रहा है भाई, गाड़ी में FM 107 चलना चाहिए। एक भाई कह रहे हैं मुझसे की कंप्लेन कर रहे हो यार, गाना पूरे चले थे, मैंने तो कुछ चलाया ही नहीं गाना अभी तक। कौन सा गाना चला था भाई? सिद्धू मूसेवाला का चला देंगे 6 बजे, क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या है? ये क्या डी ट्रैक पर ये थोड़ा ना की है, डी ट्रैक का नाम नहीं होता, क्या क्या नाम क्या है? एक मैसेज है प्रिंस भाई का, प्रिंस भाई क्या बात है, गब्बर के फोटो भाई नीडेड एंट्री विद दर्शन मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, क्या बरबर के यूसुफ भाई वाले को सलाम, गुड इवनिंग कह रहे हैं। मंडे इवनिंग, आज अभी मंडे हुआ है, अभी तक मैं वेंसडे तक चला गया था। एक मैसेज, सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर सर साहब निकालो तुरपाई निकालो, सबक सुनाओ, कौन है ये? अरे बस बेटे फीस नहीं आई है अभी तक, ठीक है चार्जर दिखाना जरा, नहीं फोन नहीं चार्ज करना ये अरबाज को थोड़ा सा। हाँ एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम।

0: वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है एच आर के, माय गॉड काफी फैंसी नाम है भाई का। शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, लव यू भाई, लव सो लॉट्स ऑफ लव, क्या भाई वो सारा प्यार। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, क्या हाल है? एक क्या मैसेज है ये? अरे क्या मैसेज है ये लिख लिख के डिलीट क्यों कर रहे हो? लुका छिपी का खेल क्यों चल रहा है? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बेबी, क्या हाल है? अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आज की कहानी इज क्वाइट समथिंग। मतलब आप सोचते होंगे हर रोज आता कहानी बेच के चला जाता है पर मैं आई एम नॉट अ गुड सेल्स मैन। वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस वाले, हमारा काम बोलता है तो काम बोलेगा। क्या भूल जाते हैं? नहीं, आपका नाम नहीं भूला हूं भाई, मैं नाम क्यों भूलूंगा अरबाज भाई, आपका नाम मुझे याद है, कैसे भूलूंगा यार, मैं आपका नाम नहीं भूलता हूँ। एक मैसेज है, आलिया मेरा भाई बहुत सारा प्यार भाई को। खादिम साहब फोटो भेज रहे हैं गाड़ी का, सड़क पे चल रही है गाड़ी, FM 107 चल रहा है भाई उसमें। एक और मैसेज है अनवर साहब का, अनवर साहब वालेकुम अस्सलाम अल अजीज़ या वाले। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं कहानी बेच तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं इतना बता दूं, कहानी आज की बहुत अच्छी है, डेफिनेटली समथिंग दैट रियली मूव्ड मी, तो आपको मज़ा आएगा आज की कहानी सुन के। बाकी तो भाई ये गुत्थी सुलझाओ ज़रा, ये रात में क्यों वीडियो आते हैं अजीब व गरीब मेरे पास? मैं भाई भाग के इंस्टाग्राम से टिकटॉक पे गया था कि वहां पे कम से कम सुकून होगा, वहां पे कोई सुकून को नहीं भाई, वहां पे भी कतई पता क्या क्या वीडियो आते हैं रात में, रात को 2-3 बजे वीडियो आ रहे हैं फैक्ट्री के अंदर मशीनों के, कैसे बोतल बनती है ये जानते हैं। अरे भाई मैं क्या करूं, बोतल कैसे बनती, हद हो गई यार क्रशर के, फैक्ट्री के, कारपेंटरी के सारे वीडियो रात में आते हैं। और रात में ये भी लगता है कि अरे ये काम तो मैं आराम से कर लूंगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, सुबह होते होते होश आ जाता है एक मैसेज, अरे मेरा भाई ये तो बहुत मोहब्बत है, किंग इज बैक भाई, आप हैं किंग, तो शो के राजा तो आप हैं। कृष्ण भाई कैसे हैं? एक भाई ने फोटो भेजी है, क्या फोटो भेजी भाई ने? FM 107 आए हे, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार नूर हुसैन साहब, और कति प्यारी फोटो लगी हुई है DP आपकी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ये मैंने ट्यून इन किया 4:55 को आपका शो, सुनने 5:03 पर बॉस का कॉल आया, वापस बुलाया ऑफिस, ये मैं गया। अरे बहाने बनाओ भाई, कोई सॉलिड सा बहाना दो मेरे भाई को, ऑफिस बुला लिया, बताओ मोइन भाई को, करो यार कुछ करो, वापस आओ लौट के। बाकी 5:06 हो लिए, आपको बताइए शो का फॉर्मेट क्या है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले शाम के अफकार से, उसके बाद मिलेंगे 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद। पर ये रात को ऐसी वीडियो क्यों आती है? मतलब मेरे तो एल्गोरिथम भी नहीं है, ठीक है वट एवर इट इज़। एक मैसेज है भाई का, भाई आपका मैंने ये सुना, आपने लिखा ना गाना पूरा तो नहीं चल, पूरा तो चला देते, मुझे पता भी नहीं कौन सा गाना, मैं तो आया था उस टाइम स्टूडियो पर, चला दूंगा 6 बजे के बाद, सिद्धू मूसे वाला वो, मुझे एक ऑनलाइन आती है वो याद है रफ्तार बाजी की, माइक पे हूँ मूसे वाला वैसे रबी शेर गिल एक वैसे भाई मेरा क्या खराब हो गया? खराब हो गया दूसरे हमजा खोखर हूँ, आज से उन पे बात होगी, ओके 6 बजे चल जाएगा गाना, कोई दिक्कत नहीं है। अमन भाई गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून वाह, ठीक है मिलते हैं कुछ देर में 11:02 के बाद, है ना ओके। जाना नहीं भाई, बेस्ट जगह पर है आप, वो बचपन में खेल खेलते थे ना स्टैचू।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: निपटता हूँ इनके, पड़ोसी हैं भाई मैं, आज झगड़ा है। मैसेज करते हैं कबीर भाई, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। फैन मत बनिए आप भाई, कहिए फैन यार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ मैं। वैसे कहते हैं मॉर्निंग में आपका नाम का मैसेज आता है, चलो बढ़िया है। बढ़िया भी है, और मुझे पता है कि सुबह सुबह इरिटेशन तो होती होगी बहनों को कि ये क्या है, ये आदमी खुद तो सो रहा है, इसका नाम सुबह सुबह सुनाई दे रहा है, तंग कर रखा है इसने जीवन में। अच्छा मैं एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अजीब सा सवाल जो है आज रेडिट पे देखा, मगर उससे पहले मैं कहानी के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि आज की कहानी इज समथिंग एल्स ब्रो। मतलब आज एक दिन इंटरनेशनली मार्क्ड किया जाता है, इत्तफाकन वो दिन भी है आज, और इत्तफाकन उससे जुड़ी हुई कहानी भी है। ये बिल्कुल महज इत्तफाक है, आई हैव नॉट प्लान्ड दिस, मगर जो आज मेरे पास कहानी है मैं उसको बताने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ। सो इट विल कम इन 10-15 मिनट्स, लेकिन उससे पहले मैं मुझे बता दो, देखो ऊटपटांग का सवाल है लेकिन फिर भी, मैंने एक रेडिट पोस्ट देखा, उस पर इंडियंस और पाकिस्तानीज, कैनेडा का रेडिट पोस्ट था, और दोनों ही मुल्कों के लोग जो है टाइप कर रहे थे उस पर। ठीक है, सवाल बताता हूँ क्या था। सवाल ये था कि अगर आप किचन का कोई सामान बन सकते तो आप क्या बनते और क्यों। उसमें लोगों ने कहा भाई मैं तो खर्ची होता, खर्ची। एक ने बोला मैं पतीला होता। आप अगर कोई सामान होते, किचन का सामान कोई होते, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या होते। 666-22107 नंबर है, 666-22107। एक मैसेज आया है, एम के साहब का, कैसे हो भाई। मैं बढ़िया भाई, शो कब स्टार्ट करा है भाई, स्टार्ट तो हो चुका। एक मैसेज आया, सर वी वर्क हार्ड डे एंड नाइट वाइल पीपल आर मेकिंग मनी ऑन सोशल मीडिया, फ्रॉम टुडे वी विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सोशल मीडिया, एक्ट लिटिल गोफी एंड मेक सम मनी टू। भाई बनाओ पैसे, मैं तो कह रहा हूँ आप सोशल मीडिया पर जाओ पैसे बनाओ अरबाज भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भर भर के काम है यहाँ पे, भर भर के काम है। आपको लोगों को क्या दिखाना है, एक फेक, आपको फेक फॉलोअर्स बनाने, वो मैं बढ़वा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप जाके बढ़िया जाके बोलो कि सर ये देखिए मेरे 2 लाख फॉलोअर्स, आप बताइए क्या बेचना है। अरे बढ़िया मिलेंगे अरबाज भाई, गाइड आपका बैठा हुआ है। एक मैसेज है, मैं चाय का कप बनना चाहूंगा। अरे क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज, क्या कहानी कबीर भाई, आएगी कुछ देर में। एक मैसेज, हम तो चाकू होते। देखो वायलेंस वायलेंस वायलेंस, जो मेरे तिरान भाई कह रहे हैं चाकू होते, ये भी चाकू होते। और भाई ने बोल दिया भाई सबके सब चाकू क्यों बनना चाहते हैं, किचन में और भी कितने प्यारे प्यारे सामान हैं, इतने प्यारे प्यारे सामान हैं माशाल्लाह। एक मैसेज है, मैं बढ़वा दूँ फॉलोअर्स कबीर भाई। नहीं मैं, मुझे नहीं बढ़ाने भाई, मैं ठीक हूँ भाई। वैसे यस यार कबीर भाई, आपको सलाम भाई, जजाकल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हुसैन साहब ने मैसेज किया है, और एक वॉइस नोट है, वॉइस नोट पहले ज़रा कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई कैसे हैं मेरे भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: नदीम भाई ये आप फॉलोअर्स बढ़वा रही हैं, नया नया बिजनेस खोल लिया आपने?
1: बढ़वा रहे तो मतलब अपने भी बढ़वा लो यार, कब तक 150-200 रहेंगे।
0: भाई मैंने तो शॉर्टकट बता दिया, सीधा सीधा बढ़वा लो और जाओ मार्केट में घूमो, उनको बोलो कि सर आपके रेस्टोरेंट का आइटम दो।
1: अपने से नहीं होगा भाई वो,
0: exactly, काम होगा नहीं,
1: देखने वालों को चिरता हूँ मैं, वो काम होने वाला तो है नहीं।
0: मैं तो भाई अपनी गली में खड़ा जाऊंगा मंसूरों की, बोल दूंगा सर ये हिडन जेम, किसी ने देखी गली है इस वाले।
1: वो तो है लेकिन सही बात है यार,
0: हिडन जेम भाई, हिडन जेम है मेरे घर के पास, कोई माने ना माने, मैं थोड़ी किसी के व्यूज के लिए मर रहा हूँ। हिडन जेम है। और नदीम भाई आप क्या होते अगर किचन का कोई आइटम होते मेरा भाई?
1: रैक होते किचन का ना, अपन सबको समेट के रखते एक ही जगह पे।
0: क्या बात है। एक भाई तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बर्तन धोने का साबुन होता, देखिए क्या
1: तो यार अपने को जगह से कोई हिलाए नहीं, ठीक है एक जगह हाँ। बैठ के वहां बैठ गए, तो वो रैक क्या वो एक ही जगह रहता है।
0: अच्छा ज्यादा कोई हिलाए
1: नहीं,
0: नहीं
1: है कोई।
0: मतलब किचन के आइटम में भी इंट्रोवर्ट बनना है आपको है? मुझे यहाँ भी
1: मत आलसी है भाई, कुछ कराओ मैं बिता दो एक जगह में बस।
0: वेरी गुड। अब ये तो लोग तो किचन का साबुन भी बनने को तैयार है भाई, कह रहे बर्तन धोने का साबुन बनना
1: वो तो खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे।
0: ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये आसिफ भाई ने मुझे मैसेज किया है।
1: और ऊपर से वो जाता भी सिंह की नाली में है
0: बिल्कुल उनका सपना ही, उनका जवाब ही आपने पूरा खराब कर दिया, कह रहे जाता भी नाली में है। क्या यार नदीम भाई, हद हो गई यार नदीम भाई। और क्या चला नदीम भाई लाइफ में, बाकी सेट है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, गर्मी बढ़े जा रही है भाई,
0: गर्मी तो बढ़े जा रही है भाई, गर्मी तो बढ़े जा रही है। आपको क्या टेंशन है, कौन सा अपनी डैन से बाहर निकलना है आपने?
1: जाना पड़ता है कभी कभी तो बहुत, एक तो बच्चे लोग को छोड़ने का टाइमिंग ऐसा है ना, अभी मैं 2 दिन और उसके बाद शांति रहेगी,
0: 2 दिन बाद बदला लूंगा मैं दुनिया से गर्मी से,
1: 2 दिन बाद अपन एसी में बैठे रहेंगे गर्मी के टाइम।
0: ये रहा नहीं जाता। ठीक है नदीम भाई बढ़िया है, पर थैंक यू सो मच नदीम भाई, और आपकी बात पे वो रिस्पॉन्स कुछ लिखने वाले हैं, आई थिंक इज राइटिंग, तो मैं बताता हूँ क्या कहते हैं।

0: डन
1: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, नदीम भाई के बाद कह रहे हैं आई एम ईगरली वेटिंग टू लिसन इफ समबडी सेज स्पून. मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी सोच रहा हूँ. सोचे सोचे कभी आइए चाय और मिर्ची के भजिए. अरे हे हे, मिर्ची के भजिए ऑफिस से आए हूँ, खा रहा हूँ. आते के साथ ही मिर्ची के भजिए. यूसुफ भाई आप हमारी पार्टी के क्यों बन रहे हैं धीरे धीरे. एक मैसेज और आया है, कॉल आई है इनफैक्ट. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई.
1: अरे क्या हाल है प्रिंस भाई, क्या हाल है आपके भाई. कल आपको इतना ढूंढा हमने इतने अनाउंसमेंट करी. लिटरली मस्जिद में ऐलान होते हैं ना, वैसे वाले ऐलान किए हमने. हाँ कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन फला फला साल है, जिन साहब का हो वो पहुंचा दे. बहुत अनाउंसमेंट करी हमने.
2: वो जिन का था ना तो वो ले गया.
1: वो ले गया.
2: इंसान का होता तो दे जाता.
1: ये जोक मारे यार. आज प्रिंस भाई अच्छे बोले. प्रिंस भाई क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया?
2: अरे बहुत बढ़िया भाई, दो दिन से तबीयत खराब है माशाल्लाह, फिर भी बढ़िया.
1: बढ़िया है
2: फिर भी, रेडियो पे हाजिरी देते हैं फिर भी बढ़िया.
1: तो भाई खातिरदारी हो रही होगी आपकी,
2: लिखा था इसीलिए बीमार हो गए.
1: खातिरदारी लिखी है, अब जब बीमार होता है आदमी तो सब एकदम पूछते रहते हैं क्या हुआ प्रिंस भाई. खातिरदारी चल रही होगी और क्या.
2: हाँ भाई ये तो है.
1: तभी तो लाड में आ रहे हैं आप. तो बताइए किचन का कोई आइटम होते प्रिंस भाई,
2: सवाल ढूंढ के ले आए भाई.
1: क्या सामान के लिए है
2: सवाल
1: भाई. मैं ना रेडिट पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें वो कनाडा का एक पोस्ट था, एक इंडिया पाकिस्तानी डाला था, लेकिन सारे इंडियंस और पाकिस्तानी नीचे लिख रहे थे उसमें. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा बड़ा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं.
2: तो आप क्या बनना पसंद करेंगे
1: भाई? मैं एक्चुअली में रैक बनना पसंद करूंगा जिसमें बर्तन रखे जाते हैं. बढ़िया एकदम, बीच बीच में नहा भी लूंगा, बर्तन जब गीले गीले रखेगा कोई बिना साफ किए तब मजे हैं मेरे. हाँ तो बहुत सोचा है मैंने.
2: बढ़िया.
1: तो आप क्या बनेंगे
2: भाई? थारे भाई ने तो गैस का सिलेंडर बनना है.
1: गैस
2: लोगों में खौफ भी हो, इस्तेमाल में भी आए और इज्जत भी हो थोड़ा.
1: क्या बात है भाई, क्या जवाब दिया है भाई ने. मैं होता भाई गैस का सिलेंडर बढ़िया वाला. मुझे लग रहा है कि तबीयत पेट वेट खराब है क्या, इसलिए गैस चूज की चक्कर क्या है?
2: नहीं भाई पेट खराब नहीं, थोड़ा सा चेस्ट पेन था.
1: अच्छा चेस्ट पेन था, अभी ठीक है हालत? बिल्कुल बढ़िया है अभी.
2: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल.
1: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. पर जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका, गैस होते. वाह
2: शुक्रिया भाई,
1: वेरी गुड वेरी गुड. तो दो दो, दो रखने पड़ते हैं आपके जैसे.
2: तो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं.
1: थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहिए, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी. मुझसे मत लीजिए इंस्पिरेशन. कुछ का कुछ
2: इंस्पिरेशन हो आप हमारी.
1: अरे नहीं नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है. बहुत बहुत प्यार आपको प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच.
2: चलो आपकी बात रख लेते हैं, ठीक है भाई ऐसा कुछ नहीं.
1: हाँ ये बात सही है, ये ठीक है, ये सच है.
2: अरे
1: ये
2: बड़ा मजा आता है कभी करके देखना अगर कोई बोलता है ना. वो बोलते हैं मैं कहाँ का मुदीर हूँ. ठीक है तू मुदीर नहीं है, ठीक है इधर आ वर्कर, इधर आ इधर. तेरी बात सही है भाई.
1: हाँ ये सही है, पलट के एकदम बढ़िया. देखिए आज आज आपके लिए मैसेज आया है, प्रिंस भाई का सर गैस क्या, सर गैस ज्यादा हो गया है. प्रिंस भाई का सर गैस ज्यादा हो गया है, हैं? इन्होंने कुछ लिखा है आपके लिए. अरबाज भाई प्लीज एलेबोरेट.
2: Elaborate
1: this please. 5 नंबर का सवाल है आपके लिए. बाकी एक और मैसेज.
2: मैंने आपको एक मैसेज किया था, आपने पढ़ा नहीं.
1: कौन सा मैसेज किया था आपने?
2: अरे देखो तो
1: आने वाला था. क्या भाई टाइपो गलती है या कीबोर्ड टूट गया मोबाइल का, क्या लिखा था आपने?
2: नहीं ये तो दिल से दिल की बात है, आपको खुद समझनी पड़ेगी.
1: आप देखिए आप जो है अपने पैर के अंगूठे से कलम चलाएंगे तो फिर ऐसी राइटिंग होगी, क्या किया है.
2: जब किसी को कुछ कहना होता है और कुछ नहीं ही कहना होता है लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहना होता है तो इस तरह का मैसेज भेज देता हूँ तो सिंपली कॉल आ जाती है.
1: आप मुझे इंटेलिजेंस का आदमी समझ रहे हैं, मैं हूँ नहीं. समझ रहे हैं आप, इतनी गहरी बातें कर गए हैं आप.
2: अगर होते तो पक्की बात है आपको मेरे साथ में रखता मैं.
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ये बात बहुत खुशी हुई मुझे.
2: आप इंटेलिजेंस के आदमी होते
1: जी, मुझे ऐसा लगता मैं कुछ ना कुछ कर लेता, ठीक ठाक कर लेता, मतलब मैं अच्छा एम्प्लॉय होता, इतना मुझे भरोसा है.
2: अभी भी तो बहुत कुछ कर रहे हो मेरे भाई.
1: अभी तो बहुत कुछ कर रहा हूँ भाई, कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ.
2: कुछ ना कुछ पे क्यों पड़े हुए हो?
1: हाँ ये तो
2: बहुत कुछ कर रहे हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
1: यही मोटिवेशन चाहिए. आप सच में गैस हैं, आग लगा दी आपने सिलेंडर से. थैंक यू.
2: अरे भाई मैं तो क्या कह रहे थे, हिंसा वाली बात ही नहीं कर रहा था.
1: नहीं हिंसा वाली बात नहीं, ये मोटिवेशन की आग है.

0: समझिए बात को।
1: भाई
0: एक और मैसेज आया आपके लिए, माजिद भाई कह रहे हैं कि प्रिंस भाई सख्त इंसान बनना चाहते हैं सिलेंडर की तरह। माजिद भाई कह रहे हैं आपके लिए,
1: उसमें चाहना क्या है,
0: चाहना क्या है,
1: हम तो हैं ही।
0: ठीक है आप कहते तो मान लेते,
1: वो हैं जो नहीं होते।
0: आज भाई तबीयत अभी भी ठीक हुई है, मुझे लग रहा है ताजी ताजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला को सलामत रखे।
1: कुछ था मुखदी में,
0: हाँ
1: व्हाट डू यू कॉल मुखदी, वो ग्लूकोज की बोतल जो चढ़ती है, कुछ था उसमें,
0: समझ में आ रहा है मेरे।
1: फिर आपकी आवाज ने काम कर दिया, बहुत सारी एनर्जी आ गई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। लेकिन प्रिंस भाई जज़ाकअल्लाह।
1: और कोई कुछ बोलना चाह रहा है भाई, और किसी ने मैसेज किया
0: अभी तो,
1: ताकि मैं रिप्लाई दे दूं।
0: जब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा मैं,
1: जरूर जरूर।
0: ठीक है
1: जरूर मेरे भाई।
0: ठीक है प्रिंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई को, थैंक यू।
1: नेक्स्ट
0: प्लीज आ जाइए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो प्रिंस भाई के बाद एक और कॉल लेते हैं, फिर अहमद भाई कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी,
2: क्या
0: जी साहब, ये तो बोल के चले गए माजिद भाई, क्या कहेंगे आप?
2: जी जी जी, अच्छा मैं कह रहा था, क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया।
0: क्वेश्चन ये था कि माजिद भाई, क्वेश्चन ये था कि अगर आप किचन का कोई आइटम होते, कोई सामान होते, तो क्या बनना पसंद करते, हाइपोथेटिकली?
2: किचन, खाली किचन का या पूरे घर का?
0: पूरे पूरे किचन का भाई, ओनली किचन साइड। आप पूरे घर में क्यों फैल रहे, कंट्रोल उदय। किचन की तरफ जाइए, किचन अच्छा, में हाँ।
2: अगर किचन में है तो फिर मैं बनना चाहता कोई फ्राइंग पैन बन जाता, मैं
0: फ्राइंग पैन बन जाता। ये चॉइस क्यों?
2: एक तरफ से हीट को रोकता, ठीक
0: हाँ,
2: है
0: हाँ,
2: और दूसरी तरफ से जो है ना, मेरे अंदर नई नई चीजें आती, मुझे चेंज पसंद है।
0: ओहो अच्छा,
2: हर रोज नई चीज, कभी कभी वो बनता, क्या बोलते हैं उसको, लहसा बन रहा होता, कभी मेरे अंदर जो है वो शक्शुका बन रहा होता, कभी सिंपल फ्राई अड्डा हो रहा होता।
0: समझ में आ रहा है माजिद भाई, बहुत चटोरी जुबान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ
2: चेंज चेंज और किस चीज में होता है किचन में, और चेंज क्या होगा, होता ही कुछ नहीं। फ्रिज है तो फ्रिज बन जाता है, फ्रिज में भी नई चीज आती है।
0: हाँ फिर आपको लीटर से लोग देखते रहेंगे, माजिद भाई हैं हमारे 6 लीटर के पूरे।
2: लीटर के ठंडा भी, हाँ ठंडा भी रहता है, मैं ठंडा तो वैसे रहता हूँ, ठंडा तो रहता हूँ।
0: नहीं फ्राई पैन ही ठीक है, फ्राई पैन ही ठीक है माजिद भाई, मुझे लगता है फ्राई पैन इज अ वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। कोई ज्यादा बहस करता तो तेल के छटकारे भी मार देते आप तो। ठीक
2: हाँ।
0: है ठीक है,
2: और ये पिटाई के भी काम आ जाते हैं ना, पिटाई के भी काम आ जाते हैं
0: ये। आप वायलेंस, आप वायलेंस तरफ चले गए, आप यू चोज वायलेंस, आई डोंट वांट पीस, आई वांट वायलेंस। लेकिन माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत मेरे भाई। ख्याल रखिए मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद जो है, मैं ज़रा, ये अहमद भाई ने बहुत पहले कही थी मेरे से, अहमद भाई कॉल कर लो, अहमद भाई मैं कॉल लगा रही हूँ, एक सेकंड, अरे ये नंबर क्यों नहीं दिख रहा है लड़के का, दिख गया। अहमद भाई को हम लगा रहे हैं कॉल, ये बहुत घूम फिर के आए हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं, तो उनको हम कॉल लगाएंगे। हाँ जी कॉल उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: अरे भाई साहब, कोई तो पहाड़ियों पे से घूम के आया है, क्या बात है, बड़ी वीडियो डाल रही थी तुम।
2: आप पहले, आप पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए,
0: बताओ
2: मिस्टर बंटी साहब
0: जी, बताइए
2: आपके साथ मेरी कौन सी ऐसी जाती दुश्मनी है जो आप मेरी वाट लगाने पर तुले हैं?
0: मैंने क्या किया है अमल साहब, आप ये मुझ पे
2: क्या? कुछ नहीं किया यार, आपसे मैं आपके लिए जो चीज लेकर आया हूँ
0: भाईजान, आज आज बोला ना आपको भाईजान,
2: बात सुनो हाँ। मेरे अंकल को पता चल गया, एक तो दुआ करो कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं अल्लाह मुझे उनसे छुटकारा दिलाए, मैं उनकी वजह से रेडियो पर भी बात नहीं कर सकता हूँ यार।
0: अरे जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें, अहमद साहब फाड़ दीजिए।
2: मेरा इतना गुस्सा आपको आया है ना,
0: अहमद भाई आज आज फिक्स करेंगे ना, बीपी हाई नहीं करने का, क्या लेके आए हो पाकिस्तान से? और
2: निकल गया भाई आपके हाथ से अभी
0: यार, ये तो गलत बात है यार।
2: अभी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट शुमाल कैंप में, उधर हमारा कैंप है शुमाल की तरफ, निकल गया हूँ मैं।
0: अच्छा ओहो हो हो,
2: तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर जुमेरात को या जुमे को इंशाल्लाह,
0: ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
2: अच्छा टॉपिक टॉपिक मैंने सुन लिया है, एक तो मतलब मैं दो बातें कहूंगा, एक तो मैं पिशावर से हूँ और दूसरी बात ये कि मैं गैंग ऑफ वासेपुर देख कर बड़ा बड़ा हुआ हूँ, ठीक है।
0: अच्छा
2: तो मैं, मेरा फेवरेट चीज जो है वो प्रेशर कुकर है।

0: प्रेशर कुकर बनना चाहते हो क्यों भाई? हाँ। प्रेशर कुकर
1: क्यों? क्योंकि उसकी जब सीटी निकलती है तो मेरी सीटी बच जाती है।
0: वेरी ऑड चॉइस, वेरी ऑड चॉइस।
1: मतलब लोगों को डराना है यार मुझे, दिखे के पटू के ना पटू लेकिन लोगों को डराऊं।
0: वाह वाह वाह वाह, ए अमल क्या बात है, वाह वाह वाह अमल भाई, आग लगा दी। वैसे अमल भाई पाकिस्तान गए थे तो शादी वादी की बात बात नहीं हुई? अरे यार हद हो गई, ये तो हम चाहते हैं कि आप भी जो है
1: उन्होंने शादी की तो मेरे अब्बू को बोला कि देखे आपने भी मुझे फिर मशवरा नहीं दिया कि मतलब थोड़ी सोचो। तो अब्बू ने तो पता है क्या कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हें निकाह के टाइम भी बोला था कि अभी भी टाइम है बेटा भाग लो, लेकिन आपने बात नहीं मानी अब भुगतो।
0: अहमल भाई बस मुझे लगता है ये आखिरी साल है आपका, जितना अभी जो है मजे करने हैं।
1: नहीं आखिरी साल का तो, आखिरी साल का तो पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आखिरी वर्ल्ड कप होगा।
0: वाह वेल डन, वेल डन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया जॉब अमल, बहुत बढ़िया जॉब भाई, 7 करोड़ रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ। बहुत बुरा लगा वो परसों मैच का, वो कनाडा के साथ जो था।
0: कौन?
1: I'm really sorry यार, वो ब्राजील वालों को तो हमने पीछे ही छोड़ दिया, उन्होंने तो फिर भी एक गोल मारा था।
0: हाँ।
1: ब्राजील और जर्मनी का जब था, याद है आपको 2014 का जो?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको इतनी लंबी बात क्यों याद आ रही है, इतनी दूर कैसे अमल भाई, ज्यादा फ्री हो आज मुझे?
1: मैं तो देखता
0: हूँ
1: ना, हाँ तो कनाडा को मतलब हमको चाहिए था कि एक गोल मार लेते तब भी थोड़ी बात बन जाती।
0: अच्छा कौन सी टीम इस बार फाइनल में जाएगी, दो टीमें बताओ जल्दी से कौन सी फाइनल में जाएगी?
1: यार मेरे को सबसे मोस्ट फेवरेट जो है वो जर्मनी है।
0: हाँ।
1: पता नहीं क्यों लेकिन जाए, और जिस तरह पोजीशन कतर भी फेवरेट है लेकिन जो पोजीशन अभी इनका चल रहा है तो लगता तो नहीं है, और दूसरी फेवरेट जो है वो ब्राजील है।
0: वो ब्राजील है। अमीन भाई ढूंढ रहे हैं आपको हमारे, अमीन भाई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपके साथ शो करने के लिए?
1: नहीं यार अभी मैं तो निकल
0: गया, बहुत दूर जा रहा हूँ। नहीं यार अभी टाइम तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है अमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, और आप भी ख्याल रखिए मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। अहमद भाई के बाद एक मैसेज आया है, नाजिया बहन का वालेकुम सलाम, लिखते हैं नाइस स्टोरी, क्या टॉपिक आज का फराज भाई, मैं कह रहा हूँ अगर किचन का कोई आइटम होते तो क्या होते? प्रिंस भाई कह रहे हैं जख्मों पे नमक, नमक नहीं टमाटर और मिर्ची की चटनी। एक मैसेज आया ब्रेकिंग न्यूज़, कतर में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ FM 107 सुनना लाजमी पड़ेगा। मुदस्सिर बंगश साहब एकदम सही बात है, मैं खुद लगाऊंगा मुखालफा। एक मैसेज है कबीर भाई, जी भाई आपको कॉल करने जा रहा हूँ, एक मैसेज छोड़ दूँ बस मैं। हमारे यहाँ से साहब वालेकुम अस्सलाम, मैसेज आया कबीर भाई आप मेरे अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, आपको बताया था उसके लिए सॉन्ग हो जाए भाई, अभी मैं मैसेज इस आर में प्ले नहीं कर पाता सैम भाई, गाना अगले आर बजेगा। और खादिम साहब कह रहे हैं वो चाकू होते, जकी भाई कह रहे हैं आई वुड बी फ्रिज, बाहर से गर्म अंदर से ठंडा, कभी भूखा भी नहीं रहता। बात तो सही है, वेरी लॉजिकल। एक मैसेज कबीर भाई, मैं कांच की किसकी अलमारी बनना चाहता हूँ क्योंकि सब बर्तन एक साथ रखता, वेरी वेल मैनेज्ड, वेरी नाइस, ओबीडियंट बर्तन। मोहम्मद इस्लाम साहब को मैसेज है, हीरो भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज आया मैं सर चाहता हूँ चूल्हा बन जाता हूँ, चूल्हा नहीं होता तो कुछ भी नहीं, चूल्हे के बारे चूल्हा बनना चाहते हैं, बहुत लोगों को जलाया है अरबाज़ खान ने दुनिया में, बहुत बढ़िया। यूसुफ भाई कह रहे हैं आप बताइए प्लीज़ भाई, मैं चिकन चिकन क्यों बोल रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, किचन में रैक होता, रैक। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम। और फराज भाई कह रहे हैं वो चमचा होते जो हर जगह फायदे में रहता। देखिए मुझे लगता है बड़ा रिस्की चॉइस है ये आपकी चमचा बनने की, बताऊं फराज भाई, इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थिंग। एक और मैं ज़रा कॉल करने जा रहा हूँ, ये मुझे कॉल करिए अबरार भाई ने, अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू कबीर भाई।
0: अबरार भाई क्या तफरी हो रही है, किधर है अबरार भाई?
2: मैं बाहर निकला था थोड़ा वाइफ को लेके, थोड़ा चक्कर।
0: क्या बात है, ये आप लेके निकले हैं या वो आपको लेके निकली हैं? हाँ, देखा सच पकड़ लिया मैंने।
2: पुराने कोला नहीं खोलो, जो हम लोग जो बात करते थे वो कभी नहीं खोलना।
0: हाँ अभी तो घबराहट में होंगे आप, हाथ तो नहीं कांप रहा है अबरार भाई। क्या करते हैं अबरार भाई, अभी भाभी सुन रही है मुझे या फिर आप अकेले फोन पे हैं अभी मेरे साथ?
2: सुन रहे
0: ना भाभी, अब मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मैं बस वो बताना नहीं चाहता ना, क्या क्या मुझे बताया है, मैं बस अच्छा चुप रह जाता हूं, सुनने हैं क्या, सॉरी। तो अबरार भाई अब क्योंकि भाभी भी हैं आपके साथ ही, तो सलाह मशवरा करके बताइए आप किचन का कौन सा सामान होते अगर होते तो?
2: अरे वही डिस्कस कर रहे थे क्या बनते, मैंने

0: बोला सिर्फ कबीर भाई को बोलूंगा।
1: बताओ बताओ बताओ।
0: मैं माचिस बनना चाहता हूँ, जहां जहां लगे आग लगाता रहूंगा।
1: अच्छा, इतनी हिम्मत हो गई। इतनी हिम्मत
0: कबीर भाई, हाँ। जेल में नहीं बना रहे, एटलीस्ट माचिस बन के तो जला सकते हैं।
1: ओहो, अच्छा वैसे भाभी की मदद करते हैं आप किचन में, या फिर सिर्फ खाना ही आता है आपको?
0: करता हूँ ना कबीर भाई, वो जब वो खाना बनाने के बाद उठा के प्लेट दफ्तर पे लेके आके रखता हूँ।
1: वेरी गुड वेरी गुड।
0: कबीर भाई घर में रहना है, कबीर भाई वाइफ के साथ रहना है तो थोड़ा डिस्प्ले करना पड़ता है, तो खाना भी नहीं मिलेगा।
1: हाँ वो तो है, वो तो है। शाबाश शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू।
0: डरा हुआ बच्चा।
1: ये सेम सवाल मैं आपसे जब पूछूंगा जब आप गाड़ी में अकेले होंगे। रिकॉर्डेड लाइन है या अबरार भाई, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है?
0: ये सब है ना, रिकॉर्ड करके डिलीट कर दे, ये वही बात में ना, फिर सुन के फिर मेरे को ना लगा आग लग रहे।
1: साथ खैरी से घर पहुंची। अभी तो आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, तो कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको खाने के लिए इंशाल्लाह। और ऑल द बेस्ट, घुमाइए घुमाइए, अच्छी बात है, घूमिए और भाभी घुमाना सलाम।
0: नेक्स्ट वीक बच्चों की छुट्टी है ना, तो फैमिली सब वेकेशन जा रही है।
1: नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो नेक्स्ट वीक से फैमिली जा रही है, आप भी जा रहे हैं?
0: हाँ नहीं भाई, मैं नेक्स्ट वीक से बैचलर बन रहा हूँ।
1: अरे तभी तो ये मुस्कुराहट है चेहरे पे, मैं यही सोचूं ये दाल काली है क्या, पूरी दाल ही काली है, तो क्या कह रहा है
0: कबीर भाई? आपको फुफो का काम करे, फुफो का।
1: मैं फुफो का ये मैं बताओ आपको कैसे खुश रहने दो, हमें तो हम इतने सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम कैसे किसी को ऐसे देख सकते हैं यार, ये कोई बात थोड़ी होती है।
0: जले पे नमक
1: भाई, हम जल रहे हैं, आप क्यों जलेगी? आपकी खुशी में मैं खुशी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो? ये है मसला।
0: आप, मैं किचन में माचिस बन रहा हूँ, आप किचन में नमक बन रहे।
1: मैं सिलेंडर बन रहा हूँ, जैसे भी प्रिंस भाई के गए प्रॉपर।
0: अम्मा कबीर भाई, मैं बोल दिया अभी बैचलर बन रहा, बोल के जाएगी भी नहीं अभी।
1: मैं सारी रिपोर्ट तैयार करूंगा जब जब आप कॉल करेंगे बैचलर लाइफ में, तो एवरी कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी पर्पस, ठीक है?
0: वो दुश्मन को दूर से ढूंढना नहीं है, बाजू में चाहे बगल में चाहे, बोलते ना वही।
1: थैंक यू सो मच, यही मैं चाह रहा था कि अब मैं सुनना चाह रहा था, थैंक यू। मुझे मंजूर है। पर अबरार भाई खुश रहिए और भाभी को हमारा सलाम कहिएगा, हमारी बहन को बहुत सारा सलाम, और साथ खरीद से जाएं, साथ खरीद से आएं, दिल से दुआ है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, उसके बाद सीधा हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम,
2: क्या
1: हाल चाल है दिल्ली वाले? क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया भाई, आप कैसे हो भाई?
1: बढ़िया भाई, एकदम चौकस चल रही है जिंदगी। अब गाबा भाई क्या होते किचन में, आइटम शाइटम होते तो क्या बनते?
2: यार आपने तो कबीर भाई सीधा सवाल ही डाक दिया मेरी तरफ भाई, थोड़ी भाई, बात तो कर लो ना भाई।
1: भाई बात भी कर लेंगे, सवाल तो बता दो, जवाब तो दे दो। हाँ
2: मैं भाई किचन में लगा हुआ एसी बनना चाहता हूँ।
1: ओहो, बड़ा ही स्पेसिफिक जवाब दिया है भाई ने, क्या बात है। अच्छा अब बताओ गाबा जी, क्या चल रहा है जिंदगी में, सब बढ़िया?
2: हाँ जी भाई, एकदम बढ़िया भाई, मस्त चल रही है।
1: आज कैसे याद कर लिया भाई, पांच बजे के बाद आज कैसे आ लिए भाई, क्या हो गया? सब बढ़िया, आज कैसे बाहर घूम रहे थे?
2: आज भाई ड्यूटी थोड़ी लेट थी।
1: अच्छा ड्यूटी लेट चल रही है, ठीक है बढ़िया। गाबा जी भाई कहानी गुनी सुन लिया करो, और गाबा जी हम भी चाहते हैं आप भी सुन के, थोड़ा हमारे लिए तो नए नए हैं आप, बाकी शो में तो आते ही रहते हैं, हम भी चाहते हैं गाबा जी हम भी बताएं कहानी वानी सुने थोड़ी सी।
2: जरूर सुनेंगे कबीर भाई। अच्छा आपकी ये अकोमोडेशन इधर है अपना मंसूरा में?
1: जी भाई।
2: हाँ सरवर मिर्जा जी की भी है?
1: हाँ, हिडन जेम भाई, हिडन जेम।
2: यकीन मानिए यार कबीर भाई, जो जेम की असली वैल्यू ना है यार,
1: हाँ।
2: इन लोगों ने इतनी ज्यादा डाउन कर दिया ना वो हिडन हिडन करके यार।
1: मैं भी कल अपनी गली में खड़ा होकर ये बोलूंगा हिडन जैम है भाई, इस गली में कोई आता जाता नहीं है।
2: क्या यार, किसी को पता नहीं है हिडन जैम है यार, जो आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया यार भाई, है ना?
1: वही है भाई, ऐसे ही चल रहा है भाई, यहाँ पे जब तक है ऐसे ही चलता रहेगा। पर हाँ क्या,
2: अभी ये देखना आप आने वाले समय में जो जैम वर्ड है ना, इसकी जगह पे ये लोग कुछ और इजाद कर लेंगे, ये मेरी बात याद रखना आप।
1: उसके लिए भाई बहुत क्रिएटिविटी लगती है, उसमें एक दो साल तो लगेंगे ये सब होने में, भी टाइम है
2: भाई। उनको तो ट्रेंड चोरी ही करना है ना दूसरे में,
1: हाँ जहाँ कहीं से आ जाएगा। अरे वाह क्या क्या फ्लिप किया आपने, मतलब वाह वाह गावा जी के लिए तालियां। बहुत बढ़िया
2: भाई, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा भंडार पड़ा है, आप जो मर्जी उठा सकते हो।
1: हाँ ये तो है, ये तो है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि आएगा, मुझे भी लग रहा है, या तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कतर में कोई पॉडकास्ट आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसे होगा, ऐसा मुझे फीलिंग।

0: सी आ रही है।
1: सही सही सही कबीर भाई, बिल्कुल सही यार,
0: सही है सही है। ठीक है तो
1: और बाकी यार कबीर भाई,
0: हाँ भाई,
1: आपके घर में और मेरे घर के बीच में सिर्फ सीरिंग रोड का फासला है।
0: तो सिर्फ नहीं है सीरिंग रोड, देखा सीरिंग रोड कितना लंबा भाई, सिर्फ ना है भाई वो। अच्छा
1: नहीं नहीं मैं पूरे की नहीं बात कर रहा,
0: कहाँ कहाँ रहते हैं?
1: अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मैं हिलाल में रहता हूँ जी।
0: अच्छा तो फिर तो ठीक है, हाँ ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर का दायरा है
1: जी, हॉलीडे विला के अपोजिट।
0: ओहो अच्छा,
1: वो वाले एरिया में।
0: अच्छा ठीक है, तो करीब ही रहते हैं आप, टकर जाएंगे किस दिन गाबा जी, कोई टेंशन नहीं है। वैसे आप पास में रहते तो कोई, आप भी टेक्निकली पड़ोसी ही हो हमारे।
1: हाँ टेक्निकली भी हो गए, वैसे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो भाई किसी दिन फिर चाय वगैरह का प्रोग्राम।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन बहुत प्यार गाबा भाई कॉल करने के लिए। अब मैं जरा कहानी की तरफ बढ़ाऊँ मेरी जान, तो हो सके तो सुनना ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैसेज कर देना, भेज दूंगा ठीक है
1: भाई। सच में घना मजा आया आप मिली बात करके यार,
0: धन्यवाद भाई, बहुत प्रेम
1: मन
0: भाई,
1: खुश हो जावा भाई।
0: मन खुश
1: बस लास्ट में
0: भाई।
1: यार कबीर भाई पता क्या बात होता है, क्या बात होगा, मैं यार शुरू पंजाबी में करता हूँ,
0: हरियाणवी में शिफ्ट हो
1: बात
0: जाता।
1: आपके साथ हरियाणवी में होती है
0: भाई मेरे साथ
1: और खत्म इंग्लिश में होती है।
0: ये मेरी डेली की कहानी है मेरे भाई, डेली की कहानी यही है, बड़े मुश्किल से काबू करना पड़ता है, मगर बहुत प्रेम भाई को तुमने तो बेरा भाई, बहुत प्यार बहुत प्यार। ठीक है
1: बेरा बेरा भाई, बेरा बिल्कुल बेरा भाई, मैं भी गणा लव यू करूँ आपसे,
0: गणा लव यू भाई को वापस, थैंक यू सो मच भाई,
1: मेहरबानी भाई,
0: थैंक यू भाई। तो गाबा जी के बाद भाई अब सीधा कहानी की तरफ बढ़ेंगे। एक मैसेज आ गया है, दो मैसेज कर दूंगा, गैस सिलेंडर की इज्जत करो भाई, नाराज हो गया तो सिर्फ किचन ही नहीं सारा घर आ रहे, वाह वाह वाह। एक मैसेज है, मैं सामने खड़ा हूँ जकी भाई घर के सामने खड़ा है गाबा जी के। एक मैसेज आया है, एंसर आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड अरेंज सम काइंड ऑफ इवेंट और मीट अप वेयर यू कुड कम एंड वी कुड मीट यू, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू इन पर्सन भाई, दैट्स सच अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड समथिंग रियली नाइस। अरबाज भाई बहुत प्यार आगे लिखते हैं, एंड सर प्लीज टेल एवरीवन दैट इंशाल्लाह यू विल मीट समडे, यू विल कम, वी विल कम एंड ऑल ऑफ योर फैंस विल बी देयर एज वेल, मीटिंग यू वुड बी अ ग्रेट प्लेजर। भाई ये ऑनर आप इतनी इज्जत दे देते हो ना भाई, गाना चलाना पड़ेगा, नहीं गाना नहीं मतलब एक प्रोमो चलाना पड़ेगा फिर कहानी। अच्छा मैं जो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। एक भाई कह रहे मारुति चला, भाई मारुति नहीं चला सकता, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, मारुति नहीं चल पाएगा डंडा भाई का, है कुछ प्रोटोकॉल की वजह से, बट आप सुन लो गाड़ी में, कोई टेंशन नहीं भाई। तो एक प्रोमो के बाद मिल रहे हैं, आज की कहानी हैज समथिंग डिफरेंट टू ऑफर, सो एक प्रोमो के बाद मिलते हैं ठीक है, जाना नहीं आपने।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात, स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत,
0: सबसे बड़ी दौलत। वालेकुम अस्सलाम कमालुद्दीन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके तो अब चूंकि कहानी का वक्त है तो मैं उसी तरफ बढ़ जाता हूँ, एक सेकंड मैंने हाँ ओके, तो आई होप यू आर रेडी, जो जो लाइव सुन रहे हैं प्लीज मैसेज कर दीजिएगा एंड देन आई विल बिगिन द स्टोरी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा। आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड काफ़ी हैरत अंगेज है, बहुत कुछ है इसमें ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, फिर लिसनिंग टू मी लाइव, इस कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा एंड अगर आप ड्राइव करें तो ड्राइव स्लोली बिकॉज ये कहानी काफी काफी ज्यादा खास है। सो आज के किस्से को शुरू करने के लिए हमें काफी काफी साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा, अभी 1700 की कहानी सुनानी, लेकिन अभी महज 3 साल पीछे चलते हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर, दैट्स व्हाट मेक्स इट अमेजिंग। तो 3 साल पहले की बात है, 2023 महीना मई का था और 1 तारीख थी। इस वक्त कोलंबियन एमेजॉन के ऊपर एक जहाज उड़ रहा था, एक सेस्ना प्लेन, ज़्यादा बड़ा जहाज नहीं होता ये, नॉर्मल जहाज, और ये जहाज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये जहाज कोलंबियन एमेजॉन के ठीक ऊपर उड़ रहा था। इसमें जो लोग सवार थे उनके लिए ये एमेजॉन में सफर करने के लिए एक बस की तरह था, लाइक यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आपको कुछ जगहों पर कोई चारा नहीं होता तो आपको या तो बस करनी पड़ती है या आपको एक व्हीकल या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का फायदा उठाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन। और यहां पर ट्रेवल करने के

लिए ये जहाज ये सेस्ना प्लेन वॉज दी ओनली ऑप्शन बिकॉज और कोई चारा नहीं था, पक्के रोड नहीं थे, देयर वॉज नो रोड एंड दिस इज कोलंबियन अमेज़न, कोई ऐसा खामा खा का जंगल भी नहीं है। तो जब ये जहाज उड़ रहा था तो अचानक इसमें एक खराबी समझ में आई पायलट साहब को, और जब तक उन्हें समझ में आई वो खराबी बढ़ती चली गई, एंड विद इन सेकेंड्स बिफोर ही कुड इवन रिएक्ट और रेडियो पे कुछ बता पाते दिक्कतें शुरू हो गई जहाज में। अब जो इसमें बैठे हुए थे लोग वो ज्यादा तो नहीं थे लेकिन उन सब की हालत खराब हो रही थी। अमूमन क्या होता है, एक पैसेंजर प्लेन जा रहा है उसमें अगर कुछ होता है तो पायलट को अगर कुछ मुश्किल हो भी रही है तो पैसेंजर्स को बाद में पता लगता है, बाद में इधर दे सी इट देमसेल्व्स या फिर उन्हें क्रू मेंबर्स बताते हैं या फिर पायलट बताता है कुछ ज्यादा इमरजेंसी। पर यहाँ पे बिकॉज एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी है पायलट और पैसेंजर्स के बीच में, सो एवरीबॉडी कुड फील कि जहाज में कुछ तो दिक्कत है, एंड पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्या हुआ। एंड पायलट ने जो अनाउंस किया वो ऐसा था कि जिसको कभी सोचा भी नहीं था हो पैसेंजर्स ने। उसने बोला आई बिलीव द इंजन इज डेड, एंड इंजन इज डेड जब बोला तो उसकी तुरंत बाद, एंड दिस हैपेंड विद इन सेकेंड्स, पायलट वो स्क्रीमिंग चिल्ला रहा था और ये जहाज सीधा नीचे की तरफ जा रहा था, नोज डाइव कर रहा था, और जहाज के सामने आसपास इवन नीचे एक यूं समझिए ग्रीन ओशन, जहां तक नजर जाएगी वहां तक पेड़ ही पेड़। ऑफकोर्स दिस वॉज कोलंबियन अमेज़न। ये जहाज नीचे नोज डाइव कर रहा था एंड देन जब ये नीचे टकराया इट वॉज कंप्लीट साइलेंस, जहाज के मेटल पूरे मुड़ चुके थे, जंगल में उठती महक, जहाज के फ्यूल की महक, चारों तरफ पत्ते ही पत्ते। इस जहाज के अंदर तीन अडल्ट्स जो थे उनकी जान बिल्कुल नोक पे थी, और ब्रोकन फ्यूसलाज जो जहाज का था उसके एक कोने में से एक आवाज आ रही थी, और ये जो आवाज आ रही थी ये इम्पॉसिबल आवाज थी, इम्पॉसिबल, ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी, और इस बच्चे के रोने के अलावा एक बड़ा ही अजीब सा मामला यहां पर हुआ। जब ये जहाज पूरी तरह से नोज डाइव कर चुका था और किसी के बचने के कोई चांस नहीं थे, इस जहाज में से लड़खड़ाती हुई एक 13 साल की बच्ची बाहर आई। ये 13 साल की बच्ची जो थी इसने अपने आप को सबसे पहले बाहर निकाला और उस बच्चे को बाहर निकाला। अब यहां से कहानी मेन शुरू होती है। ये 13 साल की लड़की थी लेस्ली, इसके दो यंगर सिबलिंग्स थे, एक ऑफकोर्स ये मां के साथ ट्रेवल कर रही थी, एंड 7 लोग जो इस फ्लाइट में थे इन सब में से किसी के बचने के चांस नहीं नजर आ रहे थे। ये आरा कुआरा से सैन होजे की तरफ जा रहे थे, रूटीन फ्लाइट थी, जैसे मैंने कहा रोडलेस, कोई रोड नहीं था, एंड पूरा अमेज़न क्रॉस करना होता था। इस जहाज के अंदर एक पायलट इंडिजिनस लीडर थे उस एरिया के, जो एरिया को समझते थे, और ये दोनों के दोनों नहीं बचे। एक औरत इसमें ट्रेवल कर रही थी जिसका नाम था मैग्डलेना, इनके साथ में कुछ और भी लोग थे, 4 बच्चे लेकिन बच गए। लेस्ली थी 13 साल की, 13 साल की महज ये बच गई। इसकी बहन सोलेनी जो कि 9 साल की थी, इसका एक भाई था टीएन 4 साल का, और सबसे हैरत अंगेज जहाज के नोड्स डाइव करने के बाद भी एक बच्ची और थी, लेस्ली की सबसे छोटी बहन जो महज 11 महीने की थी, पूरे 1 साल की भी नहीं, इसका नाम था क्रिस्टीन। ये क्रैश जिस जगह हुआ ये कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं था, जैसे मैंने कहा ये वो जगह नहीं है जहां से अगर आप बच गए तो उठ के सीधा बाहर निकले सड़क आ गई, नो, दिस वाज अमेज़न, कोलंबियन अमेज़न, ट्रिपल कैनोपी जंगल। ये इतना गहरा इतना डेंस फॉरेस्ट है कि अगर जस्ट इमेजिन कि आप अगर इसमें खड़े हुए कोलंबियन फॉरेस्ट में इस जंगल में, तो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और इतने ऊंची ऊंची शाखाएं हैं कि दोपहर के वक्त भी, इवन इफ यू आर देयर इन द आफ्टरनून, सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती इस रेन फॉरेस्ट के, इतना डेंस। यहां का मौसम कुछ इस तरह का है कि यहां पे हर रोज बारिश होती है, हर रोज, और बारिश के अलावा जो यहां के खतरे हैं उनका कोई हिसाब नहीं। यहां पे जैगुआर्स हैं, यहां पे सांप हैं, यहां पे वो कीड़े हैं जिनके बारे में दुनिया की आधी पॉपुलेशन ने ना तो कभी सुना ना कभी देखा,

और इस जंगल की जो रिवर्स हैं वो भी वायलेंटली बहती हैं, कभी भी ओवरफ्लो हो जाती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें लेस्ली 13 साल की बच्ची वो बच गई थी। वो एक इंडिजिनस ट्राइब की थी, मतलब कि यहां से थोड़ी सी दूर पे एक ट्राइब थी जो इस एरिया को जानती थी, वहीं पे वो पली बड़ी है और उसको पाला पोसा इस तरीके से गया है कि उसको कहानियां सुनाई जाती थी। लेस्ली को कहानियां बताई जाती थी कि कैसे क्या करते हैं लोग, जंगल में कोई फंस जाए तो क्या होता है, ये सारी कहानियां बचपन में सुनती थी। कुछ नकली होती थी, कुछ असली कहानियां होती थी, पर बता पाना मुश्किल था उसके लिए। शी वॉज जस्ट 13 years old। पर इन कहानियों ने उसे कुछ सिखा दिया था, जैसे कि कौन सा फ्रूट इस जंगल में खाया जा सकता है, कौन सा फ्रूट, कौन सा फल जान ले सकता है। उसने कहानियों में सुना था कि जंगल में अगर फंस जाओ तो पानी की आवाज को फॉलो करो, पानी जहां पे खत्म होगा वहां लोगों के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसे बताया गया था इन कहानियों में कि जंगल में इंसान को जंगल से बात करनी पड़ती है, अगर वो घबरा गया तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन बहादुरी दिखाने की नहीं थी, वो फंसी हुई थी, एक 13 साल की बच्ची, और उसकी नजरों के सामने उसकी मां 4 दिन तक तड़पती रही बिफोर शी ऑल्सो डाइड। पर आखिरी सांस में इस मां ने अपनी 13 साल की बेटी और बाकी 3 बच्चों को एक ही बात कही, स्पेशली लेस्ली से, बेटा यू गो, गेट आउट फ्रॉम हियर एंड लिव, अपने भाई बहन को यहां से लेकर जाओ, गो, जस्ट गो एंड लिव, एंड डांट के वहां से भगाया जबकि उसकी खुद जान जा रही थी। जंगल के इस अंधेरे में एक मां ने जैसे एक वसीयतनामा सुना दिया, जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भार एक 13 साल की बच्ची पे दे दिया। लेस्ली अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी, मगर मां की बात तो मां की बात है। उसने फौरन अपनी 11 महीने की बहन क्रिस्टीन को सबसे पहले इस बिखरे हुए जहाज से बाहर निकाला, इस रैक से अपने साथ लिया, एक बैग लिया जिसमें कसावा फ्लावर थे, बेबी फॉर्मूला लिया अपनी छोटी सी बहन को, 11 महीने की बहन को फीड करने के लिए, एक फ्लैश लाइट ली और कुछ छोटी छोटी चीजें। 11 महीने की अपनी छोटी बहन क्रिस्टीन को इस 13 साल की लेस्ली ने अपने सीने पे बांध लिया कपड़े से। अब अमूमन इन सिचुएशंस में प्रोटोकॉल और कायदे कानून के हिसाब से चला जाए तो लोग कहते हैं कि जब भी क्रैश हो और आप बच जाएं तो वहीं पे रहें, क्योंकि सर्च पार्टी आपको ढूंढ लेगी, आप अगर वहां से चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब यहां रहने का मतलब है कि जो मां अभी जिंदा नहीं है उसे देखते रहना, पर खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा और हो सकता है मदद भी ना आए। अब फैसला लेना है, और फैसला किसे लेना है, एक 13 साल की बच्ची को, महज 13 साल की बच्ची को। उसके जहन में ये चल रहा था कि मैं रुकी तो दिख जाऊंगी, पर हो सकता है कि मैं और मेरे सारे भाई बहन भूखे मर जाएं, और मैं यहां से गई तो शायद भूख से बच जाएंगे लेकिन हमें शायद कोई ढूंढ ना पाए। इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं था, बट शी हैव टू मेक अ चॉइस एंड शी डिड मेक अ चॉइस। लेस्ली ने, जैसे मैंने कहा, अपनी 11 महीने की बहन को, क्रिस्टीन को अपने सीने से बांधा, अपने भाई बहन को वहां से लेकर उसने चलने का फैसला किया। सलेनी जो उसकी 9 साल की बहन थी, शी वॉज ओल्ड इनफ, 9 साल का बच्चा चल सकता है तो वो चल रही थी। शी वॉज यंग इनफ, मगर बेचारी डर भी रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसकी 13 साल की बहन के हाथ को थामे हुए वो चली जा रही थी। टीएन जो कि 4 साल का बच्चा था, वो उस उम्र में था जहां पे बच्चा अगर शॉपिंग मॉल में ज्यादा चल ले तो थक कर नींद आ जाए। अब इस 4 साल के बच्चे को अपनी बहन का हाथ थामे इस रेन फॉरेस्ट में चलना था, उस रेत में जहां पे अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। और फिर वो क्रिस्टीन, 11 महीने की बच्ची जो लेस्ली के बिल्कुल सीने से चिपकी हुई बंधी हुई थी, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती, शी कैन नॉट इवन डू एनीथिंग। अभी ये लोग जहाज की रैकेट से बहुत दूर निकल चुके थे, हर एक मिनट, इनफैक्ट हर एक सेकंड अब कीमती था। सीने से लगी 11 महीने की क्रिस्टी

टीन बता भी नहीं सकती कि उसे भूख लगी, बस वो रो ही जा रही थी। लेस्ली 13 साल की बच्ची, इसने कहानियों में सुना था कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, और वो ये भी जानती थी कि अच्छे भले ट्रेंड लोग, ट्रेंड सोल्जर्स, वो भी यहां पे जिंदा नहीं बचते। पर उसने ध्यान लगाया अपने भाई बहनों के लिए और ध्यान लगा के पानी की आवाज को फॉलो करती रही। वो इस आवाज को फॉलो करते करते, पीछा करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पे ढलान थी नीचे की तरफ, और उस ढलान से ऊपर खड़े होकर वो नीचे देख रही थी तो उसे एक रिवर बहती हुई नजर आई। वो अपने भाई बहन को करीब लाई और उनको पानी पिलाया, और फिर वो सोचने लगी कि मैं खाने के लिए क्या दूं, कैसे करूं। इस 13 साल की बच्ची ने याद रखा, इसे ये तो याद नहीं था कि फ्रूट्स जो हैं वो उनका नाम क्या क्या है, बस उनकी शक्ल याद थी क्योंकि कुछ फ्रूट्स उसे गांव में खिलाए जाते थे, तो वो वही फ्रूट्स इधर उधर ढूंढ रही थी जंगल में कि कहीं मिल जाए खिलाने के लिए। उसने कुछ कुछ फ्रूट्स जो उसे पता थे कि ये सेफ हैं वो अपने भाई बहनों को उसने खिलाए, और फिर उसने अपने हाथों से एक शेल्टर बनाया। जैसे तैसे ब्रांचेस को तोड़ ताड़ के, जो पड़ी हुई लकड़ियां थी उन पे पत्ते वत्ते डाल के, और फिर उसके नीचे थोड़ी देर बैठने की कोशिश करी क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। ये एक छोटा सा शेड था मगर और कोई चारा नहीं था। इस बारिश में देर रात इस 13 साल की बच्ची को सामने ही एक पेड़ नजर आया। ये पेड़ जो है जमीन पे गिरा हुआ था और इसके बीच में, इसके ट्रंक में बहुत बड़ा छेद था, मतलब एक तरीके की छोटी सी गुफा। सोचा दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपने भाई बहनों को अंदर किया, उसके बाद छाती में बंधी क्रिस्टीन का सर संभालते हुए खुद वहां पे बैठी, और उसने लास्ट जो बेबी फॉर्मूला था वो उसे दिया, पर वो खत्म हो चुका था बिल्कुल लास्ट। और ये 11 महीने की बच्ची रोई जा रही थी। अब पूरे अमेज़न जंगल में बारिश हो रही है, यहां पे कहां से वो दूध ला के दे उसे। लेस्ली अपनी 11 महीने की इस बहन को पानी पे जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, और जो फ्रूट्स उसके पास थे, जो उसने इधर उधर से जोड़े थे इस बारिश में भी, उन फ्रूट्स को उसने मैश किया और फिर अपनी बहन को खिलाया। इस शुरुआती जो वक्त लग रहा था कि कभी भी खत्म हो जाएगा, लोग हमें ढूंढ लेंगे, ये मिनट्स घंटों में बदल गए और घंटे दिनों में बदलते चले गए। एक 13 साल की बच्ची अपने भाई बहनों के लिए एक मदरली फिगर बन रही थी, इम्प्रोवाइज कर रही थी बिना किसी मैनुअल के, उसे किसी ने कोच नहीं सिखाया। पर लेस्ली का दिमाग थोड़ा अलग चलता था। 13 साल की बच्ची ने प्लान बनाया कि सुबह सुबह अपने भाई बहनों को जैसे तैसे लेके चलेगी, चीजें इकट्ठी करेगी, और वैसे ही इसने अपना दिन सेट करना शुरू किया। दोपहर में कसावा जो फ्लावर होता है उसको उसने पीस कर पत्थरों से, उसमें फ्रूट्स पीस कर टुकड़े कर करके और फिर खिलाया। एक हिस्से का पेस्ट बनाया और अपनी 11 महीने की बहन क्रिस्टीन को पसाया, उसको दिया क्योंकि उसके दांत नहीं है। 4 साल का टीएन जो उसका छोटा भाई था वो कब तक चलेगा, एंड उसकी उम्मीद खत्म हो ही जा रही थी, वो भी रोना शुरू कर चुका था। अब इस 13 साल की बच्ची ने, लेस्ली ने उसको भी गोद में उठाया। अब एक उसकी बहन 11 महीने की उसके सीने से बिल्कुल बंधी हुई है कपड़े से, और अपने 4 साल के भाई को भी गोद में उठाया और फिर चलना शुरू किया जितनी उसकी हिम्मत थी। ये वो जगह है जहां जूते घिस जाते हैं, इंसान धस जाते हैं, वहां पे ये लड़की कर रही थी। और लेस्ली की 9 साल की बहन जो बहुत ज्यादा टूट रही थी, उसका मोरल डाउन हो रहा था, उसको मैनेज करने के लिए लेस्ली ने उसे कुछ काम दे दिए, ये करो वो कलेक्ट करो ऐसे करो वैसे करो, उसे काम में लगा दिया, उसका ध्यान भटका के, ताकि वो जो है ज्यादा परेशान ना हो। पर इनके लिए सबसे मुश्किल टाइम रात का था, सबसे बड़ी दुश्मन रात थी, अंधेरा जंगल का वो फ्लोर जो अभी तक नजर आ रहा था थोड़ा बहुत रात में गायब हो जाता था। किसी भी इंसान के लिए कोलंबियन अमेज़न में रहना देर रात में, ना, इट्स नॉट समथिंग यू वुड वांट टू ट्राई। लेस्ली ने फिर से
एक जगह कार्व करी पत्थर से निकाल निकाल के, और उसे पेड़ के अंदर जरा सा हिस्सा मिला तो अपने भाई बहनों को वहां बिठाया एक छोटी सी गुफा बनाने की कोशिश में, और बीच में बिल्कुल छिपक के अंधेरे में उनके साथ बैठ गई। सोची रात की वो आवाजें जिनका काम ही शिकार करना है, रात को उनको सुनते हुए नींद से लड़ना है इस 13 साल की बच्ची को। एक गलती अगर इससे हो जाए तो उसे वो ठीक भी नहीं कर सकती। हफ्तों तक लेस्ली ने यही सब कुछ रिपीट किया। हम अगर चाहे ना हम में से कोई चला जाए, हमें बैकपैक और मैप दे दिया जाए, यकीन दिला रहा हूं आपको एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। एक हफ्ते से ज्यादा, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। और ये 13 साल की लेस्ली 3 बच्चे और एक इन्फेंट के साथ सबको जिंदा रखने की हर रोज कोशिश कर रही थी। लेस्ली चलती रही मदद की तलाश में, रिवर की तलाश में, और पीछे वो मार्किंग्स छोड़ती हुई जा रही थी, ब्रेड क्रम्स, अगर कोई आएगा कोई शिकार करने तो शायद रुक जाए, कुछ फ्रूट्स के जो टुकड़े थे वो अलग अलग जगहों पे एक पैटर्न में फेंक रही थी, कई जगह पे पैटर्न्स बना रही थी कि अगर कोई आएगा तो उसे शायद समझ में आ जाए कि किधर जाना है। इस अमेज़न जंगल में बाकायदा 40 मिलियन ट्रीज हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एरिया कितना बड़ा होगा। और दूर कहीं अब जाके रैकेज मिल गया था, वो जो बिखरा हुआ जहाज था क्रैश का, वो ढूंढ लिया गया था। सोल्जर्स जो थे अब वो बॉडीज तलाश कर रहे थे, उन्हें 3 बॉडीज मिल चुकी थी लेकिन वहां पे कोई बच्चा नहीं था, बस छोटे छोटे स्मॉल फुटप्रिंट्स जो निशान लेस्ली पीछे छोड़ के गई थी। इससे एक उम्मीद जागी थी सोल्जर्स में और पूरे मुल्क में कि शायद बच्चे भी जिंदा हैं, और एक किस्म की रेस शुरू हो गई। मगर रेस में लेस्ली अपने भाई बहनों के साथ कुछ किलोमीटर नहीं, दिन आगे थी, काफी आगे जा चुकी थी, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एस्पेरांजा, यानी कि ऑपरेशन होप। ये लार्जेस्ट सर्च थी इस जंगल की, और इसका स्केल मैं बताता हूं कितनी बड़ी सर्च है, अभी समझ जाइएगा। 150 से ज्यादा सोल्जर्स, 70 इंडिजिनस वॉलंटियर्स जो इस एरिया को जानते हैं, रहते हैं, कई सारे ट्रैकर्स जिनको जंगल का मैप बिल्कुल दिमाग में है, ये सब के सब एक साथ ढूंढ रहे थे। प्लस बिकॉज ये 2023 है, जितनी टेक्नोलॉजी इनके पास थी उससे लेस थे, और ऊपर हेलीकॉप्टर्स जिन्हें नीचे का ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। प्रॉब्लम इनके एफर्ट में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मगर कैसे किधर ढूंढें वो एरिया तो हो। सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो जगह जगह जंगल में ड्रॉप करेंगे सप्लाईज, हो सकता है कि वहां से वो गुजरे और सप्लाईज उन्हें मिल जाए। और साथ में एक बहुत कमाल का काम इन्होंने किया, वहां पे सीटियां भी ड्रॉप करेंगे, सीटी ड्रॉप करते हैं विसल्स, ताकि अगर बच्चों को मिले तो बजाएं और हमें समझ में आ जाए कि वो कहां पर है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। फिर सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना लेस्ली की जो ग्रैंड मदर है उनको लेके आए, एन उनको लेके आए, उनसे उनकी आवाज में रिकॉर्ड कराया गया कि बच्चों को आप अपनी भाषा में बोलिए कि रुक जाओ, कहीं मत जाओ, वहीं पर रहो। ये बार बार उनसे रिकॉर्ड करा के स्पीकर पे प्ले किया गया जंगलों के ऊपर हेलीकॉप्टर में, मगर लेस्ली तक की आवाज गई ही नहीं, उसने सुना ही नहीं। सर्च करने वालों को पीछे पीछे जैसे वो ट्रैक को फॉलो कर रहे थे, उन्हें बेबी बॉटल मिली, उन्हें हाफ खाया हुआ फल मिला, डायपर्स मिले, बच्चों के छोटे छोटे फुट के निशान इधर उधर बनाए गए वो मिले, शेल्टर मिला, एक हेयर टाई मिली, कैंची मिली, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे थे। कोलंबियन अमेज़न में ये सबसे बड़ी सर्च थी। आर्मी ने जितनी कोशिश करनी थी सारी लगा दी, सारी जान लगा दी। अभी सिर्फ ये लोग नहीं, पूरी की पूरी कंट्री के लिए सबसे मेन मुद्दा यही बच्चे थे। उनको ये उम्मीद थी कि बच्चे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, कम से कम कहीं तो हैं, बट उनकी कोई आवाज नहीं है, उनको ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। एक पॉइंट तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, और एक पॉइंट ऐसा भी लगा कि अरे ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ चंद मीटर ही दूर होंगे। ऐसे में एक
कमाल की चीज हुई। दरअसल आर्मी के कुछ

खुशखबरी देने की जल्दी में गलती हो गई। दूसरी तरफ वो विल्स जो डॉग था वो पहुंच गया बच्चों के पास। बच्चे पहले हैरान थे, लेस्ली वाज रियली इन शॉक कि ये क्या है, मगर ये डॉग काफी फ्रेंडली था और ये चारों बच्चों के साथ रहने लगा। अभी सब के सब, एक डॉग, ये चारों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए बारिश में एक शेड में बैठे हुए थे। लेकिन सिर्फ एक रात ही ऐसा हुआ, अगले दिन ये विल्सन ये डॉग गायब हो गया। नोबडी नोज कि वो कहां गया। सोल्जर्स ने भी आवाज लगाई लेकिन वो अपने डॉग को नहीं ढूंढ पाए। यो बच्ची, वो 11 महीने की बच्ची अब 1 साल की हो चुकी थी, जिसको जिंदा रखने की कोशिश ये 13 साल की लेस्ली लगातार कर रही थी। जून की 9 तारीख हो गई 2023, 40 दिन बाद, 40 दिन तक ये सर चली है। 40 दिन तक इस 13 साल की लड़की ने पूरी जान लगा दी। एक ग्रुप आया इंडिजिनस लोगों का और उन्होंने कुछ मूवमेंट देखी। वो दूसरी तरफ से जंगल के अंदर आए एंड उन्होंने पूरी जान लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी चैनल पर अनाउंस मत कीजिए, सबसे पहले हमें ढूंढने दीजिए। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें एक जगह पे कुछ हलचल नजर आई। पहले उन्हें लगा कि कोई जानवर तो नहीं है, सारे चौकन्ने हो गए। लेकिन फिर सामने इस रेन फॉरेस्ट के झाड़ियों में से निकलती हुई एक बच्ची नजर आई, एक 13 साल की बच्ची जिसके सीने से बंधी थी वो 1 साल की क्रिस्टीन, उसकी बहन, और उसके 2 और भाई बहन। ये लेस्ली थी। रेडियो पर मैसेज दिया गया, सबके सब रो रहे थे, इतने सोल्जर्स थे, एवरीबॉडी वाज क्राइंग। एनकोंत्राडोस यानी कि फाउंड, हेलीकॉप्टर्स सारे के सारे रेडी थे। हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया गया और बोकोटा एक मिलिट्री हॉस्पिटल में चारों बच्चों को ले जाया गया। डॉक्टर्स के मन में बहुत सारे सवाल थे बिकॉज दिस वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 13 साल की लेस्ली ने वो करा जो ट्रेंड सोल्जर्स नहीं कर सकते। 40 दिन तक वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल से लड़ती रही और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को जिंदा भी रख पाई। 150 सोल्जर्स, रिकॉर्डेड आवाजें, दुनिया का हर टैक, दिस इज 2023, कोई नहीं ढूंढ पा रहा था उसको और वो सबसे हेल्पलेस जगह पे थी, लेकिन सबसे पावरफुल थी। हम सोचते हैं ना कि इस जंगल में कौन सर्वाइव करेगा, वो जो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो जो सबसे ज्यादा ट्रेंड है, पर नहीं, एक 13 साल की बच्ची, शी सर्वाइव्ड, उसकी नॉलेज, उसकी विल। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने बोला कि बच्चे डिहाइड्रेटेड हैं, लेकिन अमेजिंगली, विच इज इम्पॉसिबल, सबके सब जिंदा हैं। इन बच्चों की मां ने बोला था, यहां से जाओ एनजीओ। वो डॉग जो तक पहुंच गया था वो कभी मिला नहीं, लेकिन उसके नाम का एक मेडल तैयार किया गया और मॉन्यूमेंट भी है कोलंबिया में आज की तारीख में। एंड जो मां ने बोला था लेस्ली को कि गो एंड लिव, शी मेंट इट। वो क्या है ना, किसी ने कहा है कि बहुत पुरानी कहावत है कि अगर मौत का वक्त मुकर्रर होता तो मां शायद बच्चों को नहलाती, खिलाती, पिलाती और उसके बाद दुनिया से जाती। तो बहुत खूब कहा है, शी डिड नॉट केयर अबाउट हर सेल्फ एंड सबको बोला गो एंड लिव, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। दिस वाज एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी जो मुझे दिल से बहुत अच्छी लगी। इस 13 साल की बच्ची ने जो किया, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। सो ये थी स्टोरी। व्हाट्सएप 666-22107 है, 666-22107। अगर इस स्टोरी ने आपको भी छुआ है तो मुझे बताइएगा, 666-22107। आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दुहा वाला कबीर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई का तो इमोशनल स्टोरी थी, मुझे सुना के भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। आई होप कि आप तक पहुँचिए। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने तो लिख भी दिया, बाकी मैसेज पढ़ूंगा मैं। ये कहते हैं भाई छुआ नहीं चीर दिया कहानी ने। थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ये मुझे जिन्होंने मैसेज किया उनका नाम पढ़ दूँ, बाकी मैसेज बस मैं एक गाने का पढ़ूंगा। हुसैन अहमद भाई थैंक यू, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कबीर भाई, कबीर भाई,
2: जी भाई,
3: मेहरबानी है यार आपकी।
2: शुक्रिया भाई,
3: यकीन करो।
2: हाँ,
3: मेरे अभी तक रोंगटे खड़े हुए भाई।
2: चलो भाई, अच्छा लगा मुझे कि आपको अच्छी लगी कहानी, थैंक यू सो मच।
3: यार यकीन करो, मेरी आंखों में आंसू थे जिस वक्त आपने बोला ना कि उनको बच्ची मिली।
2: हाँ।
3: और 150 फौजी सारा जरा एक बार पूरा झंझोला, मैं पूरी फीलिंग फील करना कर रहा था उस वक्त।
2: I'm glad भाई, I'm really happy,
3: मेरी आंखें भर आई थी कि उस्ताद जी how it is possible। वाकई मैंने खुद ही बहुत जरा पढ़ा है इस बारे में।
2: हाँ।
3: कि Amazon में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका इंसान को पता तक नहीं है।
2: हाँ, बिल्कुल,
3: और अभी भी वो अधूरी रिसर्च है।
2: बेशक बेशक मेरे भाई,
3: ठीक है। तो
2: कहानी बड़ी खास थी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब इसके बारे में पढ़ा था आई वॉज मूव्ड, तो मैंने ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, ये तो सुनानी पड़ेगी। और ये सिर्फ 3 साल पुरानी कहानी है, मतलब दुनिया जहाँ की टेक्नोलॉजी भी इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाई, मतलब ये अपने आप में
3: लिटरली सैल्यूट है यार उस बच्ची को।
2: बेशक
3: कि उसने इतना सरवाइव किया और बहुत बड़ी बात थी वाकई। इतने बंदे जाके भी, मैप होने के बावजूद भी, सब कुछ ट्रेन होने के बावजूद भी।
2: हाँ।
3: नहीं जाना उधर सरवाइव कर सकते जिस तरह उस बच्ची ने कर लिया।
2: भाई इस पे मूवी बननी चाहिए एंड आई होप सो कि 3 साल पुराना केस आई थिंक नजरों में आएगा लोगों के, इस पे बननी चाहिए। दिस एक्चुअली डिजर्व,
3: हकीकत बात है भाई,
2: है ना, इस पे बननी चाहिए।
3: और कभी बनी ना तो इंशाल्लाह बैठ के जरूर देखूंगा।
2: बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको अच्छी लगी मेरे भाई, बहुत मोहब्बत आपको, थैंक यू सो मच।
3: आपकी बहुत मोहब्बत भाई, आप कहानियां हमारे लिए ढूंढ के लाते हो,
2: थैंक यू भाई,
3: और मजा आता है, स्पेशली आपका इंतजार हुआ जाता है भाई,
2: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
3: और दिल से मोहब्बत है भाई को,
2: भाई बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच,
3: ओके थैंक यू,
2: ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। तो भाई की मोहब्बत के बाद एक गाना चला दूं, उसके बाद आपके सारे मैसेज पढ़ूंगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेज हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आपको इतनी अच्छी लगी आज की कहानी, मुझे सुनाते भी बहुत मजा आया एक्चुअली। और ये किस्सा तो डेफिनेटली डिजर्व्स अ मूवी, डेफिनेटली। शेर, ये लेस्ली के लिए गाना भाई।

0: परफेक्ट गाना भाई, परफेक्ट गाना चाहिए किस्से के लिए. दिस स्टोरी रियली रियली मूव्ड मी एंड आई कैन सी के आपको भी ये कहानी कितनी ज्यादा आपके दिल पे जाके लगी. जरूरी था, जरूरी था. मैं दुहा वाला कबीर, ये रेडियो जंगल में कशीर. मजा नहीं है ना कोई कहानी के, ज्यादा मजा आया. एक बार से अस्सलाम वालेकुम सुपर स्टोरी भाई, आपका अंदाज सलूट है मेरे भाई. बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच. आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगी कहानी. नईम भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह. कॉल्स बहुत सारी भाई साहब, आज तो कमाल हो गया, इसे कॉल उठा लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरे भाई, आपका नाम?
1: कबीर भाई.
0: मैं बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए
1: भाई कहानी थी भाई.
0: हाँ.
1: कसम से रोते रोते बच गया वो लड़की. बच गई भाई साहब.
0: हाँ.
1: तो कहते ना एक कहावत है ना कि मतलब मुद्दा ही लाख पूरा चाहे तो क्या होता है.
0: बेशक मेरे भाई, बेशक
1: वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. 13 साल की बच्ची भाई और अमेज़न का जंगल.
0: हाँ सोचिए जरा,
1: समझ नहीं आ रहा है कैसे मतलब.
0: उसके अलग लेवल की विल थी भाई, अलग लेवल की विल है ये. मतलब ये
1: एकदम अलग भाई, इस पे तो आप मूवी बना दो, बाकी को छोड़ो आप मूवी बना दो.
0: अरे
1: बताइए.
0: भाई थैंक यू सो मच भाई. आई विश मैं ऑडियो मूवी बनाने को तैयार हूँ, पूरे साउंड इफेक्ट के साथ. मैं ओपन हूँ उस चीज के लिए. कभी अगर मौका मिला ना ऐसा तो इस पे ऑडियो मूवी तो बहुत अच्छी बन सकती है.
1: बिल्कुल भाई,
0: मजा आ जाएगा.
1: मतलब बहुत जबरदस्त स्टोरी थी आज की एकदम, और मजा आया और एंडिंग अच्छी थी तो और ज्यादा मजा आया कि हाँ फाइनली मतलब मिल गई.
0: बेशक बेशक,
1: तीनों सब लोग सही सलामत.
0: बेशक भाई, ये अब ये बहुत बड़ा करिश्मा है, ये सुपर ह्यूमन विल होता है ना. वो
1: हमारे घर के बच्चे मोहल्ले के बाहर हेरा जाए तो मिलने के कम चांस है. ये तो अमेज़न का जंगल है भाई.
0: हाँ ऑफ कोर्स, वही तो मैं भी जब कहानी इस पे नजर पड़ी मेरी तो अखबारों के जरिए पड़ी थी और मैं बड़ा हैरान था. मैंने ये कैसे मिस हो गई यार, 3 साल पहले की कहानी. हालांकि दूर मुल्क की कहानी है पर हम तक कहानियां पहुंचती नहीं है ये वाली, तो बड़ा जरूरी था. मैंने कहा ये तो पहुंचनी चाहिए, हम लोगों को भी पता होनी चाहिए इसके बारे में. बट आई एम ग्लैड मेरे भाई, अच्छी लगी आपको.
1: बहुत बहुत बहुत जबरदस्त कबीर भाई, एकदम बहुत मजा आया और बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यार.
0: चलो भाई जज़ाकअल्लाह, बहुत खुशी हुई मुझे मेरे भाई, बहुत प्यार भाई को. थैंक यू भाई.
1: ओके भाई,
0: अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़. और भाई के बाद एक मैसेज आया, एक्सेलेंट स्टोरी, प्लीज डू शेयर इट. ऑफ कोर्स भाई, वेरी चिलिंग नरेशन ऑफ द स्टोरी, कांट वेट फॉर द एंडिंग, थैंक यू सो मच. एक और मैसेज, व्हाट अ स्टोरी भाई. कबीर भाई द वे यू टेलिंग स्टोरी इज रियली ब्यूटीफुल, योर स्टोरी मेड मी क्राई टुडे. मकसद पूरा हुआ कृष्ण भाई, थैंक यू सो मच. एक और कॉल लेते हैं, फिर सारे मैसेजेस. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी हाय, कैसे हो?
2: बहुत अच्छा है भाई.
0: अच्छी कहानी लगी आपको?
2: लगा करम है. हाँ, कहानी भाई दिल को छू गई है, सबसे बेस्ट कहानियों में से है.
0: थैंक यू सो मच मेरे
2: भाई, आपके आपका शुक्रिया भाई कि हम लोग तक ये कहानी पहुंचाने के लिए.
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, I'm really happy.
2: ये तो भाई ये तो किताबों में होना चाहिए ताकि और बच्चों के हौसले बढ़े.
0: हाँ बेसिकली पता है ये चीजें भी होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ स्टडी होना चाहिए कहीं ना कहीं. आई डोंट नो किस कैटेगरी में
2: स्टडी होना चाहिए,
0: लेकिन मुझे लगता है अगर नहीं भी है किताबों में तो टीचर्स को खामखा ही बता देनी चाहिए कभी कभी, यू नो, ऐसे ही
2: बताने चाहिए.
0: हाँ क्योंकि इससे कुछ ना कुछ दिल में पैदा होता है जो बड़ा अलग है.
2: उससे एक चीज होता है ना कि अभी अगर किताबों में रहेगा ना तो बच्चों का एक हौसला भी बढ़ेगा और सर्वाइवर के जैसे अभी उसने अपने नाना दादा जो भी जिससे भी सुनी थी कहानियां सुन के जो है और उसने एक हिम्मत जमा की.
0: हाँ बेशक बेशक,
2: क्यों करना है.
0: हाँ.
2: अगर वो नहीं सुनी होती, नहीं वो की होती तो खुद भटकी होती कि क्या करना है क्या नहीं मालूम नहीं है.
0: भाई जब भी मैं कहता हूँ स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है ना वो किसी पर क्या असर छोड़ सकता है लोगों को अंदाजा नहीं है. और ऐसे ही होना
2: भाई, अभी सोच लीजिए कि कतर रेडियो सुनने वाले जितने भी हैं आपकी स्टोरी टेलिंग का जो असर हो रहा है हम लोगों के ऊपर, इतना इमोशनल ये कहानी मैं सुना हूँ यकीन मानिएगा. हाँ. इससे पहले जो है उतना ही मुझने कोई कहानी नहीं सुना था मैंने.
0: जज़ाकअल्लाह भाई, I'm really really happy. मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि इतनी अच्छी लगी कहानी.
2: आपकी पूरी कहानी को समझ लो कि उसके साथ मैं जंगल में उसको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था मुझे.
0: I'm really happy मेरे भाई, यही असर चाहते है बस, ये ऐसी हम लोगों का कायम रहे, कम्युनिटी का रिश्ता कायम रहे और ऐसी कहानियां मिलती रहे, बस मैं सुनाता रहूँ. सारे के सारे मैसेज पढ़ दूं मैं, कॉल्स कुछ देर में लूंगा, प्लीज नाराज मत होइएगा. एक भाई ने बोला कॉल करने के लिए, वो भी मैं कर लूंगा. वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? गुड इवनिंग, आज लेट हो गया, कल वाली स्टोरी रिप्लाई दे रहे. शॉकिंग स्टोरी थी, ऐसा जिंदा हो गया. अच्छा मलिक वकास साहब, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज पढ़ूंगा अभी. खादिम साहब आपको भी कॉल करूंगा कुछ देर में. एक मैसेज, हाय मिस्टर कबीर, आई हर्ड स्टोरी, इट वॉज वेरी फैंटास्टिक बट आई एम सॉरी आई मिस्ड. थैंक यू शब्बीर भाजी. शब्बीर जी मैं आपको भेजूँ, शब्बीर जी मैं बिल्कुल भेजूंगा आपको, शब्बीर साहब आपको मिल जाएगी. एक मैसेज है एक्सेलेंट स्टोरी थैंक यू. एक और मैसेज है एम के साहब कहते भाई मूवी बननी चाहिए इस पर एक 13 साल की बच्ची वेरी इमोशनल. थैंक यू सो मच सैयद फरोज साहब इतनी नाइस स्टोरी. एक मैसेज है भाई ये क्या सुना दिया भाई फुल तबाही कहानी सुनते हुए आंखों से आंसू निकल गए. जिम्मेदारी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती. बिल्कुल मेरे भाई मोहम्मद भाई थैंक यू. एक भाई कह रहे हैं कॉल में भाई आपको मैं कॉल करूँ कुछ देर में करूँ चलेगा नाराज नहीं होना. जसविंदर भाई लिखते हैं हेलो थैंक यू सो मच भाई. और एक और भाई ने दिल लगा के भेजा है मुझे मोहम्मद हुसैन साहब थैंक यू. तब उसमें मैंने मैसेज किया है दिस वाज वेरी इमोशनल एंड आई एम हैप्पी दैट दे ऑल सर्वाइव्ड एंड द गर्ल्स विल पार इज सल्यूटेबल शी वाज कीपिंग हर मदर्स वर्ड. सच बात है मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है. बेहतरीन स्टोरी एक मिनट भी अटेंशन इधर से उधर नहीं हुई. चलो मेरा काम पूरा हो गया भाई. प्रिंस भाई लिखते हैं गुड स्टोरी ब्रो एक्चुअली फैंटेस्टिक. अमन भाई लिखा है मिस हो गई. उस्मान भट्टी साहब ने लिखा है भाई भाई रुला दिया कमाल क्या स्टोरी है सुनते आंखों से आंसू आ गए. आई एम रियली हैप्पी. ये अच्छी बात है इस कहानी के लिए तो गॉड ब्लेस 13 साल की बच्ची. शहजादा सलीम साहब ने मैसेज किया नाइस स्टोरी जल्दी सेंड करना एंड आई विल सेंड इट टू माय डॉटर वाफिया. भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को ये कहानी सुनाइएगा ये वाली स्पेसिफिकली सुनाइएगा इमरान भाई एंड जो भी जिनके घर में बच्चे हैं प्लीज़ सुनाइएगा. आउटस्टैंडिंग स्टोरी हीरू भाई लिखते हैं बाकी सुपर सल्यूट टू लेस्ली. एहतशाम भाई ने लिखा है देन एक भाई ने लिखा है हुसैन भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई थैंक यू सो मच. और एक और भाई हैं हमारे भाई ने लिखा है आज से मेरा नाम है क्या वेरी नाइस स्टोरी. अच्छा ओके कसम से सर आंखों में से आंसू आ गए लास्ट वाले सीन पर. ये अरबाज भाई ने लिखा है अरबाज भाई थैंक यू आपका भी. और बाकी जकी भाई ने लिखा है वाह व्हाट अ स्टोरी ब्रो वर्थ ऑफ वेटिंग इन पार्किंग ट्रू लेजेंड अ लिटिल सोल्जर द सर्वाइवर. Yes, this was such an amazing story. मिलते हैं इंशाल्लाह अजान के बाद फिर कुछ लोगों को कॉल करनी है. बट आई एम रियली हैप्पी. आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है कहानी का असर वही हुआ जो मुझे उम्मीद थी. आई एम रियली हैप्पी. मिलते हैं कुछ देर में. जाना नहीं आपने FM 107 पर मैं तू हवाला कबीर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: करते हैं इसी।
1: हाँ जी, तो कुछ कॉलें करनी थी मुझे, एक सेकंड, मेरे पास एक नंबर था भाई को, मैं कॉल नहीं कर पाया था, लेट मी कॉल। उसके बाद बाकी मैसेजेस, मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो आपने अमिता की आवाज़ में सुनी लिया है, मैं तो हवाला कभी रेफ 7 फिर भी बोल देता हूँ जस्ट इन केस। तो रेहान भाई कॉल करके, मुदस्सिर रेहान भाई कॉल उठा लें एक बारी, फिर बात हो जाएगी।
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। हम थोड़ा जल्दी में हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करेंगे। देखिए आपकी स्टोरी जो है उसमें हम तारीफ में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई वर्ड्स बचे ही नहीं है।
1: अच्छा?
2: सारे ही लोग तारीफ करेंगे और वो तारीफ के लायक है भी। हमारा मसला ये है कि हम आए हैं टेम्परेचर पे बात करने,
1: इस पे बात करने,
2: और हमारी टेम्परेचर पे
1: क्यों,
2: और हमारी तकलीफ ये है कि जब अगर फील लाइक 46 है तो आप 35 बोल के हम लोग को क्यों दिलासा दे रहे हैं। 35 है और फील लाइक 46 है,
1: किसने बोला?
2: अरे उसने टेम्परेचर फोन में दिखा रहा है, फील लाइक 46 एंड 38 के करीब वो टेम्परेचर दिखा रहा है। तो हम
1: फेंक दो फोन को,
2: जब हम कह रहे हैं 46 है तो आप हमें 46 बताए ना, तो थोड़ा सुकून मिले कि हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं।
1: भाई आग लगे ऐसे फोन को यार, 35 आग लगे भाई ऐसे फोन को, भाई फेंक दो, गाड़ी चढ़ा दो। और कोई सोल्यूशन नहीं,
2: बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और मैं थोड़ा बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ तो मे भी नेटवर्क इशू हो जाए, तो फिर मैं जल्दी से फोन रखता हूँ इंशाल्लाह, फिर बात।
1: ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच,
2: ओके,
1: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के फोन की दिक्कत भाई ने मुझे बताई है, टैक्स शो करने के अलग अलग फ़ायदे हैं, किसी दिन फ़ोन रिपेयर भी करूँगा मैं। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, मैं कॉल कर रहा था, वो जो है मेरी GB ख़त्म हो रही बहुत ज़्यादा, मेरा फ़ोन जो है सारी मुका देता है, क्या कहते हैं GB मेरी। अस्सलाम वालेकुम, आई आए लो, कॉल तो लगी नहीं, सलाम पहले। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी भाई बताइए।
3: कबीर भाई कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
3: कबीर भाई जल्दी जल्दी बात खत्म करूंगा,
1: बोलो बोलो।
3: कहानी सुनते मेरे बाल खड़े हो गए, वो कहते ना रोंगटे खड़े हो गए,
1: जी जी जी,
3: मेरे बाल सारे खड़े हो गए ऐसे।
1: चलो
3: कसम से ये अंधेरे में तो हम खुद नहीं चल सकते, ये छोटे छोटे बच्चे ये कैसे ऐसे जंगल में, हम तो घर के अंदर भी डरते हैं। और ये कहानी सुनते सुनते मैं सोच रहा था ये कि शायद कोई शेर आया, कोई दूसरा कोई चीज आके वैसे, लेकिन चलो ये अच्छा हुआ, एंड बहुत अच्छा था।
1: थैंक यू।
3: स्टार्टिंग से लेकर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे भेजूँ,
1: कैसे भेजूँ,
3: मतलब ये व्हाट्सएप पे भेजूँ, कैसे भेजूँ,
1: क्या चीज भेजनी है?
3: ये मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड
1: कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है रिकॉर्डिंग, भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं।
3: अच्छा, और मुझे भेज दे फिर,
1: मैं भेजूंगा, कोई टेंशन नहीं, मैं भेजूंगा।
3: लेकिन कमाल की स्टोरी, बिल्कुल, और माशाल्लाह आपकी आवाज, आपकी आवाज ने उसको बहुत और भी खूबसूरत बनाया, कमाल की स्टोरी, बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और खादिम की बात, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? भाई ज़बरदस्त स्टोरी थी, हॉरर सुना दो या कोई अमेज़न जंगल की। ज़ुबैर बलूच भाई, अमेज़न वही था वो, ज़ुबैर भाई वहीं की कहानी थी, वो कोलंबियन साइड की जंगल की कहानी थी, था अमेज़न ही। एक मैसेज, हाय हेलो हाउ आर यू। रिजवान भाई कह रहे कहानी भेज दो, नसीम भाई की भी आँखें नम है, चलो अच्छी बात है। मेरा एक और, मैं क्या बताऊँ, मकसद नहीं था, बट इत्तफाकन आपको पता है आज क्या है, आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, आप सोचेंगे, मैं तो सच बोल देता हूं आपको, पता है इस मामले में मुझे नहीं पता था आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है, बट आज है भाई, और आज के दिन ही ये कहानी मिली मुझे। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी बहन कैसी हैं आप?
4: जी
1: कैसी हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलिंग माशाल्लाह, बहुत अच्छी है आपकी,
1: थैंक यू सो मच,
4: बहुत बेहतरीन तरीके से सुनाते हैं, और आज की कहानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी,
1: जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
4: बिल्कुल, वकील जो हैप्पी एंडिंग थी उसने बहुत सुन के बहुत अच्छा महसूस हुआ,
1: थैंक यू।
4: और एंड पे वाकई जब वो बच्चे मिले तो कुछ हो रहा था, ऐसे दिमाग में कुछ हो रहा था।
1: मैं वही सोच रहा था कि लोग कहाँ तक पहुँच गए होंगे, लोगों को क्या उम्मीद होगी कि क्या हुआ होगा इस किस्से में, बिकॉज बहुत ताज़ा तरीन है।
4: सुनने के बाद ना बच्चे सुनने के बाद फौरन जो है ना मोबाइल डाटा मामा को ऑन करके ना सर्च कर रहे होते हैं।
1: अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। और क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारी तस्वीरें अवेलेबल हैं, प्रीटी श्योर के ये कहानी तो वैसे मिल जाएगी लोगों को अगर वो पढ़ना भी चाहें तो, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल।
4: बिल्कुल, ये न्यूज में भी आई थी कुछ इतने अर्से के बाद उनकी सर्वाइवल।
1: Yes. तो और काफी लेटेस्ट कहानी है तो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, काफी सारी डिटेल्स हैं इसमें।
4: और बाकी और मतलब कुछ किस्मत ने भी उनका साथ दिया ना उन बच्चों का,
1: ऑफकोर्स
4: कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई, आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट में तो सरवाइव करना किसी ट्रेंड बंदे के लिए आसान नहीं है।
1: हाँ, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल मतलब नामुमकिन ही है, हम लोगों के लिए तो नामुमकिन ही है।
4: बिल्कुल, वो बच्चे थे लेकिन अल्लाह की तरफ से, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये वाली बात है ना, अल्लाह ने इनकी जिंदगी लिखी थी।
1: बेशक बेशक बेशक, और विल पावर भी एक चीज होती है जो बहुत ही अलग किस्म की विल पावर थी। हाँ
4: और बिल्कुल, मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके स्कूल या उनके जो एटमोसफियर है उन्होंने बच्चों को इस तरह से ब्रॉटअप किया हुआ है कि वो इतने माशाल्लाह समझदार और रिस्पॉन्सिबल है।
1: हाँ, वो उस एनवायरनमेंट भी रहते हैं ना, तो उनको उस तरीके की ट्रेनिंग, वैसे ही किससे कहानियाँ, तो शायद उसका अच्छा भी एक बहुत गहरा असर रहा होगा, बिकॉज वो इंडिजिनियस कम्युनिटी की थी, वहीं के आसपास के इलाके की थी वो, सो शी कुड अंडरस्टैंड कि मतलब क्या क्या उस कहानियाँ सुनाई होंगी। होता ना मोहल्ले की कहानी सुनाते हैं, बेटा ये हुआ था वो हुआ था, सो आई थिंक दैट हैज इंपैक्टेड हर अलॉट।
4: जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त,
1: बहुत
4: खुद सर्वाइव किया अपने सारे बहन भाइयों को, अपना संभाला और इस तरह से उनको खिलाती पिलाती भी रही अकॉर्डिंग टू देयर एज। बहुत अमेजिंग,
1: यस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: हाँ, और इतना लंबा अरसे तक ना,
1: यस
4: बहुत अच्छा था। और गर्मी तो वाकई बहुत भड़ी, अभी एक जो भाई का फोन आया था कि गर्मी के
1: हाँ और क्या क्या फायदा है, क्या फायदा है इस फोन का बताइए, गलत टेम्परेचर बता रहा है, उन्हें बहुत तकलीफ हुई।
4: बिल्कुल एग्जैक्टली, और खास तौर पे अगर किसी शेड में पार्किंग ना मिले या बाहर गाड़ी खड़ी उसमें आके देखें तो ऐसे लगता है जैसे हम खुद रोस्ट होने आ बैठे हैं।
1: हाँ तो वही है, मैं तो बोल दिया फोन तोड़ दें, आपको ये फोन गलत बताया तो रख दे जमीन में, कोई टेंशन नहीं।
4: गर्मी के हालात ऐसे ही है, बस यही है कि स्टे हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पिए और कोशिश करें कि डार्क कलर के कपड़े वगैरह मत पहने। अक्सर मैं भाइयों को देखती हूँ उन्होंने ब्लैक कलर के हैट सर पे रखे हुए होते हैं।
1: बहन वही है ना, वो शौक बड़ी चीज है वाली चीज है, ये शौक बड़ी चीज है, ये उसके बेसिस पे चल रहे हैं तो ऐसा भी है। बट हाँ, और
4: जोड्रन वगैरह वो भी गाड़ी में मत रखिए।
1: हाँ प्लीज भाई प्लीज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लीज
4: आप यकीन कीजिए, मैं मेरे बच्चे जो है ना नाश्ते में कॉरिसेंट छोड़ गए, वापसी पे मैं गाड़ी में आके बैठी, वो सारा उसका बैग फूला हुआ।
1: हाँ उनको बिल्कुल ना रखें, और लाइटर्स वगैरह ना गाड़ी में,
4: मिनट के लिए भी किसी बच्चे को या किसी को बंद गाड़ी में बगैर दरवाजा खुले हुए बिल्कुल भी रहने ना दे। ये मैं अपने बच्चों को बचपन से बताती हूँ।
1: नहीं नहीं सही सही सही सही जा रही है आप, अमेज़न के लिए तैयार हैं आप बिल्कुल एकदम तैयार है।
4: प्रिकॉशन गर्मी में ना गाड़ी में सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। और खूब सारा ढेर सा पानी पीना और लाइट खाने पीने का भी ख्याल रखना, क्योंकि गर्मी में हैवी चीजें नहीं खाई जाती ना, हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसा है कि लाइट लाइट चीजें अच्छी रहती है।
1: नहीं नहीं आप अपना ख्याल रखिए, बस लाइट लाइट चीजें खाइए और बच्चों को हमारा सलाम और प्यार दीजिए।
4: हम तो रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अरे हम तो लो मेंटेनेंस गाड़ी है, रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
4: अपना ख्याल रखा करें।
1: ठीक है, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
4: बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं माशाल्लाह,
1: थैंक यू
4: बहुत माशाल्लाह, आपकी क्रिएटिविटी तो मैं मानती हूँ नेक्स्ट लेवल की है।
1: थैंक यू सो मच मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वैसे दुआ कर, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो बहन की बात जो है, गाना जो बीच में रह गया था भाई चलाना, और भाई ने बोल दिया था ये गाना तो पूरा चला ही नहीं, तो अब चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये लो भाई। मैं कह रहा था लाइन मेरी फेवरेट है, माइक पे हूँ मुझसे वाला रहे वैसे रब्बी शेर गिर। हाँ जी वीर जी, सिद्धू मूसे वाला।

की बराबर। हाँ जी मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे। मैं जी बड़े खुश हूँ आज, कहानी को आपने बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार दिया है, तो जिनको नहीं मिली मिल जाएगी कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रहें आप। अच्छा कुछ दिन है जैसे मैंने कहा इत्तफाकन जो आज मैंने कहानी सुनाई वैसा ही दिन भी आज है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। रिसर्च अबाउट इट, क्योंकि ताज़ी ताज़ी कहानी है और आपको मज़ा आएगा, यू विल लव इट। कैसे हो सकता है कि एक और मैसेज आया, सलाम भाईजान इस्माइल भाई क्या कह रहे हैं, एक सेकंड ये मैसेज ही नहीं ओपन हुआ मुझसे, इतना फेस लॉक नहीं लगाना चाहिए, क्या कह रहे हैं, सलाम कबीर भाईजान क्या ऐसा हो सकता है कि आपका शो 7 बजे से हो जाए। हो तो जी कुछ भी सकता है, बॉस चाहेंगे तो ही हो पाएगा इस्माइल भाई। एक और मैसेज है, क्या कह रहे हैं, डिलीट कर दिया उन्होंने। अच्छा आज विंड रश डे है, अनियन रिंग डे है, अनियन रिंग्स मुझे पसंद है पर चटनी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये जो है ना ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह या आलू की जितनी चटोरी चीज़ें इनके साथ चटनी बढ़िया होनी चाहिए तब मौज है। आज है इंटरनेशनल बीइंग यू डे, ये दिन तो अब लोगों को मनाना चाहिए, इंटरनेशनल बीइंग यू डे, भाई जो हो वो रहो ना, इसको सेलिब्रेट करो, ओरिजिनलिटी ओजी भाई ओजी। और एक और दिन है आज पॉजिटिव मीडिया डे, वेरी हार्ड टू फाइंड बट एटलीस्ट वी आर एटलीस्ट पॉजिटिव। इसके बाद है टेक योर कैट टू वर्क डे, हैं अरे ये किसने सोचा यार, अपने बिल्ली बलोटो को काम पे ले जाओ का दिन है आज, डोंट इवन ट्राई, मत कोशिश करना। इसके बाद है नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, यही था। एक मैसेज है फुल शाबाशी मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को क्या। एंड एक मैसेज भाई स्टोरी मिस कर दी, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आपने मिस करी अब्दुल करीम साहब, आज की कहानी मिस करने में तो मुखालफा होना चाहिए आप पे, बताऊँ मैं आपको सीरियसली, बट ठीक है मैं भेज दूंगा आराम से सुनिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया कि वॉइस आपकी कौन सी वाली वॉइस मेरी है, केड़ी वॉइस HRK साहब कौन सी वाली, और भाई का गाना चल गया भाई खुश, ये बाकायदा वीडियो बना के भाई आपका नाम क्या है, ये डी ट्रैक लिखा है आपने, मुझे आपका नाम जानना है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है तुम्हारा। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई।

पास साउंड के साथ नहीं होगी, बिकॉज मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ सुनाते सुनाते, और बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता है उसमें, माजरत मेरी जान, लेकिन दिस इज़ द फास्टेस्ट वे आई कैन सेंड यू स्टोरी, तो प्लीज़ समझिएगा, लेकिन बाकी बहुत सारा प्यार भाई को। तो ठीक है, 6:50 हो चुके हैं, टाइम कब निकल जाता है कसम से पता नहीं लगता। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, आपस मिलेंगे 5 बजे, याद करते रहिएगा, बढ़िया एकदम, कल भी आग ला देंगे भाई, कोई टेंशन को नहीं। और मैसेज 666-22107 के अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कर सकते हैं आप। सो FM 107 Qatar, अगर आप मुझे वहाँ तलाशना चाहें और आपको लगता है कि आवाज़ और शक्ल को मैच कर लूं, तो आ जाइएगा दोहा वाला कबीर .FM 107 के नाम से, मैं आपको मिल जाऊँगा। बट फॉर नाउ 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड मुझे दीजिए इजाज़त, दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: और उर्दुन ने कतर के साथ यकजहती का इजहार करते हुए रासलफान सनाती जोन में वाक़े एक कारखाने में पेश आने वाले धमाके के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अम्बानी और इमारती वजारत खारजा ने आज जारी करदा बयान में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम ब्रादर मुल्क कतर और उसके आवाम के साथ खड़े हैं। बयान में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी और तमाम अफराद की सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मुतअद्दद फ़िलिस्तीनियों के जा बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक गज़ा के इलाके मुआसी खान यूनिस में और रिमाल में एक सिविलियन गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फ़िलिस्तीनी शहीद और मुतअद्दद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा मकबूजा मगरबी किनारे में शुमाली अलखलील के इलाके में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़िलिस्तीनी नौजवान शहीद जबकि एक शख्स ज़ख्मी हो गया। वाज़ेह है मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों कस्बों और कैंपों में रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली फ़ौज और आबादकारों की जानिब से छापों घेराव और गिरफ्तारियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान अक्सर झड़पें फायरिंग और गिरफ्तारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे मकामी आबादी शदीद मुतासर हो रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केरस्टामर के ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही उन्होंने लेबर पार्टी की क़्यादत से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम को अपने इस्तीफ़े से उन्होंने आगाह कर दिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि लेबर पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी से दरख्वास्त की है कि पार्टी की क़्यादत के इंतखाब के लिए बाकायदा शेड्यूल तैयार किया जाए जिसके तहत 9 जुलाई को क़्यादत के लिए नामजदगियों का अमल शुरू किया जाएगा। नशरे के अख्ताम से कबल एक बार फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। मजलिस शूरा ने आज अपने मामूल के हफ्तावार इजलास में फ्रांस में मुनाक़िदा G7 सरबराही इजलास में साहब सूं अमीर की शिरकत को सराहा और इजलास में मुल्क के बैन अल-अक़वामी सफारती किरदार मुख्तलिफ पार्लिमानी सरगर्मियों के रिपोर्ट्स और मुतअद्दद मुसव्वदे क़वानीन व उमूर पर गौर खोज़ किए गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने आज स्विट्ज़रलैंड के बोर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में फ़्रांस के वज़ीर यूरोप और खारजा उमूर जानुएल बारो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तआवुन के ताल्लुकात समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सल्तनत उम्मान और मुत्तहिद अरब अमारात ने रासलफान सनाती जोन में वाक़े एक कारखाने में पेश आने वाले धमाके के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। और पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में कतर के कलीदी और मरकजी किरदार को सराहा है। इसी के साथ साथ आज का नशरिया अपने अख्ताम को पहुँचता है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 के स्टूडियो से तकनीकी मुआविन असेले बन्नारा और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में कहीं जाने की जगह चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको, मैं हूं जी आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम। इसको मैं शो कहूं, इंफोटेनमेंट कहूं, आप जो मर्जी कह लीजिए। नाम तो कतर 2026 ही है, कतर 2026। और आज के एपिसोड में भी आपको बहुत सारी जगहों पे जाने का रास्ता मैं बताऊंगा या फिर बताऊंगा कि कहां पे क्या हो रहा है और आप जा सकते हैं। इट्स योर चॉइस। कुछ इवेंट्स हो चुके हैं, कुछ इवेंट्स होने वाले हैं और कुछ इवेंट्स होंगे। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर। देखो भाई, हमारी दुआ के 12 हाथ तो है नहीं। हो सकता है कोई ऐसे इवेंट हो जो हमसे मिस हो गए हो, से मिस हो गए हो तो वो आप भी बताइएगा कि भाई यहाँ पे इस कोने में ये चल रहा है, इसके बारे में बात कर लो, तो वो जरूर जरूर बताइएगा। एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है। साथ

व्हाट्सएप भी है 666-22107। तो कतर 2026 का मकसद ये है कि इवेंट्स जो कि इस साल होने वाले हैं या कुछ हो चुके हैं उन सब के बारे में बात की जाए। कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में अभी बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो इवेंट्स हो चुके होंगे, तो उस तरीके से इसे समझिएगा, बिकॉज दिस इज दिस कवर्स एवरीथिंग अराउंड यू। तो सबसे पहले उस इवेंट के बारे में बात कर लें जो होने जा रहा है। कुछ वक्त बाद है, थोड़े से महीने बाकी हैं, पर मैं अभी से आपको आगाह कर दूं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं या फिर किसी के साथ जाने वाले हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है, इवेंट बड़ा ही खास है। सो पहली मरतबा दोहा में, अब तो मैं ये कह के भी थक चुका हूं, कतर में कितनी सारी चीजें हो रही हैं एंड अराउंड एवरीथिंग एल्स बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इन दोहा एक फ्रेश आवाज, वो एनर्जी और बहुत सारी मोहब्बत लिए एक अनफॉरगेटेबल रात के लिए परफॉर्म करने आ रही हैं मैरिलिन नामन। ये जो अनफॉरगेटेबल इवनिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें मैरिलिन नामन परफॉर्म करेंगी कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में, और अमेजिंग परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी वो दुनिया भर में दे चुकी हैं, एंड नाउ दिस विल बी एन अगेन अनदर आइकॉनिक परफॉर्मेंस। सो कैप्टिवेटिंग एंटरटेनमेंट, और ये कतर के वेन्यू की पहचान है, और कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जितने भी इवेंट्स होते हैं कमाल के होते हैं। एक तो उसकी जो सिटिंग एरिया है मुझे बहुत पसंद है, लाइक यू कैन लिटरली सी एवरीथिंग। कभी आपको अरे सर ये नीचे करिए, अपना सर इधर करिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन सी द स्टेज क्लियर एज डे, और इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती है। सो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो इवेंट होगा, इसमें अभी टाइम है एज आई मेंशन, तो ये अक्टूबर में रखा गया है 22 अक्टूबर को, और ये रात के 8 से 9 के बीच में होगा। अभी टाइम है, बट आई कीप ऑन रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस इवेंट इन केस आप जाना चाहें। तो मैरिलिन नामन इज गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट टाइम इन कतर, और ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आवाजें जो याद रहें, जो एनर्जी जो आपको कैप्टिवेट करके रखे, और वो एंटरटेनमेंट जो आपकी मेमोरी को अनलॉक करें। बहुत सारे ऐसे मेमोरीज जिनके बारे में पता नहीं होता। समटाइम्स यू एक्सपीरियंस समथिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। क्या होता, कई मरतबा किसी आर्टिस्ट से आपका राबता नहीं होता, बट आप उस आर्टिस्ट के इवेंट में एक मरतबा जाते हैं एंड यू फील लाइक कि मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए, एंड यू बिकम अ फैन। मैं जानता हूं कि हमारी जनता, बहुत सारी जनता शायद मैरिलिन नामन के बारे में ना जानती हो, विच इज फाइन, बट एक्सपीरियंस करने के लिए जरूर जाएगा। आई शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू। कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा का इवेंट था एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई, कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। आई नेवर बीन टू एन ऑर्केस्ट्रल इवेंट उससे पहले, बट मैं गया ऐसी, यू नो, जस्ट टू ट्राई इट आउट कि क्या होगा। और आज की तारीख में मैं कैलेंडर पे देखता रहता हूँ कि कब परफॉर्म करेंगे कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, कि मैं सबसे पहले वहां पे जाके बैठ जाऊं। सो अगर आप मैरिलिन नामन के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और फिर जाके एक बार परफॉर्मेंस देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है कि एक नए आर्टिस्ट को जानने के बाद, उसे देखने के बाद, आप शायद उसके फैन हो जाए, शायद कुछ ऐसा अनलॉक हो जाए जो आपने कभी एक पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। सो दिस शुड बी इन योर माइंड राइट नाउ। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट। अगला इवेंट जो है एक आउटडोर लाइव स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस है, और ये आपके लिए अब भी है। सेंट्रो कतर, सेंट्रो कतर तैयार है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, और ये 11 जून से 19 जुलाई तक चलता रहेगा। जो इवेंट है पूरा का पूरा, ये शोकेस करेगा सारे के सारे क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप मैचेस। आई डोंट नो हु आर यू सपोर्टिंग, बट मैं इस टाइम फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर सम ऑड रीजन, पता नहीं क्यों, बट मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी, तो आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो। ये इवेंट आपको सारे क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप मैचेस दिखाएगा, इंक्लूडिंग 3 गेम्स जिसमें कतर नेशनल टीम परफॉर्म कर रही है, खास करके वो इवेंट। एक साइजेबल 8x4 मीटर की 4K LED स्क्रीन लगी है यहाँ पर, जो कि आउटडोर प्लाजा का हिस्सा है, और ये इक्विप्ड है एयर कंडीशन के साथ। तो गर्मी है तो कोई गाल नहीं भाजी, आउटडोर का एक्सपीरियंस AC में मिलेगा, यही तो कतर की पहचान है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। टिकट्स आप देख लीजिएगा, टिकट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 50 कतरियल एंड गोज अप टू द प्रीमियम टिकट, लेकिन ज़्यादा महंगे टिकट्स नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा महंगे इन्होंने रखे नहीं है, विच इज़ रियली रियली गुड। यहाँ पर आपको एक NFC रिस्ट बैंड मिलेगा जैसे ही आप इसका टिकट खरीदेंगे, और उसको उसकी वजह से आपको पूरे वेन्यू का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे कैशलेस पेमेंट्स भी अवेलेबल हैं, 15 पार्टिसिपेटिंग बैंड्स हैं, और 10 डेडिकेटेड FNB कायोस्क यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इस इवेंट के लिए जो आपको जानना ज़रूरी हैं, जिसमें जो बच्चे हैं अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज, उनको एंट्री फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज, एब्सोल्युटली मुफ्त में, एंड उनके साथ जो है एक टिकट होल्ड

0: बस एक अडल्ट होना चाहिए, आपको 6 साल का बच्चा क्यों ही जाएगा अकेले, पर एक साथ में अडल्ट होना चाहिए, उनके लिए कोई रिस्टबैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन बता दूं, जो अंडर 6 है इसके साथ साथ एक्सेसिबल है। जो सीटिंग एरिया है उसका वेन्यू का लेआउट बड़ा ही अच्छा, बहुत ही शानदार बनाया गया है। डेडिकेटेड फ्रंट व्यूइंग एरिया भी है जो कि व्हीलचेयर यूजर्स के लिए है। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए ये खास करके स्क्रीन लगाई गई है सेंट्रो कतर की, आउटडोर एक्सपीरियंस फॉर द वर्ल्ड कप। ऑफकोर्स कतर में नहीं हो रहा तो क्या हो गया, सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप तो हम ही ने देखा है, हम ही ने करवाया है, तो हम तो एंजॉय करेंगे भाई। तो ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे सारे क्वालिफाइंग मैचेस इंक्लूडिंग कतर की मैचेस, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रो जाना ही कहां पर है, रौदत अल हमाम में है, रौदत अल हमामा। तो रौदत अल हमामा में आप जाइएगा सेंट्रो, एंड ये 11 जून से 19 जुलाई तक है, 19 जुलाई तक। सो यू कैन वॉच ऑल द मैचेस रात के 8:30 बजे से रात के 12 बजे तक। ऑफकोर्स द मैच विल स्टार्ट 10:09, तो वो आप जाके देख लीजिएगा, वो टाइमिंग्स के बारे में आपको श्योरिटी मिल जाएगी जब आप चेक करेंगे, एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल द मैचेस, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल फिट। आई डोंट नो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई हैव अपेरेंटली नो रीजन टू सपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि एम्बापे ने जिस हिसाब से पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, इस बार बनता है यार लड़के का कप उठाना, क्या कहते हो लोग? CR7 भी बोलेंगे, आई नो मैं फुटबॉल का इतना जानकार नहीं हूँ, मैंने जिंदगी में फुटबॉल खेला भी नहीं है, पर कतर में आके मैं फैन हो गया फुटबॉल का। इट पिछले वर्ल्ड कप नहीं, इट जस्ट टीचेस यू एवरीथिंग। अगर आप नए हैं फुटबॉल से, आपका कभी रब्ता नहीं रहा है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कतर में समझ में आ जाएंगे। मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि जब पिछली मर्तबा फ्रांस आखिरी तक पहुंचा था, तो इस बार भी बढ़िया कर जाए तो बढ़िया बात है। वैसे टीम धुरंधर खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, और मुझे लगता नहीं है कि ये लोग जल्दी बाहर जाने वाले हैं। एक आध को लेके ही जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप सीधा उठा के लेके जाएंगे। टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीम एज वेल, कौन सी पसंदीदा टीम है आपकी, 666-22-107 पर। लेट्स सी क्या क्या माहौल है, हा? बढ़ते जरा अगले इवेंट की तरफ, आ जाओ। अब जो अगला इवेंट है ये अलखोर के कोस्टल एरिया में है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट और द पर्पल आइलैंड की ब्यूटी नजर आएगी। भाई क्या जगह है यार, ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द नेचुरल वंडरलैंड, और ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको कायक मिलेगी भाई, आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने बताया था, और पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा। देयर आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स शेप्ड बाय द टाइडल फोर्सेस, और के हिसाब से आपको सब बताएंगे। एक पूरी टीम है इनकी, एरिया टीम है, जो बताएगी आपको अलग अलग चिड़िया की किस्मों के बारे में, डाइवर्स बर्ड स्पीशीज बेसिकली, एंड जो नेचर एंथुजियास्ट हैं उनके बारे में भी, उनके लिए भी बहुत कुछ है। अब देखिए सनराइज और सनसेट दोनों का इंतजाम है इसमें, वो टाइम आपके हिसाब से। अब आप इसी टाइम सनराइज के टाइम ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीज़ें, या सनसेट के टाइम पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीज़ें, इट्स अप टू यू। पर आपको वो खूबसूरत चिड़ियाँ जो आपने शायद ज़िंदगी में ना देखी हों, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी थी भाई पिछली बार जब गया था, और वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है पूरे फॉरेस्ट का, वो जो सूदिंग साउंड्स हैं, वो पानी की आवाज़, वो आसपास के सुकून की आवाज़, आह क्या लाइन है, तो वो आपको एक्सपीरियंस करने की मिली। अच्छा यहाँ पर सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि आप जाएंगे फैमिली के लिए दिक्कत होगी, नहीं, इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर फैमिलीज, फैमिलीज को लेकर जाइए, एंड किसी को अगर लेजरली पैडल चलाते हुए कायक में रहना है तो वो ज़रूर ज़रूर आए भाई, पीछे बिल्कुल ना हटे। ग्रीनरी, बर्ड लाइफ, नेचर रिजर्व, तीनों का कॉम्बिनेशन, एंड ऑल्सो ये सोशल गैदरिंग की तरह भी देखा जा रहा है, जो बैचलर्स होंगे उनके लिए अलग से एक सिस्टम रखा गया है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नए लोगों से मिले, नए लोगों के बारे में जाने, एंड यू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो, यू नेवर नो राइट। सो जो टूर का टाइम रखा गया है वो सुबह के जो सनराइज वाला टाइम है वो सुबह के 5 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में, तो अपने दिन की शुरुआत आप कायकिंग से कर सकते हैं, लिटरली यू कैन स्टार्ट ऑफ योर डे विद कायकिंग, एंड वो जो सनराइज, हा सूरज उरूज पे जा रहा है, आप मैंग्रोव फॉरेस्ट में है, सूरज जग रहा है, आपकी आंखें खुल रही हैं, नाश्ता याद आ रहा है, भूख लग रही है, सामने बर्ड लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, पूरा आसमान जो है अपने आप को पेंट कर रहा है इन द गोल्डन ह्यूज, और क्या चाहिए भाई। वो जो एनर्जाइजिंग तरीका होता है दिन की शुरुआत करने का, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। मैं कायकिंग एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आई कैन अश्योर यू कि ये एक्सपीरियंस आप ता उम्र नहीं भूलेंगे। ऑफकोर्स एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, कायकिंग करने जा रहे हैं तो मैंने पिछली बार बोला था वार्म अप करके जाइएगा भाई, नहीं तो हड्डियां जो है ना, जो मसल्स हैं आपके और हड्डियां दोनों, एक ही जगह पर रह जाएंगे. ये मेरी फेयर वार्निंग है, बिकॉज इफ यू नॉट वर्किंग आउट एट ऑल और आप जिंदगी भर आलसी रहे, आप सोचेंगे कि मैं तो अभी जाके काइकिंग कर लूंगा, होगा नहीं भाई साहब, ऐसा होगा नहीं. जब चप्पू चलवाते हैं ना तो हाथ एक ही जगह रह जाता है, तो प्लीज वार्म अप कीजिएगा. वहां पे भी आपको वार्म अप पूरी तरह से कराएंगे वो लोग, बट देन टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग आई थिंक यू शुड डू वार्म अप और एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करते हैं तो बेहतरीन. अभी से लग जाओ, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, सुबह का मैंने टाइम बता दिया, लेकिन शाम का भी जान लीजिए. सो इफ यू लव सनसेट्स, कुछ लोगों को सनराइज पसंद होता है, कुछ लोगों को सनसेट पसंद होता है, द गोल्डन आर, ओ हो, ये कवर करना चाहते हैं तो भी आप शाम में पहुंच जाइए. तो सनसेट मैंग्रोव काइकिंग जो है वो पूरा एडवेंचर शाम के लिए अवेलेबल है, शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ठीक है. तो इस वक्त भी आप पहुंच सकते हैं, यहां पर भी आपको कायक मिल जाएगी. और वो जो ऑब्जर्व करने का तरीका है कि बर्ड्स की लाइफ सुबह कैसे होती है, शाम में कैसे होती है, यू विल सी इट विद नेकेड आइज, एंड अलग अलग बर्ड स्पीशीज एंड पर्पल आइलैंड में आराम, स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग और हर दिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ डिलीशियस बारबेक्यू मील. ओए भाई, बहुत मस्त बारबेक्यू मील है, बहुत मस्त. और बिडाउन कैंप भी उन्होंने वहाँ पे लगाया, वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अदर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो जान लीजिए. काइकिंग फंडामेंटल्स और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑन बोर्ड दिए जाएंगे वहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे, एंड आपको बाकायदा वहाँ पे वार्म अप मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसके अलावा ऑल काइकिंग इक्विपमेंट सब का सब दिया जाएगा, पैडल्स, लाइफ जैकेट्स, सिंगल डबल कायक, सब अवेलेबल है. और 90 मिनट की जो गाइडिंग काइकिंग एडवेंचर है वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा, सो डोंट वरी. आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये लो कश्ती ले जाओ पानी में, चप्पू चला के पहुंच जाओ आगे तक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दे विल बी अ टीम विद यू, दे विल गाइड यू, दे विल आस्क यू टू स्टॉप, दे विल आस्क यू टू चप्पू चलाओ, सब करवाएंगे आपसे और आपको बहुत मजा आएगा इन 90 मिनट में. जैसे मैंने कहा यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स हैं, बॉटल वाटर है, जूस है, और कड़क चाय के बना तो भाई कैसे पूरा होगा मामला, वो भी है भाई उड़े. इसके अलावा इंग्लिश अरेबिक स्पीकर्स दोनों आपको मिलेंगे, जो आपके टूर गाइड्स रहेंगे, आपको पल पल गाइड करते रहेंगे. यहाँ पे आपके साथ एक सर्टिफाइड लाइफ गार्ड भी रहेगा, तो डोंट वरी. आई नो देर आर पीपल हु आर हाइड्रोफोबिक, आई हैव सीन देम पर्सनली एंड आई रिस्पेक्ट दैट, कोई दिक्कत नहीं है. आपको सर्टिफाइड लाइफ गार्ड मिलेंगे, फर्स्ट एडर्स मिलेंगे जो आपको लगातार आपके लगातार साथ रहेंगे. इसके अलावा बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के लिए भी वहाँ पे गाइड्स मौजूद हैं, और एजुकेशनल ब्रीफिंग है मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में ताकि आप क्लोजली जान पाए. एंड इसके अलावा स्विमिंग आप कीजिए, और बीच में ब्रेक मिलेगा वर्पल आइलैंड में घूमने के लिए. और भी डाउन कैंप फैसिलिटीज मिलेंगी, जिसमें शावर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, सीटिंग एरियाज हैं, सब कुछ है, एंड मरीन इंश्योरेंस कवरेज है. अब इसके बाद भी आप सोच रहे हैं तो दिक्कत है भाई साहब. सनसेट का जो डिटेल्ड आइटनरी है वो बता दूं, 3:30 बजे पहुंचने का सिस्टम है. 3:30 बजे आप एक्वा स्पोर्ट्स पहुंचेंगे. एक्वा स्पोर्ट्स एक कैंप है जो अलमीरा पार्किंग लॉट के पास है, अल तखीरा के पास. एंड उसके बाद आपको पूरे डायरेक्शन दिए जाएंगे. 4 से 6 के बीच में सब मामला शुरू होगा, सेफ्टी ब्रीफिंग होगी, काइकिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, और आप पैडल करेंगे 90 मिनट के लिए इस सीनिक मैंग्रोव के एक्सप्लोरेशन करते हुए आगे तक जाएंगे. 2 रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स हैं, उसमें एजुकेशन ब्रीफिंग है जिसमें बताएंगे आपको कि भाई पर्पल आइलैंड को पर्पल आइलैंड आखिर कहते क्यों हैं, और पर्पल आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे और इकोसिस्टम को समझ पाएंगे. उसमें आपको मच्छियां कूदती हुई भी नजर आएंगी भाई, देयर आर मेनी सी क्रीचर्स जो बड़े क्यूटी पटूटी से हैं वो भी नजर आएंगे. इसके अलावा 6 से 8 के बीच में यू कैन रिलैक्स एक अरेबियन टेंट में, और वो भी देसी टेंट भाई, मतलब देसी इन एन अरेबिक वे, तो ग्राउंडेड, काफी सादगी वाला जो टेंट होता है, तो वहां पे आप आराम से यू कैन जस्ट विटनेस अ स्पेक्टेकुलर सनसेट फ्रॉम द बीच इटसेल्फ. और उसके बाद डिलीशियस बारबेक्यू, अडल्ट ओनली है बारबेक्यू. इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन शावरमा है, बच्चों के लिए स्पेशली अलग रखा गया. मैं तो बच्चा ही हूं तो मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा. वेजिटेबल मील्स भी हैं अपॉन रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि आप नहीं खाते मीट, यू आर वेजिटेरियन, और आप मतलब पता कि आपको पता ही होगा, तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन है. और आप आराम से जो है यू कैन चेंज एवरीथिंग एंड यू कैन आस्क देम कि आपको वेज खाना है, एंड दे विल प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो उसकी लोकेशन क्या है, पर्पल आइलैंड. और फिटनेस लेवल वैसे तो देखो कुछ है नहीं, पर मैंने कहा ना थोड़ा सा है वार्म अप करके जाना. 1.5 मीटर की वाटर डेप्थ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. अब यहाँ पे आपको क्या लाना है कैन बी योर क्वेश्चन, तो देखना ना भाई, बंद जूते ले जाना, कहीं खुले वुले लोफर पहन के मत चले जाइएगा, सैंडल्स ले जाइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा. बट क्या है, याद रखिएगा कि थोड़ा सा रॉकी मामला है चलने फिरने में, तो उस हिसाब से जूते देखिएगा। लाइट लूज फिटिंग क्लोथ्स लीजिएगा और चेंज कर सकते हैं आप क्लोथ्स आफ्टर द टूर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहें तो खुद का टॉवल वैसे तो लेके आइए, खुद का टॉवल लेके आइए, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, हैट, कैप, व्हाटएवर यू वांट। और प्लीज प्लीज, मुझे बताया गया था पिछली बार भी कि भाई प्लीज फोन मत गिरा देना भाई, गीला वीला कर लिया, फोन खराब कर लिया, हो गया भाई, ना स्पीड दिया आपने फोन की। तो इसके लिए आप वाटरप्रूफ फोन केस ले लीजिए, अगर नहीं है तो फोन को अलग रख के जाइएगा गाड़ी वाड़ी में रख के, ठीक है। इसके अलावा रियूजेबल वाटर बॉटल ले जाएं तो और बेहतर है, उसमें क्या है आप एनवायरनमेंट की मदद करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे प्लास्टिक यूज को और रीयूज की तरफ जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। एंड ऑल्सो जो कल्चरल रूल्स हैं कतर के, उन्हें फॉलो कीजिएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर लेंगे। इतना तो यहाँ रह रहे कि आप जान ही गए, तभी आप मेरे को इतनी देर से सुन रहे हैं फॉर कायकिंग, सो प्लीज डू दैट। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा इवेंट है पर्पल आइलैंड में होगा और 8 से 30 सितंबर तक है, तो अभी से लेकर, अभी चल ही रहा है ऑलरेडी और ये 30 सितंबर तक है। दिस इज एट पर्पल आइलैंड कतर, शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक, उसके बाद तो आप खाना पीना शुरू कर देंगे, बट द एक्टिविटी इज फॉर 2 आवर्स, 4 से 6 बजे। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वन, सितंबर तक का टाइम है आपके पास। आपको लग रहा है अभी वेदर कुछ ज्यादा है, ही ओ थका रहा है, सो वेट फॉर इट, डोंट वरी, सितंबर तक आप इंतजार कीजिए, सितंबर में भी आप जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। एंड आई थिंक आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, एक मरतबा ऐसी चीजें कर लो भाई जो याद रहे, एंड दीज आर गुड स्टफ, यू नो, ये चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। देखो अगला इवेंट जो है, मैंने पिछली बार बताया था, एंड इट स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज ये मुझे बड़ा यूनिक लगा, एक ऐसा एडवेंचर जहां पर विजिटर्स एक जगह पर पहुंचेंगे एंड अपने अंदर का जो कलरिंग आर्टिस्ट है, इमेजिनेशन है, उसको सामने रखेंगे। आपको मौका मिलेगा कि आप कलरामा सिटी की तरफ पहुंचें और रीस्टोर करें कलर्स को, एक पूरे शहर को रंगों से भरने का मौका मिलेगा आपको। ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज जस्ट वे मोर अमेजिंग देन आई कैन एवर टेल यू। इसमें इमर्सिव एनवायरनमेंट्स हैं, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस लगाए गए हैं, लाइव स्टेजेस, परफॉर्मेंसेज हैं, एंड एक अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके सामने होंगे, बच्चों को जरूर ले जाएं, उनको उनसे मिलने का मौका मिलेगा और एक इंगेजिंग और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा पूरी फैमिली के लिए और ये सारे एजेस के लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए। और इसको डिजाइन ही इसके लिए किया गया है कि एक इमर्सिव वॉक थ्रू हो सारे अट्रैक्शंस आपके आसपास, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कंबाइन करता है इनोवेशन को, लाइट्स को, साउंड डिजाइन को, प्रोजेक्शन इफेक्ट्स को, मोशन एलिमेंट्स है उसके अंदर, एंड एक गेम प्ले, एक सॉर्ट ऑफ अ गेम दैट यू प्ले, एंड इट्स क्वाइट सरियल, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। पिछली बार जब मैंने बोला था तो मैंने देखा नहीं था, नाउ आई हैव सीन द वीडियो, एंड जो मल्टी सेंसरी एनवायरमेंट इन्होंने बनाया है वो भाई कतई इंगेजिंग है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ मैं कभी देख भी सकता हूं। ये आपके पास मौका है, विजिट दिस। ये वीकडे में होगा 2 से 10 रात के, और वीकेंड्स में होगा दोपहर के 2 से रात के 11, 1 घंटा ज्यादा। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन है कतारा कल्चरल विलेजेस, कतारा कल्चरल विलेज का साउथ पार्किंग एरिया जो है, वैसे तो बहुत इजी है, आपको वहाँ पे बैनर्स भी दिख जाएंगे इसके, एंड ये साउथ की तरफ जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जाना है आपको। ये इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ये 15 जुलाई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक रहने वाला है। मैं आपको ये समझाऊँ इस इवेंट के बारे में, एक और चीज बोलना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट नो मैं इसे ढंग से सेल कर पाया हूँ कि नहीं। आपके घर में बच्चे हैं, है ना, चलो बच्चे नहीं भी हैं, आप सिंगल हैं, आप यहाँ जाएंगे तो आपको कुछ रील्स से और इन सबसे दूर भागने का मौका मिलेगा, इस मौके को ना छोड़िएगा नहीं। काफ़ी इंटरेक्टिव वर्ल्ड बनाया है इन्होंने, बहुत मेहनत करी है, एंड आई थिंक इसको एक्सपीरियंस कीजिए आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमारी नज़रों के सामने होती हैं और हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, फिर वो रह जाती हैं। दिस इज समथिंग यू शुड एक्सपीरियंस, एंड इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, टेक योर किड्स विद यू, आई एम प्रीटी श्योर उनके लिए ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसी चीज़ें, ऐसा इवेंट जो है वो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है, उनके रिएक्शन टाइम को और ठीक करता है, तो प्लीज उसी के वास्ते यहाँ पे जरूर जरूर पहुंचे। सो 15 जुलाई से 15 सितंबर कतारा कल्चर विलेज साउथ पार्किंग, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक इवेंट है, कलरामा सिटी वहां पे आप पहुंचेगा एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मैं बता रहा हूँ, इसका वीडियो आप देख लीजिए एक बार ही जाके, आप कहेंगे कभी ठीक कह रहा है यार, यहाँ एक मरतबा तो जाना चाहिए, ये एक्सपीरियंस मत छोड़ो भाई, मैं खुद जाऊंगा और बहुत मजा आएगा मुझे पता है। Okay, moving on to the next thing on the list. Qatar 2026. जो अगली चीज है ये, इसके बारे में मैं हमेशा शुरुआत में बात करता हूँ लेकिन मैं अभी इस बारे में बात करूंगा, जो है स्टेकेशन को लेके। आप देखो भाई, बहुत सारी फैमिलीज विल फ्लाई आउट, वो चले जाएंगे कहीं ना कहीं, जिनके बाद ज्यादा रोकड़ा है वो यूरोप उड़ जाएंगे, और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ जिनकी छुट्टियां होंगी उनके साथ वो चले जाएंगे, और मेरे ख्याल में अभी छुट्टियां शुरू होने वाली होंगी, हो रही, चली रही होंगी, दे माइट हैव मूव टू सम अदर प्लेस कुछ वक्त के लिए, और कोई नानी के घर, कोई कहीं ना कहीं गया होगा। बट वो जो फैमिलीज हैं जो नहीं जा पाई हैं किसी वजह से, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली डू द स्टेकेशन थिंग, बिकॉज फैमिली को अगर स्टेकेशन के लिए आप ले जाएं तो जरूरी नहीं कि आप भाई महीने भर ही जाएंगे, हम तो वीकेंड्स पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों कह रहा हूं मैं गर्मी में स्टेकेशन करने के लिए, बिकॉज गर्मी में आपको बहुत सारे होटल बहुत सारे ऑफर्स देंगे, एंड दे काइंड ऑफ हैव थिंग्स जहां पर आपको समर्स के हिसाब से ऑफर मिलते हैं, एंड किड्स रियली रियली एंजॉय दीज थिंग्स। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि अरे टिकट्स बुक करो, फलाना करो, डिमकाना करो, तो आराम से हो जाता है। और बहुत सारे होटल्स हैं जिनके रूम्स भी बहुत अच्छे रेट में, बजट फ्रेंडली हैं, एंड उनका जो सिस्टम है, स्पेशली कतर की तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो होटल्स हैं दे नॉट लाइक अदर रेगुलर होटल्स हैं, सब कुछ सेम ही तो है, वैसे वाली फीलिंग नहीं है। यहाँ पे देर आर वेरी वेरी क्रिएटिव होटल्स, यू नो मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट अ स्पेसिफिक होटल, बट देन वकरा में है एक, बड़ा ही क्रिएटिव है भाई, बैम्बू की रूफ लगा रखी है उन्होंने, बढ़िया गार्डन प्ले एरिया है, देर आर होटल्स जहाँ पर इन्फिनिटी पूल है, देर आर होटल्स जहाँ पे पूल का सिस्टम ही अलग है, और बहुत सारे रिजॉर्ट्स इतने कमाल के स्टेकेशन के लिए जहाँ पे आपको प्राइवेट पूल मिलता है, व्यूज मिलते हैं शानदार, तो जाइए। एंड इफ इट इज नॉट योर थिंग, आपको तो व्यूज चाहिए है ना, समंदर का व्यूज नहीं, आपको सोशल मीडिया के व्यूज चाहिए, तो उसके लिए भी सही सिस्टम है। आप जाइए, अपने अंदर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बाहर निकालिए, इन जगहों से डेफिनेटली मदद मिलेगी। सो देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस जहां पे आप जा सकते हैं, मैं कोई एक बता के किसी एक को प्रमोट नहीं करूंगा, जस्ट चेक इट आउट। आप विजिट कतर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको नजर आ जाएंगे कि होटल किस हिसाब से चल रहे हैं। बुक योरसेल्फ होटल या अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, एंड एंजॉय प्लीज। गर्मी का मतलब ये नहीं घर में बैठे रहें, आप हमारी तरह मत बनिए, प्लीज एंजॉय कीजिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट, Qatar 2026। अगला जो इवेंट है वो कतर म्यूजियम से जुड़ा हुआ है। अब कतर म्यूजियम के बारे में आपको पता है कि 29 अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं 47th एनुअल टेली अवार्ड्स में, और इसका मतलब ये होता है कि कतर म्यूजियम इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टीजियस कंपेटिटर, जिसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसे रिकग्नाइज किया गया फॉर द एक्सेलेंस इन वीडियो एंड टेलीविजन अक्रॉस द स्क्रीन। कतर म्यूजियम ने एक खुद के स्टेटमेंट में कहा है कि जो ग्रोइंग इंटरनेशनल रिकग्निशन है डिजिटल स्टोरी टेलिंग की, उसमें वो आगे रहना चाहते हैं, और जो कमिटमेंट है कि कतर के कल्चर को, जो कल्चरल नैरेटिव है उसको ग्लोबल किया जाए, उस कोशिश में कतर बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। कतर ने अपने तमाम म्यूजियम्स को बहुत अच्छे से तैयार किया, और ऐसे म्यूजियम्स हैं जो आपसे बात करते हैं, यू फील लाइक यू आर इमर्स्ड इन देम, यू काइंड ऑफ इंटरैक्ट विद देम। ऐसे ही नहीं मिल जाते भाई इतने सारे अवार्ड्स, तो इन तमाम चीजों के लिए आप तमाम अलग अलग म्यूजियम्स में जाइए, एंड यू विल लव ऑल ऑफ देम। जो कतर के MIA है वहाँ से आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे, इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर आप कतर नेशनल म्यूजियम जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेक्टिविटी मिलेगी, एंड स्पेशली अगर कोई आपके आपके साथ कोई घूमने के लिए आया, कोई नया नया है कतर में, प्लीज़ उनको लेके जाइए, बिकॉज ये जो म्यूजियम्स है कतर के, हर म्यूजियम में एक खास बात आपको मिलेगी, एंड कभी भी कतर ने अपने म्यूजियम्स को नज़रअंदाज नहीं किया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस थिंग अबाउट कतर, एवरीथिंग is kept very nicely, और कतर अपनी चीज़ों को सीरियसली लेता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि अपने हेरिटेज को संभाल के रखा है कतर ने हमेशा से। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई नो बहुत सारे लोगों को मैचेस देखने, तो देखो भाई स्क्रीनिंग बहुत सारी जगहों पर है, ऑलमोस्ट हर होटल में है पहली बात तो, और अगर आपको स्क्रीनिंग देखनी है तो मॉल ऑफ कतर भी जा सकते हैं, मॉल ऑफ कतर जैसी जगहों पर तो आपको कुछ देना वेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जो इसी स्क्रीन अंदर लगी हुई है आप मॉल ऑफ कतर में बैठ जाइए, और ये 11 जून से 19 जुलाई तक का सिस्टम है, वॉच एनी मैच यू वॉन्ट, तमाम मैचेस आपको वहाँ पे मिलेंगे, एंड आराम से बैठ के वहाँ पे मैचेस देख सकते हैं। मैं तारीख फिर बता देता हूँ, जब भी शो सुन रहे होंगे आप तो थोड़ा लेट हो चुका होगा, मगर अगर कतर मॉल ऑफ कतर में नहीं मिले तो अलग अलग दूसरे मॉल्स में भी आपको मिलेगा फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस। दोहा फेस्टिवल सिटी चले जाइएगा, वहाँ पे 19 जुलाई तक है एंड जो मैचेस हैं वो स्क्रीनिंग के लिए वो रखे गए हैं। कतर के स्पेशल मैचेस वहाँ पर होंगे, इन तमाम जगहों पर आपको मिल जाएंगे। सो ट्राई इट आउट, क्योंकि एक जगह नहीं है, बहुत सारे होटल्स में अलग अलग स्क्रीनिंग सिस्टम है। इवन मुशारिफ जब आप जाएंगे तो मुशारिफ में भी आपको नजर आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का मामला। बट एक चीज जाने से पहले विच इज विजिटेड बाय लॉट ऑफ पीपल, और वो है विजिट कतर का फैन जोन। अगर आप नहीं गए या फिर आप पिछले वाले वर्ल्ड कप के फैन जोन में गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि फैन जोन कितना भारी बनाता है कतर। देयर इज नो कंपटीशन, कोई सानी नहीं है भाई कतर का इस मामले में। तो लोकेशन है अलमहा आइलैंड, ठीक है, और 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक यहां पर फैन जोन रखा गया है। इट्स अ ब्यूटिफुल फैन जोन, और मुझे पता है कोई ना कोई इवेंट बहुत जल्दी होगा। फिलहाल यहाँ पे आप जा सकते हैं इस फैन जोन में। इसका जो कॉल टू बुक टिकट्स का सिस्टम है आप देख सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वॉक इन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है ऐसा कुछ। आप आराम से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अलमहा आइलैंड से, वहाँ पे भी आपको वहाँ पे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। शाम के 6 से 7 बजे तक की फैन जोन एक्टिव है, एंड शाम के 6 से अगले दिन की सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, शाम के 6 से अगले दिन की सुबह तक ये एक्टिव रहेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फैन जोन बहुत स्ट्रिक्ट है एज लिमिट को लेकर। इट इज 18 प्लस ओनली, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो विजिट कतर के जो फैन जोन है इसमें सब मिलेगा आपको, सारे के सारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वर्ल्ड कप 2026 के, वो सारे के सारे आपको एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे अलमहा आइलैंड में। एंड इसका जो लाइवली एटमॉस्फेयर है वो वैसे भी आपको बांध के रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा मैच आपने ढूंढ लिया कि ये मैच तो भाई मुझे बढ़िया जगह जाके देखना है, एकदम मौज आनी चाहिए, तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग, प्लस यू विल गेट ऑल द वाइब्स दैट यू आर लुकिंग फॉर जो यहाँ पर थी जब कतर में मैचेस हो रहे थे। एंड आई मिस दोज वाइब्स मैन, क्या क्या मजा आ रहा था यार, वो भी दिन थे, है ना। तो इन तमाम जगहों पर फोकस करते हुए मैं आपसे एक और चीज कहूंगा जहां पर फोकस करने की जरूरत है, और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। आप आएं और बताएं, हो सकता है कोई ऐसा इवेंट है जो हमने ना कवर किया हो, जो हमसे छूट गया हो, एंड आई वांट कि आप हमें बता दें। आप बताते हैं तभी मामला आगे बढ़ता है। आप याद होगा पिछली बार मैंने एक इवेंट बताया था आपको जो बच्चों के लिए था, वो मुझसे मिस हो जाता है, लेकिन किसी ने मुझे बताया उसके बारे में, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा। और ये इवेंट जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ ये 30 जून तक है। ओके, रेडी है? हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बच्चों का मामला है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, टेक देम टू समर स्प्लैश एट मैरियल वाटर पार्क। बहुत शानदार वाटर पार्क है और 1 जून से 30 जून तक यहाँ पे एक्टिविटीज रखी गई हैं। टिकट और रजिस्ट्रेशन भूल जाइए, देयर इज नो टिकट रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पे आप क्लियरली जा सकते हैं। समर स्प्लैश जो है एक मंथ लॉन्ग फैमिली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बनाया गया है जो कि मैरियल वाटर पार्क बीच पर है। 1 से 30 जून तक अभी भी टाइम है। यहाँ पे निकोलोडियन का जो निकोलोडियंस के कैरेक्टर्स हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, इसके अलावा ग्लोबल की बात आती है तो पॉ पेट्रोल, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, ऐसे ऐसे इवेंट्स रखे गए हैं जो काफ़ी इमर्सिव हैं और एंटरटेनिंग है बच्चों के लिए। एंड यहाँ पर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ भी हैं, इसी के साथ लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, और एक ही डेस्टिनेशन में पहुंच के सब कुछ मिल जाए फैमिली को, और क्या चाहिए। ऊपर से गर्मी की कोई टेंशन नहीं है, इट इज़ ऑल कवर्ड, सो यू विल इन्जॉय इट इमेंसली। कुछ एरियाज हैं जो अनकवर्ड हैं, मगर वो तभी एक्टिव होते हैं जब ज़्यादा गर्मी ना हो। यहाँ पर इंटरेक्टिव फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थीम्ड जोन्स हैं, बीच सॉकर है भाई साहब, वॉलीबॉल है, सैंड प्ले एरियाज हैं बच्चों के लिए, माई फेवरेट वाटर गन बैटल्स, और साथ में वाटर इन्फ्लेटेबल फ्लोट्स हैं जो पूल पे पड़ी हुई नजर आ जाएंगी आपको, और थीम्ड टेंट्स हैं और बीच गेम्स है। पॉ पेट्रोल का अलग से जोन बनाया गया है, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स का अलग से जोन बनाया गया है, और प्रायोरिटी जो है वो 4 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में है। ये अलग एक्सेस है इसका, इसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग है शाम के 6 से रात के 11, और तारीख 1 जून से 30 जून। On that very note, Qatar 2026 से, this is Duha Wala Kabir signing off, social media handles FM 107 Qatar। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मासलाम।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है।

0: जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी, देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आरजे सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसा शो जो आपको ले जाता है टाइम और स्पेस के शानदार सफर पर। यहां हम एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री के राज और वो मिस्ट्रीज जो अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। हर एपिसोड एक ऑडियो एडवेंचर है जो आपकी सोच को जगाता है और नॉलेज को बनाता है फन और एक्साइटिंग। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होता है आपका सफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी की दुनिया में। साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर में जो पूरी तरह से सहरा में छुपा हुआ है, एक शहर जो अपनी सैंडस्टोन क्लिफ्स के लिए मशहूर है और जहां की हिस्ट्री हमेशा से रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को फैसिनेट करती है। वेलकम टू आवर शो जहां हम अनकवर करेंगे पेट्रा, द हिडन सिटी ऑफ जॉर्डन। साथियों, से पहले कि मैं आपको पेट्रा की सैर कराऊं, मैं चाहूंगी कि आप कुछ बातें पेट्रा के बारे में जान लें। आज के सफर में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जिसे दुनिया द हिडन सिटी के नाम से भी जानती है। जी हाँ, ये है जॉर्डन का मशहूर शाहकार पेट्रा। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उनके अंदर नक्काशी करके बनाया गया पूरा का पूरा शहर, वो भी 2000 साल पहले। नबातींस नाम की तहजीब ने इस शहर को पत्थरों में तराशा और आज भी ये दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है। पेट्रा को देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने हॉलीवुड का कोई सेट डिजाइन किया हो, यानी लंबी लंबी सुर्ख रंग की दीवारें, छुपी हुई सुरंगें और सबसे मशहूर ट्रेजरी जो देखने में एक बड़ा ताजमहल जैसा लगता है। लेकिन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है। ये शहर कभी ट्रेड और कल्चर का सेंटर था, लेकिन फिर किस्मत की गर्दिश में मिट्टी और रेत के नीचे छुप गया। आज पेट्रा सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि एक जिंदा दास्तान है जो ये बताती है कि इंसान इमेजिनेशन और मेहनत से किस हद तक कमाल कर सकता है। तो तैयार हो जाइए एक मैजिकल सफर के लिए जहां हम खोलेंगे पेट्रा के राज, यानी उस शहर के बारे में बात करेंगे जो पत्थरों में छुपकर भी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्थर सुर्ख, गुलाबी और ऑरेंज शेड्स में चमकते हैं और धूप के साथ साथ रंग बदलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइव कलर शो जैसा। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग अल खजने यानी दी ट्रेजरी है और असल में ये एक मकबरा था, लेकिन लोग काफी अरसे तक ये समझते रहे कि इसके अंदर कोई खजाना या सोना छुपा है। पेट्रा 700 साल तक दुनिया से गुम रही जब तक 1812 में एक स्विस एक्सप्लोरर जिसका नाम था जॉन ब्रोगार्ट ने इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया। मतलब सेंचुरीज तक ये लिटरली हाइड एंड सीक खेलती रही। हॉलीवुड भी इस शहर का दीवाना है। इंडियाना जॉन्स एंड द लास्ट क्रूसेड 1989 का क्लाइमेक्स यही ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने फिल्माया गया था। साथियों, नबातींस जो पेट्रा के बिल्डर्स थे पानी के बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने रेगिस्तान के दरमियान टनल्स और स्टोरेज सिस्टम्स बनाए और हैरानी की बात यह है कि वो आज की मॉडर्न प्लम्बिंग के बराबर स्मार्ट थे। पेट्रा को 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया और तब से ये दुनिया भर के ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट का किंग बन गया। साथियों, पेट्रा के अंदर की सुरंगों और खुली चट्टानों की वजह से यहाँ पर अगर आप आवाज लगाएं तो आपकी आवाज गूंजती है। अगर आप यहाँ जाकर गाना गाएं या हेलो हाय ही चिल्लाएं तो साउंड बिल्कुल नेचुरल इको इफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे पेट्रा ने अपने वाटर सिस्टम्स और रॉक कट आर्किटेक्चर से सेंचुरीज पुरानी लाइफ को प्रिजर्व किया, कैसे डेली लाइफ, ट्रेड और कल्चरल इंटरैक्शंस पेट्रा की स्ट्रीट्स और टाउन्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेकुलेटिव इमेजिनेशन के जरिए हम

पास्ट को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टाइम ट्रेवल जर्नी को और चलते हैं एक ऐसे सिविलाइजेशन में जो सेंचुरीज पुरानी है लेकिन अब भी जिंदा है हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन में। तो जरा सोचिए, आप फर्स्ट सेंचुरी BCE के पेट्रा की स्ट्रीट्स में चल रहे हैं, जॉर्डन के साउदर्न डेजर्ट में, एक शहर जो नबातियन सल्तनत का हब था, अपने खूबसूरत रोज कलर्ड सैंडस्टोन क्लिफ के बीच बस गया है। उनकी गलियों में ट्रेडर्स अपने गुड्स डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी इंसेंस, स्पाइसेस और सिल्क्स के कैरवान्स एक से दूसरे रूट पर जा रहे हैं। बेकर्स और क्राफ्टमैन अपने वर्कशॉप्स में बिजी हैं और बाकी लोग अपने विलास और कोर्टयार्ड्स में डेली रूटीन में मशगूल हैं। साथ ही आपको ये याद दिलाती चलूं कि पेट्रा का आर्किटेक्चर एक मार्वल है, जहां बिल्डिंग्स और टोम्स डायरेक्टली क्लिफ्स में कार्व की गई हैं। अल खजाने, द ट्रेजरी और अद्देर यानी मोनेस्ट्री जैसे मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं कि नबातियंस के पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स थी। स्ट्रीट्स और प्लाजास बहुत ही एहतियात से प्लान किए गए, जहां सोशल गैदरिंग्स, ट्रेड और सिविक गैदरिंग्स हुआ करती थीं। नबातियंस ने वाटर मैनेजमेंट में भी अपनी महारत दिखाई, रेन वाटर कैप्चर और स्टोरेज के लिए डैम्स, सिस्टर्न्स और एक्वाडक्ट्स बनाए गए। ये एडवांस सिस्टम इस सहरा में बने शहर में सस्टेनेबल लाइफ पॉसिबल करते हैं। साथियों, पेट्रा में हर स्ट्रीट, टॉम और आर्टिफैक्ट एक स्टोरी बयान करता है। नबातियंस के फ्रिस्कोस और कार्विंग्स में डोमेस्टिक चोर्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस और ट्रेड एक्टिविटीज नजर आती हैं। ज्वेलरी और पर्सनल आइटम्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेड और इकोनॉमी भी हाईली ऑर्गेनाइज थी। साथियों, पेट्रा दुनिया के उन चंद शाहकारों में से एक है जो इंसान की क्रिएटिविटी और नेचर की ब्यूटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। 2000 साल पुराना ये शाहकार एक रेगिस्तानी ओएसिस था, जहां से ट्रेड कैरवान्स गुजरते थे और यहां के लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग और इमेजिनेशन से पत्थरों में जिंदगी बसाई। साथियों, पेट्रा दुनिया का एक हिडन मास्टरपीस है। ये शहर सिर्फ पत्थरों का शाहकार नहीं बल्कि इंसानी क्रिएटिविटी, एंशिएंट इंजीनियरिंग और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हर कॉर्नर, हर कैनियन और हर फसाद अपनी कहानी कहता है और ये कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने इस शहर को रेगिस्तान के बीच जिंदा कर दिया। जरा सोचिए, एक शहर जो 2000 साल पहले बनाया गया, जहां हर इमारत और हर स्ट्रक्चर मेटिकुलसली कार्व्ड है सिर्फ हथियारों और दिमाग की ताकत से। आज भी पेट्रा का राज साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है। हर कैनियन और पत्थर के नीचे छुपी हुई केव्स, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स आपको एक टाइम ट्रेवल का एहसास देती हैं, जैसे आप सदियों पहले वहां खड़े हैं। और ये सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं, पेट्रा एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ के नेचुरल फॉर्मेशंस, हिडन वैलीज और सराउंडिंग क्लिफ्स हर विजिटर को एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का इनविटेशन देती हैं। हर टर्न पर नए वंडर्स छुपे हैं, यानी छोटी वाटरफॉल्स, सीक्रेट केव्स और वाइल्ड लाइफ जो डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। ये शहर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हम ह्यूमन इंजेन्यूटी और नेचर के साथ एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हर पत्थर, हर कैनियन और हर इमारत एक पुराने दौर के सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज खोलने के लिए आपका इंतजार कर रही है। पेट्रा का हिडन ट्रेजर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि दिल और इमेजिनेशन के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। ये शहर आपको इंस्पायर करेगा, हैरान करेगा और हर पल एक नई डिस्कवरी का एहसास भी देगा। साथियों, पेट्रा सिर्फ उन मशहूर कार्व फसाद्स तक लिमिटेड नहीं जो हर टूरिस्ट गाइड बुक में दिखाए जाते हैं। इस शहर के अंदर कई छुपी हुई केव्स और नेचुरल वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जो डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट के बीच सीक्रेट ओएसिस जैसे लगते हैं। कुछ केव्स इतनी परफेक्टली छुपी हुई हैं कि सेंचुरी तक एक्सप्लोरर्स इन्हें डिस्कवर नहीं कर पाए। इन केव्स की वॉल्स पर अब भी एंशिएंट नेबेटियन इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स मिलती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये लोग ना सिर्फ मास्टर इंजीनियर्स थे, बल्कि उनके अंदर एक आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर का टैलेंट भी छुपा हुआ था। हर केव एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो आपको 2000 साल पीछे ले जाता है और दिखाता है कि कैसे इंसानी क्रिएटिविटी और नेचर एक साथ मिलकर एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाते हैं। और तो और साथियों, पेट्रा का डेजर्ट इकोसिस्टम अपनी तरह काफी फैसिनेटिंग है। यहाँ आपको हाइरिक्स और इल्यूसिव डेजर्ट फॉक्सेस मिल सकते हैं, जो ज्यादातर टूरिस्ट की नजरों से दूर रहते हैं। ये क्रिएचर्स अपनी चालाकी और नेचुरल कैमोफ्लेज की वजह से रेगिस्तान के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। कभी कभी आप इन्हें ट्रेजरी के आसपास या मोनेस्टरी के क्लिफ्स पर देख सकते हैं और ये मोमेंट्स एक नेचुरल सरप्राइज और एडवेंचर का एहसास दिलाते हैं। पेट्रा का वाइल्ड इकोसिस्टम सिर्फ शहर की जिंदगी को कंप्लीट नहीं करता, बल्कि इसे एक हिडन ट्रेजर और लिविंग म्यूजियम का स्टेटस देता है, जो आपको नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड देता है। साथियों, नबेतियंस के पास डेजर्ट की हर्बल नॉलेज सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो ऐसे प्लांट्स और श्रब्स यूज करते थे जो बिना ज्यादा पानी के सरवाइव कर सकते हैं और मेडिसिंस, डाइज, इवन फूड सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये लोग नेचर के साथ इतनी इंटेलिजेंटली कोलैबोरेट करते थे कि हर प्लांट को एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता था। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और बोटेनिस्ट्स ने

ऐसे यूनिक हर्ब और प्लांट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पेट्रा के हार्श सॉइल और एक्सट्रीम क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, और ये हमें ये दिखाता है कि ये एंशिएंट लोग कितने स्मार्ट और रिसोर्सफुल थे भाई। इनके ये प्लांट सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं थे बल्कि नबातियंस की साइंटिफिक और कल्चरल नॉलेज का लिविंग प्रूफ भी थे। साथियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नबातियंस ने सिर्फ पानी का एडवांस सिस्टम नहीं बनाया बल्कि अपनी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से सन डायल्स और नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम्स भी डिजाइन किए। जी बिल्कुल, पत्थरों के स्ट्रक्चर्स और केव ओपनिंग्स को इस तरह केयरफुली अलाइन किया गया था कि शहर के अंदर का टेम्परेचर काफी स्टेबल रहता था, यानी डेजर्ट के एक्सट्रीम हीट और बोन चिलिंग कोल्ड के बावजूद भी यहाँ का टेम्परेचर काफी स्टेबल रहता था। ये एक ऐसी एंशिएंट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का प्रूफ है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी इंस्पायरिंग है। हर कॉर्नर और हर फसाद में उनकी प्रिसिशन और प्लानिंग की निशानियाँ दिखाई देती हैं, जो ये साबित करती हैं भाई कि नबातियंस सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स भी थे जो नेचर और एनवायरनमेंट को समझकर स्मार्ट सॉल्यूशंस क्रिएट किया करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा के हाइकिंग ट्रेल्स सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी का जरिया नहीं बल्कि एक एडवेंचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड भी है। साथियों, यहाँ का सबसे मशहूर ट्रेल अल्सडेल ट्रेल है जो आपको एक हिडन व्यू पॉइंट तक ले जाता है जहाँ से आप वादी और सराउंडिंग माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेल के रास्ते में हर टर्न पर आपको एंशिएंट नबातियन कार्विंग्स, इंस्क्रिप्शंस और छोटे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपको एक टाइम ट्रेवल का एहसास देते हैं जैसे आप 2000 साल पहले वहाँ ही खड़े थे। इस हाइकिंग एक्सपीरियंस का एक और फन एस्पेक्ट है कि ट्रेल्स के नैरो पैसेजेस, रॉकी क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स आपके एडवेंचर इंस्टिंक्ट को चैलेंज करते हैं। हर स्टेप पर डेजर्ट की खुशबू, पत्थरों का टेक्सचर और हवाओं की सरगोशियां आपकी सेंसेस को एंगेज रखते हैं। ये ट्रेल्स सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इमर्सिव जर्नी है जहां आपका नेचर और हिस्ट्री के साथ ताल्लुक गहरा होता जाता है। और ये सिर्फ अल्सडेल ट्रेल्स तक लिमिटेड नहीं है, पेट्रा में और भी हिडन ट्रेल्स हैं जो आपको छुपी केव्स, नेचुरल व्यू पॉइंट्स एंड इवन एंशिएंट वाटर चैनल्स तक ले जाते हैं। हर ट्रेल की अपनी एक यूनिक स्टोरी है और अपना ही एक अलग सीक्रेट है जो सिर्फ एक्सप्लोर करने वालों को ही मिलता है। यानी यहाँ हाइकिंग के साथ साथ आप एक हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट का भी हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ एक्सकेवेशंस और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से ये साबित हुआ है कि पेट्रा सिर्फ एक रेजिडेंशियल या टॉम सिटी नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और वाइब्रेंट ट्रेड हब भी था। शहर के बीच में छोटे और बड़े मार्केट्स मौजूद थे जहाँ ग्लास, स्पाइसेस, इंसेंस और रेयर लग्जरी आइटम्स एक्सचेंज होते थे। ये मार्केट सिस्टम इस बात का सबूत है कि नबातियंस न सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्टिस्ट थे बल्कि मास्टर ट्रेडर्स भी थे जो रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड वर्कर्स से जुड़े हुए थे। मार्केट के रिमेन्स से हमें ये भी पता चलता है कि पेट्रा के लोग इकोनॉमिक प्लानिंग और कॉमर्स में काफी एडवांस थे क्योंकि हर स्टॉल, शॉप और ट्रेडिंग एरिया केयरफुली डिजाइन किया गया था ताकि गुड्स एफिशिएंटली स्टोर और सेल किए जा सकें। इससे ये भी समझ आता है कि पेट्रा सिर्फ एक आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं था बल्कि एक कमर्शियल पावर हाउस भी था भाई। यहाँ हर प्रोडक्ट की अपनी ही स्टोरी और ओरिजिन मौजूद था और ये मार्केट ट्रेल्स अब भी टूरिस्ट के लिए एक्सप्लोर करने लायक हैं, जहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैरवांस और मार्शंस यहाँ आते थे और अपनी एक्सोटिक गुड्स ट्रेड किया करते थे। पेट्रा का ये ट्रेडिंग हेरिटेज शहर के कल्चरल और इकोनॉमिक रिचनेस को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है और दिखाता है कि एंशिएंट नबातियंस के लाइफस्टाइल कितना डायनेमिक और कॉस्मोपॉलिटन था। साथियों, और तो और, पेट्रा के कुछ ओपन कोर्टयार्ड्स और हाई क्लिफ्स इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किए गए हैं कि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए आइडियल थे। नबातियंस स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल इवेंट्स को

ऑब्जर्व करते थे, जो उनके टाइम कीपिंग, सीजनल प्लानिंग और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी था। हर ऑब्जर्वेशन पॉइंट और क्लिफ केयरफुली सेलेक्ट किया गया था ताकि सनराइज, सनसेट और स्पेसिफिक स्टार अलाइनमेंट्स को एक्यूरेटली देखा जा सके। ये सब कुछ ये बताता है कि पेट्रा के लोग साइंस, मैथ्स और आर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखते थे। जरा इमेजिन कीजिए, एक डेजर्ट के बीच में जहाँ एक्सट्रीम हीट कंडीशंस होती हैं, लोग इतने एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स और टेक्निक्स डिजाइन करते थे, हैरत की बात है। पेट्रा के एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज ये भी हाईलाइट करते हैं कि ये शहर सिर्फ आर्किटेक्चुरल मार्वल नहीं बल्कि एक सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी था। हर रॉक कार्विंग और कोर्टयार्ड की डिजाइन में उनका स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज के साथ डीप कनेक्शन नजर आता है, जो हर विजिटर को इंस्पायरेशन का एहसास दिलाता है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, आज की टूरिस्ट पेट्रा को सिर्फ हिस्टोरिकल साइट के तौर पर नहीं बल्कि एडवेंचर हब के तौर पर भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, कैनियनियरिंग और ट्रेकिंग का मजा लिया जा सकता है। वैसे यहाँ पे सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है सिक। ये एक नैरो और विंडी कैनियन है, जहाँ से गुजरते हुए आपको पत्थरों की ऊंची दीवारें और नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस का क्लोजअप व्यू मिलता है। और हाँ, यहाँ आपको हर टर्न पर एंशिएंट कार्विंग्स और जियोलॉजिकल वंडर्स नजर आते हैं, जो आपके अंदर के एक्सप्लोरर को और भी एक्साइट कर देते हैं। साथियों, क्लिफ्स और एलिवेटेड ट्रेल्स पर चलना एक एड्रेनलिन फिल्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ हर स्टेप पर डेजर्ट की हार्श ब्यूटी और हिस्टोरिकल ऑरा आपको सराउंड करती है। पेट्रा एडवेंचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड लर्निंग ऑफर करता है, यानी एक ही सफर में आप एंशिएंट आर्किटेक्चर, डेजर्ट लाइफ और नेचुरल फॉर्मेशंस को एंजॉय करते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा डेयरिंग फील कर रहे हैं तो कैनियन के छोटे हिडन पैसेजेस और स्टीप रॉक फेसेस एक्सप्लोर करना आपके लिए एक वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होता है। हर एडवेंचर एक्टिविटी के साथ आप प्रैक्टिकली पेट्रा के सीक्रेट और हिडन कॉर्नर्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, जो आपको इस हिडन सिटी के साथ एक पर्सनल और इमर्सिव कनेक्शन फील कराता है। साथियों, मजे की बात यह है कि कुछ व्यू पॉइंट से आप यहाँ का पूरा सिटी पैनोरामा में देख सकते हैं, जो सनराइज और सनसेट के वक्त इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। और तो और, मोनेस्ट्री के पास कुछ नेचुरल पूल्स हैं, जो डेजर्ट के बीच सरप्राइजिंग ब्यूटी ऑफर करते हैं। और हाँ, कार्व वॉल्स पर एंशिएंट ग्रेविटीज और कार्विंग्स देखकर यूं लगता है कि यहाँ के लोग अपनी स्टोरीज और मैसेजेस छोड़कर गए हैं। यूं समझ लें कि एक तरह का अर्ली सोशल नेटवर्क। तो साथियों, ये कहना तो बिल्कुल गलत ना होगा कि पेट्रा सिर्फ कार्व्ड फसाद्स और ट्रेजरी नहीं है। ये एक जिंदा शहर है, जहाँ डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ, साइंस और ह्यूमन क्रिएटिविटी एक साथ मिलते हैं। यहाँ के हिडन केव्स, नेचुरल वाटरफॉल्स, हर्बल प्लांट्स और सन अलाइन कोर्टयार्ड्स सब एक कहानी कहते हैं। एक कहानी जो हर विजिटर के लिए इंस्पायरिंग और एडवेंचरस है। भाई, पेट्रा का असली वंडर ये है कि ये हर दफा नए राज दिखाता है भाई। और हाँ, हर एक्सप्लोरेशन एक नई डिस्कवरी बन जाती है। अगर आप जॉर्डन का सफर प्लान कर रहे हैं तो पेट्रा को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये शहर आपको हर पल हैरान और फैसिनेटेड रखेगा। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं पेट्रा के गहरे डेजर्ट क्लिफ्स के अंदर, जहाँ एक पुरानी और खोई हुई सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कि पेट्रा सिर्फ पत्थरों में कार्व बिल्डिंग्स का शहर नहीं है। ये लोगों की जिंदगी, उनकी रूटीन, उनके क्राफ्ट और सोशल इंटरेक्शन का जिंदा रिकॉर्ड भी है। हर टूम, आर्टिफैक्ट और इंस्क्रिप्शन एक कहानी बताती है, जो आपको 2000 साल पीछे लेकर जाती है। शुरू करते हैं पेट्रा के टूम से, जो कि फेमस है अल खजाने यानी ट्रेजरी से। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंटल फसाद नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो नबातियन इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का प्रूफ देता है। यहाँ की हर कार्विंग और डेकोरेटिव एलिमेंट सिंबल और स्टेटस की रिफ्लेक्शन करता है। स्कॉलर्स स्पेकुलेट करते हैं कि ये टॉम सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के लिए नहीं था बल्कि रिलीजियस और सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस भी रखता था, लेकिन इसका एग्जैक्ट पर्पस अब भी पार्शियली मिस्टीरियस है। साथियों, अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की, यानी टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी और कॉइंस की, जो पेट्रा की डेली लाइफ का विंडो खोलती हैं। इनकी पॉटरी को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे पानी स्टोर किया करते थे और ट्रेड नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट होते थे। ज्वेलरी पीसेस और पर्सनल आइटम्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि सोशल आइडेंटिटी और वेल्थ का सिंबल भी थे भाई। कुछ आर्टिफैक्ट्स में रिपेयर के साइंस हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि वो आइटम्स सेंटिमेंटल और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ट्रेजर किए गए थे। अच्छा, यहाँ की डेली लाइफ की मिस्ट्रीज भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। पेट्रा के वाटर चैनल्स और ट्रेसेस इंडिकेट करते हैं कि नबातियंस ने वाटर मैनेजमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप की थी।
इस डेजर्ट सिटी में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम और अंडरग्राउंड चैनल्स के जरिए लोग अपनी जरूरतों और एग्रीकल्चर को मैनेज किया करते थे। ये इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक रेयर एग्जाम्पल है जो मॉडर्न अर्बन और डेजर्ट प्लानिंग के लिए भी एक इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब थोड़ा स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर की बेसिस पर वर्चुअली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पेट्रा की स्ट्रीट्स और प्लाजास को। जरा इमेजिन कीजिए, मार्शियंस अपने गुड सेल कर रहे हैं, क्राफ्टमैन अपनी स्किल्स डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, लोग टेरेसेस और कोर्टयार्ड्स में सोशलाइज कर रहे हैं और बच्चे एज यूजुअल गेम्स में बिजी हैं। ये इमर्सिव रिकंस्ट्रक्शन हमें पेट्रा की वाइब्रेंट और इंटरैक्टिव सोसाइटी का एक्सपीरियंस देते हैं। टूम्स और आर्टिफैक्ट से हमें उनके रिचुअल्स और बिलीव्स का आइडिया मिलता है। हर टूम का डिजाइन, कार्विंग और स्टैचूज इंडिकेट करते हैं कि लोग क्या बिलीव्स रखते थे। साथियों, एक्सकेवेशन से पता चलता है कि ये सिटी रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड का हब था, जहाँ ऑलिव ऑयल, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और लग्जरी गुड्स का स्टोर और एक्सचेंज होता था। ये ट्रेड नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज थे, जो नबेटियंस की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे। आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर की बेसिस पर हम एक स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर फ्यूचर में VR और AI के थ्रू डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट हो तो कितना मजा आएगा भाई। यानी स्ट्रीट्स, प्लाजाज और टूम्स और इंटीरियर्स फुली इंटरैक्टिव और रियलिस्टिक फॉर्म में। हम वर्चुअल पेट्रा में वॉक कर सकते हैं, टेरेसेस और वाटर चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और तो और आर्टिफैक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की स्टोरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पास्ट और प्रेजेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड होगा, इमेजिनेशन और हिस्ट्री का एक इमेंसिव सफर। पेट्रा के लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिफैक्ट्स, टूम्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें डेली लाइफ, कल्चर प्रैक्टिसेस, इकोनॉमी और सोशल इंटरेक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। हर आर्टिफैक्ट और स्ट्रक्चर एक नैरेटिव होल्ड करता है जो कि एक सिविलाइजेशन के इमोशंस, चॉइसेस और रूटीन को प्रिजर्व करता है। ये सेंचुरीज के बाद भी हमारी क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग को एंगेज करता है। साथियों, अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर पेट्रा के मिस्टीरियस और डेजर्ट क्लिफ्स के सीक्रेट्स को हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और साइंस के लेंस से देखते हैं, तो क्या होता? क्या होता अगर हमारी मॉडर्न AI और VR स्टिमुलेशंस को यूज करके उन मोमेंट्स को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते

0: या फिर सोचिए एक टाइम ट्रेवल सिनेरियो जहां हम फर्स्ट सेंचुरी एडी के पेट्रा में वॉक कर रहे हैं ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बीच में और मॉन्यूमेंट्स और टूम्स के एग्जैक्ट मोमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यही तो फ्यूचर फ्लैश का मजा है इमेजिनेशन और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड अब जरा आप सोचिए अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो हम इंस्टेंटली निबैटियन सिविलाइजेशन के पीक पर जा सकते हैं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोग कैसे ट्रेड करते थे क्राफ्टमैन कैसे काम किया करते थे और उनकी डेली लाइफ रूटीन में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी भाई हम ये भी देख सकते कि टेरेसेस और वाटर चैनल्स का यूज कैसे होता था और डेजर्ट सर्वाइवल के लिए लोग कैसे अडेप्ट करते थे ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को सेंचुरीज के स्पेकुलेटिव थ्योरी से काफी आगे ले जा सकती हैं। दिमाग में तो ये भी सवाल आता है साथियों क्या होता अगर मॉडर्न डिजास्टर रिस्पांस और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पेट्रा में अवेलेबल होती इमेजिन कीजिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इमरजेंसी शेल्टर्स और प्रोटेक्टिव बैरियर्स शायद उनके मॉन्यूमेंट्स और टूम्स का ज्यादा पोर्शन प्रिजर्व होता स्ट्रीट्स और प्लाजा में लोग कामली नेविगेट कर रहे होते और ट्रेड और डेली लाइफ स्मूथली चलती ये सिनेरियो हमें पास्ट और प्रेजेंट के प्रिजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का कंपैरिजन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है फाइनली एक प्योरली इमेजिनेटिव सिनेरियो दिमाग में ये भी आता है कि क्या होता अगर हम पेट्रा के सिटीजन के साथ वर्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हम उनकी डेली लाइफ रूटीन मार्केट ट्रेड क्राफ्ट मेकिंग और सोशल इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते कि ये लोग अपने फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस कैसे मनाते थे और उनके सोशल और इकोनॉमिक डिसीजंस को वर्चुअली समझते और ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन का अल्टीमेट फ्यूजन होगा जो कि इंटरैक्टिव एजुकेशनल और एंटरटेनिंग जो पास्ट और फ्यूचर को ब्लेंड करता है तो साथियों पेट्रा के हिडन क्लिफ्स और आर्टिफैक्ट्स को फ्यूचर की साइंस और इमेजिनेशन के लेंस से एक्सप्लोर करना हमें सिर्फ पास्ट समझने के टूल नहीं देता बल्कि AI, VR, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के जरिए फ्यूचर इनोवेशंस और एजुकेशनल मॉडल्स के लिए इंस्पिरेशन भी देता है हर टोम इंस्क्रिप्शन और कार्व्ड फसाद एक विंडो है जो पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट करती है फ्यूचर फ्लैश का मैसेज सिंपल है साथियों पेट्रा के बरिड सीक्रेट से हम सिर्फ हिस्ट्री एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज यानी पास्ट और फ्यूचर का एक परफेक्ट ब्रिज है यहाँ साथियों आज के हमारे सफर का वक्त यहीं खत्म होता है हमने एक्सप्लोर किया कि पेट्रा यानी हिडन डेजर्ट सिटी जहाँ की क्लिफ टोम्स और स्ट्रीट सेंचुरी से अपनी कहानियाँ छुपाए हुए हैं हमने उनकी डेली लाइफ सीक्रेट्स आर्टिफैक्ट्स इंस्क्रिप्शंस और ट्रेड पैटर्न्स जानने की कोशिश की फिर हमने लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में बात करके कुछ मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज का सफर भी किया तो साथियों मैं आपको ये याद दिलाती चलूं कि पेट्रा सिर्फ एक बरिड सिटी नहीं है ये एक लिविंग आर्काइव है जहाँ के क्लिफ्स और टोम्स हमारी इमेजिनेशन हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करते हैं हर स्टोन और हर इंस्क्रिप्शन एक स्टोरी बताता है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का ब्रिज है तो साथियों अगले एपिसोड में हम फिर एक और एंशिएंट मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे यानी एक और सिविलाइजेशन एक और लॉस्ट टेक्नोलॉजी या एक और कॉस्मिक फिनोमेना जो हमारी क्यूरियोसिटी को और इमेजिनेशन को चैलेंज करेगा तब तक के लिए आरजे सफा को दीजिए इजाजत और अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखिएगा हिस्ट्री को फील कीजिएगा और इमेजिनेशन के इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा पेट्रा के सीक्रेट्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमारी जर्नी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती है साथियों क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के इनफिनिट सफर से सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: कुरान को सुनते हैं लेकिन इससे सवाल नहीं करते कि ये आयत मुझे क्या बनाना चाहती है, मेरी ज़िंदगी से क्या चाहती है, मुझे किस मकाम पर देखना चाहती है। सामने किराम, कुरान इंसान को सिर्फ सिफर और ज़ीरो बनने के लिए नहीं बल्कि असर रखने वाला इंसान बनने के लिए तैयार करता है। कुरान ऐसे अफराद तैयार करता है जो दुनिया में खैर का ज़रिया बनते हैं, जो माशरों को उठाते हैं, जो अदल कायम करते हैं, जो तहजीबें बनाते हैं, जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। इसीलिए अगर आप तारीख़ इस्लाम को झांक कर देखेंगे तो आपको वहाँ मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, साइंसदान, मेमार, तबीब, माहिरीन फलकियात सब मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान को ज़िंदगी का मरकज़ बनाया था। अगर आज हम अपने माशरों का जायज़ा लें तो एक तल्ख हकीकत सामने आती है कि कुरान के बताए हुए अंदाज़ में हम दुनिया को बदलने की कोशिश कम करते हैं लेकिन कुरान तो पढ़ते हैं। मस्जिद बनाने के लिए चंदा तो देते हैं जो यकीनन अजीम नेकी है, लेकिन साथ साथ हमें ऐसे इदारे भी चाहिए जो नौजवानों को तहकीक सिखाए, इल्म के फ़रोग में काम करें। ऐसी जामियात भी, यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए जो उम्मत के मसाइल का हल पेश करें। तो दोनों पहलू अहम हैं, किसी को आप हकारत की नज़र से नहीं देख सकते। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं, अफला तदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते। गौर कीजिए कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते, यानी सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते, इस तरह की बात नहीं कही या सवाल नहीं किया, बल्कि फरमाया क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते। तो असल मकसद ये है कि कुरान इंसान की सोच को बदल दे, उसके फैसलों को, उसकी तरजीहात को, उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। समझ के नाम, आज हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं जो माजी में बड़े बड़े उलमा के पास भी नहीं थे। एक मोबाइल फ़ोन में कुरान है, दर्जनों तफासीर हैं, हदीस के ज़खीरे हैं, इल्म कुतुब हैं, तहकीकी मवाद है, लेकिन क्या हम इन वसाइल से फ़ायदा उठा रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं? या मालूमात के दर्जे तक हासिल भी कर लेते हैं लेकिन तदब्बुर की सतह तक नहीं पहुँच पाते, जिसका बरक्स देखा गया हमारे सलफ सालेहीन में, हमारे अकाबिर में, हमारे बड़े, उनके पास मालूमात की कमी थी लेकिन तदब्बुर की गहराई में वो डूब जाते थे इन कम मालूमात के साथ ही। समीन के नाम, कुरान एक समंदर है। जो शख्स सिर्फ किनारे पर खड़ा रहेगा वो सिर्फ पानी देखेगा, लेकिन जो उसमें उतरेगा वो मोती हासिल करेगा। इसीलिए सवाल ये है कि आज कुरान ने मेरी सोच में क्या तब्दीली पैदा की, आज कुरान ने मुझे कौन सा सबक दिया, आज कुरान ने मेरी ज़िंदगी के किस मसले का हल दिया। यही तदब्बुर है, यही तफहीम कुरान है और यही वो रास्ता है जिसने सहाबा इकराम को दुनिया का इमाम बनाया था। इसी मौजू को हम आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान के साथ तवील रफाकत, मुसलसल मुताला और गहरे तदब्बुर से इंसान की शख्सियत, फ़िक्र और किरदार में क्या तब्दीली आती है। सुनते रहिए तफहीम कुरान उर्दू रेडियो FM 107 पर। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारी मुलाकात होती है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में। और आज हम प्रोग्राम के इस मरहले में कुछ ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं जिनका ताल्लुक नौजवानों से है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक नौजवानों के दिलों से है, एक ऐसा मौजू जो रातों की नींद छीन लेता है, दिल में बेचैनी पैदा करता है और मुस्तकबिल के बारे में हज़ारों सवालात खड़े कर देता है। ये मौजू है रिज्क का खौफ, मुस्तकबिल की फिक्र, और इन दोनों का ताल्लुक बराह रास्त कुरान से क्या है और कुरान में इसके लिए क्या नुस्खा दिया गया है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम इस तदब्बुर के सफ़र पे निकलते हैं। सीट बेल्ट सही से बांध लीजिए, पहले ही सवाल और डायरेक्शन सही कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर आज किसी नौजवान से पूछा जाए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र है तो आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देगा? नौकरी कब मिलेगी, मुस्तकबिल कैसा होगा, शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा।

0: सिखाओ उसे कहो कि पहले अस्सलाम वालेकुम कहे फिर इजाजत तलब करे रिवायत है सुनन अबू दाऊद की सामने किराम इस तरह हम जब आदाब की रियायत करेंगे तो हम घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं इसमें मोहब्बत का ऐलान भी है आज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम घर में दाखिल होते हैं और सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं न सलाम न दुआ न घर वालों से मोहब्बत भरा कलाम हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम को आम किया जाए एक घर में अगर सलाम की आवाज़ें गूंजती रहीं तो वहाँ मोहब्बत बढ़ती है बच्चे सीखते हैं रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है इसी तरह एक और हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है रिवायत है सही मुस्लिम की तो आज बहुत से घरों में टीवी की आवाज़ है मोबाइल की आवाज़ है खबरों की आवाज़ है लेकिन अल्लाह के जिक्र की आवाज़ कम सुनाई देती है तो जिक्रुल्लाह जिक्र इलाही ये घर की रूह है इस घर में कुरान पढ़ा जाए जहाँ दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो जहाँ तस्बीहात होती हैं जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा घर है और जिस घर में अल्लाह की याद न हो वो रूहानी एतबार से मुर्दा घर बन जाता है तो घर को जन्नत का नमूना बनाने की कोशिश करें ताकि वो एक बाबरकत घर बन जाए आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो तो सिर्फ जाहिरी आराइश काफ़ी नहीं ज़रूरत इस बात की है कि घर में वो आमाल हों जो सुकून का सबब बनते हैं तो आइए कोशिश करें चंद आसान सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कि घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेंगे दुआ पढ़ेंगे घर में दाखिल होने पर सलाम करेंगे अपने घर को जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ से आबाद रखेंगे अल्लाह ताला हमारे घरों को सुकून मोहब्बत रहमत और बरकत से भर दे आमीन या रब्बल आलमीन सामीन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मासलामा
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए गोलकीपर सलाह जकारिया के बारे में। सलाह जकारिया फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कतर फुटबॉल के लिए, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी शोन द इनफ टैलेंट दैट ही हैज़, और कई मैचेस में कतर के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अल दोहेल के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार किया और धीरे धीरे नेशनल टीम के रडार पर आए। सलाह की रिफ्लेक्सेस, शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी एरिया में कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, और इसी बात पर सलाह जकारिया को टीम में रखा गया था 2-3 साल पहले, जबकि मेशाल बारसिम जो है वो नंबर वन गोलकीपर हैं। लेकिन टू बिल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कतरी फुटबॉल, टू बिल्ड द नेक्स्ट फ्यूचर लाइनअप ऑफ कतरी फुटबॉल, स्पेशली गोलकीपर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सलाह जकारिया को चुना गया था। सलाह जकारिया डिफेंडर्स के साथ बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन रखते हैं। इनफैक्ट कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें फ्यूचर के अहम गोलकीपर्स में शुमार कर दिए हैं। अगर उनकी तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही तो सलाह जकारिया आने वाले सालों में कतर नेशनल टीम के नंबर वन गोलकीपर बन सकते हैं और मुल्क की फुटबॉल विरासत को मजीद मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि कतर की वजारत सेहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए क्या रहनुमाई करती है। डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद जिस्म और तंदुरुस्त जहन ही तालीमी कामयाबी की बुनियाद है, इसलिए कतर में सेहत के इदारे स्टूडेंट्स को मुतवाजन गिजा, जिस्मानी सरगर्मी, मुनासिब नींद और जहनी सेहत पर तवज्जो देने की तरगीब देते हैं। दिन का आगाज सेहतमंद नाश्ते से कीजिए, क्योंकि ये सबसे अहम खाना है। उसमें आप दलिया, होल व्हीट ब्रेड, अंडा, दूध और फल आप शामिल कीजिए। इससे आपकी तवानाई और जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। इसी तरह जो सेहतमंद स्नैक्स हैं उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फल, सब्जियां, दही और नट्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। ये ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देते हैं बल्कि पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन को बेहतर करते हैं। रोजाना आप जिस्मानी सरगर्मी जरूर कीजिए और स्टूडेंट्स को कम से कम 60 मिनट्स जो है वो जिस्मानी सरगर्मी करनी चाहिए, जैसे कि आपकी ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है और स्विमिंग वगैरह। और इस तरह से आपके जो दिल हैं वो मजबूत हो जाती हैं, जो वजन है वो भी बैलेंस में रहता है और टेंशन या स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। पानी ज़्यादा पीजिए, गर्मी का मौसम है और उसमें जिस्म को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखता है और फटीग या थकन से भी बचाता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद कर दीजिए। जो मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और जो वीडियो गेम्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल आँखों, नींद और हमारे जिस्मानी जो सरगर्मी है उस पर मनफी असर डाल सकता है। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह बढ़ती हुई उम्र के बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना 8 से 10 घंटे की नींद जो है मयारी नींद वो दरकार होती है। अच्छी नींद से आपकी याददाश्त, आपकी कंसंट्रेशन और तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए, तो इसके लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपनी परेशानियाँ शेयर कीजिए और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लीजिए। ज़हनी सुकून अच्छी सेहत का अहम हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद आदत आज अपनाइए ताकि कल एक मजबूत, पुरएतमाद और कामयाब फ्यूचर हासिल कर सकें। बैलेंस डाइट, रोजाना की एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और जो पॉजिटिविटी है वो आपकी कामयाबी का राज है।

अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो घर में अक्सर इग्नोर हो जाती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे वाटर लीक फिक्स करने के बारे में। देखिए, एक बहुत ही रिलेटेबल सीन आपको बताती हूँ। आप घर में, ठीक है, किचन या बाथरूम में एक टैब है जो आहिस्ता आहिस्ता इससे आवाज आ रही है, टिप टिप टिप टिप। पहली नजर में लगता है कि भाई ये सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप है, क्या ही हो जाएगा, क्या मसला होगा, और हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं यही बात सोचकर, ये सोचते हुए कि बाद में देख लूंगा भाई, अभी क्या, कौन सी कोई जल्दी है अभी। लेकिन बाद में, ये जो बाद में आपने कहा था ना, इसको कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्ते बल्कि गुजर जाते हैं, कुछ लोगों का तो पता नहीं हफ्तों से भी ज्यादा गुजर जाते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको रियलिटी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर लीक सिर्फ एक छोटी सी टिप टिप से नहीं होता बल्कि कंटिन्यूस वाटर वेस्टेज से होने लगता है। एक छोटा सा जो लीकेज होता है ना, वो छोटा सा लीकेज भी टाइम के साथ अगर आप उसे कन्वर्ट करें तो वो लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर सकता है। और अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर लीक हो तो भाई वेस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो पानी हम लाइटली इग्नोर कर रहे थे ना कि भाई ये तो सिर्फ टिप टिप टिप टिप कर रहा है, ये क्या कुछ नहीं है, वो ग्रेजुअली एक सीरियस रिसोर्स लॉस बन जाता है भाई। देखिए, यहाँ पर इको स्विच बड़ा सिंपल है, सिंपल सा आइडिया है, हर वाटर लीक को सीरियसली लें और फौरन रिपेयर करें। पानी एक रिसोर्स है और रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, मतलब छोटी सी डिपिंग को भी इग्नोर ना करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि वाटर लीक फिक्स करने से क्या फायदे होते हैं, भाई क्या हो सकता है। देखिए, पहला फायदा तो बड़ा सिंपल सा है, वाटर कंजर्वेशन। जितना कम लीकेज होगा उतना ज्यादा क्लीन वाटर सेव होगा जो कि फ्यूचर यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा है यूटिलिटी बिल्स कम होना ना। अब आपका बिल आ रहा है इतना सारा और आप सोच रहे हैं भाई मैंने तो पानी यूज नहीं किया इतना, या मैंने तो जो है ना ऐसा कोई यूजेज नहीं किया कि जिससे इतना पानी का जो है वो बिल आ रहा है मेरा। पता चला आपका जो है ना कहीं किचन में कहीं बाथरूम में कोई लीकेज है और आप उसे नोट ही नहीं कर रहे आप उसे। देखिए, छोटी छोटी लीक्स मिलकर मंथली वाटर बिल को नोटिसेबली इंक्रीज कर सकती हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, तभी ये मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बाद में चला, अच्छा ये भी तो लीक था, और जब उसको फिक्स कराया तो एक नोटिसेबल चेंज था कि भाई बिल कम हो गया पानी का। तीसरा फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। कंटिन्यूस लीकेज पाइप्स और फिटिंग्स को वीक कर सकते हैं। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है साथियों, और इसका वेस्ट डायरेक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब देखिए, इससे होता ये, जरा सोचिए, आप रात को सो रहे हैं, ठीक है, और किचन का टैब हल्का हल्का डिप कर रहा है या बाथरूम का टैब हल्का हल्का डिप कर रहा है। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक ड्रॉप ही तो है, लेकिन इमेजिन करें अगर हर घर में एक टैब, सिर्फ एक टैब लीक हो रहा हो तो पूरे एरिया में कितना पानी वेस्ट हो रहा होगा, जरा सोचें। यानी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती है लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। देखिए, दोहा जैसे सिटी में जहाँ वाटर डिसेलिनेशन और सप्लाई सिस्टम बहुत एडवांस है, फिर भी पानी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए यहाँ वाटर कंजर्वेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग दोनों एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये होंगी कि पहला टिप ये है, रेगुलर इंस्पेक्शन करें। हर कुछ हफ्तों बाद टैब्स, बाथरूम्स और किचन की जो फिटिंग्स होती है ना, उन्हें चेक करें। अगर आपको कहीं लीकेज नजर आ रहा है तो उसे फौरन फिक्स करें। दूसरी बात ये, स्मॉल लीक्स को इग्नोर ना करें। इवन ये जो छोटी छोटी डिप्स हो रहे होते हैं ना, इनको भी सीरियस लेकर रिपेयर करें। प्रोफेशनल हेल्प लें, अगर खुद फिक्स नहीं कर पा रहे तो प्लम्बर को बुलाएं और ये प्रोसेस डिले ना करें। भाई चौथी टिप है हमारे पास, वाटर यूजेज अवेयरनेस रखें। घर के मेंबर्स को भी, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, पानी सेविंग जो होती है ना, वाटर सेविंग, उसकी हैबिट्स के बारे में उन्हें एजुकेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंपल DIY फिक्सेस सीखें। बेसिक वॉशर रिप्लेसमेंट या
टाइट फिटिंग्स जैसे माइनर फिक्सेस आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। तो ये एक स्किल है, इसे सीखें। तो भाई इसी के साथ अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनविजिबल लीक्स या अननोटिस्ड डिपिंग हाउसहोल्ड्स में सिग्निफिकेंट वाटर लॉस का रीजन होती है। इसीलिए वाटर मैनेजमेंट में स्मॉल इश्यूज मैटर करते हैं भाई। स्मॉल इश्यूज मैटर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट में। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक ड्रॉप से क्या ही कोई फर्क पड़ना है, किसी को नहीं पता चलता, मैं भी इग्नोर कर दूंगा। लेकिन जब वो एक ड्रॉप कंटिन्यूसली गिरता रहता है ना, तो वो सिर्फ ड्रॉप नहीं रहता बल्कि रिसोर्स लॉस बन जाता है। सुना है ना आपने, मिसाल सुनी है ना, कतरा कतरा बनता है समंदर। तो भाई वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में देखें, तो जब आप वाटर लीक्स फिक्स करते हैं ना, तो आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि केयर टेकर बन जाते हैं अपने रिसोर्सेज के। तो भाई इको स्विच सिंपल है आज का, हर वाटर लीक को इग्नोर ना करें, फौरन फिक्स करें इसे। आज का चैलेंज ये है कि आज अपने घर में एक क्विक वाटर चेक करें। आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, और टैप्स को दूसरे तीसरे टैप्स उनको ऑब्जर्व करें। अगर कोई लीकेज नजर आए तो उसे फौरन या फिक्स करें या प्लान करें, अगर आपको फिक्स करना नहीं आता कि इसको प्लम्बर को बुलाएं भाई। और अगर सब ठीक हो तो भाई किसी और से भी अवेयरनेस शेयर कर दो ना, क्या पता किसी और का टैब कुछ हो, वो ध्यान ना दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, क्या पता आपसे इंस्पायर हो जाएं। तो भाई साथियों, पानी जिंदगी है और जिंदगी का हर ड्रॉप इंपॉर्टेंट होता है। जब हम वाटर लीक्स को टाइम पर फिक्स करते हैं ना, तो हम सिर्फ पानी नहीं बचा रहे होते बल्कि अपनी जमीन के फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ याद दिलाती चलूं कि मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है माफ करने की अहमियत के बारे में। माफ कर देना बहुत बड़ी खूबी है जो हर इंसान के पास नहीं होती। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमारा पहला रिएक्शन बदला लेना होता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि माफी देना सबसे ज्यादा बेहतर है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। नफरत और गुस्सा अंदर ही अंदर इंसान को थका देता है, जबकि माफी सुकून देती है। अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। माफी रिश्तों को दोबारा जोड़ने का जरिया बन सकती है। आज का अमल ये है कि किसी एक शख्स को दिल से माफ कर दें जिसने आपको तकलीफ दी हो। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
3: आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टर्म पर, और ये टॉपिक है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। देखिए, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है क्या? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है एक इकोनॉमी ऐसी जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंड ना करे, बल्कि नॉलेज, स्किल्स और इनोवेशन पर भी फोकस करे। जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 का गोल भी यही है कि कंट्री ऑयल और गैस से आगे बढ़कर नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बने। इस टाइप की इकोनॉमी में एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो वो नए आइडियाज और इनोवेशंस क्रिएट करते हैं। ये न्यू आइडियाज जो है वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इस प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D का सपोर्ट मिलता है तो आप जानते ही हैं कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, और ये नई टेक्नोलॉजीज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का एक और फायदा ये है कि ये सस्टेनेबल होती है। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज और इनोवेशन कभी ख़त्म नहीं होते ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये मॉडल अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, और शायद इसीलिए सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, नॉलेज ही फ्यूचर की असली पावर है। जो कंट्रीज नॉलेज और इनोवेशन पर इन्वेस्ट कर रही हैं वही ग्लोबल लेवल पर कल जाके लीडर्स बनेंगी। और कतर का विजन हमेशा से लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करना है। यहाँ कतर का विजन 2030 इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को जो है वो प्रोसेस में लाया जाए, और किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के चलते कंट्री का या मुल्क का फायदा हो। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.

स्कैम अलर्ट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, मैं हूं दुहा वाला कबीर और आज इस फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूं। ये फ्रॉड जो है पुराना नहीं है, इसमें स्कैमर्स ने बहुत सालों की मेहनत करी है। हम 90s के ज़माना अगर याद करें तो उस ज़माने में नया नया जब इंटरनेट आने लगा था धीरे धीरे, और जब 2000s आए थे, अर्ली 2000s में लोग SMS भेजने के तौर तरीके ढूंढते थे इंटरनेट पर, और फिर आगे जाके हमें पता लगा कि इंटरनेट से भी मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जिसमें यू स्टे एनोनिमस और आपका नंबर नहीं आता है उसमें। हम बड़े मासूम थे समझने के लिए कि फ्यूचर में जाके यही हमारे खिलाफ हथियार बन जाएगा। अब कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाते हैं और किसी को मैसेज सेंड करने के लिए मैसेज उसका नंबर डालते हैं, सेंडर का नाम आपको पता होना चाहिए और बस एक मैसेज भेज दिया आपने। वो इतना लेजिट मैसेज लगता है कि कोई भी उसमें फंस सकता है अगर उस मैसेज के अंदर एक लिंक हो, एक इन्फो दी गई हो जो बड़ी पर्सनल हो, एंड यू फील कि ये तो किसी कंपनी से आया। कुछ मासूमों को मैसेज जाता है इस केस में और उसमें जाती है लिंक। ये फिशिंग का नया तरीका है और उस लिंक के पहले लिखा होता है

अनलिमिटेड डेटा पाएं, आज ही क्लिक करें, आज ही अवेल करें, और लोग इसमें फौरी तौर पर फंस जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत जेन्युइन लगती है, और फिर उनके पैसे जब कटना शुरू होते हैं तो बहुत देर हो चुकी हो। इस लिंक के जरिए मैक्सिमम सिक्योरिटी अगर नहीं है आपके फ़ोन में तो आपके फ़ोन को भी वर्चुअली ये लोग पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता, खुदा ना करे ऐसा हो, बट दिस इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के जो SMS स्कैम हैं वो फिशिंग का नया दौर है, अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी बेहद आसान है, इनको समझना बहुत आसान है, नजरें अपनी तेज रखिए। जब मैसेजेस आपके पास आएंगे तो अक्सर उसमें जो डोमेन आएगा उस डोमेन में ऊपर कोई नंबर नहीं होगा, स्कैम करने वाले स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो ब्रांड की स्पेलिंग नेम तो गलत होगी ही होगी 10,000%, क्योंकि ब्रांड की सेम स्पेलिंग लिखेंगे, सेम स्पेलिंग से मैसेज आपको जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले स्पेलिंग पे नजर रखें, ये लोग आर्टिस्ट निकले तो उसमें ये कुछ और वेबसाइट का नाम लिख देते हैं ताकि इट योर आईज आर ट्रिक्ड एंड योर ब्रेन कॉम्प्रिहेंड समथिंग एल्स और आप फंस जाएं। तो हमेशा याद रखिए, लिंक्स कहीं से भी आए, स्पेशली मैसेजेस, डोंट ओपन देम। ब्रांड्स आजकल खुद को प्रमोट करने के लिए लिंक्स नहीं भेजते, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, अगर ब्रांड्स को खुद को प्रमोट करना होगा दे विल यूज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया, बट नेवर थ्रू अ लिंक। अगर लिंक के थ्रू करेंगे भी तो आपको स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग्स इफ यू आर थ्रू विद इट तो काम हो जाएगा। जैसे आपको याद है ना रीबॉक का रीबुक, बस ये वही है एबी बस। तो बच के रहिए और फ्रॉड अवेयरनेस, ये वाली अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाइए। इंटरनेट से मैसेजेस जो लोग करते हैं उन्होंने तरीका निकाल लिया है फिशिंग का, मगर आपको वो मच्छी नहीं बनना है जिसको ये पकड़ना चाहते हैं। ओके, सो अलर्ट पे रखिए अपने दिमाग को, हमेशा लाल बत्ती जली रहनी चाहिए जब भी ऐसा मैसेज आए। अब आ जाते हैं जरा इसके सोल्यूशन पे, अगर ऐसा हो गया तो क्या किया जाए। अब तरीका बचने का यही है कि रैंडम साइट्स पर नंबर पंचिंग ना करें। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट आपसे कहती है आगे बढ़ने के लिए अपना नंबर अपना ईमेल आईडी यहां पर लिखिए, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने अपना नंबर किसी भी रैंडम साइट पे एवं ही दे दिया है जिस साइट के बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेसेस वहां पे ना दें। कई मरतबा हम ऑफर्स और ब्रांड वैल्यूज की वजह से पेजेस चेक करने के चक्कर में हमेशा ऐसे पैटी स्कैम्स में फंस जाते हैं और फिर इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फंस जाएं या किसी को देखें खुदा ना खास्ता, तो फौरी तौर पर पुलिस से कॉन्टैक्ट करें, साइबर पुलिस से कॉन्टैक्ट करें, आपको ज़रूर ज़रूर मदद मिलेगी। मगर इनको आइडेंटिफाई करना और इनसे बच के रहना बेहद आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। So make sure that you are on high alert with the SMSs that you received on your phone.

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने की कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इंसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, आज हम चलकर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें दोहा के एक आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ ले जाता है। एक ऐसी जगह जो कभी फिल्मों के जादू, हंसी और तालियों से गूंजती थी, गल्फ सिनेमा। दोस्तों, ये सिर्फ एक थिएटर ही नहीं था, ये एक लैंडमार्क था, एक कल्चरल हब जहां कतरी और एक्सपैट्स दोनों की यादें बनती थीं। सालों तक गल्फ सिनेमा ने एक नया तजुर्बा दिया, स्क्रीन के सामने बैठकर फिल्म देखना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और फैमिली के साथ वो शाम जो यादगार बन जाती थी। मेरे साथ वो लोग खास तौर पे जुड़ेंगे जिन्होंने वो वक्त देखा था कि जब गल्फ सिनेमा के बाहर लाइन लगी होती थी टिकट के लिए, हल्की सी बेचैनी लेकिन उसके पीछे छुपी खुशी, अंदर जाकर डिम लाइट के साथ ही पूरी दुनिया बदल जाती थी। फिल्म के डायलॉग्स, हंसी की आवाजें और तालियों की वो गड़गड़ाहट सब मिलकर एक ऐसी याद बन जाती थी जो जिंदगी भर दिल में रहती। दोस्तों, गल्फ सिनेमा सिर्फ स्क्रीन और खुशियों का नाम ही नहीं था बल्कि एक ऐसे जज्बात का मरकज था जो अब भी उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने वहां अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत लम्हे गुजारे। चलिए आज फिर उन यादों को ताजा करते हैं जहां हम जानेंगे गल्फ सिनेमा की कहानी। दोस्तों, 1970 का दौर था जब दोहा के एरिया नजमा में गल्फ सिनेमा ने अपने दरवाजे खोले। उस वक्त कतर में एंटरटेनमेंट ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे और ऐसे में गल्फ सिनेमा ने लोगों को एक नया तजुर्बा दिया। देखते ही देखते ये सिनेमा फैमिलीज, नौजवानों और वर्कर्स का एक मशहूर गैदरिंग पॉइंट बन गया। दोहा सिनेमा उस वक्त शहर के सेंट्रल एरिया में था लेकिन गल्फ सिनेमा की अपनी अलग पहचान बन गई, खासकर इसलिए कि यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी और अरबिक मूवीज स्क्रीन होती थी। यही वजह थी कि कतर के खारजियों की एक बड़ी तादाद के लिए गल्फ सिनेमा एक कल्चरल हब बन गया। लेकिन असल कहानी तो और भी पहले शुरू होती है। 1950 में कतर में फिल्म स्क्रीनिंग्स का आगाज हुआ। उस वक्त लोग कार गैरेज, वर्कशॉप्स में मूवीज देखने के लिए जमा होते। 1960 के आते आते ये सिलसिला बढ़ गया और डिस्ट्रीब्यूटर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से फिल्में और प्रोजेक्टर्स लेकर कतर आते और जहां भी सुइटेबल जगह मिलती वहां एक छोटा सिनेमा बन जाता। ग्रेजुअली रिएक्शंस और स्पोर्ट्स क्लब्स में भी सिनेमा के सेटअप्स बनने लगे और फिर आया 1970 का साल जब कतर सिनेमा एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एस्टेब्लिश हुई। इसी के जरिए मुल्क के पहले दो ऑफिशियल सिनेमा बने, दोहा सिनेमा और गल्फ सिनेमा। भाई उस वक्त की जो कैपेसिटी थी इस थिएटर की वो 2000 सीट की थी। हर शो में लोगों का हुजूम होता और ये क्रेज इतना था कि घरों में टेलीविजन आने के बावजूद सिनेमा की चाम कम नहीं हुई। लेकिन फिर 1980 में इंडस्ट्री को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा और वो था VHS टेप्स का। अब लोगों के पास घर घर फिल्में देखी जाने लगी और आसान तरीके भी मिल गए, मगर फिर भी गल्फ सिनेमा ने लोगों के दिलों में जो मकाम बनाया था वो सिर्फ एक बिल्डिंग का ही नहीं बल्कि कतर की कल्चरल हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा था। दोस्तों ये सिलसिला 90s तक जारी रहा। उस वक्त तक सिनेमा ने नई नई रिलीज्ड फिल्में दिखाना शुरू कर दी थी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आती थी। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज भी गल्फ सिनेमा की स्क्रीन पर चलते वक्त हॉल में तालियों की गूंज होती थी। साथ ही वेस्टर्न मूवीज भी दिखाई जाती थी जिन्होंने ऑडियंस को एक नई वैरायटी और एक नई सोच दी। ख्वातीनो हजरात, पहले के दौर में तो बहुत कम फिल्में रिलीज हुआ करती थीं, आप जानते ही हैं, और जब फिल्में नहीं होती थीं, तो स्टेज पर मुख्तलिफ प्लेज अपनी रूहानी छाप छोड़ जाते थे। थिएटर के दरवाजों पर फिर भी वो ही रश होता था क्योंकि गल्फ सिनेमा ने अपनी लॉयल ऑडियंस को कभी मायूस नहीं किया था। भाई दरअसल फिल्में देखने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि गल्फ सिनेमा की 1093 सीट्स एक वक्त पर काफी नहीं रही। फिर क्या था, मजीद 400 चेयर्स ऐड करनी पड़ी ताकि हर शौकीन को जगह मिल सके। दोस्तों गल्फ सिनेमा का नाम सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद नहीं था, ये एक सोशल और कल्चरल हब था, एक ऐसा मीटिंग पॉइंट जहां मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग एक साथ आते, अपनी कहानियां और इमोशंस शेयर करते और एक दूसरे से जुड़ जाते। 70s, 80s और फिर 90s का दोहा अपनी डाइवर्सिटी के साथ गल्फ सिनेमा के स्क्रीन पर भी नजर आता था। भाई यहाँ पर तो कई वर्कर्स के लिए सिनेमा ही उनका वीकेंड एंटरटेनमेंट था और उन एक्सपेक्ट्स के लिए जो अपने घरों से दूर थे। गल्फ सिनेमा एक कम्युनिटी बॉन्डिंग का सिंबल बन गया। यहाँ की सीट्स पर बैठकर वो अपनी थकान भूल जाते, अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराहट बांटते और कुछ घंटों के लिए अपने मुल्क की यादों से दूर होकर एक नई दुनिया में चले जाते। दोस्तों वक्त गुजरा, दौर गुजरे, माशाल्लाह कतर ने तरक्की की राह अख्तियार करी। वही सिनेमा घर जो कभी हंसी और तालियों से गूंजता था अब खामोशी में डूबा हुआ है। गल्फ सिनेमा जैसे इंतजार कर रहा हो कि एक दफा फिर से जिंदा हो, एक दफा फिर से कतर की यंगर जनरेशन को वही खुशी दे जो कभी उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने महसूस की थी। दोस्तों माजी में नजर डालें और आज के दौर में कदम रखें तो कतर की सिनेमा जर्नी में सबसे काबिले तारीफ किरदार उस नई नस्ल का था जो फिल्म और सिनेमा की आर्ट्स और साइंसेस सीखकर अब्रॉड से वापस आए। इन यंग फिल्म मेकर्स ने सिनेमा को उन रिस्ट्रिक्शन से आजाद करना शुरू किया जिन्होंने इसे काफी अरसे तक बांध कर रखा था। ये फिल्म मेकर्स अपनी फ्रेश सोच, नए नजरिए और क्रिएटिव जज्बे के साथ वापस आए थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट नैरेटिव मूवीज बनाकर सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं किया बल्कि उन प्रोजेक्ट्स को सक्सेस भी दिलाई। और फिर क्या था, उनकी मूवीज ने अवार्ड जीते, रिकॉग्निशन हासिल की और सबको दिखाया कि अगर यूथ को सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिले तो वो कतर को इंटरनेशनल सिनेमा मैप पर ला सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, एक छोटे से मुल्क की नई नस्ल ने साबित कर दिया कि उनका टैलेंट किसी से कम नहीं है। अब अगर हम सिनेमेटिक कल्चर की ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ देखें तो पहले 3 दशकों में कतर ने एक लाजवाब सफर तय किया है। भाई एक वक्त था जब सिनेमा ऑडियंस वेग और पैसिव थी, जो भी स्क्रीन पर दिखाया जाता वो ही देख लेती थी। लेकिन वक्त के साथ अवेयरनेस और एक्सपोजर बढ़ गया, अब यही ऑडियंस एक एक्टिव और एंगेज्ड ऑडियंस बन गई है जो इंटरनेशनल फिल्म्स को दुनिया के साथ ही ओपनिंग डेट पर एंजॉय करती है। यानी सोचिए, एक वक्त था जब कतर के लोग गैरेजेस और छोटे हॉल में फिल्में देखते थे, और आज ऐसा वक्त है कि दोहा के सिनेमा में वही मूवीज रिलीज होती हैं जो न्यूयॉर्क, लंदन या मुंबई के स्क्रीन्स पर चल रही होती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही नहीं बल्कि एक कल्चरल इवोल्यूशन है। दोस्तों, दोहा के शहर में सिनेमा जाना अब एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। पिछले दो डिकेड्स में ये कल्चर और मजबूत हुआ है। जब बड़ी बड़ी फिल्म कंपनीज ने दोहा में अपनी ब्रांचेस खोलनी शुरू की तो इस ट्रेंड ने नया रंग पकड़ा। अब दोहा में सिनेमा हॉल्स की तादाद लगभग 200 तक पहुंच गई है। हर मॉल, हर कॉमर्शियल हब के अंदर एक मॉडर्न सिनेमा हॉल अपनी जगह बनता नजर आता है। तो दोस्तों, यहाँ एक कोट याद आती है जो सिनेमा की असल रूह को बयान करती है। मशहूर राइटर और क्रिटिक हेनरी फोरमैन कहते हैं, सिनेमा मेक्स चिल्ड्रन। मतलब ये है कि सिनेमा इंसान की सोच और पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक इनफॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम है, एक सोशल विंडो है जहां से इंसान दुनिया को देख सकता है। कहानियां जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो हमें नए आइडियाज, नए इमोशंस और नए जज्बात से रोशन करती हैं। इस तरह गल सिनेमा से शुरू होने वाली कतर की सिनेमा जर्नी आज एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पास्ट की वो नॉस्टैल्जिक यादें और आज के ये ग्लोबल सिनेमेटिक एक्सपीरियंसेस दोनों मिलकर कतर के कल्चर को एक नई पहचान देते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। तो दोस्तों, 1970 में जब गल्फ सिनेमा की ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, उस वक्त दोहा की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। और फिर 2016 तक गल्फ सिनेमा ने कतर को वो सिनेमैटिक यादें दी जो शायद ही कभी भुलाई जा सके। ये सिर्फ एक हॉल ही नहीं था, बल्कि एक स्टेज था जहां कल्चर्स मिले, हंसी गूंजी और स्क्रीन पर चलती कहानियों ने सपनों को जिंदा कर दिया। आज चाहे मॉडर्न मल्टीप्लेक्सेस ने अपनी जगह बना ली हो, लेकिन गल्फ सिनेमा हमेशा कतर के एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, पर्दे एक दफा फिर उठने वाले हैं। गल्फ सिनेमा अपनी सेकंड एक्ट के साथ वापस आ रहा है और ये रिटर्न एक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। भाई, पुरानी बिल्डिंग को रीस्टोर किया जा रहा है और साथ ही एक 360 डिग्री रिवाइवल प्लान बनाया गया है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन उस कल्चरल एसेंस को भी प्रिजर्व किया जाएगा जो गल्फ सिनेमा की रूह है, यानी इसकी पुरानी बिल्डिंग। भाई, आपको वाजे कर दूं कि आज के दौर के लिए कतर म्यूजियम ने कतर सिनेमा और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इस हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स को दोबारा जिंदा किया जा सके। प्लान ये है कि गल्फ सिनेमा को एक स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो नए दौर की जरूरतों को भी पूरा करे और पुरानी यादों की रूह को भी साथ लेकर चले। चलिए दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ख्याल में पहली चीज क्या होनी चाहिए जो आप गल्फ सिनेमा की रिवाइवल में देखना चाहेंगे, या फिर अगर आपको मौका मिले तो आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा करते हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666221।

0: 107। तो दोस्तों आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी और एक नया टॉपिक लेकर आपको अपडेट करेंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। तो हमारे साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट में जरूर जुड़िएगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ऐ इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें और उन सब के लिए जहन्नुम की वाइद है।

फिर जब ये फरिश्ता दे लूत के यहां पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर न देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ाए। लूत ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत न करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा न करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो? लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ए नबी। उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तल पट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाकये में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फिरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाकया पेश आया था गुजरगाह आम पर वाकये है। इसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। और ऐका वाले जालिम थे तो देख लो, हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाकए हैं।

خلق السماوات